ओम शांति। ये सत्य है कि जो व्यर्थ और निगेटिव से मुक्त रहते हैं उन्हें ही परमात्मा अवार्ड मिलता है, और परमात्मा अवार्ड है विश्व की बादशाही। ये भविष्य का इनाम है और वर्तमान का इनाम होगा संपूर्ण सुख, संपूर्ण शांति, परमात्म प्रेम, सर्व खजाने। आत्मा पूरी तरह तृप्त और भरपूर हो जाएगी। बाबा अनेक वरदानों से ऐसी आत्माओं को संपन्न कर देंगे। तो आइए हम सभी योग अभ्यास बढ़ाकर व्यर्थ और निगेटिव से मुक्त हो जाएं। हमें बहुत ध्यान देना है अपने योग के चार्ट पर। ऐसा नहीं केवल मेरा बाबा कहा और संतुष्ट हो गए। हमें बाबा से नाता जोड़ना है, वो हमारा खुदा दोस्त है, इस स्मृति में रहना है। वो हमारा साथी है, इस स्मृति में रहना है, साथ साथ पावरफुल योग के द्वारा, अनेक स्पिरिचुअल ड्रिल्स के द्वारा हमें अपने को लाइट रखना है और अपने विकर्म विनाश भी करने हैं। योग से, पांच स्वरूपों के अभ्यास से न केवल विकर्म विनाश होते हैं बल्कि सारे सद्गुण, संपूर्ण प्योरिटी, निर्भयता, रॉयल्टी और अनेक सुंदर जो धारणाएं हैं वो जीवन में आ जाती हैं। हम न्यारे और प्यारे रहने लगते हैं, मन सब चीजों से उपराम होने लगता है, सर्व कर्मेंद्रियों के रस पीछे छूटने लगते हैं क्योंकि ईश्वरीय रस का अनुभव बहुत ज्यादा होने लगता है। तो बहुत ध्यान दें अपने योग के पुरुषार्थ पर, अपनी दिनचर्या में कुछ प्लान बनाएं ताकि हम कर्म करते हुए या घरों में रहते हुए, भोजन बनाते हुए, हम भिन्न भिन्न तरह के सुंदर अभ्यास कर सकें। स्वमान में रहना, एसडीजी होना, बाबा से बातें करते रहना, ये सब भी योग के अंतर्गत आता है। और इन सब भिन्न भिन्न अभ्यासों के द्वारा अलग अलग प्राप्तियां होती हैं। विशेष रूप से इस स्वमान पर ध्यान देंगे, मैं विजय रथ हूँ। इस स्वमान के अभ्यास करने से जो माया को जीतने की हमारे अंदर शक्ति है वो इमर्ज रहेगी। इसके साथ यदि ये भी करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजय रतन हूँ और माया जीत हूँ, फिर यदि कोई विकार जीतना है तो उसके लिए याद करेंगे काम जीत हूँ या क्रोध मुक्त हूँ। ये संकल्प सवेरे सवेरे करने से माया को जीतने का बल हमें प्राप्त होता रहेगा। लेकिन विशेष बल हमें मिलेगा जब हम सर्वशक्तिवान की शक्तियों को प्राप्त करेंगे, और ये शक्तियों की प्राप्ति परमधाम में जाकर या नीचे बाबा की किरणें प्राप्त करके की जा सकती हैं। इसका अभ्यास सारा दिन बढ़ाना है। कोई ये नहीं कहे कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, टाइम मैनेज करना होता है। अगर आप सारा दिन काम करते हैं कंप्यूटर के साथ तो बीच बीच में एक दो मिनट अपने कार्य को रोक कर अच्छे अभ्यास किए जा सकते हैं। एक दिन के लिए आप एक अभ्यास अपनी बुद्धि में लेकर चलो कि आज मुझे ये अभ्यास करना है या भिन्न भिन्न कर्म में अलग अलग अभ्यास करने हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि सारा दिन अच्छे से अच्छा योग का अभ्यास न हो सके।

तो योगी बनेंगे, बाबा की निरंतर मदद मिलेगी, उसकी छत्र छाया के सुंदर अनुभव होंगे और लगेगा बाबा इज माय रेस्पॉन्सिबल, वो हमारी जिम्मेदारी संभाल रहा है। तो आज सारा दिन हम बाबा का आह्वान करेंगे, बाप दादा का फील करेंगे, बाबा हमारे पास आ जाता है, उसकी उपस्थिति फील करेंगे, इसको आदत बनाएंगे और फिर पावरफुल योग अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा परम धाम में सर्वशक्तिवान के साथ हूँ, उसको विजुअलाइज करेंगे, हम दोनों साथ हैं, सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ मुझ में समाती जा रही हैं। ये अभ्यास बार बार करने से हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे और स्वयं को बहुत लाइट महसूस करेंगे। तो आइए आज योग के सुंदर अनुभव करें और योग की शक्ति स्वयं में भरकर विश्व को दान करें। ओम।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। उत्कृष्टता अपना बखान खुद करती है। उत्कृष्टता हो तो उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं होती। जहां बखान करने की जरूरत पड़े वहां उत्कृष्टता आपको शायद ही मिले। जो ठीक है वह ठीक ही है और जो ठीक नहीं है वह ठीक ही नहीं है। फिर भी हम में विवरण देने की, स्पष्टीकरण देने की, सही ठहराने की, दलील देने की और औचित्य सिद्ध करने की प्रवृत्ति होती है। जरा ध्यान दें, यदि एक बार आप अपने मन को कुछ ऐसा करने की प्रवृत्ति में ढाल लेते हैं जो ठीक नहीं है, तो आप आत्मविनाश वाला बटन दबा रहे हैं। जो मन उत्कृष्टता के अभाव को सही सिद्ध करना सीख लेता है वह समझौते पर उतर आना भी सीख जाता है। वह समझौते के साथ जीना सीख जाता है। यदि आपको 100 में से 88 अंक मिले हैं तो यह एक तथ्य है कि 12 अंकों की कमी रही है। आप कितना भी स्पष्टीकरण दें, कितने भी तर्क दे लें, आपके 12 अंक कम ही रहेंगे। मौखिक जमा खर्च उन 12 अंकों की कमी कभी पूरी नहीं कर सकता। आप 88 को 100 के रूप में साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हालांकि आप खुद जानते हैं कि 88 केवल 88 ही होता है। कहावत है कि यदि कोई झूठ 1000 बार बोला जाए तो वह सच बन जाता है। हो सकता है कि दूसरों के लिए वह सच प्रतीत होने लगे, लेकिन आपको तो हमेशा यह सच पता ही रहेगा कि वह झूठ है। आप कब तक बिल्ली को शेर बताते रहेंगे? न तो आप इस तथ्य से मुंह मोड़ सकते हैं और न ये तथ्य आपसे मुंह मोड़ सकता है। दलीलें या स्पष्टीकरण किसी कमी की भरपाई कभी नहीं कर सकते।

मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

यदि आपका लक्ष्य 40 लाख का था लेकिन आप 36 लाख तक ही पहुंच पाए हैं, तो आप लक्ष्य से नीचे ही रहे हैं। यदि मुलाकात का निर्धारित समय 11 बजे था और आप 11:15 पर पहुंचे हैं, तो इसका अर्थ है आप देर से आए हैं। हर संभव तरीके से हर बात के भरपूर विवरण, दलील और स्पष्टीकरण के बावजूद यह तथ्य अटल और अड़िग रहता है कि आपने लक्ष्य पूरा नहीं किया है, और यह कि आपने समय की पाबंदी का सम्मान नहीं किया है। उत्कृष्टता के अभाव के लिए खुद को सांत्वना और तसल्ली दे देना अपने जीवन में आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इससे आप लक्ष्य को पाने में हर बार पिछड़ जाएंगे और वह क्षमता पा लेने में भी आप पिछड़ जाएंगे जो आप पा सकते हैं। उठो, जागो, जो ठीक नहीं है वह ठीक ही नहीं है। 6:01 का समय 6 बजे का समय नहीं हो सकता। सोमवार केवल सोमवार ही होता है। दोष रहित होना संभव है, उत्कृष्टता बनाए रखना संभव है, और इसका शुभारंभ ऐसा स्वभाव बना लेने से होता है जिसमें आप सर्वोत्तम से कम किसी भी चीज से समझौता करने से साफ इनकार कर देते हैं। जीवन के साथ यह विचित्र बात है कि यदि सर्वोत्तम से कम किसी भी चीज से आप समझौता करने से इनकार कर देते हैं, तो फिर आप उस सर्वोत्तम को हासिल कर ही लेते हैं। उत्कृष्टता के अभाव से आपको पीड़ा पहुंचनी चाहिए। जब आपको पीड़ा पहुंचेगी, तब आप निर्देश देंगे। जब आप निर्देश देंगे तो आप सृजन करेंगे। सृजित हो जाएं, उत्कृष्टता का सृजन करें। आपका काम ही आपके बारे में बताए, आपको उसके बारे में बताने की जरूरत ना हो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अधेड़ सज्जन शिकायत कर रहे थे, मैंने अपने माता पिता से कभी कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने मुझसे जो भी करने के लिए कहा मैंने वही किया। मैं अपने माता पिता का बहुत आदर करता था, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है। जब भी मैं उसे कुछ करने के लिए कहता हूँ तो मुझे उसके क्यों, क्या, कैसे और क्यों नहीं के जवाब देने पड़ते हैं। आजकल के बच्चे बड़ों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते, यह सच नहीं है। बात केवल इतनी ही है कि संबंधों का स्वरूप बदल गया है। बीते वर्षों में संबंधों का आधार भावना हुआ करता था, आज संबंधों का आधार सूचना है। कुछ वर्ष पहले यदि कोई बॉस अपनी टीम के किसी सदस्य से कोई कार्य करने के लिए कहता था तो उस सदस्य का त्वरित उत्तर हुआ करता था, समझिए हो गया। आज टीम का सदस्य उस काम को करने से पहले पूछता है, यह क्यों किया जाना चाहिए, किस लिए किया जाना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आज टीम का सदस्य बॉस का आदर नहीं करता, बल्कि बात बस इतनी सी है कि वह पूरी जानकारी हासिल कर लेना चाहता है। इस अर्थ में संबंधों में बिना सवाल किए हुकुम बजाने वाली बात अब नहीं रह गई है। हालांकि संबंधों की गुणवत्ता में किसी तरह की कमी नहीं आई है, आज की बुद्धि तो बस यह पूछती है, या तो अपना यह निर्णय लेने के बारे में मुझे पूरी जानकारी दो, या मुझे वह सारी सूचना दो जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि मुझे यह कार्य करना चाहिए। हो सकता है कि अपने पिता के इशारे भर से आप उन्हें पानी लाकर दें, लेकिन हो सकता है कि वही काम करने से पहले आपका बेटा दो चार प्रश्न करे। जो बात महत्वपूर्ण है वह यह कि वह भी आपके लिए पानी ले आएगा, बशर्ते उसे इस बारे में पूरी बात बता दें। इस अर्थ में बालक और माता पिता के बीच के संबंधों में कोई कमी नहीं आई है, केवल संबंधों का स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: ओए इधर इधर इधर, क्या पहुँचा दोगे है? कहाँ पहुँचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

जी जब फोन पर माँ को बताते थे कि लंच पर आज उनके साथ 3 लोग और आएंगे, तो माँ केवल ठीक है कह दिया करती थी। अब यदि यही बात अपनी पत्नी को बतानी पड़े तो वह पूछेगी, कौन कौन आएगा, कब आ रहे हैं, उनकी पसंद क्या है, कब तक रुकेंगे। लेकिन फिर भी वह उनके लिए खाना जरूर बनाएगी। इस अर्थ में वैवाहिक संबंधों में निष्ठा में कमी नहीं आई है। बात इतनी सी है कि संबंधों का स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। संबंधों का आधार भावना से हटकर सूचना पर आ गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी समर्पण की गुणवत्ता में कोई परिवर्तन आया हो ऐसा नहीं लगता है। जो परिवर्तन आया है वह है बिना कोई प्रश्न उठाए समर्पण कर देने का स्थान अब पर्याप्त प्रश्नोत्तर के बाद होने वाले समर्पण ने ले लिया है। तो क्या अर्जुन और इस स्थिति में कोई अंतर है? संबंधों की गुणवत्ता में कोई गिरावट नहीं आई है। हाँ, उसमें संप्रेषण और सूचना की मांग जरूर बढ़ गई है। सूचना का आदान प्रदान और संप्रेषण अब संबंधों की जीवन रेखा बन गए हैं। विवरण अब जरूरी हो गए हैं और स्पष्टीकरण अनिवार्य। यह परिवर्तन न तो बेहतर है और न बदतर, यह तो बस एक नया परिदृश्य है। इस परिवर्तनशील संसार में ऐसा परिवर्तन तो प्रत्याशित ही होना चाहिए। अब केवल करो कह देना पर्याप्त नहीं रह गया है। पर्याप्त विवरण व स्पष्टीकरण दें और फिर कहें करो और वह कर दिया जाएगा। विश्वास संबंधों का आधार होता है, लेकिन अब विश्वास बस यूं ही नहीं कर लिया जाता। सूचना विश्वास का आधार बन गई है और इसीलिए संबंधों का भी। लेकिन यह बात हमें जरूर याद रखनी चाहिए कि सभी संबंध सिर्फ सतह पर ही रहते हैं। भीतर गहराई में आप हमेशा अकेले ही होते हैं। भले ही हजारों लोग आपके चारों ओर हों, फिर भी अपने एक अंश में आप हमेशा अकेले होते हैं। आप इस संसार में अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। मुक्ति यह जानने से आती है कि अस्तित्व का अकेलापन ही आपका सच्चा स्वरूप है। इस अंतराल से संबंध जोड़ें तो आप आश्रय बन जाएंगे अथवा खुद आश्रित हो जाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, जब हम अपने ही स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो पता चलता है कि हमारी छोटी छोटी आदतें हमारे शरीर के ऊपर एक गलत प्रभाव डालती हैं। व्यक्ति अचानक बीमार नहीं पड़ता, उसके बीमार होने के पीछे एक लंबे अरसे का शरीर के ऊपर गलत व्यवहार या गलत आहार, गलत विचार, ये सब कुछ प्रभावित करता है और तब जाके व्यक्ति एक दिन बीमार हमको होता हुआ नजर आता है। कभी कभार लोगों की बीमारी को शनै शनै बढ़ता हुआ भी हम देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का बीमार होना भी इसी प्रक्रिया के तहत चलता है। अगर हम अपनी इन आदतों को जो शरीर के स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम कर रही है उन्हें सुधार लें तो शायद शरीर शनै शनै स्वस्थ भी रह सकता है। ये इक्वेशन बहुत ही आसान है और इसे समझकर अगर हम जागरूक होकर अपने स्वास्थ्य को देखें तो सहज स्वास्थ्य संभव है। दोस्तों, आज स्वास्थ्य जगत से एक ऐसे एक्सपर्ट से हम बातचीत करेंगे जो हमें ये चीजें समझाएंगे कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य को खोते हैं और कैसे उसे हम वापस भी लौटा सकते हैं। आज हमारे साथ स्वास्थ्य जगत के विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर राहुल मोदी जी जुड़ रहे हैं, जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं, भारत के अनेक खिलाड़ियों को मैदान पर ठीक रखने में इन्होंने अपना योगदान दिया है। साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर इनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को शफा दी है और आज भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका आज के कार्यक्रम में स्वागत है।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो मैं हमारे श्रोता मित्रों के प्रश्नों से शुरुआत

0: करना चाहूंगा। जब वो हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं तो उनके मन में अनेक प्रश्न भी उठते हैं और कुछ चीजों के लिए हमारे श्रोता मित्र प्रश्न लिखकर भेजते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न हमारे श्रोता से हमारे पास है। ये प्रश्न है कि चाय और कॉफी के बारे में हमने जो विस्तार से चर्चा की है उस पर ये प्रश्न पूछते हैं कि लंबे समय तक, जैसे आपने 20, 30 या 40 साल तक आपने हर दिन चाय पी है, कॉफी पी है, या किसी कैफीन के पेय पदार्थ का, किसी चीज का आप इस्तेमाल करते आए हैं, और अगर आप अचानक चाय या कॉफी या कोई पेय पदार्थ जो आप पी रहे हैं हर दिन उसको लेना बंद कर देते हैं तो उसका क्या असर होता है, क्या शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है, ये चीज पूछते हैं।
1: इसका उत्तर भैया पहले आप दीजिए कि चाय अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा।
0: वैसे तो मैं ये कहूंगा कि मेरे अनुभव से मुझे तो कुछ नहीं हुआ चाय छोड़ने से, तो मैं तो यही कहूंगा कि बला टली, एक आदत छूटी, कम से कम सुबह सुबह उठ के चाय चाय करने की जो दिल की तमन्ना थी वो खत्म हो गई। चाय नहीं मिलने पे जो चिड़चिड़ापन होता था वो नहीं होता, वरना कभी कभार तो मैं मम्मी को कहता, मम्मी चाय क्यों नहीं मिल रही अभी तक, कम से कम उस चीज की खीज नहीं होती आज। मैं समझता हूं ये असर तो मुझ पे हुआ है।
1: भैया एक संस्कृत का एक श्लोक, मैं स्कूल में जब संस्कृत पढ़ाई जाती थी तो मुझे इसी चाय छोड़ने वाले व्यक्ति के लिए याद आया कि शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। तो उसका एक सिंपल था कि जेम्स और प्रेशियस स्टोन्स हर पहाड़ पे नहीं मिलते, हर हाथी के मस्तिष्क पर एक पर्ल या एक ज्वेल नहीं होता है। सज्जन और वर्चुअस व्यक्ति हर जगह नहीं मिलते, जिस तरह से चंदन हर जंगल में नहीं मिलता। तो चाय पी के चाय छोड़ देने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है, और एक ये बहुत बड़ी चीज है कि अगर आपने चाय या कॉफी अपने जीवन में छोड़ दी है। मैं ये भी नहीं कहना चाहूंगा कि जो पी रहे हैं वो गलत है, मगर छोड़ना का मतलब ये है कि आप उस चीज के अधीन नहीं है। आपने आंसर दिया भैया, वो चिड़चिड़ापन मेरे जीवन से चला गया। तो सोचिए वो चाय आपको मानसिक रूप से डिस्टर्ब करने लग गई थी कि अरे मिली नहीं। जो अभी हम लोग ने पिछले एपिसोड में बात किया कि यदि हम चाय न पिए तो क्या होगा, और आपने पूछा भी कि इससे फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस आते हैं, तो डिस्टर्बेंस शुरू हो गया था, वो चाय आपको डिस्टर्ब करने लग गई थी, उसका न मिलने से आप परेशान हो रहे थे। सो आप भैया उस सज्जन व्यक्ति की जो भीड़ में बहुत कम होते हैं जिन्होंने चाय छोड़ दी। रह रहकर मैं भी चाय छोड़ देता हूं, और मैं मेडिकल कॉलेज में रहा तो दोस्तों के साथ बैठ के पक्का चाय हो जाती थी, और इंग्लैंड में जब था तो मैं चाय और कॉफी का उतना बड़ा फैन नहीं हूं, तो मैं वहां हॉट चॉकलेट पीता था क्योंकि ठंडा देश था तो कुछ गर्म पीने का मन करता था। और अगर आप चाय छोड़ देंगे और अगर आप इसको बिफोर 30 ईयर्स तक छोड़ दिए तो आपको रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि आपके शरीर में उतनी चाय गई नहीं है और आपका शरीर उतना डिपेंडेंट नहीं हुआ है, और आपका शरीर इतना मजबूत है कि वो ये सब काम ठीक से कर ले रहा है, और जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं उसको जल्दी रिकवर कर ले जाएगा। सबसे कॉमन चीज, अगर आप चाय थोड़ा उम्र के बाद छोड़ेंगे तो आप शुरुआत में 4-5 चीजें रोज कंप्लेन करेंगे, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है और मेरा पेट नहीं साफ हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, थकान सी लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा शरीर में दर्द सा हो रहा है, हल्का सा थके थके महसूस हो रहा है, क्योंकि आपको उस कैफीन के विप की आदत पड़ गई है, उस चाबुक की आदत पड़ गई है, और वो चाबुक आपके दिमाग को भी ठीक कर रहा था, आपके पेट को भी साफ कर रहा था, और आप कितने उसके डिपेंडेंट हैं, ये मतलब आदमी कैफीन के निकोटीन के भयंकर रूप से डिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं मिलता है पेट साफ नहीं होता है। एक बड़ा हास्यपद किस्सा मुझे याद आता है, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है, उनके घर में चोरी हुई, चोर उनके घर से टीवी ले गए, बल्ब निकाल ले गए, ये करीब 15-20 साल पुरानी, जब सीसीटीवी वगैरह कुछ भी नहीं था, और उनके बर्तन वर्तन किचन में से बहुत कुछ सामान ले गए, फ्रिज नहीं चुरा पाए क्योंकि बड़ा था, और सब मतलब जो सामान वो उठा के ले जा सकते थे उठा ले गए। जाते समय उस फ्रिज पे एक टोबैको का एक पैकेट रखा था, पान मसाला रखा था, तो जाते समय उन्होंने उसको फाड़ा, उसको खाया और उसका पैकेट वहीं फेंक के चले गए। जिनका घर था वो सवेरे रोज 4:30 बजे उठते थे, वो 4:30 बजे उठे और उन्होंने अपने घर में चोरी किए हुए सामान के लिए हल्ला नहीं किया, उन्होंने हल्ला किया, अरे भाई किसने मेरा वो पान मसाले का पैकेट खा लिया, मेरा तो पेट कैसे साफ होगा, 4:30 बजे सवेरे कहां से मुझे मिलेगा, कौन लाएगा। अच्छा, उनके हल्ला करने से पूरा घर उठा, उनकी पत्नी ने उनको बहुत डांटा, अरे भाई आप ये नहीं देख रहे हैं टीवी चोरी हो गया, आप ये नहीं देख रहे हैं बर्तन चोरी हो गए, आप ये नहीं देख रहे हैं वॉल क्लॉक चुरा के ले गए सब, आप ये नहीं देख रहे हैं जो कपड़े कुर्सी पर रखे थे वो चोरी हो गए, आपको उस 1 रुपए का सामान के लिए आप चिल्ला रहे हैं। तो बोले अरे जो ले गए ले गए, उसकी मत परेशान हो, पर मेरा पेट साफ करवाओ भाई। तो सोचिए आदमी कितना डिपेंडेंट है उस चीज पे कि घर से लाखों का सामान चला गया उसकी परेशानी नहीं है, मगर उसे छोटे से 1 रुपए के पान मसाले के लिए परेशानी है कि उससे मेरा पेट साफ होगा। यही चीज चाय और कॉफी के साथ है, हम काम करने में उसके आश्रित हो गए, क्योंकि जब हम पिएंगे हमको एक निकोटीन कैफीन का चाबुक पड़ेगा, हम फ्रेश हो जाएंगे, हम ज्यादा देखने लगेंगे। आप देखिए जितनी भी आप स्पाई मूवीज देखेंगे या ये जितने भी आप जासूसों की कहानियां या वो पढ़ेंगे या पिक्चर देखेंगे या कोई भी जिसमें ये सारी चीजें हो रही हो, जिसमें थ्रिल है, सोचना हो ज्यादा, तो उसमें आप देखेंगे कि जो कैरेक्टर है वो चाय भी खूब पी रहा है, कॉफी भी पी रहा है और सिगरेट भी खूब पी रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपके दिमाग को एकाएक चाबुक की तरह दौड़ाना शुरू करती है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। जब आदमी एकदम थकने लगता है तो जबरदस्ती अपने को जगाने के लिए ये काम करता है, और ये बात हम सबको अच्छे से जान लेनी चाहिए कि हमारे शरीर को कम से कम 6-8 घंटे की नींद चाहिए, कुछ लोगों के लिए कम भी हो सकती है, 4 घंटा भी हो सकती है, मगर हमारे शरीर को वो 4, अगर आपका 4 घंटा है, पर अमूमन एक जनरलाइज पॉपुलेशन को गुड 6 आवर्स की स्लीप चाहिए। तो अगर आप अपने नींद को पूरा नहीं कर रहे हैं और अपने दिमाग को ठंडा नहीं कर रहे हैं, दिमाग को शांत नहीं कर रहे हैं, तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे थोड़े दिनों में, और अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए तो आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गैस्ट्राइटिस, सारी बीमारी, अल्सर पेट में, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, सब कुछ हो जाएगा।
0: जो बात अभी आप कह रहे थे यही चीज समझ में आ रही है कि हम ये समझ रहे हैं कि अगर लंबे समय तक अगर हमने चाय कॉफी या ऐसे पेय पदार्थों की आदत डाल रखी है तो जितना लंबा हमारा आदत है उतना ही ज्यादा उससे छूटने में हमें तकलीफ होगी। जितने जल्दी हम छोड़ देंगे, अगर अल्पायु में 30 साल की उम्र से कम उम्र में अगर हम छोड़ देंगे तो उसे छोड़ने में आसानी होगी, शरीर ज्यादा प्रभाव नहीं करेगा, और जब छोड़ते हैं व्यक्ति, छोड़ने का प्रयास करते हैं तो भी लोगों के शरीर में क्या उसका असर होता है ये चीज समझने में आसानी से हो रही है। अब एक प्रश्न उठता है कि अक्सर जैसे आपने कहा कि हम चाय या कॉफी पीते हैं तो हम अचानक जग जाते हैं, ताजगी आ जाती है। कई बार ये चीज हमारे एक श्रोता मित्र ने लिखा है कि मैंने सुना है कि जब हम कैफीन का इस्तेमाल करते हैं, चाय कॉफी इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन बेहतर हो जाता है, जैसे हम किसी चीज पर ज्यादा बेहतर फोकस कर पाते हैं। तो क्या चाय या कॉफी को हम एक मेंटली ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड के लिए मिस यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई हम ज्यादा सजग रहने के लिए, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहने के लिए हम चाय कॉफी का इस्तेमाल करें, क्या ये संभव है, क्या ये चीज सही है?
1: अभी हम लोग तीन चीज पे बात कर रहे हैं, चाय, कॉफी, सिगरेट। तो अगर चाय एक नंबर पे है तो कॉफी 10 नंबर पे है और सिगरेट सीधे 1000 नंबर पे है। एक रफ है, इसमें हम कुछ नंबर्स पे बहुत ना जानते, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इज सिगरेट। पहले समझ लें कि हो क्या रहा हमारे साथ। चाय और कॉफी मुंह में जाकर हमारी ईसोफेगस से नीचे जाकर हमारे स्टमक पेट में जाती है और फिर बड़ी आंत छोटी आंत से होते हुए पाचन तंत्र से बाहर चली जाती है। और जब ये पेट में एब्जॉर्ब होता है इसका कैफीन, तो वो खून के रास्ते हमारे दिमाग में जाता है और हमको जो ब्रेन है वो हमारा काम करना थोड़ा सा एक्साइट होना शुरू कर देता है। जो सिगरेट है वो हम मुंह से लेते हैं और हम अपने फेफड़ों में भरते हैं, तो वो तुरंत हमारे ब्रेन में पहुंचता है क्योंकि फेफड़ों में ही खून आता जाता है और फेफड़ों से ही खून सबसे पहले हमारे ब्रेन में, हम बहुत ज्यादा खून आता जाता रहता है क्योंकि उसको ब्रेन को एक्टिव रखना है, तो उसका असर तुरंत होता है। मतलब एक सिगरेट का आप मुंह में डाल दें और आपने एक बार उसको अगर उस धुएं को अपने अंदर लिया तो उस तो जब तक जैसे ही आपने अंदर लिया उसका असर आपके दिमाग पे होने लगता है। अब होता क्या है कि निकोटीन निकलता है, हमारे ब्रेन में जो स्पेशल रिसेप्टर्स हैं उस पर डोपामिन जाता है तो हम लोग हल्का सा रिलैक्स हो जाते हैं और हम लोग को टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन मिलता है और ब्रेन इस टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन, रिलैक्सेशन और एक्साइटमेंट, ये जो तीनों चीज को मिलाकर इस चीज को खुशी से जोड़ता है। और जब वो दिमाग थोड़ा थकने लगता है तो वो हमें उस खुशी के लिए वापस हमको प्रेरित करता, हमको वापस खींचता है कि यार वो फिर से करो जिससे हमको इतना अच्छा लगा। या हम बैठे बैठे जब रहते हैं थोड़ा, अरे यार जरा फिर तो सिगरेट पिया जाए, फ्रेश हो जाए, क्योंकि वो हमारे ब्रेन को एकाएक, जैसे कोई बच्चा सोने जा रहा हो और तब तक गेस्ट आ जाते हैं तो माँ हिलाती, अरे उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, खेल लो खेल लो, देखो देखो ये बच्चा, अरे आया है मिलने के लिए, अरे तुम्हारी बुआ आई है, तुम्हारी मौसी आई है, इनके सामने तो जगे रहो। तो वही काम जो एक माँ अपने बच्चे को हिला डुला के कर रही है कि देखो तुम्हारे रिश्तेदार आए हैं, मिल लो, बात कर लो, या उठ जाओ आज रात में 12 बजे आतिशबाजी होगी, या हम लोग को चलो चलो आज मेला घूमने चलना, सोना नहीं है, जगे रहो। तो यही काम सिगरेट हमारे दिमाग के साथ कर रहा है। और जो निकोटीन, जो तीनों जो चीजें निकोटीन की वजह से, एस्ट्राइल कोलिन, डोपामीन और एपिनेफ्रिन, जो तीनों ब्रेन के हार्मोन्स हैं, जो एक पॉजिटिव हार्मोन्स है, ये निकलते हैं तो आदमी का जो रिसेप्टर्स हैं, जो ब्रेन में जो करंट है उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। तो जैसे ही सप्लाई बढ़ती है तो आदमी को लगता है कि अरे वाह, अब मैं एकदम अलर्ट हूं क्योंकि दिमाग में रक्त संचार बढ़ गया और वो फोकस, मैं एकदम अच्छे से जगा हुआ, मुझे सब कुछ अगल बगल जो है वो मुझे मालूम चल रहा। चाय और सिगरेट या कॉफी और सिगरेट, या मैं इसमें तीसरी चीज जोड़ रहा हूं, कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट, ये बहुत खराब कॉम्बिनेशन है। चाय में कैफीन है और शुगर है और दूध है, वो आपके जा रही है, वो आपको अगर एक्साइट करेगी तो आपके पेट को एक्साइट करेगी, जो पेट को एक्साइट करेगी तो एसिड ज्यादा बनेगा, आप अल्सर बनने के चांसेस हैं आपके पेट में। और सिगरेट दूसरी तरफ से दिमाग को भी एक्साइट कर रहा है और आपके फेफड़ों में हजारों कैंसर पैदा करने वाली चीजों को डाल दे रहा है। तो इसके कॉम्बिनेशन से आप अपने पेट का भी सत्यानाश कर देते हैं और अपने जो फेफड़े हैं उसका भी सत्यानाश कर देते हैं, और पेट और फेफड़ों से जो कैफीन और निकोटीन जो इकट्ठा होता है वो आपके दिमाग का सत्यानाश कर देता है। तो ये बहुत खराब कॉम्बिनेशन है। इसी में कोल्ड ड्रिंक जोड़ लीजिए तो वो हाई शुगर विद हाई कैफीन हो जाता है। और इसी में और जो यंगस्टर जो इस समय सबसे खराब, सबसे मतलब कहते नहीं है, उससे खराब नहीं हो सकता, वो एनर्जी ड्रिंक विद सिगरेट जोड़ दे रहे हैं, सुपर हाई कैफीन, सुपर हाई शुगर विद सुपर हाई निकोटीन इन योर ब्रेन, मतलब आप अपने कैंसर के साथ साथ डायबिटीज को भी बुला रहे हैं, और बुला नहीं रहे हैं, आप आरती की थाली लेकर उसके सामने घुमा रहे हैं, आ जाओ फूल बिछा रखे हैं कि आओ ये सारी बीमारियां मुझे पकड़ लो। आप अपने लिवर का, अपने पैंक्रियास का और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का तो कूड़ा कर ही रहे हैं, साथ साथ अपने फेफड़ों का भी कूड़ा कर दे रहे हैं, और इतना सारा जो निकोटीन कैफीन आपके दिमाग में जा रहा है वो सारे के सारे डोपामीन को इतना ज्यादा निकाल दे रहा है आपके दिमाग में कि आप कुछ भी नहीं काम कर पा रहे। तो कृपा करके जो श्रोतागण हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि इन सब चीजों का सेवन जो है वो ना करें।
0: एक आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, लोग ये देखते हैं कि भाई चाय हम पी रहे हैं 30-40 साल से पी रहे हैं, या सिगरेट की ही अगर हम बात करें तो काफी लंबे समय से सिगरेट पी रहे हैं, लोग तब तक उस चीज के बारे में जागृत नहीं होते कि भाई ये कोई परमानेंट नुकसान तो कर नहीं रहा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई ये नुकसान करेगा, बट ये नुकसान कब दिखाई देता है, क्या कोई परमानेंट नुकसान है ये, क्योंकि व्यक्ति जब तक बीमार नहीं पड़ता तब तक उन चीजों का असर देखकर वो उसे छोड़ना नहीं चाहेगा। तो ये भी जानना जरूरी है कि ये कितने जल्दी नुकसान करेगा, क्या ये परमानेंट नुकसान करेगा, कितने जल्दी छोड़ देने पे वापस स्वास्थ्य लौट सकता है, इत्यादि प्रश्न उठते हैं।
1: बड़ा बेसिक सा मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं कि आपने एक सिगरेट या एक कप चाय पिया और आपको अच्छा लगने लगा, फिर आपको जब भी अच्छा नहीं लगेगा आप इसको पीने लगेंगे, जरा सा परिस्थितियां आपके विपरीत जाएंगी आप इसका इस्तेमाल करने लगेंगे, और थोड़े दिन में आप इसके इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे कि बिना इसके आपको अच्छा लगे या ना लगे आप इसका सेवन करते रहेंगे। अच्छा, हर शरीर की बनावट अलग है, हर शरीर अंदर से भी अलग है, और इसमें आपके जो जीन्स हैं, आपके आप जिस तरह से हैं, आपकी जितनी ताकत है, जितना आपने अपने शरीर के साथ अच्छा किया है, और मैं इसमें भाग्य भी जोड़ता हूं, इसलिए क्योंकि कोविड में मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ जबकि वो बहुत हेल्दी थे, और बहुत सारे बीमार लोग भी बच गए। तो इसमें मैं आप भाग्य की भी इसमें बात करूंगा, अगर आप इसको रेगुलर लेते रहेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको बीमारी होगी। बहुत से ऐसे लोगों को भी देख लिया है भैया जो इन सबों का सेवन करना शुरू किया और एक दो साल में उनके शरीर पे बहुत खराब असर हुआ, और बहुत सारे ऐसे ही लोगों को भी देखा जो 30 साल से करते चले आ रहे उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है, या हम ये कहें कि उनको परेशानी हो रही है वो उसके बारे में बोल नहीं रहे हैं, और या उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनके शरीर के अंदर क्या चल रहा। तो आज नहीं तो कल इन चीजों का नुकसान आपके शरीर पे बहुत बुरा होगा, और नहीं भी हो रहा है तो आप सब देख लीजिए कि इतनी डिपेंडेंस है कि आप उसका सेवन रेगुलर करते चले जा रहे हैं, और वो आपको पकड़ रखी है, कोई भी चीज जो आपको पकड़ रखा है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं।
0: बहुत ही सुंदर बात आपने बताई डॉक्टर साहब कि इन चीजों का असर शरीर पर होता जरूर है, और ये जो शरीर के लिए नुकसानदायक चीजें हैं वो आज नुकसान दे रही है, कल नुकसान दे रही है, कब आपका शरीर उस नुकसान को आपके सामने रोग के रूप में प्रस्तुत करता है उसके लिए समय ऊपर नीचे हो सकता है, मगर ये नुकसानदायक पदार्थ हैं और ये नुकसान देकर ही रहेंगे। इस बात को समझने से आपको पता चल रहा है कि आप खाई वाले रास्ते पे जा रहे हैं, और कब खाई में गिरेंगे इस बात की गारंटी नहीं, मगर खाई वाला ही रास्ता है, ये बात समझ में आ रहा है। दोस्तों, कितनी सारी चीजें आज हम मीडिया में देखते हैं, टीवी पर, सिनेमा में या सोशल मीडिया पे कोई वीडियो में हम चीजें देख लेते हैं, देखते हैं कि हीरो है या विलन है या कोई ताकतवर इंसान है, वो मुंह में सिगरेट लिए बैठा है, साथ में शराब पी रहा है, या कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, या चाय कॉफी के साथ भी लोग ये 3-4 चीजें एक साथ करते हुए नजर आते हैं, तो उनको देखकर लगता है कि वाह ये कितना बिंदास इंसान है ऐसा लग सकता है आपको, मगर वास्तविकता में वो अपने आप को मौत की खाई में धकेलने के लिए हाई स्पीड ट्रेन ले रहा है, ये बात समझ में आती है। हम सभी अपने आप को स्वस्थ रखने और स्वस्थ बनाने के लिए, खासकर हमारे परिवार और स्वजनों को अगर हम स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो हमें इन चीजों को अभी से छोड़ने का प्रयास शुरू करना होगा। जब हम स्वस्थ बनने के मार्ग पर अग्रसर होंगे, तब जाकर हम अपने आस पड़ोस को, अपने परिवार को, अपने देश को और एक विश्व को स्वस्थ दिशा दे सकते हैं, स्वास्थ्य के तोहफे को दे सकते हैं। आज डॉक्टर राहुल मोदी जी ने बड़े ही पेचीदा इन विषयों को सरल करके हमारे सामने बताया है कि स्वास्थ्य के जगत में हम सभी जानते हैं कि कैंसर पैदा करने वाली चीजें हैं, ऐसा सिगरेट के पैकेट के ऊपर चित्र बने हुए हैं, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ आता है, उन्हें देखते हुए भी लोग इन चीजों को नहीं समझते, मगर आज सरलता से ये बात समझ में आई है कि ये हानिकारक चीजें हमें कितने जल्दी अपने स्वास्थ्य से विमुख बनाएंगी। आशा करते हैं कि आज की बातचीत से आपको भी अच्छी प्रेरणाएं मिली होंगी। चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि चीजों से आप जितने जल्दी छूटने का प्रयास शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आप स्वस्थ हो पाएंगे, उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य तैयार मिलेगा। आज की बातचीत में इतना ही। आज डॉक्टर मोदी जी ने हम सबके प्रश्नों का उत्तर दिया। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य, और अपने स्वास्थ्य को सहज वापस लौटाने की दिशा में अगर आप पहला कदम कोई उठा सकते हैं तो ये है कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन चीजों से आप अपनी दूरी बनाना शुरू करें। धीरे धीरे ही सही, इनसे एक एक कदम पीछे हटना शुरू करें। चाय, कॉफी या किसी भी कैफीन, निकोटीन या इत्यादि के पदार्थ का सेवन अगर आप करते हैं तो उनसे पीछे हटने की शुरुआत कदम दर कदम करते करते पीछे आएंगे तो आप सही स्वास्थ्य के मार्ग पर अग्रसर होंगे, बेहतर स्वास्थ्य आपको सहजता से हासिल होगा। आज की चर्चा में इतना ही, फिर सहज स्वास्थ्य में मुलाकात होगी। रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम जारी रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इस पूरे सफर में एक बात से हमने शुरू किया था कि हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, वही हमारा भाग्य या हमारी डेस्टिनी लिख देते हैं। और आज अगर हम देखें इस पूरी बातचीत को जो हमने किया, पूरी सीरीज में हमने ये बात जान ली है कि हमारा पहले थॉट ये रहता था कि मैं ये शरीर हूं और उसीलिए सारी जो चीजें जुड़ी हुई होती थी वो इस शरीर से जुड़ी रहती थी और हमारा भाग्य हमारी डेस्टिनी लिख देता था ये थॉट। आज हमने उस थॉट को थोड़ा सा बदला, हमने ये जाना कि मैं आत्मा हूं, वो आत्मा जो प्रेम से भरी है, जो शांति स्वरूप है, और हमारा भाग्य एक नए रूप में हमारी डेस्टिनी सामने आई। एक और बात जो इस पूरे सफर में हमारे सामने आई है कि जो कुछ आज मेरे साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं। इस जन्म में या फिर कार्मिक फिलॉसफी को अगर हम देख रहे हैं तो पिछले कई जन्मों से जो होता आ रहा है, मैं क्यों जिम्मेदार हूं और क्या जो आज मेरे साथ हो रहा है उसे मैं बदल सकती हूं, क्योंकि बदलना भी मेरे ही हाथ में होगा। कैसे हो पाएगा ये सब कुछ, इसी को जानने के लिए इस सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और हर बार की तरह इस सफर में हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अभी तक जो हमने सफर तय किया, जो आज मैंने कहा भी है अभी, वो सचमुच ऐसा लगता है कि जैसे सोए हुए को एक जागरण हुआ है, एक अवेकनिंग हुई है और रियलाइजेशन हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो कार्मिक जर्नी की हमने बात की थी, जो पूरा कि कर्म का जो एक पूरा एस्पेक्ट था, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैंने मान लिया, एक्सेप्ट है कि जिसकी मैं, जो कुछ हो रहा है मेरे साथ उसके जिम्मेदार मैं खुद हूं, क्या जो मैं आगे चाहती हूं उसको बदल सकती हूं?
1: जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसकी जिम्मेवार मैं हूं, इसलिए उसको बदलना भी
0: मेरे अपने
1: हाथ में है। अभी तक क्या था कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरे वजह से नहीं है, वो औरों की वजह से है, वो परिस्थिति की वजह से है, वो कोई मेरे गलत समय मेरा चल रहा है या बैड लक है,
0: ये मेरा मानना चल रहा
1: है, ये सब जो बातें थी, तो इट वॉज एवरीथिंग विच वॉज नॉट इन माई कंट्रोल। मेरे जो सितारे हैं इस टाइम वो ठीक नहीं है, या परमात्मा मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, ये सारे जो बिलीफ सिस्टम्स थे, तो इनकी वजह से मेरी थिंकिंग थी कि मेरे साथ जो हो रहा है उसके लिए मेरे अलावा बाकी सब जिम्मेवार है।
0: मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, ये सवाल अब कहीं कहीं तंग नहीं कर।
1: आप अगर मेरे से ठीक तरह से बात नहीं कर रहे, इसके जिम्मेवार आप हैं, तो इसलिए मैं ट्राई करती रही आपको चेंज करना, और आपको मैं चेंज नहीं कर सकती, तो आई केप्ट ऑन सफरिंग, मेरी भोगना बढ़ती रही, क्यों हो रहा है, आप मुझे तंग करते रहे, मैं परेशान होती रही, एंड दैट प्रोसेस वेंट ऑन। अब समझ में आया, आप मेरे साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं उसके जिम्मेवार मैं हूं कि मैंने उस तरह की एनर्जी कभी ना कभी आपको ट्रांसमिट की है, वो मेरे पास वापस आ रही है। नाउ आई कैन चेंज। व्हाई? बिकॉज मुझे समझ में आया कि जो मुझे सबसे मिल रहा है, इट इज ओनली अ रिटर्न ऑफ व्हाट आई हैव सेंट आउट, यू नो। सो इफ आई एम नॉट लाइकिंग व्हाट आई एम गेटिंग, आई जस्ट हैव टू चेंज व्हाट आई एम गोइंग टू सेंड आउट, यू नो। जो अगर मैं कहती हूँ मुझे लोगों से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, मुझे लोगों से प्यार नहीं मिल रहा है, तो मुझे लेना नहीं है, मुझे उनको वो देना है। तो अगर वो हम देंगे तो वो जाकर हिट करके वो ही वापस आएगा।
0: इनफैक्ट ये भी एक लॉ है अगर हम देखें तो, यू नो, लाइक व्हाटएवर गोज आउट एक्चुअली वी कैन गिव इट बैक।
1: दैट इज ओनली कार्मिक फिलॉसफी, दैट यू नो, जो आप व्हाटएवर एनर्जी गोज आउट द सेम एनर्जी कम्स बैक। तो जो एनर्जी वापस आ रही है उसको देख के ग्रम्बल करने का तो कोई फायदा नहीं।
0: एक्चुअली उसको देख के एक बार रियलाइजेशन एकदम से हो जाना चाहिए। मुझे लगता है नाउ इट्स सो क्लियर कि जो एनर्जी हमारे पास वापस आ रही है वो कहीं ना कहीं मैंने ही दी है।
1: तो अब अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम और उस तरह की एनर्जी भेजते जाएंगे बाहर, तो फिर वो और ज्यादा आती जाएगी हमारे पास। तो इफ आई एम नॉट लाइकिंग द एंगर दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू, गिव यू लॉट ऑफ लव, तो समवेयर दैट लव विल गो हिट यू एंड इट विल कम बैक टू मी।
0: Even if there is a karmic account,
1: yeah, you think this so? Is all if it is a karmic account, because everything is a karmic account. कुछ भी तो बिना karmic account के हो नहीं रहा है। फर्क क्या है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. कई जैसे भाई बहन फोन करके कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत नहीं है, लेकिन वो मुझे क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं. यू नो, बहुएं कहेंगी इन लॉज क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं. कोई हस्बैंड कहते हैं वाइफ क्रिटिसाइज और वाइस वर्सा, या बॉस क्रिटिसाइज करता रहता है. नाउ व्हाट टू डू एट दैट टाइम, कि वो क्रिटिसाइज ही करते जा रहे हैं. एंड ये ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिनसे हम छूट नहीं सकते हैं, तो वी आर गोइंग टू लिव विद देम. तो बी शुड बी लिव विद द क्रिटिसिज्म, कैन बी चेंज द क्रिटिसिज्म, कैन बी एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म, व्हाट कैन आई डू. तो एनर्जी जो है वो हमारी तरफ ट्रैवल कर रही है, आपसे मेरी तरफ एनर्जी आ रही है. मेरे पास तीन चॉइसेस हैं, या तो उस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लो. तो आपने नेगेटिविटी भेजी, मैंने अब्सॉर्ब कर ली. क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अंदर ही अंदर घुलते रहे, पिसते रहे अंदर. दूसरा है एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, तो आपने एनर्जी नेगेटिव भेजी, मुझे हिट की और भी ज्यादा फास्ट से आपकी तरफ गई. ये ऐसे है वैसे है व्हाटएवर, सो आपने भेजी, मैंने रिफ्लेक्ट की. तीसरा होता है एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, तो आपने नेगेटिव भेजी. Now if I am powerful, I should be able to transform it to positive.
0: I'll work on it?
1: Yes.
0: Do I work on
1: I'll work on it. How? कि आप criticize कर रहे हैं. एक मुझे अब understanding हो गई कि ये जो negative energy आ रही है, it's because of me. तो मेरा कुछ पिछला impression अंदर बना हुआ है, जो जैसे ही मैं आत्मा आपके सामने आती हूँ, तो आपके अंदर से वो energy मेरी तरफ आनी शुरू हो जाती है. अब अगर मुझे अपने ऊपर रहम करना है, अपनी भोगना को खत्म करना है. What lot of people need to understand is कि जब आप औरों को you know let go करते हैं, या ज्यादा उनके बारे में नहीं सोचते हैं, या उनकी बात पर बहुत ज्यादा परचिंतन नहीं करते हैं, आप उनको नहीं क्षमा कर रहे हैं,
0: खुद को कर रहे हैं,
1: आप अपने आप को कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी भोगना को कम कर रहे हैं. अभी हम क्या करते हैं, क्यों बोला, क्यों बोला, क्यों बोला, तो एवरी दैट थॉट अगेन आई एम क्रिएटिंग दैट इम्प्रेशन. Again, it will go out again. तो वो संस्कार reinforce होता जा रहा है, वो कार्मिक अकाउंट और भी डीप होता जा रहा है. The other option is, वो उन्होंने जो बोला वो उनका ओपिनियन है. मैं अपने आप को चेक कर लूं कि मैं वो कर रही हूं या नहीं. अगर मेरी गलती है तो चेंज, अगर नहीं है तो लेट देम गो, जस्ट लेट देम से व्हाट दे आर सेइंग एंड टेल योर सेल्फ, इफ आई वॉन्ट आई विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, आई हैव द पावर. They are not disturbing me. I am disturbing myself by what they are saying to me. So if I can disturb myself, I can also stabilize myself. I am doing it.
0: And by not ignoring them. You know what?
1: I mean, not ignore them. No.
0: होता ये है, देखा ये गया है कि जब मुझे
1: विड्रॉ कर देते हैं,
0: हाँ, तो मैं विड्रॉल में चले जाती हूँ कि मुझे रिएक्ट ही नहीं करना है, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है. ये भी एक तरीका है, बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो बिकॉज अगेन वो कुछ ना कुछ अकाउंट क्रिएट हो रहा है.
1: एब्सोल्युटली. हम जैसे दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ना, हम पॉजिटिव उनके लिए सोचे कि वो जो बोल रहे हैं वो अपनी पोजिशन में बैठ कर किसी एंगल से सही बोल रहे हैं. अगर वो मुझे अभी नहीं पहचान पा रहे हैं या मुझे नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी कर लेंगे. और नहीं भी अगर करते हैं, देन दैट्स ऑल्सो ओके, आई नो हु आई एम, दैट्स व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट.
0: I know about myself. अगेन यहाँ ये अगर इसको रिवर्स कर देते हैं, कई बार मुझे या मुझे कुछ लोग मिलते हैं जिनके जिनको लेके मैं अननेसेसरली इरिटेट होती हूँ. यू नो, ये तो ये थे कि जो मुझे
1: इरिटेट करते हैं,
0: हम भी तो कितनी बार इरिटेट होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा भी वो कार्मिक अकाउंट होगा. उसको भी हैंडल करना,
1: राइट,
0: अननेसेसरली गुस्सा आ जाता है, अननेसेसरली इरिटेशन होती है, उसको भी हैंडल करना लोगों के लिए मुश्किल होता है. एक तो एहसास ही नहीं हो पाता है, बट नाउ व्हेन वी स्टार्ट लिविंग विद अवेयरनेस, ये एहसास होने लगता है कि ये जबरदस्ती की कुछ एंगर है. तो उसको भी कैसे करें,
1: हर स्टेप पे अपने आप को बताना पड़ेगा कि मैं जितनी बार हो रही हूँ मैं अपनी भोगना को बढ़ा रही हूँ. सो स्टॉप, क्या मैं और कर्जा लेना चाहती हूँ, या जो पहले लिया हुआ कर्जा है उसको चुकतू करना चाहती हूँ. You know, otherwise this is just going to go on and भोगना बढ़ती जाएगी. तो आप मेरे सामने आ रहे हैं, अगर 10 बार पहले आए थे और मैं इरिटेट हो रही थी, टुडे मॉर्निंग आई विल सिट इन मेडिटेशन एंड आई विल से व्हाट इज इट दैट इज इरिटेटिंग मी, कैन आई डू विदाउट इट, डू आई हैव एन ऑप्शन, एंड विजुअलाइज माई सेल्फ कि यू विल कम इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल रिमेन इन द अवेयरनेस, आई एम अ प्योर सोल एंड सो इज शी. वी हैव हैड सम एनर्जी एक्सचेंज, जिसकी वजह से वो इम्प्रेशन यहाँ है वो अभी भी ट्रिगर हो रहा है, बट फुल स्टॉप, नॉट फ्रॉम टुडे. इट्स जस्ट एन इंस्ट्रक्शन टू द माइंड. अभी तक वो इंस्ट्रक्शन दिया नहीं था, तो वो माइंड अपने जो प्रीवियस थॉट्स है उसके हिसाब से चल रहा है. अब हम एक नया थॉट क्रिएट कर रहे हैं ना, वो थॉट को हम एक्शन में लाएंगे. तो मैं मॉर्निंग में एक थॉट क्रिएट करती हूँ कि आज जब आप मिलेंगे, आप चाहे कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, मैं डिस्टर्ब नहीं होंगे. इट्स अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ. एंड फिर आप आते हैं, आई एम एबल टू रिमेम्बर दैट इंस्ट्रक्शन. तो वो थॉट एक्शन में आया कि मैं इरिटेट नहीं हुई, इम्प्रेशन बन गया. आई डिड नॉट गेट इरिटेटेड. फर्स्ट न्यू इम्प्रेशन. पहले बहुत सारे इम्प्रेशन थे कि आई गेट इरिटेटेड, डिड नॉट गेट इरिटेटेड. बहुत अच्छा लगा, लेस पेन. टुमारो अगेन, अगेन अनदर इम्प्रेशन, डिड नॉट गेट इरिटेटेड. दो और चार बार, उसके बाद आदत. उसके बाद आप कितनी बार भी आए दिन में, आई विल नॉट गेट इरिटेटेड.
0: ये इम्प्रेशन जो हैबिट बन जाएगा.
1: आई नीड टू वर्क ऑन माय सेल्फ फॉर दैट. इफ आई से नहीं वो ही इरिटेट कर रहे हैं, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट.
0: नहीं, इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, यहाँ मैं अपने बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, इतने कॉल्स, इतने फोन्स, इतने ईमेल्स हम तक पहुंच रहे हैं कि जो मेडिटेशन इज वेरी डिफिकल्ट, दिस इज वन कॉन्सेप्ट जिसे हम लेकर चले थे कि कैसे मेडिटेट करेंगे. आई थिंक आई वांट टू शेयर इट नाउ टुडे इज लाइक आई थिंक आई लुक फॉरवर्ड टू दैट टाइम.
1: राइट,
0: इट्स नो मोर अ मेडिटेशन. मतलब मैं सचमुच इस वक्त का इंतजार कर रही हूँ, कर रही होती हूँ हर रोज सुबह शाम या दिन में कभी भी, कि जब मैं अपने आप से रूबरू हो लेती हूँ, अपने आप से और परमात्मा के साथ जो एक शिव बाबा के साथ एक रिलेशनशिप है. आई थिंक दैट्स अमेजिंग. और हर बार ये कर पाना, अब हर काम करना आसान लगने लग गया है. जो भी आप हमें बताती हैं कि किस तरह से करना है, मुझे लगता है हमारे दर्शक भी ये बात समझेंगे शायद कि वो आसान हो जाता है.
1: जब अपने साथ और परमात्मा के साथ रिलेशनशिप अच्छा बन जाए तो औरों के साथ ऑटोमेटिकली बन जाता है.
0: ब्यूटीफुल, दैट्स रियली ट्रू. सिस्टर शिवानी, हमने पिछली कड़ी में बात की थी कि लॉ ऑफ कर्मा जो है, जो कानून ऐसा है, जो जैसा बोया है वैसा हमें मिलता ही है. कुछ और भी ऐसे स्पिरिचुअल लॉज हैं जो काम करते हैं?
1: फंडामेंटल तो सारा कुछ कार्मिक फिलोसफी पे ही कनेक्टेड है, लेकिन इसको हम अलग अलग तरह से भी देख सकते हैं. जैसे एक कहेंगे कि लॉ ऑफ अटेंशन. ओके, वेयरएवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज.
0: अच्छा, हमारा ध्यान जहां जाता है
1: एनर्जी फ्लोज. एंड वेयरएवर माय एनर्जी फ्लोज दैट थिंग विल ग्रो.
0: ओके,
1: तो नाउ आई नीड टू कीप दिस इन माइंड कि जहां भी मेरा अटेंशन जाएगा, मेरी सारी एनर्जी उस तरफ चली जाएगी, और जिस तरफ मेरी एनर्जी जाएगी वो चीज ऑटोमेटिकली शक्तिशाली ग्रो होती जाएगी. स्थूल रूप से सिंपल देखें, गार्डन है, अगर आप उसकी तरफ ध्यान देंगे तो आपकी सारा ध्यान, आपकी एनर्जी उसमें लगेगी, तो वो गार्डन बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा. आप एक कारोबार शुरू करते हैं, आप अपना ध्यान उस पर देंगे, वो कारोबार फलीभूत हो जाएगा. ये हुआ स्थूल रूप से. अब अगर थॉट लेवल पे भी, जिस थॉट की तरफ मेरी अटेंशन जाएगी वो थॉट ऑटोमेटिकली और भी पावरफुल होती जाएगी. सो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल कि किन थॉट्स पर अटेंशन देना है. जो हमने सोल कॉन्शियसनेस के दिन देखा कि बहुत सारी थॉट्स आती जाती हैं, जस्ट टेक वन एंड पुट ऑल योर अटेंशन ऑन दैट, जस्ट सी इट कि आई एम अ प्योर सोल. तो जब आप वो एक थॉट को लेकर उस पर अटेंशन देंगे तो सारी एनर्जी उसमें जाएगी एंड सोल कॉन्शियसनेस ग्रोज. गिव योर अटेंशन टू गॉड, energy will flow into that relationship will grow. कोई भी relationship को भी अच्छा बनाने के लिए attention देना पड़ता है ना. आजकल husband, wife, parents, child क्या बोलते हैं, attention नहीं दे रहे हैं हमारे तरफ, तो attention नहीं दे रहे हैं तो रिश्ता
0: टूट रहा है.
1: Same with my relationship with myself and my relationship with God. जितना हम उसको attention देंगे, हम कहें time ही नहीं है, सारा दिन में टाइम नहीं है याद करने के लिए या सोल कॉन्शियस का ध्यान रखने के लिए, देन इट विल नॉट ग्रो. हम अगर हमारा ध्यान सारा उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नाउ ऑल आर अटेंशन गोज टू दीज थॉट्स, एनर्जी फ्लोज, दोस थिंग्स ग्रो, दैट प्रॉब्लम बिकम्स बिगर एंड बिगर एंड बिगर. तो इनफैक्ट जो इस तरह की नेगेटिव चीजें हैं वहां से अटेंशन को हटा लीजिए.
0: अगेन
1: यू विल बी विड्रॉइंग एनर्जी फ्रॉम
0: डेस्टिनी. मैं खुद लिख सकती हूँ अपने, यू नो, बात वही आ गई कि लॉ ऑफ, अगर अटेंशन की बात करते हैं तो जो ध्यान प्रायोरिटाइज करके जिस बात पे मैं ध्यान दे रही हूँ, वाह, दैट्स नाइस.
1: जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर ध्यान नहीं दो, आपकी एनर्जी वहां से विड्रॉ हो जाएगी. और उस चीज पर ध्यान दे दीजिए जो आपके कंट्रोल में है, दैट थिंग विल ग्रो, वो चीज अपने आप सेट हो जाएगी. सो लॉ ऑफ अटेंशन पे भी अगर हम ध्यान रखें तो विल बी वेरी केयरफुल कि किन एस्पेक्ट्स पे, किन बातों पे, किन थॉट्स पे अटेंशन देना चाहिए और किन पर नहीं देना चाहिए. बिकॉज क्योंकि लोग कई बार कहते हैं हम सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं. सो दे हैव टू रिमेम्बर कि जितना वो सोच रहे हैं, दे आर पुटिंग एनर्जी इन टू दैट थॉट एंड दैट थॉट विल ग्रो. एंड फिर जो हम कहते हैं कि राई से पहाड़ बना लिया, एंड शिव बाबा आकर हमको सिखाते हैं पहाड़ को
0: राई बना लो. बहुत सुंदर.
1: और राई को भी कहते हैं रुई बना लो, क्योंकि राई भी बाबा कहता है हार्ड है, रुई सॉफ्ट होती है, ब्लो एंड इट विल फ्लो.
0: वाओ, दैट्स रियली नाइस. इनफैक्ट ये पूरा थॉट ही कितना खूबसूरत है कि ऐसा लगता है कि आपका एक भार उतर गया. एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल जो है, आकर्षण का जो एक कानून है कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात जो है वो जी जान से वो आप तक पहुंचाने की बात करती है. ये कितना काम करता
1: है? 10% इट वर्क्स. कि आप कोई एक थॉट ले लीजिए, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. तो इसीलिए वो बहुत क्रिटिकल है. लेकिन हम पॉजिटिव करें कि अगर आप एक पॉजिटिव थॉट ले लीजिए एंड यू होल्ड ऑन टू दैट थॉट, एब्सोल्युटली यू होल्ड ऑन टू दैट थॉट, सारे लोग, सारी सिचुएशंस, सारी परिस्थितियां चेंज होती जाएंगी एंड दे विल, यू नो, ऑल राइट वंस विल गेट अट्रैक्टेड टू यू. दैट्स वेयर डेस्टिनी गेट्स क्रिएटेड ना. एज माई थॉट सो विल बी माई डेस्टिनी. क्योंकि जैसे मेरी थॉट, सारे लोग, सारी परिस्थिति सब बदलती जाएगी उसके अनुसार. तो इसलिए पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव सिचुएशंस, पॉजिटिव पीपल विल गेट अट्रैक्टेड. ऑपोजिट तो ऑपोजिट. अब क्या हो रहा है, हम वो थॉट पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. सो वी क्रिएट अ नेगेटिव थॉट एंड वी होल्ड ऑन टू इट.
0: इन फैक्ट वी कीप ऑन डाउटिंग.
1: या
0: यू नो, अगर
1: दैट्स द बिगेस्ट थिंग आई ऑलवेज शेयर विद अ लॉट ऑफ पीपल कि व्हाई डू यू डाउट. क्योंकि आपके डाउट करने से सामने वाली आत्मा के अंदर वो थॉट क्रिएट होता जा रहा है. आप ट्रस्ट नहीं कर रहे एंड यही अगर आप ट्रस्ट कर लें तो सामने वाली आत्मा के अंदर ट्रस्ट, बिकॉज दैट इज वॉट इज गोइंग टू फ्लो टूवर्ड्स यू. तो जैसे लोग कहते हैं ना हमारा विजन, हमारा गोल, तो एक विजन क्रिएट कीजिए एंड होल्ड ऑन टू इट. लेकिन उसके अंदर फिर कोई डाउट नहीं आना चाहिए. यू नो, कई बार कहते हैं हाँ मुझे ये बनना है लेकिन बहुत मुश्किल है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, देन इट विल नॉट हैपन.
0: अच्छा, एक और जो बात कही जा रही है कि आप कॉस्मोस में ऑर्डर प्लेस कीजिए.
1: हाँ,
0: यू नो, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में करते हैं, देन बी श्योर कि वो आएगा.
1: दैट इज व्हाट दिस इज, दैट इज व्हाट इट इज. तो कॉस्मोस में ऑर्डर प्लेस करें मतलब व्हाट? वो कहते हैं ना सारा कुछ चेंज हो जाएगा आपकी वो थॉट को रियलिटी बनाने में, बिकॉज दैट्स द पावर ऑफ द माइंड. बट वी क्रिएट अ नेगेटिव थॉट तो सारा कुछ चेंज हो जाता है उसको रियलिटी बनाने में.
0: अच्छा, इनफैक्ट हम उसे टाइम फैक्टर में भी कभी बांध देते हैं. हाँ, कि यहाँ तक हो जाना चाहिए.
1: राइट.
0: सो वो हमें एक इंडिपेंडेंस,
1: वो भी डाउट हो जाता है ना कि एक महीने से मैंने ये सोचा था नहीं हुआ, तो वो भी तो नहीं. आप एक थॉट क्रिएट कीजिए and if you want to set a time factor to it, तो वो time factor में भी आप firmly believe करते हो
0: कि मेरे को महीने में ही हो जाएगा.
1: हो जाएगा, absolutely. तो वो हो जाएगा. And impossible things happen. Mind इतनी powerful शक्ति है कि उसी से तो सारी शक्तियां चल रही हैं. इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह की थॉट क्रिएट
0: और किस तरह की डिमांड कर रहे हैं. हाँ, क्या मांग रहे हैं एक्चुअली, ये बहुत,
1: क्योंकि वो रियलिटी बनता जाएगा. तो नेगेटिव थॉट्स को जितना हो सके,
0: और कहीं अनजाने में हम कुछ ऐसा मांग लें जो कहीं बाकी सारी चीजों के लिए गलत हो जाए.
1: हाँ, एब्सोल्युटली. तो दैट्स व्हाई एवरी थॉट इज वेरी क्रिटिकल. बहुत ध्यान से अपने संकल्पों को क्रिएट करना चाहिए और उसमें मेडिटेशन हेल्प करता है. यू नो, राइट एंड रॉन्ग थॉट्स, एंड कहीं अगर वो गलत अनकंफर्टेबल थॉट्स आ भी रहे हैं, स्टॉप, एक मिनट स्टॉप, अपने माइंड को बताएं नॉट नीडेड, आउट, दैट्स ऑल. एक बार आएगा, दो बार आएगा, चार बार आएगा, इट विल गेट ओवर. लेकिन अगर उसको रुकने के लिए नहीं बोलेंगे
0: तो वो आता जाएगा और वो फिर बिल्डअप हो
1: जाए.
0: आप एक थॉट क्रिएट करते हैं, एक इमेज आती है, तो जब तक वो इमेज ना आए तब तक आप इंतजार कीजिए. एक्चुअली इन द इनिशियल स्टेजेस व्हेन आई वाज, आई स्टार्टेड मेडिटेशन, लाइक दिस थिंग हैपेंड कि वो अगर आप वो लाइट को देख रहे हैं वो इमेज नहीं आती है, कोई ना कोई इमेज आती है, आप उसके पीछे भागते हैं, बट देन यू ब्रिंग इट बैक.
1: सो दैट्स द डिसिप्लिनिंग ना, और ये कॉन्सेंट्रेशन है. एक और जो लॉ बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है और जो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, दैट्स लॉ ऑफ बिलीफ. Okay, whatever you believe with feeling will automatically happen. Whatever you believe will feeling will automatically happen. जो आप feeling create करते हैं वैसा ही आपके साथ होता जाएगा. और इसमें भी हमारे अलग अलग प्रकार के beliefs होते हैं. कई होते हैं बहुत fatal, खतरनाक beliefs होते हैं जो हमारे लिए बहुत तकलीफ create कर सकते हैं. जैसे कि ये तो मेरे से नहीं होगा, मैं स्टेज पर नहीं बोल सकती हूँ, मैं इनके सामने ये नहीं कर सकती हूँ. Girls should not climb trees. You know, these old beliefs. So what happened? Girls didn't climb trees for so long. तो ये जो fatal beliefs है ना, ये हमें grow नहीं होने देते. तो जो हम believe करेंगे वो ही होता जाएगा हमारे साथ. तो we have to be very careful कि हम अपने बारे में कैसे beliefs बनाते हैं. हमें bind नहीं करना चाहिए अपने आप को इस तरह की चीजों में कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, तो वो कभी नहीं होगा. दूसरा है survival beliefs.
0: मैं survive, I'll survive.
1: जितना है अभी कर लो, इसके बाद तो कुछ नहीं कर सकेंगे. तो ये जो बिलीफ एक बन गया है, उसकी वजह से हम जो सारी ये भाग दौड़ एक दूसरे को नीचे खींचते ना, बिकॉज हमने समझा कि उनको अगर मिल गया तो मेरे को नहीं मिल सकता, यू नो, एंड इतना ही अमाउंट अवेलेबल है सिर्फ, तो इधर दे गेट इट और आई गेट इट. तो हम सब एक जैसे एक दूसरे को गिरा के नीचे खींच के वो प्राप्त करने में लग गए. तो ये बिलीफ सिस्टम ने भी हमारी पूरी you know, way of working को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया.
0: और इतने कॉन्फिडेंस से कहा जाता है आजकल कि बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, मैं तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन अब है तो क्या कर सकते हैं. पर ये भी हम एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं कि ये है,
1: दिस इज अ बिलीफ कि ये कॉम्पिटिशन है, ये कोऑपरेशन नहीं है, हम कट्ठे मिलकर काम नहीं कर सकते, या तो वो जीतेंगे या मैं जीतूंगा.
0: एक लड़ाई है, कंटिन्यूस लड़ाई है,
1: कंटिन्यूस वो है. कट्ठे मिलकर काम करेंगे और ज्यादा अच्छा कुछ कर पाएंगे, नो, इट्स ईदर हिम और मी. तो इसलिए वो कंपटीशन वो चलता रहता
0: है. तो कई सारे लॉज जो है वो
1: नहीं, और ये बिलीफ्स में भी एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है ब्लॉक करने वाला बिलीफ, जो मैं दूसरों के प्रति क्रिएट कर देती हूँ. ये ऐसे ही है,
0: फिनिश्ड,
1: देन आई विल नॉट चेंज माय एटीट्यूड towards you. तो उससे क्या होता है, मेरी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी जो आपकी तरफ जाती है. तो कभी भी किसी को लेबल्स नहीं दे हम, ये तो है ही गुस्से वाले, ये तो है ही ऐसे, यू नो, एवरीवन इज चेंजिंग.
0: मार्जिन नहीं छोड़ते, यू नो, कि वो चेंज हो सकता है.
1: हमने एक उनको टाइटल दे दिया कि ये है ही ऐसे, तो जैसे ही वो हमारे सामने आएंगे वी विल फील लाइक दैट अबाउट देम. सो दैट एनर्जी which should be of a better quality, it will not go because my that belief will create that energy. And what I could change it to, empowering belief. Pehle ho raha tha ki main nahi kar sakta, main kar sakta hu. Shaktishali belief system apna banaye, main kar sakta hu, kyun nahi kar sakta, main inke sath apne relation change kar sakta hu. So that belief, everything
0: again, कितने सारे beliefs हम साथ साथ लेके चलते हैं, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता,
1: absolutely.
0: You know, सारी खुशियाँ नहीं मिल सकती, ऐसा होता है,
1: these are all blocking beliefs. तो इसकी वजह से वो नहीं मिलती है, क्योंकि जैसा आप बिलीव करते जाएंगे वैसा ही आपके साथ होता जाएगा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आर द ट्रू beliefs. मैं आत्मा हूँ, आई एम अ प्योर सोल, ये भी एक बिलीफ है, इसको एक्सपेरिमेंट करें. जब ये आपके लिए वर्क कर जाता है, इट्स अ ट्रू बिलीफ, इट्स द ट्रूथ फॉर यू. अगर वो ट्रूथ नहीं आप फील करते हैं तो ईदर इट वॉज नॉट राइट और देन आई डिडंट डू इट द राइट वे, मैंने उस राह पर ठीक से चल कर नहीं देखा, या वो रास्ता ही ठीक नहीं था. लेकिन हर अपने बिलीफ के साथ एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए टिल इट बिकम्स द ट्रूथ. तो अपने बिलीफ्स को बहुत ध्यान से, बिकॉज दिस इज ऑल्सो लॉज, सारा दिन जो वर्क कर रहे हैं हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है. इट्स बिकॉज मैंने वो बिलीफ होल्ड किया हुआ है, मैंने वो थॉट क्रिएट की हुई है, मैंने वो थॉट को अटेंशन दी हुई है, तो दैट विल बी माई रिजल्ट. इट्स ऑल सेम विद कार्मिक फिलोसफी, लेकिन धीरे अलग अलग अगर ध्यान दें तो वी अंडरस्टैंड कि हर चीज जो हमारी तरफ आ रही है
0: ये लॉ ऑफ कर्मा के हिस्सा बन जाते हैं. एक्चुअली अगर हम तोड़ने पे आए तो लॉ ऑफ अटेंशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ बिलीफ की बात, सारे बिलीफ वही आ जाते हैं. इनफैक्ट और अगर हम पीछे मुड़कर देखें, जो हमने सफर जब शुरू किया था तो आपने यही कहा था कि हमारा थॉट जो क्रिएट होता है वो बिलीफ से होता है. उसमें तीन चीजों से हो रहा था, जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे थे, बिलीफ था. सो बिलीफ एक्चुअली बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट
1: थिंग. एंड नाउ सोल कॉन्शियसनेस इज दैट बेसिक बिलीफ सिस्टम जो हमें करेक्ट करना है कि आई एम अ बॉडी, तो ओ मैं मरने वाली हूँ, मैं एक दिन मर जाऊंगी, ये सब कुछ मेरे से चला जाएगा, जितना है अभी इकट्ठा कर लो, तो होल्ड किया, नहीं मिल रहा था, गुस्सा आना शुरू किया, किसी ने छीनना लगे तो डर लगा, औरों से छीनने लगे तो ग्रीड, कहीं चला ना जाए, अटैचमेंट, फियर, सो ऑल दीज वाइसेस केम इन विद वन बिलीफ सिस्टम,
0: दैट आई एम अ बॉडी. In fact, but लेकिन it's amazing, you know, जितने लोगों के साथ जब भी मेरी बातचीत हुई है अब, like when we say, they say कि पर ये body नहीं हूं मैं, ये कैसे मैं मान लूं, but the moment we say my body, you know, like that experiment actually worked, you know, because the mindset एक चेंज होते हैं. सिस्टर शिवानी, यहाँ एक और बिलीफ सिस्टम है या एक और बात जो कहीं ना कहीं मुझे खटकती रही है, मेरा सवाल अपना पर्सनली हो जाता है कि जब हम ये कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदार हूं जो भी मैंने किया है या जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी मैं करके भी आई हूं या इस जन्म में भी जो मैंने किया है, इस बर्थ में भी, तो क्या जब मैं कहीं ये कहा जाता है कि मैं वहां जाकर सारे पाप धो सकती हूँ, मैं मतलब कई बार मुझे एक क्वेश्चन होता है कि मैं सारी जिंदगी गलत करती रहूंगी, फिर मैं वहां जाकर अपने सारे पाप धो लूंगी, तो इसका मतलब मैं, मुझे परमिशन है कि मैं सब कुछ, दिस इज माई माई क्वेश्चन.
1: अगर आप किसी का मर्डर करते हैं और मर्डर करने के बाद आप उस चाकू को धो देते हैं, तो क्या पाप खत्म हो गया?
0: डेफिनेटली.
1: क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो चाकू एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया गया था, तो पनिशमेंट चाकू को नहीं मिलती है, तो ना चाकू धोने से पाप धुलने वाले हैं. इसी तरह जो हाथ है जिसने उस चाकू को पकड़ा हुआ था, इसको भी तो आप नल के नीचे धो देते हैं, खून उतर जाता है, पाप धुल गया?
0: नहीं,
1: क्योंकि ये भी उतना ही इंस्ट्रूमेंट है जितना इसके हाथ, यू नो, इसमें जो पकड़ा हुआ चाकू था. लेकिन हमने अभी तक क्या समझ लिया था, चाकू इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी कोई गलती नहीं, बाकी पाप इसने किया, इसने तो नहीं किया, इसको कोई नॉलेज नहीं.
0: लेकिन
1: हम धो इसको देते
0: जाते हैं लोग,
1: धो इसको देते.
0: यहाँ ये सवाल मेरा ये है कि मैं मान रही हूँ, यू नो, कि जो पाप है उसको ना धोने से, ना किसी से जा
1: नहीं
0: सकता.
1: शरीर को धोने से नहीं करेगा, क्योंकि पाप करने वाला या पुण्य करने वाला शरीर नहीं है. आई द सोल एक्ट थ्रू द बॉडी. तो किसी को सुख दिया, किसी को दुख दिया, मैं आत्मा कर रही हूँ. ये मुख नहीं कर रहा, ये हाथ नहीं कर रहे, ये पांव नहीं कर रहे, पर हम धो सिर्फ इनको रहे. यू नो, जो भावना थी, देखो अगेन इट्स बॉडी कॉन्शियसनेस. भावना बहुत अच्छी है, लेकिन उस कॉन्शियसनेस से जाना पड़ेगा आपको. जब आप किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, कॉन्शियसनेस ये होनी चाहिए कि मुझ आत्मा ने ये विकर्म किए हैं, मुझ आत्मा को, परमात्मा को याद करके अपने संस्कारों को धोना है, संस्कारों को परिवर्तन करना है, तब वो पाप धुल रहे हैं. मैं अपनी वही ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस में जाऊं और सिर्फ शरीर को वहां तक ले जाऊं और शरीर वापस आ जाए, तो वो तो सिर्फ शरीर धुला. वो तो रोज ही धुलता है, यू नो, भले वो बहुत ही पवित्र जल में धुला, लेकिन फिर भी शरीर धुला, लेकिन उसने पाप नहीं किया था. तो कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, वो संस्कारों को परिवर्तन करना है. तो हम कहते हैं कि ज्ञान गंगा स्नान, कि ज्ञान की एक एक बूंद जब इस आत्मा पर गिरेगी और इससे वो जो पुराने इंप्रेशन है उसको वो धोती जाएगी और नए इंप्रेशन बनते जाएंगे, तब पाप धुलते जाते हैं. स्थूल धुलाई से सिर्फ नहीं हो पाएगा.
0: यहाँ एक छोटी सी बात मैं ये जानना चाहूंगी कि गहरी आस्था से जब लोग जाते हैं, जब ये मान के जाते हैं कि मैं वहां जा रहा हूँ या जा रही हूँ और अपने सारे पाप धो के आऊंगे, अपने कर्मों की माफी मांग के भी आएंगे या जो करके आएंगे, डज इट वर्क?
1: सी अगेन, इट वर्क्स इफ यू वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ इट. यू नो, लेट्स से कि मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, तो मैंने बहुत पाप किए होंगे इस पूरे साल के अंदर, मैंने अनेक आत्माओं को दुख दिया होगा और वो सारा अक्यूमुलेट हो गया है. अब मैं जा रही हूँ स्थान पर ये सोच के कि ये सारे धुल जाने चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये होगा कि फिर आने के बाद मुझे अंदर एक अंश भी क्रोध का नहीं रहना चाहिए. तब तो मैं आगे अक्यूमुलेट नहीं करूँ ना, तब कहेंगे सही मायने में कि कुछ धुलाई हो गई. लेकिन गए बहुत अच्छी आस्था के साथ, रियली really, बहुत अच्छी फीलिंग के साथ जाते हैं, लेकिन आने के बाद क्या किया?
0: आने के बाद तो फिर वही वैसा का वैसा.
1: देन फिर कैसे हम कह सकते हैं ना कि रियली वो उतने स्ट्रॉन्ग उसके साथ गए थे. पश्चाताप मतलब परिवर्तन. पश्चाताप मतलब नहीं कि हाय मैंने क्या किया और फिर वही किया. शिव बाबा निराकार परमात्मा हमें बताते हैं पुरुषार्थ मतलब एफर्ट, मतलब ये कि एक बार की हुई गलती दूसरी बार नहीं होनी चाहिए,
0: रिपीट नहीं होनी चाहिए.
1: क्योंकि हम लोग कई बार कहते हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, हो जाएगा हो जाएगा. तो शिव बाबा से कब कब होगा, मतलब आप वही गलती करते रहेंगे और कहेंगे ये पुरुषार्थ चल रहा है हो जाएगा. सिर्फ पुरुषार्थ का भी मतलब है एक बार की हुई गलती फिर नहीं होगी, देन इट इज सही मायने में वो हिसाब किताब को फिनिश करना.
0: ससुर शिवानी, बहुत सी अभी बातें बाकी हैं, लेकिन वक्त है कि अब हम आगे बढ़े. लेकिन चलते चलते बहुत से लोगों के सवाल है. एक छोटा सा ये सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लोग इनफैक्ट ये भी समझने लगे हैं कि शायद मैं भी बता रही हूँ ये बात, लोग जब मुझसे बात करते हैं कि इतनी क्लैरिटी से कैसा ये हो गया है, सदियों से हम सुनते आ रहे थे लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि ये जो बातचीत है ये हमें समझ में आ रही है. अभी तक हमें समझ क्यों नहीं आ रही थी, क्या है ऐसी बात, क्या है ऐसा इस ज्ञान में जो मुझे इतना क्लियर, इनफैक्ट मुझे भी और बहुत से हमारे दर्शक हैं तो वो यही जानना चाहते हैं. मुझसे भी बहुत बार पूछते हैं कि आपको ये आता है, आपको पता है पहले, तो मैं उन्हें ये बार बार कहती हूँ कि मुझे नहीं पता था बट मुझे क्लैरिटी है. ऐसा कैसे है?
1: जैसे आपको नहीं पता था ना, सुनने सुनते आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा और फिर आपने उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया. ऐसे ही हम में से किसी को भी नहीं पता था, ये हम में से किसी को भी नहीं आता था. मैं मतलब इंडिविजुअली अपने लिए कह सकती हूँ कि वही पुराने संस्कार, वही गुस्सा, वही चिड़चिड़ापन. लेकिन जब निराकार परमात्मा ने स्वयं आकर ये ज्ञान दिया है, अभी तक क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि हमें ज्ञान आत्माएं दे रही थी, जो हमने पहले भी देखा कि कोई गलत नहीं था, लेकिन हर आत्मा ने शरीर लेने के कारण परसेप्शंस में बहुत सारी वेरिएशन आती है. जो इस बॉन्डेज से ऊपर होगा वो पूरी पिक्चर को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, और इस बॉन्डेज से ऊपर सिर्फ एक निराकार परमात्मा है. तो जब निराकार परमात्मा, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, जब वो स्वयं आकर ये ज्ञान देते हैं, सुप्रीम टीचर है, क्योंकि नॉलेज तो बहुत सिंपल है, मैं कौन हूँ वो कौन है, जिसको राइट नॉलेज है जब वो आकर देते हैं तो इट्स वेरी सिंपल. एंड फिर वो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके साथ, हमें समझ में आने लगता है, वी गेट द रिजल्ट

ओम शांति। ये बात तो सामने आती है कि क्यों ये ज्ञान जो है वो इतना क्लैरिटी से हमें समझ में आ रहा है। ये बात जो छोटी सी बात थी कब से सुनते आ रहे थे, लेकिन आज समझ आ रही है और फिर अनुभव भी कर पा रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ बातें हैं जो परेशान करती है। अगर आज की इस कड़ी को देखें तो हमने ये जाना कि कई तरह के कार्मिक लॉ में कई तरह के और कानून हैं, कई लॉज हैं जो कितनी स्ट्रांगली कितनी शिद्दत से काम करते हैं। तो हमारा हर थॉट हर बिलीफ बहुत सोचा समझा होना चाहिए अगर आगे की जिंदगी को हम बेहतर बनाना चाहते हैं। आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999344555, 9999344666, 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसी के साथ वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन अभी जो बात हमारे दिल में चल रही है वो ये है कि आज के इस दौर में ऐसा क्या हो गया है कि हर आत्मा हर इंसान इतना परेशान नजर आता है। और सिर्फ बड़ा व्यक्ति नहीं, बच्चों से ये शुरुआत नजर आती है। क्या हो चुका है ऐसा कि आज हमें बच्चा बच्चा दुखी और बोझ से दबा दिखता है। अगली कड़ी में इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। नई किरण इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 8:12 हो रहे हैं और 6 अक्टूबर 2026 आज का तारीख है और बहुत ही खास दिन है, मंगल दिवस है। तो हमारे साथ मोना जी भी है ओपनिंग क्लिक में, तो मैं चाहूँगा कि मोना जी आपकी आवाज़ में बताइए आज का दिन क्यों खास है।
1: जी, आज का विशेष मंगलवार का दिन है और मंगलवार कहते हैं सभी का, हम सभी जो आत्माएं हैं और परमात्मा भी ये बिल्कुल बात सिखाते हैं कि सबका मंगल हो, यही आशा उम्मीद के साथ आज का दिन शुभ जरूर बीते। और आप सभी दूसरों के लिए भी यही मंगल कामना करें कि यदि वो घर से निकल रहे हैं या कोई नया कार्य वो शुरू कर रहे हैं तो उनके कार्य में उनकी सफलता हो, उनका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे।
0: क्या बात, चलिए मोना जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आपका भी दिन बहुत ही मज़ेदार, खुशियों भरा हो, ऐसी शुभ आशा के साथ केसरी नंदन को बुलाते हैं और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कराते रहो।
2: भक्ति ना देखूंगी कहीं, नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और केसरी के लाल को याद किया हनुमान जी को, और हनुमान हंस भाई नमाल कर रहा है, सारी दुनिया में इनकी चर्चा चल रही है। हनुमान जी, जी हाँ साथियों, हनुमान जी के बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। भारत देश में उन्हें आज भी साक्षात देवता के रूप में याद किया जाता है, तो इसीलिए उनका जो है जलवा आज आपको देखने को मिला। और फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही तगड़ा जो है चेंज लाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है काम कर दिया है। जैसे जो भी चीज़ें चलती थी उसका एक ट्रेंड ही उन्होंने चेंज कर दिया है। तो आइए बात करते हैं, भक्ति में शक्ति है ये पता चल जाता है। आज रमा एकादशी है, तो रमा एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन आता है, और दो दीपावली के चार दिन पूर्व आने वाला एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है, जो कि हर महीने में आता है। तो इस एकादशी के प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी दूर हो जाते हैं और ईश्वर के चरणों में जगह मिलती है। इस दिन केशव भगवान का संपूर्ण विधि विधान से पूजा करके नैवेद्य और आरती करके प्रसाद बांटना चाहिए। अपनी समर्थ अनुसार ब्रह्मा भोजन या ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा भी देनी चाहिए। आइए इसका व्रत और विधि की बात करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के केशव रूप की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन भगवान केशव का संपूर्ण वस्तुओं से पूजन नैवेद्य तथा आरती कर प्रसाद वितरण करें व ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये है विशेष आज का विधि और व्रत। तो चलिए इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कहानी का भी बड़ा ही रहस्य है, जो कहानी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। और उसके पहले आइए वीर हनुमाना का ये सुंदर अति बलवाना ये गीत आपके नाम सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

नमस्कार, हनुमान जपते रहे। और हनुमान और राम का नाम ही हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य होना चाहिए। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। और आज जैसे रमा एकादशी है, इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। एक समय मुचकुंद नाम का एक राजा रहता था। वो बड़ा दानी और धर्मात्मा था। उसे एकादशी व्रत का पूरा विश्वास भी था। वो प्रत्येक एकादशी व्रत को करता और उसके राज्य की प्रजा पर यह व्रत करने का नियम लागू भी था। उसके एक जो आदत थी और इसके कारण प्रजा भी सुखी थी। और उनके पास एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। वो भी पिता से ज़्यादा इस व्रत को करती और इस पर विश्वास करती। उसका विवाह राजा चंद्रसेन से, चंद्रसेन के जो पुत्र है शोभन के साथ हुआ। चंद्रभागा और शोभन, इन दोनों का विवाह हुआ और राजा मुचकुंद के साथ ही वो रहने लगे। एकादशी आने पर सभी ने व्रत किया। शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया, परंतु दुर्बल और क्षीणकाया होने से भूख से व्याकुल हो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब कहानी में यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता। शोभन थोड़ा सा कमज़ोर था और उपवास करने से उसकी मृत्यु हो गई। और इस बात से मुचकुंद और चंद्रभागा दुखी हुए। इससे राजा रानी और चंद्रभागा अत्यंत दुखी हुए। इधर शोभन को व्रत के बाद उपवास किया था उन्होंने, उसके प्रभाव से मंद्रांचल पर्वत पर स्थित देवनगरी में आवास मिला। वहाँ उसकी सेवा में रामदी अप्सराएं भी थी। एक दिन राजा मुचकुंद टहलते हुए मंद्रांचल पर्वत पर पहुंच गए तो अपने दामाद को सुखी देखा और घर आकर सारा वृत्तांत अपनी पत्नी व पुत्री को बताया। पुत्री ये सब समाचार सुन अपने पति के पास चली गई। फिर दोनों सुखपूर्वक रंभा आदि अप्सराओं की सेवा करते हुए रहने लगे। तो ये थी कहानी रमा एकादशी से जुड़ी हुई आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। तो साथियों, इस पूरी कहानी से ये पता चल जाता है, अगर हम सच्चे दिल से विश्वास के साथ अगर किसी भी व्रत या उपवास को करते हैं तो उसका फल निश्चित मिलता है। अगर उसमें कुछ ऐसा अशुभ या अशुभ घटनाएं भी घटती हैं तो उसके बाद भी उसका फल जो है और अति मीठा होकर हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे चंद्रभागा के जीवन में शोभन के चले जाने से दुख हुआ, लेकिन शोभन का फिर पता लगने से सुख हुआ, है ना। और फिर दोनों सुखी पूर्वक अपना जीवन जीने लगे। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप व्रत या फिर हमारे जो भी विधि विधान बताए गए हैं, अगर विधि पर चलते हैं तो उसमें अशुभ भी शुभ लगने लगता है। थोड़ी देर के लिए हमारी परीक्षा जरूर होती है, लेकिन जैसे ही हम रहस्य को समझ लेते हैं तो सारा जो है मन बिल्कुल खुश और संतोष हो जाता है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो मुस्कुराते।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी खुशियों के साथ आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और वेल्दी फील कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी हनुमान जी को मंगलवार का दिन है याद करते हुए याद करते हुए निश्चित तौर पे आप रमा एकादशी को समझ गए होंगे और कितनी बड़ी प्राप्ति जो है यहाँ पर है और इस बारे में आप जानकारी मिल गई है। तो आइए आज कुछ लोगों का जन्मदिन है उनके बारे में बात करते हैं। कृपालु महाराज, इनका भी जन्मदिन आज है और कृपालु महाराज की बातें करें तो ये आध्यात्मिक गुरु थे। कृपालु महाराज का जन्म प्रतापगढ़ जिला कुंडा तहसील के मनगढ़ गांव में आज ही के दिन 1922 को हुआ था, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के मनगढ़ स्थित सुप्रसिद्ध भक्तिधाम और मथुरा जिला के वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर का निर्माण कृपालु महाराज ने करवाया था। इनकी आध्यात्मिक शिक्षा भारत के बनारस में पूरी हुई थी। जगत गुरु कृपालु महाराज की बात करें तो इनका जन्म कृपालु त्रिपाठी के यहाँ अपने ही गांव मिडिल स्कूल में से सातवीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की थी और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए महू मध्य प्रदेश चले गए। नैनिहाल में ही पत्नी पद्मा के साथ ग्रस्त जीवन की शुरुआत की और राधा कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए। भक्ति योग पर आधारित उनके प्रवचन सुनने भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचने लगे। फिर तो उनकी ख्याति देश के अलावा विदेश तक जा पहुँची। उनके परिवार में दो बेटे धनश्याम व बालकृष्ण त्रिपाठी हैं। इसके अलावा तीन बेटियां भी हैं, विशाखा, श्याम व कृष्ण त्रिपाठी। उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी, जो इस समय दिल्ली में रहकर उनके ट्रस्ट का सारा कामकाज खुद संभालते हैं, जबकि उनकी तीनों बेटियों ने अपने पिता की राधा कृष्ण भक्ति को देखते हुए विवाह करने से मना कर दिया और कृपालु महाराज की सेवा में जुट गए। भगवान श्री कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में विशेष रूप से इनका प्यार था और इन्होंने उस प्यार को एक मंदिर में तब्दील करा दिया और वो था प्रेम मंदिर। और प्रेम मंदिर ही अवधारणा का परिणाम है कि भारत में मथुरा से समीप वृंदावन में स्थित इस मंदिर के निर्माण में 11 साल पूरे लगे और 11 साल का एक लंबा समय, लगभग 100 करोड़ रुपये उन्होंने खर्च किए। इटालियन संगमरमर का प्रयोग करते हुए इसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने तैयार किया। इस मंदिर का शिलान्यास स्वयं कृपालु महाराज ने ही किया था। यह मंदिर प्राचीन भारतीय शिल्पकला का एक बहुत ही सुंदर नमूना है। मंदिर वास्तुकला के माध्यम से दिव्य प्रेम को साकार करता है। सभी वर्ण, जाति तथा देश के लोगों के लिए हमेशा खुले रहने वाले इसके दरवाजे सभी दिशाओं में खुलते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पर 8 मयूरों के नकाशीदार तोरण है। एक संपूर्ण मंदिर की बाहरी दीवारों में राधा कृष्ण की लीलाओं से सजाया गया है। मंदिर में कुल 94 स्तंभ है, 94 जो राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से सजे गए हैं। अधिकांश स्तंभों पर गोपियों की मूर्तियां अंकित दिखाई पड़ती है। तो ये कुछ खास बातें थी इस मंदिर का, कृपालु महाराज की जीवन कहानी से जुड़ी हुई ये सारी बातें और भक्तों की सेवा करते हुए भक्ति में तल्लीन जगत गुरु कृपालु महाराज का 15 नवंबर 2013 को शुक्रवार सुबह 7:05 पर गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल में निधन हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और सुंदर गीत की तरह। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 8:48 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ हनुमान जी की बातें, हनुमान जी की चालीसा आप सुन रहे थे। और निश्चित तौर पे आनंद आनंद आनंद के साथ आप जो है आनंद के सागर में डुबकी लगा रहे हैं, जहाँ पर हनुमान की कृपा राम जी की कृपा बन रही है। तो चलिए बातें कर रहे हैं हम लोग, और आइए आज विनोद खन्ना जी का भी जन्मदिन है, जिनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। और हमारे साथ एक दोस्त भी जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार
1: जी। सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सुरेश भाई बोलता
0: हूं। सुरेश जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: बस बहुत अच्छे हैं, बेटर हैं, काम कर रहे हैं, आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपसे बातें हो रही है। और कल का भी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा आपने जो नया शुरू किया
0: जी जी जी
1: बाद ज्ञान वाला
0: अध्यात्म और मनोरंजन का संगम, ये है रेडियो मधुबन।
1: जी बिल्कुल। और गाने भी अच्छे अच्छे, पुराने जो भक्ति भाव वाले गाने भी सुनने को अच्छा लगा, और जो बातें भी थी बहुत अच्छे लगे, अच्छा कार्यक्रम लगा। चलो हम तो कहते हैं कि एक नया कार्यक्रम आपने शुरू किया है, तो ये भी एक अच्छा सुनने का मौका मिला है सर कल। हमारे सभी मित्रों को आप आज के दिन की शुभकामनाएं। हमारे गुरीलाल जी है, गुराराम जी है, उदन भाई है, कुंचन भाई है, सुभाष भाई।
0: गुरीलाल जी कह रहे थे उनको रेडियो नहीं सुनाई दे रहा है, पता नहीं क्या गड़बड़ है। सुरेश जी पिलवाड़ा वाले भी बोल रहे थे रेडियो सुनाई नहीं दे रहा, एक बार कॉल करके पूछ लीजिए उनको, सुनाई दे रहा है
1: नहीं। पूछ लिया था मैंने, परसों पूछ लिया था कि और स्टेशन बज रहा है, हमारा जो जो स्टेशन था वो नहीं है, रेंज वही है लेकिन और बजता है। तो मैंने सोचा कुछ जितने कोई और स्टेशन आ गए, क्या पता पहले सुनाई दे रहा था, अब नहीं सुनाई दे रहा है, ऐसे बोल रहे हैं, तो पता नहीं क्या हुआ, देखेंगे बात करेंगे।
0: जी जी जी।
1: चलो आज मंगलवार है, तो सभी को आज के दिन की मंगल कामना है, शुभकामना है सर। और गाना तो हनुमान जी का ही सुना देना, हनुमंता हनुमंत बड़वंता, ऐसा गाना है गुजराती सारंगपुर वाले हनुमान जी का।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सुना देते हैं हनुमान जी का ही। मर्जी अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी।
1: जी सर,
0: बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सुरेश जी, थैंक यू सो मच याद करने के लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ बहुत ही प्यारा सा भक्तिमय गीत की तरफ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं और बड़ा ही आनंदित होकर आप कार्यक्रम को सुनते हैं। और पिंडवाड़ा से भी लोगों ने फ़ोन किया और सुरेश जी जोटाना से याद कर रहे थे बड़े प्यार से और सभी को याद कर रहे थे। गुड़ीलाल जी थोड़ा सा कंफ्यूज है कि हमारी जो है रेडियो नहीं चल रहा है, इस वजह से वो दिक्कत फील कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सबका मंगल, क्योंकि आज मंगलवार है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। विनोद खन्ना के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। 6 अक्टूबर को इनका जन्मदिन है और हिंदी फिल्मों के बहुत ही पॉपुलर अभिनेता थे। 1997 से लेकर 99 के इसमें 2 बार पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा सांसद भी चुने गए और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारत सरकार में उन्होंने पर्यटन और संस्कृति मंत्री के तौर पर काम भी किया। बाद में उन्हें विदेश राज्य मंत्री की जिम्मेवारी संभालने दी गई। विनोद खन्ना अपने वक्त के सबसे हैंडसम अभिनेताओं में गिने जाते थे। कई ब्लॉकबस्टर फिल्में में उन्होंने काम किया और अपने करियर की शुरुआत नकारात्मक किरदारों से करते हुए बाद में मुख्य धारा के हीरो बन गए। सुनील दत्त की 1968 में आई फिल्म मन का मीत में विलेन का किरदार इन्होंने निभाकर अपनी शुरुआत की थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म आज के दिन 1986 को पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद इनका पूरा परिवार मुंबई आकर बस गया और पिता किशन चंद खन्ना एक बिजनेसमैन रहे और माता कमला खन्ना एक कुशल गृहिणी थी। विनोद खन्ना ने 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी गीतांजलि थी जिनसे 1985 में तलाक हो गया और बाद में उन्होंने कविता से शादी की। उनके 3 बेटे अक्षय खन्ना, राहुल खन्ना और साक्षी खन्ना है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम श्रद्धा खन्ना भी है। तो फिल्मों का सफ़र 1968 से सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से शुरू हुआ, खलनायक से, और बाद में फिर नायक बन गए, है ना, बाद में हीरो बन गए। तो ये पूर्व पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना मस्ताना, मेरा गांव मेरा देश, ऐसे मेरे अपने, दयावान कुर्बानी, मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्में इनकी यादगार फिल्में रहीं और खूब चली। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार रमेश भाई जी, नमस्कार।
0: नमस्कार दयाराम जी, बोलिए कैसे हैं आप?
1: मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है, सभी मेरे आरजे भाइयों की, बहनों की और सभी मेरे प्यारे मित्रों।

0: जो वृंदावन में कृष्ण मंदिर है, और वो पहाड़ है ना वो, अरे मैं नाम भूल गया उसका, वो सभी जगह
1: प्रेम
0: पे हमने
1: मंदिर
0: दर्शन। जी, वो प्रेम मंदिर
1: पालो
0: है, वो सब
1: महाराज।
0: मंदिरों के, वो सब मंदिरों के हमने वो दर्शन किए, और वहाँ की जो कल्चर देखी, वहाँ के वो सभी स्थानीय जो दर्शन योग्य है वो जगह देखी, और जो वृंदावन में जो भगवान कृष्ण और गोपियों जो रास रमा करती थी जैसे डांडिया, वो भी वहाँ सभी दीवारों पर लगाया हुआ है, कहीं कहीं बहुत अच्छी सुंदर
1: अरे वाह,
0: तस्वीर लगाई हुई है, सभी देख के मैं आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहां से सीधा वो किया गया, अयोध्या से महाकुंभ भी गया था, और 4-5 दिन वहां घूम के सभी जगह के दर्शन करके वापस आया था, तो बहुत
1: अरे
0: ही
1: वाह, बहुत
0: हमारी यात्रा सराहनीय रही थी, और सुंदर जगह है, बार बार जाने को मन कह रहा है। और इस 2027 में तो अर्ध कुंभ हो रहा है महाराष्ट्र में, तो वहीं जाएंगे। और
1: जी जी
0: सभी मेरे प्यारे मित्रों को और आपको सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। आज श्री हनुमान जी का वार है, तो बहुत ही सुंदर सुंदर भजन हमने सुनी है, और एक अपनी आपकी पसंद का गुरु भजन सुना देना। नमस्कार, ओम शांति, सुनते रहो, मुस्कुराते
1: ओम
0: रहो, रेडियो
1: शांति।
0: मधुबन।
1: दयाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए मित्रों, अब वक्त हो गया है सीधे समाचारों का। समाचारों की तरफ चलते हैं। और विनोद खन्ना के बारे में बातें हो रही थी। 1977 में अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्में, परवरिश, स्टारडम और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी काफ़ी फिल्में की, और जिसमें उनको काफ़ी अच्छा जो है रोल रहा। और फिर उसके बीच में इनको कुछ ऐसी जो है सिचुएशन आ गई और ये ओशो के आश्रम में चले गए और उनके फॉलोअर बन गए और काफ़ी टाइम तक उनके साथ में रहे। उसके बाद फिर वो वापस आए और फिर उनको रॉकी फिल्म ऑफर की गई और फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद वापस वो फिल्मों में सक्रिय रहे। और उसके बाद वो बीमार पड़े, फिर राजनीति में गए, फिर बीमार पड़े, इस तरह से उनका चलता रहा। और 27 अप्रैल 2017 को इनका निधन हो गया। 70 साल की उम्र में गुरदासपुर से सांसद विनोद खन्ना ने मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में अंतिम सांसें ली। काफ़ी दिनों तक वो कैंसर से जूझ रहे। अमिताभ बच्चन सरकार 3 के प्रमोशन के लिए एक इंटरव्यू में इंटरव्यू दे रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि विनोद खन्ना का निधन हो गया, उन्होंने अपना इंटरव्यू बीच में ही छोड़ दिया और उनके परिवार से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विनोद खन्ना के निधन पर दुख जताया। ट्वीट पर लिखा उन्होंने, विनोद खन्ना एक पॉपुलर एक्टर के साथ साथ समर्पित नेता और अद्भुत व्यक्ति थे। उनके निधन पर दुखी हूँ, मेरा संवेदनाएं उनके साथ है। तो इस तरह से उन्होंने बातें की थी। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें विनोद जी के बारे में, विनोद खन्ना के बारे में। और इसी के साथ वक्त हो गया है समाचारों का, सीधे दिल्ली चलते हैं, समाचार सुनते हैं अभी।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी।

0: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। इन सीटों पर मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कल नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम भी है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। कार्यक्रम में शक्ति इंजन के लिए दूसरी उत्पादन क्षमता की स्थापना भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रूपए से अधिक का निवेश किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSSS-1 का जलावतारण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लंबाई बढ़ाए जाने और भार वहन क्षमता में वृद्धि के बाद उन्नत स्लिप वे 4 और गोलियत क्रेन की मदद से शिपयार्ड 45,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले जहाजों का निर्माण और जलावतरण कर सकेगा। इससे बड़े और जटिल जहाजों के निर्माण की शिपयार्ड की क्षमता बढ़ेगी। गोवा में पोरवोरेम में विधानसभा परिसर की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान विधायकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
3: रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज शाम 4 बजे विधानसभा परिसर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और विपक्ष के नेता यूरी आलेमाओ भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विधानसभा भवन को समर्पित विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया जाएगा। स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। समारोह के चारों दिन आम जनता के लिए कार्यक्रम खुले रहेंगे। समापन समारोह में केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर अतिथि होंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात केरलम के विजयम सी पोर्ट पर हुए विकास कार्यों की।
4: विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करने वाले एक अहम समुद्री गेटवे के तौर पर उभर रहा है। इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के पास रणनीतिक रूप से स्थित इस पोर्ट की गहराई लगभग 20 मीटर है, जिससे ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम है। कमर्शियल ऑपरेशन दिसंबर 2024 में शुरू हुए और मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट का उद्घाटन किया। विजिंजम ने अपने पहले साल में ही 1 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट और सिर्फ 18 महीनों में 2 मिलियन TEU का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है। अगस्त 2026 में पूरी तरह से एक्जिम ऑपरेशन शुरू होने के साथ ये पोर्ट अब भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए एक सीधा समुद्री गेटवे उपलब्ध करा रहा है।
1: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल विजिंजम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी।
4: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दक्षिण भारत के एक प्रमुख निर्यातक श्री सुरेश मैथ्यू ने कहा,
5: इन माई ओपिनियन विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर ट्रिवेंट्रम or Kerala, but for the whole of India. If even a fraction of shipments presently handled through the foreign ports like Colombo, Jebel Ali in Dubai or Singapore could be brought back to Vizhinjam, I'm sure that we can create enormous value within India through trade, logistics and employment, even allied industries.
4: अपनी बढ़ती क्षमता, सीधे एक्जिम कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ विजिंजम वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। एक रिपोर्ट।
6: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और संयुक्त सचिव डॉक्टर एम सुरेश कुमार ने किया। बैठक में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने किया। बेलारूस और मिस्र ने अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रतिभागियों ने काबुल के साथ समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग बढ़ाने तथा कहा, अफगानिस्तान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की दिशा में समर्थन देने की जरूरत दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यह मंच उन देशों को एक साथ जोड़ता है जो अफगानिस्तान के साथ समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी की उम्मीद करते हैं। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना वर्ष 2017 में अफगानिस्तान में सुलह और शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशद अल अलमीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। इसका उद्देश्य हूती नियंत्रण वाले इलाकों को वापस लेना, सरकारी संस्थाओं को बहाल करना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
7: धन्यवाद प्रियंका। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौतों को हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। लोकसत्ता ने लिखा है, स्विट्जरलैंड के साथ भारत का बड़ा समझौता, 10 लाख नौकरियां और 100 अरब डॉलर का होगा निवेश, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों और दुष्कर्म पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। बकौल अमर उजाला, न्यायालय ने कहा, कानून का खौफ पैदा करे पुलिस तब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपराध रोकना महत्वपूर्ण बात की कार्रवाई नहीं। तनाव के इलाज की राह खोजने वालों को नोबेल, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 3 वैज्ञानिकों को कोशिकाओं पर नियंत्रण से जुड़े काम के लिए चिकित्सा का संयुक्त पुरस्कार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: भाव स्वभाव और संभावनाओं का अनूठा संगम, ये है नई किरण।
9: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
10: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर मायसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे which will not be according to the way I want them to be. Aaj sara din, awareness and checking. Kaun zyada powerful hai? Baatein, situations or me? Kiska prabhav kis par padta hai? आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शेखटकर। मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी। मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं। माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम। एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा। और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है।

0: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज हमारे स्टूडियो में विशेष औरंगाबाद से बीके कुसुम बहन हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे हम लोग बातें करते हैं। तो आप सभी की तरफ से बीके कुसुम बहन का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया।
0: अच्छा, बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं?
1: जी, मेरा नाम कुसुम बहन है
0: जी।
1: मैं औरंगाबाद बंदास नगर में रहती हूँ, शीला दीदी जी के पास। मैं पिछले 16 साल से वहाँ सेवा करती हूँ और अभी भी वहाँ, वर्तमान समय में भी वहाँ दीदी जी के पास हूँ और माना सेवा चलती है वहाँ।
0: अच्छा अच्छा, किस तरह का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, किस तरह के कार्य आप करते हैं?
1: ज़्यादा तो सभी है, जैसे कोर्सेस, क्लास।
0: अच्छा।
1: किचन में, अकाउंट का।
0: अच्छा, ऑलराउंड सेवा करते
1: जी,
0: हैं इसका मतलब। एक ये ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ आपका?
1: हमारे लौकिक में जो हमारे चाचा चाची हैं, जो बहुत साल से हैं, माना अभी आसपास 30 साल से हैं, तो फिर उनको देखकर मैं, मुझे क्या है, इंस्पायर हुआ है।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए मैं वहाँ चाचा औरंगाबाद में आई हूँ। ऐसे हमारा लौकिक नांदेड़ है।
0: अच्छा,
1: और
0: अच्छा,
1: फिर
0: अच्छा।
1: हम चाचा जी के पास आए तो फिर वहाँ से ही कोर्स आदि हुआ है हमारा औरंगाबाद में, और फिर वहाँ से निकले हैं।
0: पढ़ाई वगैरह?
1: पढ़ाई हमारा ग्रेजुएशन हुआ है।
0: तो औरंगाबाद में हुआ या नांदेड़ में?
1: नहीं, औरंगाबाद में ग्रेजुएशन हुआ है, 12वीं तक नांदेड़ में हुआ है।
0: अच्छा अच्छा
1: जी।
0: तो अभी चाचा वगैरह है?
1: हाँ जी, माना वो अभी भी ज्ञान में है,
0: वो
1: अभी
0: क्या
1: भी चलते
0: करते हैं
1: हैं।
0: वैसे?
1: चाचा जी ITR में लेक्चरर थे,
0: अच्छा
1: अभी
0: अच्छा
1: रिटायर है।
0: ओके।
1: और चाची जी भी टीचर थे, वो
0: अच्छा
1: भी
0: अच्छा
1: रिटायर है अभी।
0: तो आपको नहीं लगा ऐसे कि जॉब करके ब्रह्मा कुमारी से कभी कर सकते हैं तो?
1: नहीं, ऐसे नहीं लगा कि, क्योंकि ये जब हम ज्ञान लिया था तो उस समय हमारे दीदी जो N9 के जो मंगला दीदी थे, उन्होंने कहा कि नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है, तो इसलिए फिर नौकरी का ख्याल भी नहीं आया है।
0: अच्छा,
1: जी
0: नहीं तो फिर समाज के आपके लोग नहीं कुछ बोले आपको?
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये बड़े थे ना चाचा जी, तो इसलिए घर का कुछ ऐसा बंधन नहीं था।
0: ऑब्जेक्शन कुछ नहीं हुआ?
1: जी, ऐसा।
0: तो अच्छा, कोर्स वगैरह आप कराते हैं तो कई बार जो है चीज़ें थोड़ी सी, बहुत सारे ऐसे अलग अलग जिज्ञासु आते होंगे,
1: जी,
0: तो कोई एक यूनिक जिज्ञासु का अनुभव सुनाइए आप।
1: जी, ऐसे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिप्रेशन वाले भी आते हैं।
0: अच्छा।
1: तो फिर अभी हमारा जो कोर्स चल रहा है कि हेल्थ मेंटल काउंसलिंग का,
0: जी,
1: क्योंकि ऐसे आगे चलकर बहुत सारे डिप्रेशन वाले आने वाले हैं, तो इसलिए हमने अभी ये हमारे जो नॉलेज के हिसाब से हमने ये कोर्स ज्वाइन किया है।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए उनको भी क्या कर सकते हैं कि हम चलो डिप्रेशन में आते हैं तो उनको काउंसलिंग कैसे करना है, क्या करना है, ये उनको माना थोड़ा सा नॉलेज हम भी दे सकते हैं कि काउंसलिंग का। तो इसलिए ऐसे तो बहुत सारे हैं कि
0: एक हाथ जो, हाँ, आउटडोर में वगैरह, बाहर सेंटर के बाहर भी आप एग्जीबिशंस वगैरह लगाते हैं क्या पहले की तरह?
1: नहीं, हम प्रदर्शनी वगैरह तो उसमें जाते हैं, जो हमारे नज़दीकी एक ओंकारेश्वर मंदिर है,
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: वहाँ हर साल शिवरात्रि को हमने व्यसन मुक्ति का भी लिया है वहाँ, और अभी भी प्रदर्शनी हर साल वहाँ लगती है।
0: उसका
1: और
0: कोई अनुभव सुनाइए प्रदर्शनी लगाते
1: हाँ,
0: वक्त
1: तो
0: में।
1: एक ऐसा भाई था जो व्यसन मुक्ति में, जो बहुत व्यसन में था वो,
0: अच्छा,
1: तो फिर माना रोज़ सिगरेट शराब आदि उसके माना अधीन हो गया था।
0: हाँ।
1: तो फिर जैसे हम ये जो उन्होंने ड्रामा देखा व्यसन मुक्ति का,
0: अच्छा,
1: तो फिर उनको माना ऐसे लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो फिर एक बार सेंटर पर आए, उन्होंने उनका कोर्स मैंने ही कराया था,
0: अच्छा,
1: तो फिर उन्होंने कोर्स किया तो फिर वो नशा मुक्त हो गए। अभी उनके जीवन में कुछ भी नहीं है, ऐसे माना ये बहुत सारे ऐसे फीडबैक भी उन्होंने दिए हैं
0: अच्छा।
1: ऐसे। और व्यसन मुक्ति के बहुत सारे प्रोग्राम भी हुए थे।
0: अच्छा, तो अभी जो मेंटल हेल्थ का जो आप कोर्सेस वगैरह करा रहे हैं, इसमें कैसे लोगों का रिस्पांस है, कितने लोग आते हैं?
1: नहीं, अभी तो चल रहा है, अभी 2 सेमेस्टर हुए हैं, अभी 1 साल बाकी है।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो अभी चल रहा है।
0: इसमें आप क्या नया सीख रहे हैं, क्या नया लर्निंग हो रहा है?
1: माना वो क्या है कि अभी माना प्रॉब्लम ऐसे बढ़ रहे हैं समाज के अंदर,
0: जी जी,
1: तो फिर वो क्या है, ज़्यादा करके मेंटली प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो इसलिए हर घर में एक आधा कोई ना कोई मिल ही रहा है, अब नॉर्मल होते हैं, तो उनको काउंसलिंग करने का ये माना संकल्प है कि उसको भी ठीक कर जाए मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन और दवा और दुआ दोनों भी चाहिए। दवा तो लेते हैं डिप्रेशन के लिए, पर उसके साथ साथ मेडिटेशन भी जरूरी है। तो दोनों का माना क्या है, इसलिए ये हेल्थ काउंसलिंग का हम कर रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं
1: जी।
0: और लोगों के प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं
1: जी।
0: तो बहुत ही अच्छा आपने बताया। और मैं चाहूँगा कि मेंटल पीस के लिए म्यूजिक बहुत काम करता है
1: जी।
0: गीत संगीत, तो आपका पसंदीदा कोई गीत वगैरह है जिसको आप रोज सुनना पसंद करेंगे?
1: ऐसे तो नहीं, पर मुझे मेडिटेशन करते हैं तो म्यूजिक ही ऐसा माना नेचुरल म्यूजिक पसंद है।
0: अच्छा अच्छा
1: जी।
0: और गीत संगीत, फिल्मी गीत, कोई भक्ति गीत, पहले भी आपको कुछ ऐसे लगता था कि?
1: गीत ऐसे पुराने ओल्ड जो गीत है वो पसंद है।
0: कौन सा एक आध कोई सुनाइए आप एक लाइन।
1: अजीब दासता है।
0: अच्छा, ये गीत आपको क्यों अच्छा लगता है?
1: नहीं, वो ऐसे ही माना जो सुनते है तो क्या होता है, मन शांत हो जाता है और अच्छा लगता है।
0: अच्छा अच्छा चलिए, बहुत अच्छा गीत आपने याद कराया है, अजीब दास्ता है ये। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग गीत सुनते होंगे, और जब ये गीत आप सुनते हैं तो शायद एक यात्रा की फीलिंग आती है। और ऐसे भी ट्रैवलिंग सबको पसंद है
1: जी।
0: क्योंकि आत्मा खुद एक ट्रैवलर है और
1: एक रूहानी यात्रा हमारी तो ऐसी ही यात्रा है रूहानी
0: जी जी जी। चलिए इस गीत का आनंद लेते हैं, उसके बाद फिर कुसुम जी से बातें करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: धन्यवाद।

नमस्कार, मैं हूँ गौरी कुलकर्णी मुंबई से और मैं एक आर्टिस्ट और सिंगर हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बीके कुसुम जी से बातें हो रही, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि आज के समय में मेंटल डिप्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और इसको लेकर उन्होंने एक कोर्स जो है कर रहे हैं, जहां पर लोगों को मेंटल पीस के बारे में बताएंगे और उनको कुछ टेक्निक बताएंगे जिससे वो डिप्रेशन से मुक्त हो सके और अपने जीवन को सुख शांति से जी सके। और साथ ही साथ राजयोगा मेडिटेशन तो उन्होंने किया है, उनका खुद का अनुभव है, तो इनको एक तरह से लोगों को समझाने में, लोगों को काउंसलिंग करने में ये कोर्स उनका जो है बहुत ही हेल्पफुल करेगा। और चलिए बीके कुसुम जी, मैं चाहूँगा कि आप औरंगाबाद में हैं काफ़ी लंबे समय से, तो वहाँ का कुछ टूरिज्म के बारे में बताइए। वहाँ देखने लायक कभी मेरे जैसा कोई सिरोही से अगर आपके यहाँ आ जाए तो उसे क्या क्या देख सकता है, क्या क्या नई चीज़ें हैं वहाँ पर या ऐतिहासिक चीज़ें कुछ है तो बताइए
1: जी। औरंगाबाद में एलोरा और क्यूज, एलोरा अजंता क्यूज बहुत फेमस है।
0: अच्छा।
1: और वहाँ 52 दरवाजे करके डोर करके हैं, वो भी फेमस है। और बीबी का मकबरा करके,
0: अच्छा,
1: माना हिस्टोरिकल सब है वहाँ ऐसे, तो इसलिए अभी तो औरंगाबाद इतना फेमस है कि सारा माना ऐतिहासिक है।
0: अच्छा,
1: तो दौलताबाद किला है वहाँ, तो बहुत सारी चीजें है देखने जैसा है।
0: तो टूरिस्ट बहुत आते होंगे फिर?
1: जी बहुत टूरिस्ट भी आते हैं।
0: तो आप टूरिज्म टूरिस्ट के लिए कुछ रखा है क्या अपने सेंटर पे कि वो भी आपके यहाँ विजिट करें?
1: नहीं अभी तो नहीं है, पर हमारा अभी जो चल रहा है म्यूजियम का रिट्रीट सेंटर है जो एलोरा क्यूज के पास ही है।
0: अरे वाह,
1: तो वहाँ अभी ये काम शुरू है।
0: अच्छा, काम तो, शुरू है
1: जी।
0: इन भविष्य में टूरिज्म के
1: वहाँ आकर माना एक ऐसा माना हम जो म्यूजियम बना रहे है वहाँ सेवा भी हो सकती है टूरिज्म जी की और आगे भी चलेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अच्छी बात आपने बताया। तो रेडियो के माध्यम से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं, तो एक हाथ मेडिटेशन का या योग की अनुभूति का कोई ऐसा अनुभव आपके पास हो जो सुन के हमें भी लगे कि हम भी योग करें, ऐसा कुछ है तो बताइए।
1: जी मेडिटेशन करना है तो माना एक तो पॉइंट के ऊपर अपना कंसंट्रेट बढ़ाना है
0: जी,
1: कि ज्यादा करके हम ज्यादा कैसे है, हमारी एक एनर्जी है
0: जी
1: जो मस्तिष्क में है, तो इस एनर्जी को हमें पास करना है तो पहले अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना है, तब मन शांत हो जाता है, और मन शांत हो जाता है तो अपने विचार अपने आप स्टॉप हो जाते हैं
0: जी।
1: जो पॉजिटिव थिंकिंग हमें मिलती है तो उससे क्या होता है, मेडिटेशन की एनर्जी जो मिलती है तो जो इन्वायरमेंट है जो हमारा आजू बाजू का वो भी पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए मेडिटेशन की शक्ति बहुत सकारात्मक शक्ति है
0: जी। जी जी, चलिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए?
1: सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप भी जो परमात्मा जो है अभी निराकार है, तो सभी को भगवान को याद करना है जो निराकार स्वरूप में है, और एक शक्तिशाली एनर्जी जो उनसे हमें मिलती है तो वही है कि जो भी याद करते तो परमात्मा को याद करना चाहिए। जी यही संदेश है।
0: चलिए बीके कुसुम जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और बहुत ही अच्छा अनुभव आपने साझा किया, और हमें खुशी हुई कि आपने औरंगाबाद के बारे में, वहाँ का टूरिज्म के बारे में आपने बताया, और 52 दरवाजा ये तो पहली बार मैंने सुना ऐसा नाम कि ऐसा भी कुछ होता है। अजंता एलोरा तो सुना था
1: जी,
0: लेकिन 52 दरवाजा पहली बार सुना, अच्छा लगा हमें। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में आपको अगर कुसुम जी की कोई भी बात अच्छी लगी हो, दिल तक पहुंची हो, तो ज़रूर आप भी अपने जीवन में कुछ समय निकाल कर मेडिटेशन करें जिससे आपकी एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी। तो जब एनर्जी रिस्टोर हो जाती है तो आप रिफ्रेश फील करते हैं और फिर से नया काम शुरू कर सकते हैं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ ढेर सारी खुशियाँ, और कुसुम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है उसमें अच्छे कर्म लोगों की भलाई के काम कीजिए, बिना किसी स्वार्थ और अर्जित कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत जो आपके सदैव काम आएगी। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, गाय का दूध कैसे फायदा करता है, कौन सी बीमारियां ठीक करते हैं, जानेंगे जरूर। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो भाई, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और आज है एकादशी, तो एकादशी में क्या बनाएंगे श्राद्ध पक्ष में विशेष करके, तो बहुत ही सुंदर रेसिपी आपको सिखाने वाली हूँ। लेकिन कौन सी वो आप आशियाना सुनिए, जान जाएंगे। और आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: गुड मॉर्निंग, आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है, जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है उसमें अच्छे कर्म लोगों की भलाई के काम कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के और अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी। एक बार क्या होता है, एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके, मतलब एक तरह का आप शाही खजाना समझ सकते हैं, आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर बनाए तहखाने में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया था। खजाने की सिर्फ दो चाबियां थी, एक चाबी राजा के पास और एक उसके एक खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम न था। एक रोज किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तय खाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है। वो हैरान हो गया और ख्याल किया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया तब शायद खजाना का दरवाजा खुला रह गया होगा। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया पर वहां उनकी आवाज सुनने वाला उस जंगल में कोई नहीं था। राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस, कोई नहीं आया। वो थक हार कर खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और पानी की प्यास से बेहाल हो रहा था, पागलों सा हो गया। वो रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती, सोने, चांदी इन सब के पास गया और बोला, ए मोती, चांदी, सोने के खजाने ने मुझे एक वक्त का खाना तो दे दो, इन सब से बोलने लगा। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उसे बोल रहे हो कि तेरे सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकते। राजा भूख से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखेर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था लेकिन उसके पास कागज और कलम भी नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे पर बहुत दिनों तक राजा नहीं मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। यही अंतिम सच है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितने भी हीरे पैसा सोना चांदी इकट्ठा कर लो, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। इसलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है उसमें अच्छे कर्म लोगों की भलाई के काम कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के और अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत जो आपके सदैव काम आएगी। तो ये सिर्फ राजा की बात नहीं, ये हम सभी की बात है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार और आइए फिर से सुन लेते हैं एक गीत। तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मैं हूँ वजाहत हबीबुल्ला और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अब आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय देने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। गाय का दूध कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करता है, ठीक है? देखिए, भोजन के वक्त या पहले छाती में दर्द या डाह होता है तो भोजन के बाद गो दुग्ध के सेवन से डाह माने दर्द शांत हो जाता है। भोजन के वक्त या पहले छाती में दर्द या डाह होता है ना, तो भोजन के बाद गो दुग्ध के सेवन से डाह और दर्द शांत हो जाता है। गो दुग्ध का रोज सेवन करने वाले व्यक्ति को बुढ़ापा नहीं सताता है, वृद्धावस्था में होने वाली तकलीफों से मुक्ति मिल जाती है। तो रोज प्रतिदिन गाय का दूध पीते हैं, उनको बुढ़ापा नहीं सताता है। और भी सुनेंगे आप, जो व्यक्ति बहुत ही तीखा, खट्टा, कड़वा, खारा, दाहजनक, लूखा, गर्मी करने वाले और विपरीत गुणों वाले पदार्थ खाते हो, उनको शाम को भोजन के बाद कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद गो दुग्ध का सेवन अवश्य करना चाहिए, जिससे क्या है, हानिकारक भोजन से होने वाली विकृतियों का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाए। तो जो भी लोग बहुत ही ज़्यादा तीखा, खट्टा, कड़वा, खारा, दाहजनक, लूखा, गर्मी करने वाले और विपरीत गुणों वाले पदार्थ खाते हो, उनको शाम को भोजन के बाद थोड़े समय के बाद गाय का दूध जरूर पीना चाहिए, जिससे क्या होगा, हानिकारक भोजन से होने वाली विकृतियों का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और भी सुनेंगे बहुत ही सुंदर उपाय, गो दुग्ध शरीर में उत्पन्न होने वाले जहर का नाश करता है। एलोपैथी दवाइयाँ, फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ आदि से वायु, जल और अन्न के द्वारा शरीर में उत्पन्न होने वाले जहर को समाप्त करने की क्षमता रखता है सिर्फ गाय का दूध। तो इस तरह गो दुग्ध फायदेमंद है। नमकीन और खट्टे पदार्थों के साथ दूध का सेवन करने से रक्त विकार पैदा होता है, जो कि विभिन्न प्रकार के चर्म रोग का जन्मदाता है। इसलिए नमकीन और खट्टे पदार्थों के साथ दूध का सेवन बिल्कुल मत करिएगा। मीठे पदार्थ जैसे अचार, सब्जियां, मूंग, गुड़, कंदमूल, केरी और अंगूर के अलावा तमाम फल के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। गाय को शतावरी खिलाकर उस गो दुग्ध को क्षय रोग के बीमार को पिलाने से रोग समाप्त हो जाता है। गाय को शतावरी खिला करके फिर उसका दूध, जिसके भी क्षय की बीमारी है, क्षय रोग है, उसको पिलाइएगा तो ये रोग समाप्त हो जाएगा, क्षय यानी टीबी। गो दुग्ध के सेवन से उदर साफ रहता है, जबकि भैंस के दूध से कब्ज होती है। और लास्ट उपाय भी बता देते हैं, गो दुग्ध से बने हुए घी को उसी गाय के दूध में मिलाकर पिया जाए तो उसे अधिक पौष्टिकता किसी और से नहीं मिल सकती। तो जिस गाय का हम घी खा रहे हैं, उसी गाय के दूध में अगर ये डाल कर हम पीते हैं तो कहते हैं कि उससे अधिक पौष्टिकता और किसी से नहीं मिल सकती। तो देखिए, सारे उपाय बहुत ही सुंदर है और आप चाहे तो आजमा सकते हैं। आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा पेड़ हमारी धरती के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसे राज्य वृक्ष का सम्मान मिला है, उसका नाम बताना है। राजस्थान का कौन सा पेड़ हमारी धरती के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसे राज्य वृक्ष का सम्मान मिला है, उसका नाम बताइएगा। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414-1515 पर आप फोन कॉल्स करते हैं, कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर एक अल्फिराम लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अब खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। पहले तो मैं आज के प्रश्न को दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान का कौन सा पेड़ हमारी धरती के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसे राज्य वृक्ष का सम्मान मिला है, उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। और आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है, प्रेम। वृक्षों जैसा होता है, वे अपनी छाया में बैठने वालों से कभी यह नहीं पूछते कि वे कितनी देर ठहरेंगे। नदी भी अपने जल को किसी एक तट के लिए रोक कर नहीं रखती, वह जानती है जो सचमुच उसका है वो उसके बहने में ही सुरक्षित है। क्या कहेंगे आप? हमने देखा है जो लोग प्रेम को अधिकार समझते हैं वे अंततः अकेले रह जाते हैं, ये आज का विषय है। तो प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं, विषय में जुड़ करके आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के विषय में आप अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा और आज के प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे श्रोता बंधु कहते हैं कि क्या करें, फोन नहीं लगता, इतना खेप रहता है तो कैसे फोन नहीं लगता है, ट्राई करिएगा, लगेगा, फिर तो कुछ गड़बड़ होगी फोन की, वो बात अलग है, बाकी आराम से लग सकता है अगर आप जुड़ना चाहे तो। बाकी विषय बहुत ही सुंदर है, देखिए वृक्ष है, पेड़ है, नदी नाले है, ये कभी नहीं कहेंगे कि मेरा पानी कौन पी रहा है, मेरी छांव में कौन बैठे है, कभी इस तरह के वो प्रश्न नहीं करते। हेलो,
1: ओम शांति, गुड मॉर्निंग दीदी।
0: हाँ जी, ओम शांति, नमस्कार।
1: हेलो,
0: हाँ जी, सुन रही हूँ, सुन रही हूँ, स्वागत आपका रेडियो मधुबन।
1: आवाज आ रहा है ना?
0: हाँ जी, आ रही आ रही।
1: तो आपको रेडियो मधुबन परिवार, सभी छोटे भाई बहनों को, दोस्तों को सुभाष भाई का प्यार भरा नमस्कार। और सुविचार भी अच्छा है, विषय भी अच्छा है। तो देखो, प्रेम ये एक शुद्ध निस्वार्थ और सभी का कल्याणकारी भावना का प्रतीक है। और प्रेम देने से प्रेम बढ़ता है। तो जैसे आपने पेड़ का उदाहरण दिया, पेड़ हमको फल भी देता है, छाव भी देता है और ऑक्सीजन भी देता है, वो निस्वार्थ भावना से देता है। तो उसके नीचे बैठने वाला जब फिर चुप्त होके शांत होके जाता है तो पेड़ को भी दुआ देता है, धन्यवाद करता है। जैसे आपने और उदाहरण दिया, वृक्ष, नदी वगैरह, ये जो हमको जो भी कुछ दाता भाव से दे रहे, निसर्ग दे रहे, तो देने दे उनको भी हम धन्यवाद करते हैं। तो प्रेम ये लो और दो, और धन्यवाद दो और धन्यवाद लो। तो प्रेम ये एक शुद्ध भावना है, एक थोड़े में मैं बोला हूँ। तो सभी को नमस्कार और ओम शांति दीदी, ओम शांति।
0: बहुत बहुत आभार सुभाष भाई, बहुत अच्छा बोले आप जी। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से, आपने प्रश्न का जवाब तो व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेज दिया है और विषय को भी स्पष्ट किया है। आप भी जरूर जुड़िएगा और अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा, बहुत ही सुंदर विषय है। चलिए, हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो,
2: हेलो उषा बहन जी।
0: हाँ जी, सुप्रभात कंचन भाई जी, नमस्ते, कैसे हो आप?
2: नमस्कार, नमस्कार बहन जी, अच्छे ठीक है। सुबह में खेत में गए थे, आज तो 7 बजे
0: जी
2: तो आ गए और आके थोड़ा स्नान किया और दुकान पे आ गए तो आप आ गए हैं
0: जी। तो आज का प्रश्न भी मैं दोहरा रही हूँ, विषय भी दोहरा रही
2: हूँ, जवाब तो मैंने दे दिया।
0: अच्छा ठीक है, हाँ जी। और विषय है प्रेम वृक्षों जैसा होता है, वे अपनी छाया में बैठने वालों से कभी ये नहीं पूछते कि वे कितनी देर ठहरेंगे। नदी भी अपने जल को किसी एक तट के लिए रोक कर नहीं रखती, वे जानती है कि जो सचमुच उसका है वह उसके बहने में ही सुरक्षित है। हमने देखा है जो लोग प्रेम को अधिकार समझते वे अंततः अकेले रह जाते हैं। क्या कहेंगे, बहुत सारा में ईर्ष्या होता है ना, वो किससे मतलब वो उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, बहुत सारी ईर्ष्या रहती है, क्या कहेंगे आप?
2: हाँ, प्रेम है ना, नदी और ये है ना पेड़ जो रुख है, इसके इसको ए, ए, ए, करके हमें इन्हीं के पास हमें प्रेम के परिभाषा सीखनी है, ठीक है
0: जी।
2: कई लोग कहते हैं कि हम बहुत प्रेम है आप पे, मेरा प्रेम है, ऐसा है ऐसा है, लेकिन ऐसा दिखावा है केवल।
0: प्रेम जो होता है अंदर का होता है और वो सामने वाला समझ ही जाता है कि हाँ कौन प्रेम करता है नहीं करता है।
2: हाँ, एक साथी है ना, मैं सुनाता हूँ
0: जी।
2: प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने को सच्चा प्रेम जो होए तो भवसागर उतरिया। कई बार बोलते हैं, भजन भी बोलते हैं, पहले साखी बोलते हैं फिर भजन गाते हैं, तो ये मुझे कंठस्थ था तो मैंने बोलती
0: जी जी जी जी।
2: कितनी बड़ी बात बताई है देखो।
0: बिल्कुल,
2: पेड़ हमें देखो छाया देती है, फल देते है, करता है। कितना लोग फल आते हैं तो लोग पत्थर मारते हैं, ये करते हैं, फिर भी अपना जो फल है ये पोते नहीं खाते।
0: जी जी बिल्कुल,
2: फल है ये दूसरों को
0: जी
2: खाते हैं, लोग खाते हैं, फिर भी पत्थर मारते हैं, ये करते हैं, फिर भी कोई ये नहीं है कि भाई इसको हमें छाया नहीं देनी है, इसको इच्छा नहीं करना है
0: जी।
2: नहीं है, नदी भी, नदी में देखो कितना गंदा पानी लोग कर देते हैं
0: जी,
2: कैसे कैसे जाके कपड़े धोते हैं, ये करते हैं। नदी है तो पशु पानी पीते हैं, नदी बह, फिर भी नदी बहते रहते हैं
0: जी।
2: ऐसे प्रेम भी
0: बिल्कुल
2: हमें बहते रहना चाहिए
0: जी।
2: ये ऐसा है तो इसको नहीं बोलना है, इसको ऐसा करना है, ये कोई कोई प्रेम की भाषा नहीं
0: है। जी जी जी जी बिल्कुल।
2: तो मैं तो इतना थोड़ा प्रेम के बारे में जानता था तो बताया, और दूसरे दोस्तों को भी जुड़ना है, और सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया।
0: हाँ जी, थैंक यू।
2: थैंक यू, थैंक यू सभी दोस्तों का नमस्कार।
0: बहुत बहुत आभार आपका कंचन भाई। ये थे कंचन भाई मंडाली से। अब देखते हैं कौन जुड़ते और अपनी बात को रखते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, तो आज का विषय भी बहुत ही अच्छा है। राजस्थान का कौन सा पेड़ हमारी धरती के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसे राज्य वृक्ष का सम्मान मिला है, उसका नाम आपको बताना है। और आज का विषय है प्रेम वृक्षों जैसा होता है, वे अपनी छाया में बैठने वालों से कभी ये नहीं पूछते कि वे कितनी देर ठहरेंगे। नदी भी अपने जल को किसी एक तट के लिए रोककर नहीं रखती, वे जानती है जो सचमुच उसका है वह उसके बहने में ही सुरक्षित है। हमने देखा है जो लोग प्रेम को अधिकार समझते हैं वह अंततः अकेले पड़ जाते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या बात है, बहुत ही सुंदर विषय है, प्रैक्टिकल विषय है। और आप सोच रहे हैं अभी तक भी, चलिए आप सोचिए, हम बोलते हैं फिर। हम तो चाहते हैं कि आप जुड़े, आप अपनी बात रखे, हम तो बैठे ही हैं। हेलो,
3: हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हम शांति सुरेश।
0: हाँ जी, नमस्ते सुरेश भाई, हम अच्छे हैं, आप सुनाइए, आप कैसे हो?
3: बस हम भी अच्छे हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम भी चला, विचार भी अच्छा चला और सवाल भी अच्छा कर दिया आपने।
0: थैंक यू।
3: सवाल भी किया और जो आप बता रहे हैं विषय के बारे में ये भी बिल्कुल सही है दीदी, प्रेम की बात चल रही है। तो जैसे आप बता रहे हैं, सभी ने बताया, हमारे सुभाष गांधी भी बहुत अच्छी तरह से बताया कि हम जो निश्वास भाव से हमारे पेड़ है, नदी है, निश्वास भाव से हम सब कुछ दे रहे, कुदरती हवा है, तो कोई कुछ मांगता नहीं है, ऐसे ही लोगों को सब कुछ मिल जाता है बिना पैसे से, निश्वास भाव से। लेकिन आज का जो मनुष्य इंसान है वो प्रेम का बस एक अहम करते हैं कि बस कभी कभी कभी जो कहते हैं ना कि आपने जो बताया कि प्रेम का जो करते हैं वो अकेले रह जाते हैं, बिल्कुल सही बात है दीदी। जो अभिमान नहीं करना है, प्रेम का अभिमान नहीं करना है, बस मुंह बंद नहीं करना है और निश्वास भाव से हम एक दूसरे को रहना है। और जैसे कंचन भाई ने भी बताया कि आज लिखा हुआ है प्रेम तो करते हैं लेकिन ऊपर से प्रेम करते से करते अंदर से नहीं करते हैं, वो तो पहचान नहीं जाते हम आराम से कि सामने हमको कितना चाहता है, कितना प्रेम करता है
0: जी।
3: तो निश्वास भाव से जो हम कोई किसी के साथ प्रेम करेंगे तो ही तो फंसे, क्योंकि कई कई बार क्या होता है हमको कुछ लेना है, कुछ उसके जरूरत है, तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रेम करते हैं उसको, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ हम ऐसी अच्छी भाव से बात करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, निश्वास भाव से सब कुछ हम करेंगे तभी तो हम प्रेम का जो जो प्रेम का एक शब्द है वो हम अच्छी तरह से जान पाएंगे दीदी
0: जी।
3: नमस्ते दीदी।
0: हाँ जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, आपने भी अपनी बात को बहुत ही अच्छी तरह रखी है। अब आइए यहाँ पर एक गीत सुनेंगे, उसके बाद इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अभय सिंह जी जयपुर से जुड़ चुके हैं। नमस्ते अभय सिंह जी।
1: नमस्ते मैडम जी। राधे राधे।
0: हाँ जी,
1: के सभी श्रोताओं को, बड़ों को प्रणाम और बाकी सभी को प्यार भरा राम राम मैडम जी।
0: जी राधे राधे, राम राम आपको भी। और
1: जी
0: आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है, आज का विषय भी बढ़िया है, तो मैं पहले प्रश्न सुना रही हूँ राजस्थान का।
1: प्रश्न मैं सुन लिया मैडम जी।
0: हाँ जी,
1: प्रश्न है वो जो राजस्थान का राज्य पेड़ बताया तो वो खेजड़ी है मैडम जी।
0: अच्छा ठीक है, देखते हैं सही गलत, आप कार्यक्रम सुनिएगा, हम अंत में जवाब देंगे, ठीक है।
1: और
0: आज का
1: आपने बहुत अच्छा चयन किया है मैडम जी।
0: जी
1: विषय आज के समय में जो प्रेम है ये बहुत कम आदमी को जो प्रेम होना चाहिए उस हिसाब से बहुत कम आदमी को मिल रहा है मैडम जी।
0: जी
1: एक्चुअल में क्या है, आदमी को प्रेम जो है वो अपने वशीभूत करने के बाद में फिर सही उसके ऊपर शायद मुझे नहीं लगता प्राणों से कोई बड़ी चीज होती है। प्राण चाहे चले जाए
0: जी,
1: मगर प्रेम पे हाथ नहीं आनी चाहिए मैडम।
0: क्या बात है।
1: तो वो जो चीज है आज के समय लोगों की थोड़ी सोच का उसमें सभी शामिल है मैडम जी, मैं भी उसमें हो सकता है बोल जरूर रहा हूँ लेकिन कसौटी पे पता नहीं खरा उतरूंगा कि नहीं, लेकिन उतरने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और हमको अटल रहना चाहिए मैडम जी।
0: जी बिल्कुल,
1: चाहे कुछ भी हो जाए।
0: जी
1: कृष्ण भगवान जी ने अनुपम उदाहरण पेश कर रखा है सुदामा जी की, बहुत हालत दयनीय होने के बाद भी उन्होंने अपने मित्र को कभी भूला नहीं।
0: जी बिल्कुल।
1: और विकट परिस्थिति ये तो हमारे पहिए के यान के माफक है मैडम जी, किसी किसी को जब चलता पहिया है तो उसमें नीचे वजन वाले भाग पे आना ही है, यानी गरीबी या दरिद्रता स्थिति में किसी को भी कभी भी आना पड़ सकता है मैडम जी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आदमी उसको फिर छोड़ दे।
0: जी
1: जो आदमी सही रास्ते पे चल के और इस स्थिति में आ जाता है तो वो हमारे मतलब एक भाग्य रेखा बोल दो या किस्मत का जरोखा बोल दो, वो उसको भुगतना है और वो भुगतने पड़ते भी हैं मैडम जी।
0: जी
1: लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे विमुख हो जाएं।
0: जी
1: हमको हमेशा सदैव उसके साथ रहना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और ऐसी विकट परिस्थिति में तो हमको और थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम
0: जी
1: तन मन धन बोलते ना अर्पण तेरा क्या लागे प्रभु मेरा, उसमें हमको तन मन धन अर्पण करने का अवसर मिले तो करना चाहिए मैडम।
0: जी जी जी जी बिल्कुल।
1: तो प्रेम एक्चुअल में यथार्थ रूप से बना रहेगा प्रेम, वरना खाली आप जैसे अभी सवाल डाल दिया ऐसे वो पढ़ने में और इनमें देखने में टीचर के समझाने में इनमें ही रह जाएगा और ये खत्म हो जाएगा मैडम जी।
0: जी बिल्कुल,
1: इतनी बुरी गिरावट आ रही है इसके अंदर मैडम,
0: जबरदस्त,
1: बहुत जबरदस्त मैडम।
0: रिश्तों में
1: ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस पे हमारे को सबको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है।
0: जी
1: और कुछ उदाहरण मैडम जी मुझे इतने अच्छे लगते हैं, बहुत आदमी है, बहुत महिलाएं भी हैं और उसमें बच्चे पढ़ने वाले भी हैं जिनको हम कभी जानते नहीं, कभी देखा नहीं कभी कहीं, लेकिन हम बाई में उनके अंदर जब कुछ ऐसा अट्रैक्शन और ऐसी कोई अद्भुत उसके अंदर क्षमता या बात करने का अवसर लगा लो तो हम जब उनसे बात करते हैं तो वो अनजान होते हुए भी बहुत शालीनता से और बहुत जो हमने जिस आशा से उनसे बात करनी चाहिए उससे भी उसकी अपेक्षा बहुत अच्छे खरे उतरते हैं
0: जी।
1: तो ऐसा हमारे को विनम्र और सहनशील और हर एक चीज को समझने वाला बनना चाहिए, तभी आदमी बुरे नहीं होते। कुछ एक तो वापस जवाब ही नहीं देते, पता नहीं कोई किसी को क्यों पर्पज से कैसे, कोई देख रहा है किसी को पता नहीं कैसी मुद्रा में देख रहा है, वो क्या उसका आकलन कर रहा है
0: जी।
1: और उसने बाय द वे कुछ मदद के हिसाब से पता नहीं उस आदमी ने मतलब बोलने की हिम्मत कर ली या बोल दिया कुछ, तो मतलब उसका आंसर देना भी उचित नहीं समझते। ऐसे ऐसे पल भी देखे हैं मैडम जी मैंने।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही कहा,
1: जो कि बहुत गलत है
0: जी।
1: ऐसा हाँ सहन स्वभाव में सहन कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को कोई भी बात नहीं करनी, या मैं आपको गलत नहीं समझ रही लेकिन आप कोई बात नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है
0: जी।
1: और जवाब तो दे दे, कम से कम जवाब दे देते, ये तो है। बेटे और अलग जगह पर अकेला देखने के बाद बोलने के बाद भी ऐसा क्षण देखा मैंने मैडम जी।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने,
1: तो ऐसा नहीं करना चाहिए मैडम जी। लेकिन अब उसके वशीभूत मैंने बहुत बाद में मैंने सुधार किया अपने अंदर, यार ऐसे बिना मतलब के तो भूलना भी गलत है, आज के समय बदली हो गया है
0: जी।
1: तो मैंने ये जो आज रेडियो मधुबन के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ, ऐसे ही मैंने अपने कोई नजदीक थे उनसे भी एक दो बार पूछा तो बोला भाई बेवकूफ है फौजी तू, तू भाई दुनिया को नहीं दिखा वाला, दुनिया ऐसी नहीं है जैसा तू सोच रहा है। तुम्हें बोला मेरे भाई दुनिया कोई हमसे अलग थोड़ी है, वो दुनिया में सब प्राणी तो है, सब आदमी तो है।
0: सही है बिल्कुल,
1: ये छल कपट और यही तो बढ़ रहा है, इसकी वजह से तो आदमी आदमी के प्राण ले ले रहा है,
0: वही हो रहा है। तो ठीक है अभय सिंह जी, बहुत सुंदर आपने बात कही है जी।
1: नमस्ते मैडम।
0: हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे अभय सिंह जी जयपुर से, आपने अपने बात को भावनाओं के साथ बहुत ही अच्छी तरह व्यक्त किया है। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। प्रेम पर बहुत ही सुंदर विषय है। प्रेम वृक्षों जैसा होता है, वे अपनी छाया में बैठने वालों से कभी ये नहीं पूछते कि वे कितनी देर ठहरेंगे। नदी भी अपने जल को किसी एक तट के लिए रोक कर नहीं रखती, वह जानती है जो सचमुच उसका है वह उसके बहने में ही सुरक्षित है। हमने देखा है जो लोग प्रेम को अधिकार समझते हैं अंततः वो अकेले रह जाते हैं। कैसे देखते हैं कौन जुड़ते हैं। विषय भी बहुत सुंदर है, प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। हेलो, हाँ जी अभय सिंह जी, तो देखते हैं आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। देखिए आजकल प्रेम का तो ऐसा है कि प्रेम कहाँ रह रहा है, प्रेम रिश्तों में इतना दूर हो चुका है कि समझ में ही नहीं आता है कि कौन कब किसको धोखा दे रहा है। हेलो
2: हेलो, नमस्कार शांति।
0: हाँ जी नमस्ते दयाराम जी, कैसे हो आप?
2: बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है, सभी बहनों की, भाइयों की, दादियों की और मेरे प्यारे मित्रों की, और मैं बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। इस वक्त रेडियो मधुबन सुन रहा हूँ इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब से।
0: क्या बात है,
2: क्लियर आवाज भी आ रही है
0: जी।
2: और बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा आज का, और हमारे जो प्रिय भाई जो अभय सिंह जयपुर ने, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई, जो कुछ कुछ शब्द तो ऐसे भी बहुत ही बढ़िया थे जो मेरे दिल को छू गए, वो वास्तव में हमें ज्ञान में लाने चाहिए
0: जी।

0: तो आप भी प्रेम के विषय में कुछ कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार दयाराम जी, लगता है रख दिया आपने। तो देखिए, आजकल रिश्तों में प्रेम इतना कम होता जा रहा है कि अगर माँ बच्चे अपने माँ से प्रेम करते तो बीबी कहती है कि
1: हेलो
0: आप तो मुझे क्या चाहते हो, आप तो अपनी माँ को चाहते हो। हेलो, नमस्ते। हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। नमस्कार।
1: हेलो
0: हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है?
1: हेलो
0: जो भी है, हेलो हेलो कर रहे हैं, आपकी आवाज हमारे तक पहुंच रही है, लेकिन हमारी शायद आप नहीं सुन पा रहे हैं। तो अगर नहीं आवाज पहुंच रही है तो थोड़ी देर में कट कर दीजिएगा, ठीक है? बाकी विषय बहुत ही सुंदर चल रहा है कि देखिए आजकल परिवार में क्या होता जा रहा है। यही तो होता जा रहा है ना, दो बच्चे होते हैं तो माँ बाप के लिए मुसीबत हो जाती है। पहला कहता है कि आप तो इस भाई से प्रेम करते हो, मुझसे कहाँ कहते हो, और छोटा कहता है कि आप बड़े से प्रेम करते हो, मुझसे कहाँ करते हो। हेलो,
1: हेलो नमस्ते दीदी, मैं सुरेश भाई, क्या हाल
0: हाँ
1: है
0: जी,
1: आपके?
0: नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
1: दीदी बहुत अच्छे है, प्रोग्राम सुन रहे और बहुत ही अच्छी प्यारी बात हो रही है दीदी। तो बिल्कुल सही बात की आप और दोस्तों ने दीदी। तो कहते हैं ना कि प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती। देखो ना दीदी, आजकल जो स्वास्थ्य का प्रश्न तो होता जा रहा है बाहर वालों से, लेकिन घर वालों से भी ये होता जा रहा है। जैसे कि कोई आदमी थका हारा घर पे आ रहा है तो वो ना तो कोई प्रेम से बात करते हैं, ना प्रेम से कोई पानी का गिलास देते हैं। ये बच्चे भी अपने अपने वो करते हैं। तो
0: जी
1: और तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सभी को मैं ये कहना चाहूंगा। और प्रेम ये एक ऐसी चीज है ना, तो लाखों करोड़ों रुपये का एक पल में काम कर सकती है। जो
0: जी
1: किसी से हम प्रेम से बात करते हैं, ओरखान हो जाती है, तो वो कितने भी पैसे भागे ना तो भी उससे प्रेम से हो जाती है। तो बस मैं यही दो शब्द कहूंगा कि हमेशा लोगों के साथ और अपने आप पर प्रेम भरा रखे, ताकि प्रेम से लोग हमारे साथ भी प्रेम से रहे, हम प्रेम करते रहे।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत आभार
1: जी
0: आपका, आज के प्रश्न का जवाब देंगे। चलिए, मैसेज के द्वारा भेज देंगे। तो बहुत ही सुंदर बात है, आपने कही है परिवार में कहाँ प्रेम रहा। बिल्कुल आजकल ऐसा ही हो रहा है, पहले कितने एक दूसरे से प्रेम हुआ करता था कि बड़ा नहीं आ जाता है तो छोटा खाना नहीं खाएगा, छोटा भाई नहीं आ जाता है तो बड़ा भाई खाना नहीं खाएगा। हेलो,
1: पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ, ओम शांति।
0: हाँ जी फिरोज भाई, नमस्ते, ओम शांति, कैसे हो आप?
1: बस एकदम मस्ते हैं। और दूसरा के बहन जी, देखो कि हृदय मंदिर में वागे के घंटड़ी घड़ियों मधुबनी अने आसियाना नी आगमन नी मारी कल्पना में हमेशा रहे थे घड़ियों मधुबन सोता अने परिवार नी जोई ने जोई ने जोई ने रंग थयो गुलाबी रेडियो मधुबन नो।
0: શું વાત છે, બહુ સરસ.
1: પ્રેમ આપો અને પ્રેમ લો, જે બચ્ચો હોય તો એનાથી, પછી કોઈ ભી સાધુ સંત હોય એનાથી, આપણા ઘરના બધા વડીલો થી, આપણે પ્રેમ થી વર્તીએ અને આપણા નરમ દિલ થી વર્તીએ તો એમાં સારું લાગે અને બીજા ભી જોનારાઓ ભી આપણી જો નરમાઈ જે દિલ છે પ્રેમ છે આપણું જોઈને બીજા ભી નહીં કે ચલો માણસ જો કેવી કેટલી પ્રેમથી વાત કરે છે,
0: જી જી
1: તે
0: જી
1: જી સમજી જાય કે ના આપણે ભી આવું કરવું જોઈએ।
0: સાચી વાત, બિલકુલ
1: જી બેન જી,
0: જી, બહુ બહુ
1: ઓકે
0: આભાર ફિરોજભાઈ તમારો.
1: જી જી
0: તો યે તે ફિરોજભાઈ પાલનપુર સે, બહુત હી અચ્છી બાત આપને કહી હૈ. તો દેખિયે પરિવાર મેં અભી એસા હી હો રહા હૈ, માં બાપ બહુત પરેશાન હો જાતે હૈ જબ એક સે દો બચ્ચે. દેખિયે પહેલે આઠ આઠ દસ દસ સંતાને હુઆ કરતી થી, चार पांच भाई चार पांच बहनें, कोई ये नहीं कहता था कि आप उनसे प्रेम करते हो हमसे नहीं करते हो. और जितना उल्टा हम दो हमारे दो चला, तब से ये बातें आने लग गई. हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी नमस्कार मदन।

0: भाई कैसे हो
1: बढ़िया हूँ। रेडियो
0: जी।
1: मधुबन को याद कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं।
0: जी
1: क्या चल रहा है दीदी जी?
0: बस बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है प्रेम के ऊपर। आज का प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। पहले प्रश्न दोहरा देती हूँ, राजस्थान का कौन सा पेड़ हमारी धरती के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसे राज्य वृक्ष का सम्मान मिला है? उसका नाम बताना है, ठीक है? और
1: पेड़ पेड़
0: हाँ जी, पेड़ का नाम
1: का
0: जिसको, हाँ, राज्य वृक्ष का सम्मान मिला है, कौन से पेड़ को सम्मान मिला उसका नाम बताना है। और आज का विषय बहुत ही सुंदर है, प्रेम के ऊपर है कि देखिए, नदी सबको समान पानी देती है, वो बहती रहती है और सभी को पानी देती है। ऐसे नहीं कहती कि मेरा पानी आप पियो, आप मत पियो। पेड़ सभी को छांव देता है, लेकिन एक इंसान ही है जो प्रेम की तुलना करता है। क्या
1: सही
0: कहेंगे
1: बात है।
0: आप?
1: पेड़ पेड़ के पास जाते हैं थकान उतारने के लिए, तो वही छांव देता है और वहाँ बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा सुना है। और पेड़ में तो आशा पालव है और ये ऐसे तो बहुत है, मगर पहले नंबर में तो नीम का पेड़ ही आता है। रबर और अमुक जगह ऊपर जहाँ कोई अच्छी ऑफिस है वहाँ है पाला, ये आला क्या नाम, आशा पालव अच्छा लगता है। और वैसे तो फूल बोल भी बहुत है, और वैसे तो मेरा हिसाब से तो सभी अच्छे ही लगे, मगर बीमारी के लिए तो नीम का नीम ही अच्छा है, वो हर दुख निकालता है।
0: राजस्थान का ऐसा कौन सा पेड़ है जिसको राज्य वृक्ष का सम्मान मिला है? और आज का विषय विषय के बारे में क्या कहेंगे आप?
1: के बारे में अभी
0: जी
1: जी, वो मशीनों की आवाज आ रही है और ठीक
0: चलिए, कोई बात
1: है
0: नहीं,
1: बाबू,
0: आप
1: थैंक
0: जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका।
1: यू।
0: हाँ जी, तो ये थे मदन भाई मेहसाणा से। और बहुत ही, देखिए, विषय आज का मार्मिक है कि आजकल देखते हैं, चलो एक बेटा बहू, चलो दो भाई भी नहीं है, ठीक है, एक भाई एक बहन है, या भले खाली एक ही बेटा है, फिर भी अगर वो बेटा, देखो हर बेटे का फर्ज होता है, जब माँ बाप बचपन से बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसको उस काबिल बनाते हैं कि वो समाज में उठ सके, बैठ सके, दो पैसे कमा सके, और फिर शादी करवाते हैं, और फिर बहू कहती है कि आप तो अपनी माँ से प्रेम करते हो, ये चली मैं। इस वजह से बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं मेरे प्यारे श्रोता बंधु, आधे तलाक तो ऐसे ही हो रहे हैं कि या तो माँ से जबरदस्ती झगड़ने की कोशिश करेगी, अगर बेटे ने माँ का पक्ष ले लिया कि भाई तुम शांत रहो ना, माँ ये दो बात सुन लो ना, तो बस भाई, क्यों माँ की क्यों सुने, आधे रिश्ते इस वजह से खत्म हो रहे कि हाँ आप तो अपनी माँ से ही प्रेम करो, मैं कहाँ, मैं तो बाहर की हूं ना, तो चलो मैं गई अपने घर, और ये निकले साहब, इस तरह भी तलाक हो रहे। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि देखिए, प्रेम का अर्थ समझिए। आज तो एक बेटा या दो बच्चे हैं, उसमें भी ये हाल है, पहले आठ आठ दस दस बच्चे होते थे, लेकिन कभी ये बात जुबा पर नहीं आती कि वो उनसे प्रेम करते या नहीं करते, इतनी इतनी देवरानी जेठानी सभी साथ में रहते थे। हेलो,
1: दीदी
0: हाँ जी, अभय सिंह जी, नहीं,
1: ज्ञानेंद्र का
0: ज्ञानेंद्र जी,
1: फोटो
0: हाँ जी,
1: मुझे
0: हाँ
1: याद
0: जी,
1: किया,
0: ज्ञानेंद्र जी। बस
1: कैसे हैं? हम
0: हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
1: भी बढ़िया हैं। जी
0: बढ़िया, अच्छा,
1: जी बिल्कुल।
0: तो क्या कहेंगे आज के विषय
1: राजस्थान
0: के
1: में एक
0: बारे में?
1: खेजड़ी का वृक्ष है जिसको राज्य का दर्जा मिला हुआ है, राज्य वृक्ष का दर्जा।
0: अच्छा, ठीक है, देखते हैं सही गलत, आप कार्यक्रम सुनिए, हम जरूर जवाब देंगे।
1: ठीक है दीदी,
0: हाँ जी, और आज के विषय
1: ओम
0: के
1: शांति।
0: बारे में कुछ कहेंगे? हाँ जी, हाँ जी,
1: विषय क्या है जो आप बताएं?
0: आज का विषय प्रेम के ऊपर है कि देखिए, नदी सबको समान पानी देती है, वृक्ष सभी को समान छाव देते हैं, कभी ये नहीं कहते कितनी देर बैठोगे मेरे पेड़ के नीचे, कितने जने बैठ रहे हो, लेकिन इंसान है जो प्रेम को बांटने लगा है। क्या कहेंगे आप? फटाफट समय हो रहा है।
1: तो सही बात है, इंसान ही जो है करता है, बाकी तो सब सही है। प्रेम से इंसान नहीं इससे बांध दिया है, तो अपने मतलब के हिसाब से बांधता है, जिससे ज्यादा मतलब है उससे ज्यादा प्रेम से मतलब नहीं रखते हैं उससे, तो बस कोई जरूरत नहीं है उससे कुछ करने की।
0: जी
1: बाकी तो बच्चे को जो है पानी एक जैसा ही मिलता है, मगर उसका स्वभाव है उसके हिसाब से वो करेगा। अब दूध सांप को कितना भी दूध पिलाओ जहर जरूर मिलेगा, तो उसी हिसाब से उसका है अपने मतलब के हिसाब से होता है उसका स्वभाव पता चलते।
0: जी चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। हाँ जी ज्ञानेंद्र जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे ज्ञानेंद्र जी उत्तर प्रदेश से, और आइए बस इस विषय को यही समाप्त करेंगे। कहने का भाव यही है कि सब मिलकर प्रेम से रहिए, माता पिता की भी परीक्षा बार बार मत लीजिए, और सभी को समान प्रेम दीजिए, सभी के साथ प्यार से रहिए रहिएगा। यही आज का खुशनुमा जीवन का राज है। और अब यही पर एक गीत सुन करके पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पे। आप सब मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो पधारिए आशियाना के किचन में पधारिए। भाई श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष में अक्सर हम मीठा तो बनाते हैं, नमकीन भी बनाते हैं, लेकिन मीठे का ज़्यादा ही क्रेज है। नमकीन बने न बने लेकिन मीठा ज़रूर बनना चाहिए। और आज एकादशी भी है, श्राद्ध हो चाहे कुछ भी हो, माताएं बहनें व्रत उपवास करना तो बंद नहीं करती है। तो चलिए मैं आपको राजगीरे का हलवा सिखा देती हूँ, ठीक है, जो श्राद्ध पक्ष में भी काम आ जाएगा और फराल में भी काम आ जाएगा, ठीक है। फिर आप राजगीरे के हलवे के साथ राजगीरे की पूरी, आलू टमाटर की सब्जी या लौकी की सब्जी आप बना करके खा सकते हैं, ठीक है। तो हलवा के लिए आप सामग्री ले लीजिए राजगीरे का आटा, ठीक है, थोड़ा सा मोटा वाला ही लेना है आपको, बारीक नहीं लेना। हलवा के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा थोड़ा सा मोटा होगा ना, हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा। और फिर आप ले लीजिए घी, फिर आपको लेना है ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर, ठीक है। तो ये हो गई सामग्री, राजगीरे का आटा, ड्राई फ्रूट्स, घी, शक्कर, इलायची पाउडर। बनाने का तरीका भी साथ ही साथ सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे कि राजगीरे का जो आटा लिया है उसको छान लीजिए, और अब आप रखिए कढ़ाई गैस पर, घी डालिए। घी गर्म हो जाए तो इसमें आप राजगीरे का आटा डाल करके धीमी आंच पर आप सेकिएगा, ठीक है। धीमी आंच पर सेकना है, जब अच्छी खुशबू आने लगे और कलर चेंज हो जाए तो समझ लीजिए ये आटा आपका सिक गया है। एक तरफ आप थोड़ा सा गर्म पानी कर दीजिए। अब इस गर्म पानी को जब ये आटा सिक जाए तो डाल दीजिए, साथ ही साथ आप ड्राई फ्रूट्स की कतरन भी डाल दीजिएगा और अच्छी तरह हिलाइएगा। जब ये पानी ख़त्म हो जाए तो शक्कर डाल दीजिएगा, शक्कर भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए, उसका पानी ख़त्म हो जाए, फिर गैस बंद करके इलायची पाउडर बुरका दीजिए। तो ये बन गया राजगीरे के आटे का हलवा, बहुत ही स्वादिष्ट। तो कैसे बनाएंगे फिर से विधि दोहरा रही हूँ। कढ़ाई रखिएगा गैस पर, घी डालिएगा, घी गर्म हो जाए तो इसमें राजगीरे का आटा छान करके डाल दीजिए, मोटा वाला लेना है, और धीमी आंच पर इसको सेकना है। जब सिक जाए तो एक तरफ पानी गर्म करिए, उस पानी को आवश्यकता के अनुसार इसमें डालिएगा राजगीरे के आटे में, और जब हाँ साथ में आप ड्राई फ्रूट्स की कतरन डाल सकते हैं। जब पानी सूख जाए तो फिर आप इसमें शक्कर डाल दीजिएगा, शक्कर भी एक रस हो जाए, उसका पानी सूख जाए, फिर आप गैस बंद कर दीजिए और उसके बाद इसमें इलायची पाउडर बुरका दीजिए। तो ये बन गया स्वादिष्ट राजगीरे का हलवा, जो श्राद्ध पक्ष में भी आप ले सकते हैं, नैवेद्य निकालने में भी और उपवास में भी। तो अपने इष्ट देव को भोग लगा करके ही स्वीकार करिएगा। और आइए फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: क्या है माँ जी?
1: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
0: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
1: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
1: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
0: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल, मुझे भी बच्ची ही चाहिए। मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता, आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
0: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद? नहीं ना।
3: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं, तो आप आजमा सकते हैं। गाय का दूध बहुत ही फायदेमंद है और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई। तो रेसिपी में आपको राजगिरे का हलवा बनाना सिखाए, ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था, राजस्थान का कौन सा पेड़ हमारी धरती के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसे राज्य वृक्ष का सम्मान मिला है, उसका नाम बताना है। तो आज हमारे सभी श्रोता बंधुओं ने सही जवाब दिया है, सिर्फ मदन भाई मेहसाना से आपने गलत जवाब दिया है। आपने पहले आसोपालव कहा, फिर नीम का पेड़ कहा, आपका जवाब गलत है। नीम का पेड़ फायदेमंद है, नो डाउट, लेकिन जो राज्य से सम्मान मिला है वो वृक्ष है खेजड़ी। तो आप सभी का जवाब सही है, इसके लिए ढेर सारी तालियां। नाम सुनाना चाहूंगी, नीलम राठी आबू राज से, अरुण भाई कपासन से, सुरेश भाई झोटाना से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, कंचन भाई मंडाली से, अभय सिंह जी जयपुर से, फिरोज भाई पालनपुर से, दयाराम जी रामपुरा से, सुरेश भाई धानेराव से, और ज्ञानेंद्र जी उत्तर प्रदेश से, शोभा सोमानी कपासन से। आप सभी का जवाब सही है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई जोटाना से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, कंचन भाई मंडाली से, अभय सिंह जी जयपुर से, फिरोज भाई पालनपुर से, दयाराम जी रामपुरा से, सुरेश भाई धानेराव से। तो आप सभी के लिए आज का मीठा मोती है, आप किसी भी समस्या के बारे में कितनी भी चिंता करें, पर क्या आपका चिंतन मन उस समस्या का समाधान कर सकता है, सोचिएगा। और अब मैं आपको भजन सुनाऊंगी, लेकिन छोटा सा, क्योंकि समय होने को आ रहा है आपको अगला कार्यक्रम सुनने का, तो मुझे दीजिएगा इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से सुंदर प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM। भजले प्यारे।

0: हैं। जिंदगी की रीत क्या है उसको समझने में न जाने कितने सारे गाने सुनने होते हैं, और तब पता चलता है कि भाई हार के बाद ही जीत है। लेकिन वो हार में कई बार आगे जीत नजर नहीं आती, छिप जाती है बादलों के पीछे जैसे सूरज छुप जाता है। और उसी जिंदगी से प्यार करना हम सीख रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम है लव यू जिंदगी, और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एक्सपर्ट्स। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे ग्लोबल अस्पताल से हमारे साथ जुड़ी है कल्पना जी, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, साथ साथ स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं और हमारी गाइड और दोस्त भी हैं। कल्पना जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि जी, बहुत ही सुंदर टॉपिक्स के साथ आप हर बार आती है और श्रोताओं से मुखातिब होते हुए हमें बहुत बहुत बहुत मजा आता है, तो थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे दूसरे एक्सपर्ट भी। जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं आरजे श्री, जो कि रेडियो के जाने माने आरजे हैं, एंकर हैं, साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है श्रीनिधि जी।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी, कल्पना जी नमस्कार, हमारे सभी श्रोता मित्रों को नमस्कार। वापस फिर लव यू जिंदगी की एक और कड़ी में जुड़ के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम कड़ी से कड़ी जोड़ते जा रहे हैं, तो ये मजबूत कड़ियां बनती जा रही हैं।
0: हाँ, और इस मजबूत कड़ी में आज की कड़ी बड़ी अनोखी है। परिस्थिति आती है और कई बार हम उस परिस्थिति के अनुरूप ढल जाएं, या हम उसको अपने अनुरूप ढाल लें, समझ में नहीं आता। लेकिन सिचुएशंस हम सबकी लाइफ में आती जरूर है। आज चलिए थोड़ी बात उसी के बारे में कर लेते हैं, कैसे हम अवेयर होते हैं या कैसे रेगुलेट भी कर सकते हैं सिचुएशंस को या खुद को, इस गुत्थी को सुलझाते हैं आज। तो कल्पना जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, अगर मतलब अवेयरनेस शब्द जब जुड़ जाता है तो ऐसा लगता है जो दिख रहा है उसके बियॉन्ड कुछ देखना है, क्या सिचुएशंस में भी ऐसा होता है?
1: हाँ बिल्कुल आरुषि जी, अवेयरनेस मतलब जागरूकता। जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं, समझो हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं या कोई परिस्थिति आई है, समझो कि कार चला रहे हैं और एक्सीडेंट ही हो गया है, या फिर हम कहीं होटल में गए हैं खाना खाने के लिए और कोई अच्छी ऐसी बात हो गई जिसको देख के हम थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगा, या कोई ऐसी बात हो गई जो हमें बहुत अच्छी लगी, या कोई समझो सेलिब्रिटी आ गया अचानक और हमारा रिएक्शन, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। आप सब्जी मार्केट में गए हैं और सब्जी खरीद रहे हैं और वहाँ एक दृश्य देखकर आपको अच्छा लगा या बुरा लगा या कोई भी ऐसी चीज। सो हर प्रकार की सिचुएशन में अवेयरनेस अगर हमें है कि ये परिस्थिति किस तरह की है और इस समय मेरा रिएक्शन किस तरह का होना चाहिए, अर्थात परिस्थिति को समझना और उसके साथ जुड़ी हुई प्रतिक्रिया को बैलेंस्ड रखना या उसको संभालना, ये परिस्थिति के साथ जुड़ा हुआ है।
0: ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। परिस्थिति को समझना तब रिएक्शन को समझना, वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है आपने बताया। श्री जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे सिचुएशन अवेयरनेस की बात है तो क्या हम जो समझ रहे हैं उससे वो डिफरेंट भी हो सकते हैं? मतलब हमें दिख रहा है, कोई बोल रहा है, सामने से क्या हो रहा है, मौसम कैसा है, सब कुछ दिख रहा है, हमारे जो सेंसेस है उससे हम समझ पा रहे हैं उस परिस्थिति को, बट क्या कई बार चीजें वैसी नहीं होती जो दिखती हैं, तब अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है, या हर सिचुएशन में ही अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है?
2: ये बहुत ही सुंदर सी बात है कि हम कितना ज्यादा अवेयर हैं चीजों के बारे में। कभी कभार हमारा मूड अगर ठीक है तो मौसम खराब भी है तो भी मतलब हम उस खराब मौसम को भी अच्छा महसूस करने लगते हैं, हाय इतनी अच्छी बारिश आ रही है, ओहो ये काले बादल और वही काले बादल वही बारिश आपका मूड खराब है तो बोले ओहो सच ग्लूमी वेदर आज, तो मतलब मौसम ना बेकार है,
0: काले बादल
2: आजकल क्या मूड ही खराब कर दिया यार, मतलब कोई सनशाइन नहीं। नजरिया है आपका, अवेयरनेस है आप किस नजरिए से उस चीज को देख रहे हो। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, जो दिखता है वो वैसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, जो चीजें वैसी ही है, मगर मैं किस अवेयरनेस से उन चीजों को देखता हूँ वो बहुत मायने रखता है। और इसलिए लाइफ की परिस्थितियां भी ऐसे ऐसे होती है, कभी कभार लोग हमें कुछ चीजें कह देते हैं और कभी जब वो चीजें कहते हैं तो हम उनकी बातों का बुरा नहीं मानते क्योंकि मैं अंदर से मेरी अवेयरनेस कोई और चीज की अवेयरनेस है, और कभी कभार उन्होंने उस भाव से उस चीज को कहा भी नहीं होता और हम कहने लगे तुमने मेरे लिए ये कहा, तुम ऐसी बात कह भी कैसे सकते हो मेरे लिए, तो बोले मैंने कहा क्या था, मतलब ये तो सिंपल सी चीज है। तो ऐसा होता है और इसलिए इन चीजों को समझने की जरूरत है कि जो चीज जैसी दिखती है वैसी हमेशा हो ये जरूरी नहीं, और कभी कभार हमारे मन के भाव उन परिस्थितियों को हमारे देखने का नजरिया जो अवेयरनेस की बात कही जा रही है, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, मैं किस जागरूकता के साथ उन चीजों को देखता हूँ, हमारे आउटकम्स को भी प्रभावित करते हैं। और इसलिए ये समझना जरूरी है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी धारणा क्या है, मेरी अवेयरनेस क्या है इस घड़ी, और उसी के आधार पर बाहर की परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मेरे आउटकम्स को मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ। कम से कम हमेशा ना सही तो कम से कम 50% ऑफ द टाइम्स तो मेरे कंट्रोल में है,
0: मेरे कंट्रोल में है। That's wonderful, क्योंकि मेरी अवेयरनेस के अकॉर्डिंग एक सिचुएशन मुझे अच्छी लग रही है, वही सिचुएशन कल मुझे अच्छी नहीं लग रही है, यानी देयर इज समथिंग एल्स, कुछ और है जो प्रभावित कर रहा है, ये तो श्योर हो गया। कल्पना जी, मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि कई बार लाइफ में परिस्थिति ऐसे आती है कि जो दूसरा देख रहा है उसे लग रहा है कि एक एग्जाम में फेल हो गया, हम भी हुए थे या कोई और भी हो जाता है, happens, थोड़ा डांट देते हैं या आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, उसे लगता है ये बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है, मेरी इंसल्ट हो गई, इतने लोगों के सामने मेरे साथ ये हो गया, और वो उसके लिए बहुत बड़ी बात बन जाती है, शायद वो हैंडल नहीं कर पाए इतनी बड़ी बात। तो ये एक ही परिस्थिति इतनी ज्यादा अलग हो जा रही है, तो इसमें किस तरह की अवेयरनेस चाहिए हमें, जहां हमें ह्यूमिलिएशन फील हो, जहां हमें इंसल्टेड फील हो बहुत ज्यादा।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल आजकल हो गया है। तो जब हम सिचुएशन अवेयरनेस की बात करते हैं तो उसको सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि मैं इस समय कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, क्या परिस्थिति है, उसका अर्थ क्या है, और उस समय मुझे किस तरह का डिसीजन लेने की आवश्यकता है। इस पूरी बातों को मन में कुछ सेकंड्स में कलेक्ट करके उस तरह से एक्शन लेना या प्रतिक्रिया करना। फिर से मैं दोहराती हूँ, मैं इस समय कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, परिस्थिति क्या है, इस परिस्थिति के पीछे लोग जो जुड़े हुए हैं उनकी क्या भावनाएं हैं, इस परिस्थिति में मुझे किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया लगती है, बट हमारे दिमाग में उसके लिए कुछ सेकंड्स में इन चीजों को रिकलेक्ट करने का एक बहुत अच्छा यंत्र उपलब्ध है, मतलब हम कर सकते हैं, क्योंकि हम रोजमर्रा की ये बातें हैं, बट इसमें केवल अवेयरनेस की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम का, बच्चे के एग्जाम का, उसके फेल होने का एग्जाम एक बताया, घटना आपने बताई, उसी घटना को एक पेरेंट जो है वो गुस्से से या नाराज होकर या बच्चे को दोष देकर या उसको ये याद दिलाकर कि तूने पढ़ाई नहीं की ठीक से इसलिए तुम फेल हो गए, ये सब कुछ उस सीन में करने से उस बच्चे को हर्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, वो बच्चा ही में रेट हो रहा है। बट यही सीन अगर हम दूसरे एंगल से देखें, अवेयरनेस के एंगल से देखें, तो इसी परिस्थिति में अगर पेरेंट्स ये सोचे कि अभी एग्जाम हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, जो बीत चुका है उसके बारे में बात करके या याद दिला के कुछ फायदा नहीं है, अब क्या किया जा सकता है, ये सोचकर अगर बच्चे के साथ रिएक्ट करे, तो उसको कहा जाता है अवेयरनेस के साथ। अब बच्चा खुद शॉक में है, ऐसे समय पर माँ बाप भी उसको डांटे, फटकारे या मारे या फिर उसको बुरा भला कहे या उसको याद दिला, इसकी बजाय अगर वो ये कहे कि ठीक है अब तो जो मिले सो मिले मार्क्स, कोई बात नहीं, आगे के लिए तुम अच्छे से पढ़ना और अच्छे मार्क्स ले आना, हम जानते हैं कि तुम अच्छा पढ़ सकते हो, तुम में वो काबिलियत है। अब एक ही सीन में दो प्रतिक्रियाओं के साथ क्या फर्क पड़ा, पहली प्रतिक्रिया जो थी उसमें बच्चा ह्यूमिलिएट हुआ, बच्चा नाराज हुआ, उसका मोटिवेशन कम हुआ और वो उदास हो गया
0: जी।
1: दूसरी तरफ माँ बाप को गुस्सा करने से अच्छा थोड़ी ना लगा, उनकी भी तो मनस्थिति खराब हो गई और उनका भी दिन डिस्टर्ब हुआ। लेकिन दूसरी सिचुएशन में जहाँ वो बच्चे को जो भी मार्क्स मिले हैं, कम मिले हैं, वो स्वीकार करते हुए उसको कहते हैं कि ठीक है अब तक जो भी हुआ कोई बात नहीं, आगे तुम अच्छे से पढ़ना, तो बच्चा भी शांत, बच्चा भी रिस्पेक्टफुल फील किया उसने, उसका मोटिवेशन बढ़ा और पेरेंट्स पीसफुल रहे, तो कितना फर्क पड़ा हमारे। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, जो आगे चल के समझेंगे जब हम धीरे धीरे इस बात को आगे ले जाएंगे,
0: एक्सप्लोर करेंगे। और श्री जी, इसी इंसिडेंट को आगे ले जाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कभी कभी ना हम ये शब्द सुनते हैं कि तुम क्यों बात को बढ़ा रहे हो, तुम क्यों इतना उसमें ज्यादा देख रहे हो, जो है नहीं तुम वो भी देख ले रहे हो, तो बात को बढ़ाना या परिस्थिति को कुछ और समझ लेना। कई बार हम इस तरह की परिस्थिति में है जब बहुत ह्यूमिलिएशन फील कर रहे हैं, इंसल्ट फील कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी परिस्थिति हो जाती है। तो परिस्थिति जो जैसी है वो वैसे ही नजर आए, वो कैसे होता है?
2: ये बिल्कुल ऐसी बात आपने कही है, मेरे को गीता के श्लोक याद आ गए। भगवान गीता में एक जगह कहते हैं कि मैं जो हूँ जितना हूँ उतना मुझे समझ के याद करो, ये बात कही जाती है। हालांकि मैं गीता के ये शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा इतना आसान नहीं होता कि जो जैसा है जितना है उतना उन चीजों को हम माप तोल के समझ कर चले, उस समझ के आधार से चीजों को चले। कि या तो हम चीजों को एग्जैजरेट कर देते हैं, जो दिख रहा है उसको राय का पहाड़ बना देते हैं। हम अक्सर ये कहावतों का इस्तेमाल करते हैं कि वो था छोटी सी चीज और उसको हमने राय का पहाड़ बनाया है। और कई बार हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो पहाड़ जैसी परिस्थिति भी उनके लिए रूई समान होती है कि भैया एकदम हल्के में लेते हैं, अच्छा ठीक है हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं देख लेंगे हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पर वो दो चीजें दिखाई देती हैं कि भाई वो वही चीज है, सिचुएशन वही है, चैलेंज वही हो सकता है, डिफिकल्टी वही हो सकती है, मगर हमारा अप्रोच क्या है उन चीजों के हिसाब से वो चीजें मायने रखती हैं हमारे लिए। तो हमारा माइंडसेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर करता है। और कभी कभार हम देखते ही हैं कि जो जैसा है जितना है उसको हम देखें कैसे। लोग अक्सर इसके लिए अलग अलग अप्रोचेस की बात करते हैं। कभी कभार कॉर्पोरेट जगत में जब हम इन चीजों को देखते हैं, जब हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है या कोई चैलेंज है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, एक रोड ब्लॉक है, किसी प्रोजेक्ट को आप कर रहे हैं, कहीं पर आप स्टक हैं, तो लोग अक्सर कहते हैं कि आप एक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन सोचो कहा जाता है। तो यहाँ लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या, हम बॉक्स से बाहर निकले, क्या हम बॉक्स के अंदर थे जो बॉक्स के बाहर जाने
0: निकले पहले।
2: तो भाव ये है कि क्योंकि हम उस समस्या से, उस परिस्थिति से इतने ओतप्रोत हैं, हम उससे हटकर कोई और चीज सोचना ही नहीं चाहते। हमें ये बताया जाता है कि आप उससे ऊपर उठें, आप उस समस्या से एक ब्रेक लें। कई बार लोग लिटरली ब्रेक्स लेते हैं, ऑफिस से बाहर जाते हैं, या फिर कभी कभार वो लोग एक दो दिन के हॉलिडे पे जाते हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते ही नहीं है, और जब फ्रेश माइंड से वापस आते हैं तब आपके पास समझ में आता है, ओह अच्छा इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो देखने का ढंग जो है, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया दृष्टिकोण, एक होलिस्टिक अप्रोच नजर आता है। और जो समस्या आपको पहले बड़ी लग रही थी, दो दिन बाद आपको लगता है अच्छा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है एक्चुअली, ऐसा लगने लगता है। तो इसके लिए एक सेंस ऑफ डिस्कनेक्ट, एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट डेवलप करना भी आवश्यक है। और गीता में यही चीज कही भी गई है। आप श्रीमद भगवद गीता का एक श्लोक आता है जहां पर भगवान ये बात कहते हैं अर्जुन को कि कैसे आपको काबू करना है इस मन को। तो इसलिए शायद मैंने ये चीज पहले भी बताई होगी, इस श्लोक में आता है कि अभ्यास एन तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास भी चाहिए बट साथ साथ वैराग्य चाहिए। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि मैं घर बार छोड़ दूं, मैं प्रॉब्लम्स को फेस ही ना करूं, मैं भाग जाऊं, मैं बोलूं मेरा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप मुंह नहीं फेर रहे हैं उस चीज से, आप एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट कल्टीवेट कर रहे हैं कि एक सेकंड के लिए मैं सॉल्यूशंस के बारे में नहीं सोचता, एक सेकंड के लिए मैं प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचता, मैं सिर्फ उससे पीछे हटता हूँ, अपने आप को मैं रिलैक्स करता हूँ, अपने आप को मैं शांत मनोस्थिति में ले आता हूँ, अपने आप को उस प्रॉब्लम से हटाकर किसी और चीज में लगाता हूँ जो एक हैप्पी इमोशन है या एक पीसफुल इमोशन है या एक कंटेंटेड इमोशन है, या मैं बगीचे में जाता हूँ, या मैं किसी फूल को, किसी पौधे को देखता हूँ, किसी जानवर को, पालतू जानवर है या कोई पेट है आपका, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वे अपने पसंद का गाना सुनते, कुछ ना कुछ ऐसा करके आप अपने मन को उस चीज से डिस्कनेक्ट करते हो। और तब आप जब वापस उस पे लौटते हो तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। पर्सपेक्टिव अलग नहीं भी होता तो भी आप एक रिलैक्स्ड नजर से उस चीज को देख सकते
0: हैं, देख सकते हैं,
2: आपकी अवेयरनेस में एक शिफ्ट आया है, आप ये महसूस कर सकते हो। ये करना आवश्यक होता है। और जैसे फेलियर्स की बात कह रहे थे, मैंने अपने लाइफ में फेलियर्स देखे हैं, एज अ स्टूडेंट मैंने फेलियर देखा है। हम कॉम्पिटिशन्स अटेंड करते हैं, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हमेशा सक्सेस नहीं मिलती।
0: बिल्कुल।
2: हाँ, कहीं कभी कभार उन फेलियर्स की वजह से मैं रोया हूँ, पेरेंट्स की डांट पड़ी है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। मगर आज जब उन चीजों को पलट कर देखा जाता है तो आज लगता है कि क्या इतनी छोटी बातों पर मैं इतना परेशान हुआ। कभी कभी अपने आप पर हंसते हैं। अगर ये समझ उस घड़ी आई होती तो फिर आपको
0: उतना परेशान नहीं होते शायद।
2: आप बहुत इन्वॉल्व हैं उस चीज में, इसलिए आप फंसे हुए हैं। आपको जकड़न महसूस होती है, आपको लगता है कि अब मैं हिल भी नहीं सकता, तो ऊपर उठना थोड़ा आवश्यक है। और ये ऊपर उठना कोई फिजिकल हॉलिडे या भाग जाने की बात नहीं है, हालांकि श्री कृष्ण के एक नाम के लिए ये नाम भी मशहूर है कि रणछोड़, और उसके लिए भी गाने बने हुए हैं, भजन बने हुए हैं। कभी कभार रण छोड़ना पड़ता है, कभी कभार आपको रिट्रीट करना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है, ताकि आप बेहतर तरीके से उस चीज को समझ सको। हम ये कहते हैं कि जब आप जैवलिन थ्रो करते हैं या शॉर्ट पुट थ्रो करते हैं तो आप थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग जंप या हाई जंप भी लगाना चाहते हैं तो पहले आप थोड़ा पीछे दौड़ते हैं और फिर गति पकड़ के आगे आते हैं,
0: आगे जाते हैं।
2: ये पीछे हटना हार नहीं है, पीछे हटना एक पर्सपेक्टिव लेने के लिए, थोड़ा ऊपर उठना, ये चीज है जो सही चीजों को हमारे सामने अवेयरनेस में शिफ्ट लाने के लिए मदद कर सकता है।
0: मदद कर सकता है, दैट्स ग्रेट एक्चुअली। थोड़ा सा डिटैच होना कैसे मदद करता है वो हमने समझा, प्रोसेस क्या है, कितनी मेहनत है, आसान है, डिफिकल्ट, आई थिंक आगे जानेंगे ये। कल्पना जी की ओर आगे बढ़ते हैं, हम कार्यक्रम की अंतिम घड़ियों में जा रहे हैं। कल्पना जी, आपने जिस तरह से स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल लिया था, मैं थोड़ा सा चाहूंगी अगर आप उसको एलैबोरेट करें, क्योंकि अगर मान लीजिए पेरेंट्स छोड़ भी देते हैं बच्चे को, ठीक है, हम सिचुएशन को समझ रहे हैं, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर उनको लगता है कि स्पॉइल हो जाएगा बच्चा, उसको लगेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं, एंड कोई आदत बन जाएगी, तो क्या परिस्थिति को उतना ही देखना या छोटा करके देख लेना वो नुकसान भी कर सकता है हमको, ऐसा पॉसिबल है?
1: आरुषि जी, बहुत सही जगह पर आपने ये बात को मार्क किया है। एक्चुअली देखिए, वही सिचुएशन अगर हम ले तो किसी भी चीज की प्रतिक्रिया को हम अग्रेशन, एंजाइटी, एंगर, इन चीजों के साथ जब प्रतिसाद देते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो दोनों तरफ नेगेटिव होता है, सामने वाले पर और वो प्रतिक्रिया करने वाले पर नेगेटिव होता है, और नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं हो सकता ना,
0: सिर्फ मैथ्स में
1: हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता है,
0: यहाँ नहीं, लाइफ में नहीं,
1: नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, या हम कहें नेगेटिव इनटू नेगेटिव है,
0: जी जी,
1: तो नेगेटिव रहेगा, डबल नेगेटिव होगा या मल्टीपल नेगेटिव होगा। सो इसीलिए श्री जी की बातों से मैं काफी हद तक सहमत हूँ, बट जब मैं अपने श्रोताओं को देखती हूँ तो श्री जी की बातें थोड़ी सी मुझे कठिन लगती है समझने के लिए, है ना, तो मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ कि क्या है, समझो मैं किसी सिचुएशन में हूँ तो प्रोसेस क्या होनी चाहिए सिचुएशन की प्रतिक्रिया तक पहुँचने से पहले। तो सबसे पहला काम है देखना, देखने को हम कह सकते हैं ऑब्जर्व करना, है ना, तो वो थोड़ा सा पॉज हम वहाँ लेते हैं ऑब्जर्व करते समय। दूसरी स्टेप है समझना, अर्थात सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, है ना। तीसरी स्टेप है एनालाइज करना या अनुमान लगाना कि ये सिचुएशन है क्या, उसको अच्छी तरह से समझकर उसको किस तरह से प्रतिक्रिया करनी चाहिए, उसको एनालाइज करना या अनुमान लगाना हम कह सकते हैं कि क्या करना है, या अवेयरनेस की स्टेज को कहते हैं। तो देखना, समझना, अनुमान लगाना और फिर उचित प्रतिक्रिया देना। ये प्रोसेस माइंड में 10 सेकेंड्स में भी हो सकती है, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस एंड एक्शन, नॉट रिएक्शन।
0: ओके,
1: रिएक्शन जहाँ हम कहते हैं
0: जल्दी आता है
1: तो वो ट्रिगर दूसरे के हाथ में है, रिएक्शन है तो, है ना, एक्शन है तो ट्रिगर मेरे हाथ में है। सो देखना जानकारी है, समझना जागरूकता है, और सही प्रतिक्रिया देना ये समझदारी है। तो समझदारी से काम करना चाहिए। अब आप बताइए, पेरेंट्स का रिएक्शन समझदारी वाला था, गुस्सा करना, या नासमझी वाला?
0: ये बात समझ में आती है, अब आपने ऐसे बताई तो, नहीं तो उस वक्त वो ही वैलिड लगता है, लेकिन ऐसे जब 4 स्टेप लेके समझते हैं तो सही बात है, वो शायद एक रिएक्शन है, वो कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है उसका। कल्पना जी, इस चीज को मुझे लगता है हम आने वाले एपिसोड्स में और भी थोड़ा स्टेप्स को समझना चाहेंगे, फिलहाल लेकिन समय की सीमा में यहीं तक इजाजत देती है, तो क्या जाते जाते हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं ताकि हम उस परिस्थिति में होते हुए भी लिटिल डिटैच, या जैसा आपने कहा वो एक ऑब्जर्व कर सके, पहले स्टेप पे जा सके?
1: जी बिल्कुल, इसकी बहुत सुंदर छोटी छोटी एक्टिविटीज के माध्यम से हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं। आगे के एपिसोड्स में हम इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से विस्तार से डिस्कस करेंगे, लेकिन इस समय जो समय है वो रिलैक्स होकर कुछ अफर्मेशंस को अपने मन में दोहराने का। तो हम अपने श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि 2 मिनट के लिए, केवल 2 मिनट के लिए आप किसी निश्चित स्थान पर आराम से बैठ जाएं, अपने शरीर को रिलैक्स फील करें, गहरी और लंबी सांसें लें, मन और शरीर को ढीला छोड़ते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए मन की आंखों को जगाते हुए जागरूकता के साथ कुछ अफर्मेशंस, कुछ वाक्यों को जो हम सुना रहे हैं उसे अपने मन में रिपीट करें। मैं वर्तमान क्षण में सजग और जागरूक हूं। मैं वर्तमान क्षण में सजग और जागरूक हूं। मैं अपने आसपास की परिस्थितियों को शांत मन से देखती हूं या देखता हूं। मैं अपने आसपास की परिस्थितियों को शांत मन से देखती हूं। केवल मैं परिस्थिति को देखता ही नहीं हूं, परंतु परिस्थिति को समझने की कोशिश करता हूं। यहां पर गहरी और लंबी सांस लें। पहले रिपीट किए हुए 3 वाक्यों को मन में महसूस करें। जागरूकता, शांत मन और समझने का प्रयास, इन 3 शब्दों को अपने मन में दोहराएं। जागरूकता, शांत मन और समझने का प्रयास। गहरी लंबी सांस लें। अगला वाक्य है, मैं तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले रुकती हूं, समझती हूं और फिर प्रतिक्रिया देती हूं। मेरा मन शांत होता है तब वो मुझे सही निर्णय लेने में सहायता करता है। मेरा मन शांत होता है तब वो सही निर्णय लेने में मुझे सहायता करता है। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।
0: एक्चुअली इतना सारा है ये, अगर आप प्रैक्टिस करें तो बहुत सारा सारा बेनिफिट होने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, हमें अभी ही वो महसूस हुआ और इसको रिपीटेडली करेंगे तो हम जो चाहते हैं अपने से वो हम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू सो मच श्रीनिधि जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और दोस्तों फिलहाल वक्त हो गया है आपसे भी इजाजत लेने का। आप भी दिल खोल के एक बार जिंदगी से कह दीजिए कि लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आठवीं तक पढ़ाई की है, आपकी उम्र 60 प्लस है और आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। घर परिवार को तो आप चलाते हैं, अच्छी तरह संभालते हैं, साथ ही साथ बच्चों को भी अच्छी परवरिश दी। कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, गीत संगीत, डांस सभी का शौक है और विशेष करके सत्संग में जाना, भजन कीर्तन करना। वो भी तो कहते हैं ना कि नारी शक्ति में क्या नहीं होता है, नारी शक्ति में हट करके विशेषताएं होती है, तभी तो कार्यक्रम का नाम रखा है वंदे मातरम। तो आइए मिलवाते हैं। हेमलता जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: जी हाँ, धन्यवाद।
0: हेमलता जी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप पहली बार इंटरव्यू दे करके खुश है या पहले कभी दिया?
1: नहीं, पहली बार देके खुश हूँ।
0: अच्छा, चलिए अच्छी बात है, एक नया अनुभव।
1: नया अनुभव है
0: जी। जी तो चलिए आपके बचपन की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं ना, पिचपन में बचपन की बातें करें तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता?
1: मेरा बचपन जोधपुर में बीता और बहुत अच्छा बीता, फ्रेंडों के साथ, सहेलियों के साथ। खूब घनश्याम जी मंदिर और मंदिर में जाके खेलना, कूदना, पढ़ाई करना, सिलाई बुनाई करना, बहुत अच्छा रहा आठवीं तक।
0: जी जी, आपकी चार फ्रेंड है?
1: चार
0: आपने बताया, मेरे चार फ्रेंड के साथ बीता।
1: चार फ्रेंड है मेरे साथ
0: और पांचवे आप?
1: पांचवी में।
0: पांच पांडव। तो चलिए, आप कितने भाई बहन हैं? आपके माता पिता क्या काम करते थे, बताएंगे?
1: मेरे छह भाई हैं और एक बहन हूँ मैं, और मेरे पिताजी रेलवे में चेयरमैन थे।
0: तो क्या बात है, छह भाइयों की इकलौती बहन है आप, तो बहुत ही लाड प्यार मिला होगा आपको तो।
1: हाँ जी, बहुत लाड प्यार मिला,
0: स्वाभाविक है, हर डिमांड आपकी पूरी हुई होगी।
1: पूरी हुई, हर डिमांड पूरी हुई और आज भी हो रही है।
0: क्या बात है, आज भी पूरी हो रही है?
1: हाँ, आज भी पूरी हो रही है।
0: चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, 60 की उम्र में आज भी डिमांड पूरी होना। नहीं तो कहते हैं कि भाइयों की शादी हो जाती, भाभियां आ जाती है, फिर नंदों को भाई फर्क पड़ जाता है देने लेने में, लेकिन आज भी आपकी डिमांड पूरी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, सुनकर के अच्छा लगा।
1: जी हाँ, धन्यवाद।
0: अच्छा तो हेमलता जी, आप बता रहे थे कि छह भाइयों की इकलौती आप बहन है, आप सातों भाई बहन कैसे रहते थे?
1: सातों भाई बहन मिलके रहते थे, सब भाई मुझे प्यार करते थे। मैं चौथे नंबर की थी, तीन भाई मेरे से बड़े हैं, तीन भाई छोटे हैं, मैं पांचवे नंबर की थी।
0: अच्छा, तो फिर आपने पढ़ाई क्यों नहीं की?
1: पढ़ाई इसलिए नहीं की कि छोटे भाइयों को संभालना था, फिर आगे पुराने जन्म पढ़ाते नहीं थे इतना, फिर घर वाले बाहर नहीं निकालते थे, बंदिश बहुत थी, पहला जैसा जमाना अभी नहीं है।
0: इकलौती बेटी है तो चिंता भी रहती थी कि कहीं हमारी बिटिया के नजर नहीं लग जाए।
1: सही बात है।
0: ये तो मजाक थी, खैर माता पिता की जो सोच होती है वो होती है, ऐसा नहीं है।
1: जन्मन का निकालते थे बाहर?
0: जी जी जी, पहले बहुत ही बंदिश होते थे
1: बहुत,
0: पर आप तो जोधपुर जैसे शहर में थे, फिर भी
1: बंदिश थी ना, मेन बाजार में रहते हैं, हमारा मकान सिटी में ही है।
0: अच्छा, आपके पिताजी क्या काम करते थे?
1: मेरे पिताजी रेलवे में फोरमैन थे।
0: अच्छा अच्छा,
1: फोरमैन की पोस्ट पे थे पर।
0: जी जी, तो आपने जैसे आठवीं तक पढ़ाई की, तो आपके टीचर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ कैसा व्यवहार था?
1: अच्छा व्यवहार था मेरा, टीचर के साथ में भी अच्छा था, फ्रेंड के साथ में भी। एक फ्रेंड तो ये बेटी सामने।
0: अच्छा, क्या बात है,
1: दोनों एक ही स्कूल में पढ़े।
0: तब तो आपके फ्रेंड का भी जरूर लेंगे, हम बात करेंगे आपके फ्रेंड से भी। हेमलता जी के फ्रेंड है, यही साथ में बैठे हैं, तो इनसे भी बात करेंगे, पहले हम हेमलता जी के अनुभव सुनेंगे। तो हेमलता जी, आप बता रहे थे कि बहुत ही अच्छा बचपन आपका गुजरा है, बीता है। आपके जमाने में कौन से गेम खेला करते थे?
1: हमारे जमाने में खो खो, चंगा पो और आंख मिचोली, सतोलिया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल।
0: अच्छा, ये सारे गेम होते थे, आपने किसी में पार्टिसिपेट किया?
1: मैंने वॉलीबॉल में फर्स्ट डिवीजन आई।
0: क्या बात है, कौन सी क्लास में?
1: सेवंथ में।
0: फिर एट में भी गए?
1: एट्थ में नहीं गई थी फिर।
0: तो सेवंथ में फर्स्ट आई तो एट में क्यों नहीं गए?
1: एट्थ में नहीं गई ना, मेरी तबीयत खराब होने लग गई थी, बीमार बहुत रहने लग गई थी मैं, फिर इसके कारण मैंने स्कूल छोड़ दिया था आठवीं पास करके।
0: अच्छा अच्छा, तो सातवीं तक आप वॉलीबॉल खेलते थे?
1: वॉलीबॉल खेले, अभी भी है मेरे पास।
0: अभी भी वॉलीबॉल रखा हुआ है?
1: नहीं, वो कार्ड रखा हुआ है ना, जो फर्स्ट मिला था
0: सर्टिफिकेट
1: और इनाम।
0: जी जी, सर्टिफिकेट तो वो कहते हैं ना कि प्राणों से भी प्यारा होता है।
1: प्राणों से भी प्यारा होता है, दिखाना पड़ता है ना भाई।
0: अपने पास सुरक्षित

0: रहना चाहिए
1: चाहिए। टीसी के साथ में ही देते हैं ना वो तो स्कूल में।
0: जी जी, तो आपने उसको संभाल के रख रखा, कभी काम आया?
1: कभी काम आता ही है ना, अभी तो किसी में काम लिया नहीं है मैंने।
0: अच्छा, चलिए, फिर भी एक मन को खुशी प्रदान करता है
1: ना, कभी मैंने जीता ही है।
0: जी जी, देखते हैं तो बातें याद आ जाती है स्टूडेंट लाइफ की,
1: लाइफ की।
0: अच्छा, और साथ ही साथ आप कह रहे थे गीत संगीत का शौक है, तो आप पढ़ाई करते थे तब गीत संगीत बोलते थे?
1: उस टाइम तो गाने ही चलते थे, भजन तो चलते नहीं थे। जब रेडियो रेडियो चलता था तो रेडियो में गाने आते थे तो वो मैं करती रहती थी साथ साथ, तो वजह से याद रह गए सारे।
0: नहीं, स्कूल में कौन से गीत गाते थे आप?
1: स्कूल में तो वही स्कूल के राष्ट्र गीत और सरस्वती के ऊपर और
0: जी जी देशभक्ति गीत, बहुत सारे गीत गाते हैं।
1: जैसे ये मनाते हैं ना सरस्वती का फंक्शन बसंत पंचमी के दिन, उस पे भी प्रोग्राम में भाग लेती थी सब कुछ नाच कूद में। और
0: तो चंदेलाइना सुनाएंगे आप?
1: हाँ, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही, जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सका।
0: जी जी जी, तो ये प्रार्थना बोलते थे आप?
1: प्रार्थना बोलते थे।
0: और आप किसमें भाग लेते थे?
1: बस ये खो खो में और वो बताया ना मैंने वॉलीबॉल में, और उसमें भाग लेते।
0: जी जी, बहुत बढ़िया। तब तो आप कह रहे थे एट में आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया
1: था, इसकी वजह से फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी।
0: तो आप तो अच्छे प्लेयर रह चुके, फिर स्वास्थ्य कैसे ऊपर नीचे हो गया?
1: डिप्टेरिया हो गया था, फिर गला बंद हो गया था मेरा, तो आवाज भी नहीं आती थी मैच, पर फिर पढ़ाई कैसे करती। मैं 3 महीने तक एडमिट रही थी हॉस्पिटल में। फिर मेरा ठीक हुआ, फिर पापा मम्मी ने कहा अब नहीं पढ़ाना बोले।
0: अच्छा, इसी वजह से आपकी पढ़ाई
1: रुक गई मेरी, नहीं तो मैं आगे पढ़ने के लिए तैयार थी।
0: जी जी जी,
1: मजबूरी थी मेरी, मेरी बीमारी के कारण मैंने पढ़ाई नहीं करी थी।
0: पढ़ाई में आप कैसे थे?
1: अच्छी थी, फर्स्ट डिवीजन आती थी हर विषय।
0: तो आपको बहुत दुख हुआ होगा पढ़ाई छूट गई?
1: पढ़ाई छूट गई तो मेरे को दुख हुआ था ना, आज मैं कहाँ की कहाँ पहुँचती थी।
0: स्वाभाविक है। जी जी जी, हर एक के सपने होते हैं। जी, तो हेमलता जी आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चला एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई। चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टर नी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टर नी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
0: जी वो अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: नारी की लचक में करुणा है, पर उसके हौसलों में धार है। हर युग में उसने साबित किया नारी ही असली शक्ति का आधार है, नारी ही असली शक्ति का आधार है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। आपके काफी अनुभव बचपन के हमने सुने हैं, आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। हेमलता जी पुनः स्वागत है आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
4: तो आपकी बचपन की बातें चल रही है, कैसा लग रहा है?
5: बहुत अच्छा लग रहा है। याद आ रहा है बचपन भी।
4: जी बचपन याद आ गया। तो आप बता रहे थे कि आप प्रार्थना भी बोलते थे, आप काफी बीमार हो गए इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए, तो जब आपकी तबीयत ठीक हुई तो फिर आपने कोशिश नहीं की कि अब मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूं?
5: नहीं, कोशिश तो करी थी, पर घर वाले इतना लाड़ प्यार करते थे तो भेजने के लिए मना कर दिया। बोले नहीं, एक एक बच्ची और तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन संभालेगा।
4: अच्छा, इसलिए आपको भेजा नहीं?
5: इसलिए भेजा नहीं।
4: कभी कभी ऐसा हो जाता है, ओवर लाड़ प्यार मिलता है तो पढ़ाई आगे नहीं पढ़ पाते हैं।
5: सही बात है।
4: तो उस समय आपको कैसा लगा जैसे आगे नहीं पढ़ाया आपको? ठीक है,
5: दुख हुआ ना उस समय कि भाई मैं और पढ़ती पर घर वाले लाइक नहीं कर रहे थे, क्या कर।
4: और उस समय बचपना होता है, इतना सीरियसली नहीं लेते, वो तो जब एक एज होती तो पता चलता है पढ़ाई क्या है।
5: वो तो आगे बढ़ने के बाद अब महसूस हो रहा है हमको, आगे बढ़ते तो और कहीं पहुंचते, सर्विस करते, टीचर लाइन में जाते और कहीं जाते।
4: जी जी जी, हर एक का सपना होता है,
5: मजबूरी थी ना हमारी, क्या करें।
4: जी कोई बात नहीं, अब तो आपकी 60 की उम्र हो गई है और आप भूल भी गए होंगे उन बातों को।
5: बातें भूल गए, अब तो यही याद आता है, और सत्संग का।
4: जी जी, सत्संग का याद आता है। सही बात है, कहते हैं एक वानप्रस्थ अवस्था आती है, एक उम्र जब बढ़ती है तो अपने आप ही मन ईश्वर की तरफ लग जाता है, तो आप भी सत्संग की तरफ ज्यादा रुचि रखने लगे। अच्छा चलिए ये बताइए, जैसे आप बता रहे थे आपके 6 भाई है, आप इकलौती बहन है, तो भाई बहनों के साथ आप कुछ खेलते थे? खेल
5: खेलते थे ना, घर में खेलते थे भाई बहनों के साथ।
4: अच्छा, तो कौन सा खेल हमको भी पता चले उस समय क्या?
5: उस समय तो यही थे ना, आंख मिचोली, छुपा छुपी और खो खो खेलना, चंगा पो खेलना, भाइयों के रात में बैठ के खेलते थे बस, दिन में तो टाइम मिलता नहीं था।
4: तो आप मम्मी को हेल्प कराते थे घर के काम में?
5: घर के काम में हेल्प कराती थी, जब तो कोई बहू नहीं थी, मम्मी और हम ही थे अकेले।
4: जी जी, फिर आपके सामने ही भाभियां आ गई होगी?
5: मेरे सामने 3 भाभियां आ गई थी, उसके बाद मेरी शादी हुई।
4: जी जी, तो भाभियों के साथ कैसा व्यवहार रहा?
5: अच्छा व्यवहार, भाभियां तो बहुत प्यार करती थी, बहुत, मेरे कपड़े तक मेरी भाभी ही धोती थी शादी होने के बाद में भी।
4: जी जी जी, इकलौती ननंद है, सभी का प्यार मिला?
5: सभी का प्यार मिला, कभी कोई कभी कोई कभी वो।
4: जी, और वो कहते हैं ना कि भले कितनी भी बेटी प्यारी हो लेकिन माताओं की आदत होती है बच्चों को शिक्षा और संस्कार देना, तो ससुराल जाएगी तो ये वो, तो आपको भी आपके मम्मी बीच बीच में शिक्षा संस्कार देते थे?
5: देते थे, घर का काम कराते थे, सिखाते थे, रोटी बनाना सिखाते थे, सब्जी रोटी चाय पानी सब मम्मी ने सिखाया था, भाभियों ने सिखाया, जब आज हम सही है यहाँ पे।
4: जी जी, और सिलाई कढ़ाई बुनाई ये कहाँ सीखी?
5: ये यही आके सीखा सारा। अच्छा, स्कूलों में सिखाते थे ना सिलाई के लिए बड़ाई, वो तो सब कागज के वो बनाने सब स्कूलों में सीखा था।
4: अच्छा, तो स्कूल में सीख करके फिर आप घर पर बनाते थे?
5: घर पे बनाए, थैलिए बनाई, कसीदे की और सब कुछ बनाए, बैग बनाए और सामान बनाए।
4: जी जी जी, और आप कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
5: मैं 18 या 19 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी, 8th में।
4: 8वीं पास होने के बाद आपकी शादी हो गई?
5: मेरी शादी हो गई थी।
4: तो आपको बीच में गैप नहीं मिला थोड़ा घर पर रहने का?
5: नहीं, वैसे तो गैप मिला ना, उस समय तो मैं 15-16 साल की थी आंटी में पड़ी जब, फिर 2 साल मेरे को घर पे रेस्ट करवाया ना, बीमार थी जो, उसके बाद बोलेगा अब शादी कर देते हैं, इसकी पढ़ाई कर देते हैं, ये तो और कुछ हो जाएगा इसको, ऐसा सोचते थे घर वाले,
4: पढ़ाई कर देंगे तो कुछ नहीं होगा।
5: ऐसा पुराने जमाने में ऐसे लोग सोचते थे ना, तो फिर 80 में मेरी शादी हुई थी।
4: अच्छा, तो 80 में फिर आपकी शादी हो गई?
5: 1980 में मेरी शादी हुई थी।
4: तो शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए?
5: शादी के बाद तो वही गृहस्थी संभालो, घर का काम करो, बच्चों को संभालो।
4: नहीं, बच्चे तो बाद में हुए होंगे, आपके हस्बैंड क्या काम करते थे?
5: हस्बैंड प्रिंसिपल है।
4: अच्छा, प्रिंसिपल है, मतलब आपका सपोर्ट करते थे?
5: हाँ, बहुत सपोर्ट करते हैं, आज भी करते हैं, अभी भी करते हैं, सब में सपोर्ट करते हैं।
4: और घर में उस समय कौन कौन थे जब आप शादी करके आए? तब
5: मैं शादी करके आई जब मेरी जेठ जेठानी और हम दोनों, मैं और मेरा हस्बैंड, 4 जने थे।
4: सास ससुर नहीं थे?
5: ससुर नहीं थे मेरे,
4: पहले ही उनकी डेथ हो गई थी।
5: पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, मेरे हस्बैंड 12 महीने के थे जब ही उनकी डेथ हो गई थी।
4: सास ससुर दोनों की?
5: सास तो थी, ससुर पहले गुजर गए थे, फिर इन्होंने पढ़ाई करी जब सास भी गुजर गई थी, एसटीसी करी माउंट आबू से, फिर जब सास गुजर गई थी फिर इनकी नौकरी लग गई एसटीसी करने के बाद, फिर हमारी शादी हुई।
4: तो फिर आपके जेठ जेठानी ने आपका सारा काम किया?
5: सारे काम उन्होंने किया, जेठ जेठानी।
4: जी जी,
5: वही सास ससुर के बराबर ही है मेरे।
4: जी जी, आपने तो उन्हीं को देखा है।
5: उन्हीं को देखा है मैंने, यही है सास ससुर।
4: बिल्कुल, समझदार के लिए तो यही है,
5: यही है। हम कहाँ जाएंगे, नहीं तो किसके यहाँ जाएंगे, शादी करी तो उनको ही सम्मान देना है ना।
4: सही बात है। आप जैसे शादी करके अपने ससुराल में आए तो आपने देखा कि जेठ जेठानी आपके सास ससुर है, तो कैसे रहते थे आपस में, रिश्ता कैसा रहा आपका आपके जेठ जेठानी के साथ?
5: हमारा दोनों का रिश्ता अच्छा रहा था, आपस में साथ में ही निभाए 20-25 साल तक। फिर वो पोस्ट मास्टर थे तो इनका बार बार ट्रांसफर होता था जेठ जी का, तो फिर मेरे को अकेला ही रहना पड़ता था इनके साथ में। उनके भी बच्चे नहीं है, जेठ जी के भी एक ही लड़की थी जो उसकी शादी कर दी।
4: अच्छा, और आपके कितने बच्चे हैं?
5: मेरे 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं।
4: 4 बच्चे हैं।
5: 4 बच्चे हैं।
4: जब आप शादी करके आबू में आए, एक तो जोधपुर इतना बड़ा शहर, फिर जोधपुर से आप एक कस्बे में आए, तो यहाँ आपका मन लग गया?
5: नहीं लगा था मन, बहुत अभी तो बहुत अच्छा हो गया, पहले तो वीरान था पूरा। मैं शादी करके आई जब कुछ भी नहीं था, और मैं तो देख देख के रोती थी, खाना भी नहीं खाती थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ यहाँ पे, मेरे को तो जोधपुर छोड़ के आओ, ऐसे करती थी। फिर धीरे धीरे सेटल हुए, फिर ये नौकरी पे जाते, फिर मैं अकेली रहती दिन भर, जब तो बच्चे ही नहीं थे और नई नई किससे बात करूं मैं, तो मैं अकेली कमरा बंद करके बैठी रहती थी, रोती थी अंदर ही अंदर।
4: आपके माता पिता ने ये नहीं देखा कि बच्ची इतनी लाड़ प्यार से पली हुई है, एक गांव में दे रहे हैं, उस समय आज तो फिर भी कस्बा है, उस समय तो आप कह रहे हैं कि वीरान था, तो उस समय कुछ था नहीं, तो उनको थोड़ा सा ये नहीं लगा कि बच्ची कैसे सेट होगी वहां?
5: उनको बहुत लगा था, उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया था, 4 बार रिश्ता तोड़ा है 4 बार।
4: अच्छा,
5: मेरी मम्मी ने तो बिल्कुल कह दिया मेरी एक ही लड़की है, मैं बाहर नहीं दूंगी, रोने लग गई थी वो भी, पर अब किस्मत ने यहाँ लाया साथ तो फिर क्या करे, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं बाहर नहीं दूंगी।
4: जी जी, फिर कैसे हुआ यहाँ पर आपके पिताजी?
5: अगले ने भी जिद करी, इन्होंने भी जिद करी कि नहीं हमको लड़की यही पसंद है, हम तो यही करेंगे।
4: और आपके पिताजी भाई लोग का फोर्स था क्या?
5: सपोर्ट दिया ना, फिर क्या करें कि भाई करो, जिद कर रहे तो। बाकी मेरे खानदान में कोई बार नहीं है, मैं अकेली बार हूँ।
4: तो उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया रही?
5: उस पुराने जमाने में तो हमसे बात ही कहाँ करते थे पहले, वो तो बड़ों ने जो कर दिया वो सही है, हमने ना आदमी को देखा ना किसी को देखा।
4: अच्छा, देखने का सिस्टम था ही नहीं, तो देखा ही नहीं।
5: मेरी शादी के टाइम तो सिस्टम था ही नहीं, पूछते ही नहीं थे।
4: जी जी जी, बस जो बड़ा ने किया वो पत्थर की लकीर,
5: पत्थर की लकीर हो गई।
4: तो जब आप यहाँ पर आए, आपने देखा कि वीरान है, मतलब मन नहीं लग रहा है, तो आपके हस्बैंड से आपने बात नहीं की कि कहीं अच्छे शहर में सेट हो जाए?
5: नहीं तो नौकरी का इशू था ना भाई, बाहर नौकरी तो यहीं लगी हुई थी ना, फिर बार बार इनके ट्रांसफर होते रहते थे, तो फिर ये अप डाउन करते थे पास में, अलादरा है जैसे, आतल है, चार पांच जगह इन्होंने नौकरी करी, फिर मावल, ये तो मावल तो आबू रोड में ही था जो चल गया।
4: जी जी, छोटे छोटे गाँव में,
5: गाँव में डीन की प्रमोशन होता रहता था बार बार।
4: जी जी, इसलिए आप जा नहीं पाते, बड़े शहर में हो तो आप चले जाओ।
5: चली जाती, नहीं तो मैं छोटे शहर में मैं क्या करूंगी जाके, जब एक जगह ही अपना रहना है तो। फिर दो बच्चे छोटे थे दोनों, एक इनको लेके कहाँ घूमती इधर उधर।
4: और आपके जेठ जेठानी बाहर रहते थे?
5: जेठ जेठानी का ट्रांसफर हो जाता था हर तीन साल में, तो फिर वो बाहर जाते थे, तीन साल यहाँ रहते, तीन साल बाहर रहते थे।
4: अच्छा, इसलिए आप बिल्कुल ही अकेले रह जाते
5: हो? गई थी मैं बिल्कुल, छोटे से घर में रहती थी फिर।
4: तो आपके जेठ जेठानी को बोला नहीं कि मैं अकेले, मतलब मेरा मन नहीं लगता है कि आप लोग ट्रांसफर मत होना?
5: कभी तो मजबूरी थी ना, नौकरी थी, उनकी भी तो ट्रांसफर होता था ना, उनके तीन साल फिक्स होते थे, हर तीन साल में ट्रांसफर हो जाता।
4: जी जी, तीन साल में आपको जाना ही है,
5: चाहे आप कैसे भी रहो।
4: जी जी, और जैसे आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई आती थी, तो आप अकेले पढ़ते थे कि जैसे आपके हस्बैंड जॉब पर चले जाते थे, आप अकेले हो घर में, तो आपने कैसे समय व्यतीत किया? इन चीजों में ध्यान दिया, सिलाई कढ़ाई बुनाई में, भजन सत्संग में, या फिर कैसे? आप भाई रोज अकेले रहना, रोना, वो तो अच्छी बात नहीं है।
5: नहीं तो घर का काम तो करना पड़ता था ना मेरे को पीछे, जैसे घर का काम करना, बच्चों को रखना, सिलाई ऐसे ये स्वेटर वेटर बना लेती, टोपे मोजे और ये बनाती बैठे बैठे सर्दी में, फिर बच्चों को रखना भी तो मेरे को ही पड़ता, जब इनको सुला के फिर घर का काम करती। पहले नौकर चाकर कहाँ थे, कोई संभालने वाला भी नहीं, सास नहीं, जेठानी नहीं, ननद नहीं, कौन संभालता?
4: जी बिल्कुल, तो इन चीजों में ध्यान दिया, और जरूरी भी है, और बच्चे होते हैं जिस घर में, वहां तो टाइम कैसे बीतता पता ही नहीं चलता,
5: इसीलिए मैंने बच्चों के साथ ही जिंदगी लगाई। फिर धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाने लगी बच्चों को, छोटे बच्चों को, पांचवी तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, तो दिन उसमें पूरा हो जाता था मेरा।
4: क्या बात है, आपने आठवीं तक पढ़ाई की, और आज के युग के पांचवी तक के बच्चों को आप पढ़ा लेते?
5: पढ़ा लेती थी सारा,
4: क्योंकि आपके समय में तो इतनी अंग्रेजी नहीं थी।
5: मैं तो अंग्रेजी मीडियम से ही पढ़ी हुई हूँ आठवीं तक, तो मेरे को इंग्लिश तो बहुत अच्छी आती है।
4: अच्छा, चलो ये आपका अच्छा रहा। तो आप फिफ्थ तक के बच्चों को आराम से पढ़ा लेते?
5: पढ़ा लेती थी, पहले तो इतनी हाई फाई किताबें नहीं थी ना छोटे बच्चों की, पांचवी तक तो नॉर्मल ही था, इंग्लिश भी कहा एबीसीडी और यही होते थे, स्पेलिंग है वही होती थी, अब ये कोर्स तो अब भारी हुआ है।

हाँ जी हेमलता जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर समय हो चला है एक ब्रेक लेने का, तो एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं। बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना है, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना है, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: ममता की मूरत भी वही, शक्ति का स्वरूप भी वही। ममता की मूरत भी वही, शक्ति का स्वरूप भी वही। नारी को कमजोर कहने वालों, नारी को कमजोर कहने वालों, हिम्मत करो, पहले उसे समझो तो सही। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। हेमलता जी के काफी अनुभव हम सभी ने सुने हैं, आइए इसी कड़ी में और भी इनके अनुभव सुनेंगे। तो हेमलता जी, आप जैसे बता रहे थे कि आप अकेले पड़ जाते थे, तो पहले तो आपने शुरुआत में तो आप अकेले बैठ करके थोड़ा उदास होते थे, थोड़ा रोना भी आ जाता था, फिर आपने क्या सोचा कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं, सिलाई कढ़ाई बुनाई करूं, तो ये किसी ने आपको कहा या अंदर से आपको सूझा?
3: नहीं, मेरे अंदर से ही सूझा था कि मैं अकेले किससे बात करूं। मैं राजस्थान से आई हुई यहाँ अब रोड में, फिर मैं किसी को जानती नहीं थी, ना किसी से बात करती थी, तो फिर अंदर ही अंदर मैंने यही सोचा कि बच्चे आएंगे तो मैं उनके साथ मनोरंजन भी कर लूंगी।
2: अच्छा सोचा, तो आपने सबसे पहले अपने हस्बैंड से बात की होगी?
3: हाँ, हस्बैंड से बात की ना, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यही चालू कर दो, मैं पीछे रहता नहीं हूँ घर पे, और अकेली पड़ जाती है तो फिर साथ में यही।
2: तो इस तरह आपने ट्यूशन की शुरुआत की?
3: शुरुआत
2: जी। बच्चे आपके कितने साल बाद हुए?
3: बच्चे मेरे एक साल बाद हो गए थे, 81 में बड़ा वाला हो गया था।
2: और एक साल तो कहते हैं ना, ससुराल पियर आने जाने में भी समय,
3: आने जाने में ही बीत जाता है एक साल, तो फिर मेरे हो गया था।
2: जी जी, तो हाँ, आने जाने में कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। फिर थोड़े बहुत आपके जेठानी भी रहे होंगे?
3: जी हाँ, साथ में रहे ना वैसे तो।
2: जी, तो जैसे आप बता रहे थे कि आपकी 18-19 साल की एज में शादी हुई, आपको सारे काम आते थे या आपकी जेठानी ने सिखाया यहाँ पर?
3: ना, यहाँ आके सीखी थी मैं, मेरे को साड़ी पहननी नहीं आती थी, सब उन्होंने सिखाया मेरे को। अब पढ़ाई करते हुए अपन साड़ी कहाँ पहनते हैं, वही सलवार सूट और जीन्स टॉपर और यही पहनते थे, तो साड़ी मैंने यहाँ आके सीखी।
2: जी जी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पहले उनका अनुभव नहीं होता है, बाद में ही होता है। जब हम कहते ना कि जमीन पर उतरते हैं और जब घर गृहस्थी में रचते पचते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पर सीखी। तो जैसे आप कह रहे थे कि कढ़ाई बुनाई, ये आपने मायके सीखा है या सीखा?
3: ये तो मैं स्कूल में सीखी थी सारा।
2: हाँ जी हाँ जी, आपने स्कूल का बताया था। और आपने बच्चों का ट्यूशन, आपके बच्चा हो गए उसके बाद शुरू किया या पहले ही शुरू कर दिया?
3: नहीं, पहले ही शुरू कर दिया था।
2: तो बच्चे लोग आते थे?
3: आते थे, छोटे बच्चे आते थे ना, सब आते थे।
2: तो इसकी एड कैसे की आपने?
3: एड तो जब तो मैं फ्री थी ना उस समय, फिर बच्चा होने के बाद वापस बंद कर दिया था, फिर थोड़े बड़े हो गए 2-3 साल के, फिर वापस चालू कर दिया।
2: जी, लेकिन कैसे लोगों को पता चला कि आप ट्यूशन पढ़ाते हैं?
3: वो तो टीचर थे ना हमारे घर से, तो उन्होंने बताया, और मोहल्ले में भी पता था सब कि भाई इनके घर से प्रिंसिपल है, तो वो आते थे पूछने मोहल्ले वाले और क्या पढ़ा दोगे क्या। पुराने जमाने में तो इतना ट्यूशन का कहाँ था, पहले छोटे बच्चों को घर पे ही भेजते थे।
2: जी जी, ट्यूशन का इतना क्रेज नहीं था, लेकिन
3: अब तो उसमें जाते हैं सब लाइब्रेरी में, तो घर वाले को कौन पूछे, पढ़े लिखे ऐसे ही बैठे रहते।
2: जी जी, तो आपका टाइम पास हो जाता था और आपकी भी पढ़ाई वापस रिपीट हो जाती थी।
3: जी हाँ, वापस रिपीट हो जाती, वो नॉलेज भी रहता ना कोई चीज का पढ़ाने से, कि भाई इसको ये पढ़ाना, इसको ये पढ़ाना।
2: जी, और आपके जैसे बता रहे थे कि आपके चार बच्चे हैं, तो कैसे आपने बच्चों की परवरिश की अकेले हाथ, क्योंकि आपके जेठानियां रहते नहीं थे, अकेले आपको रखना, आपके हस्बैंड भी पूरे दिन झोप पर रहते थे, तो कैसे उनका पालन पोषण किया आपने?
3: मेरा बड़ा वाला तो जोधपुर हुआ था, तो 5-6 महीने तो मैं उसको वहीं से करके लेके आई थी, फिर यहाँ आके फिर जेठानी ने थोड़ा रखा, थोड़ा हमने संभाला, ऐसे करके साल भर का हो गया वो बड़ा। फिर धीरे धीरे परवरिश करती रही, फिर 83 में दूसरा नंबर का लड़का हुआ, 83 में, और 90 में दोनों गुड़िया हुई, ट्विंस।
2: अच्छा, ट्विंस हुई?
3: ट्विंस हुई दोनों मेरी गुड़िया।
2: ओ, ट्विंस को तो रखना बहुत मुश्किल है।
3: तो फिर काम वाली भाई रखी थी ना, मालिश वाली और सब, फिर दो को तो मैं कैसे संभालती, मेरे पास कोई है ही नहीं, कोई सास नहीं, कोई देवर नहीं, कोई जेठ नहीं।
2: बहुत जने क्या करते, ट्विंस होते तो एक को पियर छोड़ देते, एक को अपने पास रखते, तो आपने ऐसा तो नहीं किया?
3: नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने मेरे बच्चों को मैंने ही परवरिश की दोनों की।
2: आपके पियर वालों ने तो कहा होगा एक बच्चे को छोड़ दो।
3: आई थी ऐसे तो मम्मी आई थी रहने के लिए, भाई 2-4 महीने रहती फिर चली जाती, फिर आती फिर चली जाती, उनका भी बुढ़ापा था तो फिर इतना सहन नहीं होता ना। फिर मैं काम वाली लगा दी थी मेरे, वो रखते थे फिर सब, और दोनों बच्चे संभालते थे गुड़िया को जब मैं खाना बनाती।
2: जी, आपके दोनों बेटे थोड़े बड़े हो गए?
3: बड़े हो गए थे ना मेरे, एक 8 साल का था, एक 10 साल का था, तो दोनों में उनमें ज्यादा फर्क नहीं रहा, उनमें 2 साल का ही डिफरेंस था, 2 साल बाद दूसरा हो गया था, इनमें ज्यादा 10 साल का डिफरेंस रहा था।
2: अच्छा, दोनों बेटियां जो हुई और बेटा के बीच 10 साल का गैप?
3: 10 साल का गैप है, ये 90 में हुई थी, वो छोटा वाला 83 में हुआ था, और बड़ा वाला 81 में हुआ था, तो 2 साल का उनके गैप रहा, और इनके साथ 10 साल का रहा।
2: तो बच्चे थोड़े रखने जैसे हो गए, बड़े हो गए?
3: बड़े हो गए थे रखने जैसे, तो दोनों गुड़िया को रखते थे, स्कूल भी जाते थे बच्चे दोनों।
2: जी जी जी, हाँ स्कूल भी जाते थे, फिर वो जाते थे उस समय आप रखते, आपने वैसे काम वाली माई लगा रखी थी?
3: रखी थी, और फिर इसके पापा भी जाते सुबह, उनका टिफिन बना के देना, काम तो बहुत मजबूरी से बहुत दुखी से कराए, आज कहीं जाके सुख आया है।
2: कहते हैं ना दुख सुख जीवन के साथ चलता है,
3: जोड़ा होता है ना दोनों का ही।
2: जी जी, चार बच्चों के खैर अकेले हाथ परवरिश करना बहुत ही मुश्किल होता है, और फिर आप इतने लाड़ प्यार से पियर में पले हैं तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना घर में भतीजे भतीजे को बड़ा किया हो, तो उनके लिए थोड़ा सरल है?
3: सरल है ना, कराना बड़े को भतीजे भतीजे, 3 की शादियां हो गई थी मेरे से पहले, तो उनके भी तो बच्चे थे ना, उनको संभालना, सारा घर का काम देखना सब करती थी मैं,
2: तो फिर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस थी?
3: प्रैक्टिस थी मेरी कि भाई बच्चों को कैसे संभालना है,
2: इसलिए इतना मुश्किल नहीं लगा।
3: इतना मुश्किल नहीं लगा, गृहस्थी संभालना मुश्किल नहीं लगा।
2: जी जी, लेकिन जब टिफिन बनाना होता है एक साथ में बना के देना पड़ता, उस समय मुश्किल होता?
3: उसके में तो मुश्किल ही भाई, बनाना तो अपने को ही है ना, दूसरा थोड़ी बनाएगा।
2: बिल्कुल, 3 जनों का टिफिन, फिर 2 बच्चों को संभालना,
3: बच्चों को संभालना सारा।
2: जैसे आपने कहा कि काम वाली बाई लगाई आपने, तो काम वाली बाई क्या करते थे, बच्चों को खिलाने के लिए लगाई या घर के काम में?
3: दोनों काम करती थी काम वाली बाई, बच्चों को भी रखती थी और घर का काम भी करती थी, पूरे दिन के लिए लगा रखी थी, जैसे बच्चे सो रहे तो भाई घर का काम कर लेती, बच्चे उठ गए तो उनको संभाल लेती, एक को मैं संभाल लेती, ऐसे करके 5 साल तक उनको बड़ा किया। 2 साल तक तो मैं पियर ही नहीं गई, बाहर ही नहीं निकली घर से, 2 बच्चों को लेके कैसे जाऊं।
2: तो फिर आपके पियर वाले मिलने आते आपसे?
3: आते थे ना पियर वाले मिलने आते थे, कभी भैया भाभी आ जाते, कभी मम्मी आ जाती, कभी कोई आ जाता।
2: पर आपके तो जैसे हस्बैंड के प्रिंसिपल की जॉब थी, तो छुट्टियों में तो छुट्टियां ही छुट्टियां, उस समय जा सकते थे?
3: तो 1.5 महीने की छुट्टी पड़ती ना जब, तो फिर बच्चों को कैसे संभालना, कैसे लेके जाना दोनों बच्चों को, आगे तो कोई गाड़ियां वाड़ियां कोई सुविधा नहीं थी, वही बस में जाओ या ट्रेन में जाओ, फिर 80 का पात्र बनता, इसलिए मैं तो मैंने कहा मेरे तो कहीं नहीं जाना 2 साल तक।
2: अच्छा, नहीं आपके हस्बैंड भी तो साथ में आ सकते थे ना?
3: आ सकते थे, पर बच्चों को तो मेरे को ही संभालना था ना भाई, तो अब एक को दूध पिलाऊंगे दूसरे को।
2: अच्छा, इसलिए आप नहीं जाते
3: नहीं
2: थे?
3: गई, मैं 2 साल तक कहीं नहीं गई, घर से बाहर ही नहीं गई मैं।
2: चलिए हेमलता जी, फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ बुक, जीवन एक बहुत सुंदर किताब है। रीड इट, उसको पढ़ो, है ना। कुछ एक अच्छी अच्छी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। एक किताब रिसेंटली जो मैंने पढ़ी है और वो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। और एक और किताब मुझे अभी रिसेंटली बहुत अच्छी लगी थी, एंड दैट वाज हू वुड क्राई व्हेन यू वुड डाई। जब हमारी मृत्यु होगी ना तो कौन कौन लोग रोएंगे। जब मैं किताब पढ़ने लगा तो मुझे ये एहसास हुआ, मृत्यु के नजदीक जब हम हैं और अगर हमने अपने लाइफ को रिवाइंड करके देखा, अगर हमारे जीवन के प्रति हमारी बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आया, तो मींस माय लाइफ इज अ वेरी रियल सक्सेस। हमें इस जीवन को देखकर खुशी में रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक बातों को फॉलो करना है। हो सके ना तो बीच बीच में उपवास करने का। कौन सा उपवास करना है, कोई शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, लेकिन उपवास करना है दो बातों का, और एक है न्यूज़पेपर्स का। हफ्ते में एक दिन न्यूज़पेपर को थोड़ा बंद करो, हफ्ते में एक दिन टीवी को थोड़ा बंद करो, और हो सके तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। मैं आपको कुछ एक अच्छे और किताबों का सजेशन करूंगा, अगर हो सके तो वो किताबों को जरूर पढ़ना। एंड दैट इज नंबर वन इज इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, जो आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिलेगा। इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा रिटन बाय आदरणीय जगदीश भाई जी, बहुत अच्छी किताब है। एक और किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा और वो है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये भी किताब हो सके तो आप जरूर खरीदना और पढ़ना। और एक जो सबसे अच्छी किताब मुझे लगी है वो आप जरूर पढ़ना, और वो है आदिदेव ब्रह्मा। हिंदी में ये अवेलेबल है और वो है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू। और जैसे जैसे आप ये किताबें पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आएगी कि यस, दुनिया जो है किस तरफ बढ़ रही है और कैसे ये दुनिया परिवर्तन हो रहा है और कैसे एक सुंदर दुनिया की स्थापना।
2: नारी की नजरों में दुनिया प्यार और परवाह से भरी, नारी की नजरों में दुनिया प्यार और परवाह से भरी, पर जब बात हक की आए तो वो चट्टानों जैसी अड़ी खड़ी, तो वो चट्टानों जैसी अड़ी खड़ी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी हमारे साथ बने हुए हैं। आपके काफी अनुभव हमने सुने हैं, और हम पूछना चाहेंगे हेमलता जी से कि जैसे हेमलता जी आपने बताया कि आपके ट्विंस बेबियां थी, दोनों गुड़िया थी, तो दो साल आप मायके नहीं गए। परिवार में कहते ना कि कहीं शादी ब्याह भी होते हैं, कहीं कोई प्रसंग भी होता है, तो फिर सारे आपने छोड़े?
3: सारे छोड़े मैंने, मेरी सारी इच्छाएं खत्म कर दी थी। मैंने कहा कहीं नहीं जाऊंगी दो साल।
2: लेकिन दो साल में भी कहां बच्चे बड़े हो पाते हैं।
3: फिर भी बैठने लायक उठने लायक तो हो ही जाते हैं ना बच्चे बड़े, जैसे चलना फिरना या कोई गोदी भी ले सकता है, और इतने से छोटे बच्चे को लेके तो कोई संभाल नहीं सकता ना।
2: जी जी, फिर तो कोई भी गोदी में ले ले तो फिर जा सकते।
3: बच्चे को तो कोई भी गोदी में उठा सकता है, कोई भी घुमा सकता है, घूम जैसे हो जाते बच्चे दो साल के।
2: जी जी, तो दो साल के बाद आपने आना जाना शुरू किया।
3: दो साल के बाद।
2: और अभी बच्चे कितने बड़े हैं?
3: अभी तो शादियां हो गई, उनके बच्चे भी हो गए तो चारों के।
2: क्या बात है, तो अभी तो आप दादी नानी बन गए।
3: नानी बन गई ना।
2: तो अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए।
3: कहाँ जिम्मेदारियां, तो और बढ़ती जाती है, कभी इसका कभी उसका कभी बेटों का।
2: कहते ना मूल से भी ब्याज प्यारा लगता
3: रहा होता है।
2: तो फिर भी अभी आप काफी हद तक फ्री है।
3: फ्री है, काफी हद तक तो फ्री है। फिर घर की स्थिति ऐसी है ना, मेरे पति को कैंसर हो गया तो उनके तकलीफ है, उनको खाने पीने का टाइम टाइम दवाई देना सारा देखना पड़ता है, बच्चे छोटे हैं मेरे, दोनों बच्चों के डायलिसिस हो रहा है, देख किडनी की प्रॉब्लम है जो।
2: अच्छा, पोते पोती के?
3: पोते पोती को।
2: अच्छा, तो ये शारीरिक

0: व्याधियां आ गई।
1: हाँ ये परेशानियां हो गई है सब।
0: जी, तो आपका समय सेवा करने में
1: सेवा
0: जाता है।
1: करने में ज्यादा लगता है मेरा समय, इसलिए मैं किसी को टाइम नहीं दे सकती बाहर। मजबूरी में इधर उधर जैसे संगीत में चली जाऊं या भजन में या विश्वविद्यालय में आ जाती हूँ, टाइम नहीं
0: जी
1: मिलता।
0: जी सत्संग में आप थोड़ा सा समय देते हैं।
1: हाँ ज्यादा नहीं, बुधवार 11 को बस, 2 बार।
0: अच्छा, या तो बुधवार या ग्यारस।
1: हाँ दोनों में से एक दिन जाती हूँ, जब जब ये बच्चे घर पे रहते हैं जब जाती हूँ, नहीं तो नहीं जाती।
0: अच्छा, सभी साथ में हैं, दोनों बहुएं साथ में।
1: सब साथ में, सब साथ में।
0: तो बच्चों का कैसे हो गया, बचपन से था जन्म
1: बचपन से
0: से?
1: नहीं था ये तो, इनकी वो क्या बोलते रहे, जेनेटिक प्रॉब्लम हुई है दोनों को।
0: अच्छा, और आपके हस्बैंड को कितने साल से कैंसर है?
1: मेरे हस्बैंड को तो 5 साल हो गए, कोरोना में हुआ था।
0: अच्छा, कोरोना के समय हो गया।
1: ऑपरेशन करवा दिया, वो तो था जो सारा दांत में कैंसर हो गया था, तो हमने तो पूरा जबड़ा ही निकलवा दिया एक साइड का, ना बड़े आगे ना कुछ हुए।
0: तो कभी बीड़ी सिगरेट या तंबाकू खाते थे
1: नहीं
0: क्या?
1: कुछ नहीं, बाजार का नाश्ता तक नहीं करते मेरे हस्बैंड।
0: फिर भी कैंसर हो गया, तो अभी ठीक है?
1: हाँ अभी ठीक है, सब
0: तो अभी
1: बढ़िया।
0: उनकी इतनी जिम्मेदारी नहीं है।
1: नहीं जिम्मेदारी तो है ही ना, अभी उनका सारा खाना बनाना, लिक्विड लेते हैं, खा नहीं सकते, एक एक तरफ का जबड़ा निकला हुआ तो एक तरफ चबा नहीं सकते। फिर उनको लिक्विड बना के देती हूँ, जूस बना के देती हूँ, पेजी बना के देती हूँ टाइम टाइम से, फिर उनको दवाई देना।
0: जी, पर कहीं मान लीजिए आपको अंदर बाहर जाना पड़ता है तो बहुएं संभाल लेती
1: हाँ
0: हैं?
1: बहुएं संभाल लेती है, और टाइम से अगर जो होता है तो मैं करके चली जाती हूँ, नहीं तो बहू संभाल लेती है।
0: जी। और आपके बच्चे क्या करते हैं, बेटे बेटियां जॉब करते हैं? उनको कितना पढ़ाया आपने?
1: मेरे बच्चे, छोटा वाला बेटा तो मेरा एक्सियन है पीएचडी में, बड़ा बेटा एमबीए करा हुआ है, वो शेयर मार्केट का काम करता है, बड़ी बहू फार्मेसिस्ट है उदयपुर में मेडिकल कॉलेज में, और दोनों बेटियां एमए बीएड करी हुई है।
0: अच्छा, तो बेटियां भी जॉब करती
1: नहीं
0: हैं?
1: जॉब नहीं करती अभी, दे रही है, फाइट दे रही है।
0: जी, लेकिन अच्छा पढ़ा लिखा है,
1: अच्छा पढ़ा लिखा,
0: दिया
1: सारा
0: आपने
1: परिवार पढ़ा लिखा है सारा,
0: तो आपका कमी खली वो आपने अपने बच्चों में पूरी कर
1: पूरी
0: दी।
1: कर दी उन्होंने, पूरी कर दी मेरी, सारे जीवन में खुशियां दे दी, सब कुछ, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब है, सारी खुशियां दे दी उन्होंने।
0: जी, तो अभी आप अपने जीवन में खुश हैं?
1: खुश हूं मैं, बिल्कुल बहुत खुश हूं मेरे जीवन में।
0: जी, तो आप हमारी जो बहनें सुन रही हैं, जो सीनियर सिटीजन बहनें हैं 60+ वाली, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कितनी बार क्या है कि महिलाओं के जैसे सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाते, लेकिन सास बहू के किटपिट होती रहती, तो आप क्या कहेंगे? तो
1: नहीं हमारे कभी एक सास बहू में किटपिट नहीं हुई है आज तक,
0: कैसे आप बहुओं को किस नजर से देखते हैं?
1: बेटी की नजर से देखते हैं और क्या करें। जब अपने को सुखी रहना है तो अगले को जैसा ढलना चाहिए इंसान। और मेरा यही निवेदन है कि सभी बहनें 60 से ऊपर से हो गई है, तो यही निवेदन है कि आप भी अपने जीवन, अपनी खुशी के लिए सबको त्याग दो, किसी को ये मत कहो कि तू मेरी बहू है तू मेरा वो है, अपन खुद मम्मी बन के रहो सबके साथ में। तो आपको भी यही कहना है मेरा कि आप भी ऐसे ही जीवन में जियो तो खुश रहोगे। आज के जमाने में बहुओं को टोका टोकी करना ही नहीं, ना करने से 4 बात अपने को सुनने को मिलेगी, इसलिए मुंह को बंद रखो, आंखों से देखो और हंसते रहो।
0: क्या बात है। बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया है कि 60+ वाली बहनें जिनके घर में बहुएं आ चुकी है, उनके साथ प्यार से रहो, ज्यादा टोका टाकी न करो, ताकि बैलेंस बना रहे और घर में शांति बनी रहे, माहौल अच्छा रहे। तो हेमलता जी, बहुत बहुत आपका आभार कि आपने बहुत ही सुंदर अपने जीवन के अनुभव शेयर किए, रेडियो मधुबन को समय दिया और हमारे सभी श्रोता बंधुओं के साथ आपने अपने अनुभव शेयर किए इसके लिए।
1: धन्यवाद।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए थे। आबू रोड से हैं आप ने भले पढ़ाई 8वीं तक की है, लेकिन आपके नॉलेज देख के कितना है आज आप

0: खुशी होती है, चैन मिलता है। ऐसे ही हर गीत एक फूल की तरह है, रंग बिरंगे और हमारे मिजाज को सही करने वाले। आज हम फिर से मिल रहे हैं इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है रेडियो मधुबन, और रेडियो मधुबन में हर सप्ताह ठीक रात 9 से 10 शनिवार को आप सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता।
1: मैं कनव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
2: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
1: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।

0: महफिल शाम एक बहाना है, आज सुनना है कुछ सुनाना है। आप सभी को पता है कि कार्यक्रम गुलदस्ता में भी फसाने अफसाने गजलों के माध्यम से सुनाए जाते हैं। आप सब बहुत ही चाव से सुनते हैं गजलें, है ना? तो आज की यह जो खूबसूरत रात है, यह सज रही है गजल से। प्रिय साथियों, बावरी हवा बह रही है, अल्फाज उड़ा रहे हैं हमें। वक्त है कार्यक्रम गुलदस्ता का। सुनते हुए, मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए हम सब आ जाते हैं इस प्रोग्राम में। क्या गजल ऐसे ही ख्वाबों में उड़ाते हैं? जी नहीं, गजल की बयार झूले की तरह झुलाती है, मी टाइम को आबाद करती है और एक वजह देती है खुश रहने की। हमें तो बस साथियों खुशी बांटनी है और खुशी में रहना है, और क्या चाहिए जिंदगी में। बने रहिएगा स्वर्ण लता के साथ, इस खूबसूरत सफर पर आप होते ही हैं हमारे साथ।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट्स का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आहिस्ता आहिस्ता सफर कट ही जाएगा, दिलों के फासले कम हो जाते हैं, शिकवे शिकायत गायब हो जाते हैं, छू मंतर हो जाते हैं, उसकी जगह मोहब्बत ले लेती है। संबंधों को एक नए चश्मे से देखिए दोस्तों। हम सब अपने परिधान को बदलते हैं, रंग बिरंगे परिधान पहनते हैं, आईने में निहारते हैं कि हाँ अब तो मैं बदल गई या अब मुझ में बदलाव आ गया। तो यही अगर हम अलग अलग रंग के चश्मे पहन लें तो वही रिश्ता खूबसूरत नजर आएगा। किसी भी रिश्ते को जाने ना दें, पर हाँ सेफ्टी जरूर बरतें। प्रेम की कश्ती है, मौजों की रवानी है, गजल हमें प्रेम करना सिखाती है। तो गजलों के बारे में आज हम जानेंगे और जानेंगे कई फनकारों के नाम। आज हम कई ऐसे मशहूर फनकार की आवाजों में गजल सुनेंगे जिनको सुनते ही हमारे दिल में अगर कोई गम है तो वह छू मंतर हो जाएंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा। तो ऐसी ही गजलों को ऐसे ही मोटों के साथ कि आप सब खुशी से झूम उठे और कुछ सीखने को भी मिले। अगर साहित्य में किसी एक विधा ने सबसे अधिक लोकप्रियता हासिल की है तो वह है गजल। गजल न सिर्फ मुशायरों के जरिए बल्कि गायकी के सहारे भी खूब फली फूली। एक जमाना था जब फिल्मों में गजलों ने लोगों को खूब आकर्षित किया, पर आज हम सुन रहे हैं गैर फिल्मी गजलें।
1: वो पहाड़ देख रहे हो?
2: हाँ, कितना सुंदर है।
1: और उनको देख रहे हो?
2: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
1: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
3: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कि भारत में गजल सुनी जाती है। गजल एक खुशनुमा कल्पना है कि हमें भी कोई चाहे, हमारा भी कोई इंतजार करे। वैसे यह सिर्फ कल्पना नहीं, हकीकत भी है, यह सपना भी है, यह एक आशा भी है। गजल को हम कई रूपों से डिफाइन कर सकते हैं। वैसे तो कहते हैं कि गजल है प्रेमिका से बातचीत, पर यह बातचीत किसी के साथ भी हो सकती है। दोस्तों, प्रेम हम किसी के साथ भी कर सकते हैं जहां पर कोई भी एक्सपेक्टेशन ना हो। प्रेम वही है जहां पे दुगुना देने की चाहत हो। प्रेम वही है जहां पर कोई मिलने की आस ना हो या मिलने के लिए हम तरस न रहे हो। तो आप सब है ना स्वर्ण लता के साथ कार्यक्रम गुलदस्ता में। दोस्तों, कहते हैं कि एक जमाना था जब फिल्मों में गजलों ने लोगों को खूब आकर्षित किया। इस तरह गजल ने अरबी, फारसी और उर्दू से होते हुए हिंदी में भी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी और इसकी एक लंबी परंपरा विकसित हुई। मगर आज गीत संगीत के फैलते संजाल और युवाओं में संगीत के प्रति बढ़ते रुझान के बीच गजल की लोकप्रियता कम होती नजर आने लगी है। इसकी क्या वजहें हैं और गजल का क्या भविष्य है? क्या है, आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? ये आप सोचिए और कभी मुलाकात होगी तो सुनेंगे आपकी जुबानी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: कार्यक्रम गुलदस्ता पेश कर रही है नामी ग्रामी आर्टिस्ट की वॉइस में बेहतरीन गजलें। क्या आज भी गजलें उतना ही लोकप्रिय है? बिल्कुल है जनाब, तभी तो इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं। और भारतवर्ष में जितने भी रेडियो चैनल्स हैं उसमें गजल के प्रोग्राम शामिल किए जाते हैं। लोग बहुत एंजॉय करते हैं, अपनी मी टाइम को सफल करते हैं। बहुत ही जब मिजाज हल्का फुल्का होता है या फिर हल्का फुल्का बनाना होता है तब गजलें सुनी जाती हैं। दोस्तों, गजल लोकप्रिय है क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वह यह गीत सुनती है। गजल भी गीत का एक प्रकार है जिसमें उर्दू शब्द होते हैं और कई वैरायटी म्यूजिक होती हैं। इसमें हर दौर में खुद को संभालती संवारती आई गजल में समय माहौल के मुताबिक कई बदलाव हुए हैं। ऐसे में इन बदलावों और नए अंदाज के साथ भी वह दिलों में अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रही हैं। गजल सिर्फ जो है प्यार की बातचीत ही नहीं करती बल्कि इसमें कई पहलुओं को भी शामिल किया जा चुका है। तो बने रहिए स्वर्णलता के साथ और पेश है अगली गजल, किसकी आवाज में वह हम आपको बताएंगे बाद में, लेकिन एंजॉय कीजिए इस गजल को।
1: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
2: रेडियो मधुबन

0: गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद। सुन रहे हैं आप सब कार्यक्रम गुलदस्ता, और इस कार्यक्रम में हमने अक्सर गजलें पेश की हुई हैं जिन्हें आप बहुत ही चाव से सुनते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। गजलों के लिए कहा जाता है कि यह फासलों को कम करते हैं। गजल का भाव समझ आए और उस गजल को कब सुनना है यह पता चल जाए तो समझ लीजिए जीवन में खुश रहने की चाबी आपके हाथ है। गजल भी एक जरिया है अपने आप से रूबरू होने का। अपने आप से अगर आप मिलना चाहते हैं तो गजलें जरूर सुनिए, पर चुनने से पहले इसका जरूर ध्यान रखिए कि इसमें कोई नेगेटिव एस्पेक्ट ना हो, नेगेटिव कंटेंट ना हो। तो हम भी जब भी गजलों को आपके लिए सिलेक्ट करते हैं तो बारंबार चेक करते हैं कि क्या यह गजल पेश करने लायक है, बहुत धूमधड़का वाला तो नहीं है, इस गजल से कोई रॉन्ग मैसेज तो नहीं जा रहा है। जो भी गजलें व्यसन का भाव व्यक्त करते हैं उन्हें हम बिल्कुल ही इस पे शामिल नहीं करते। तो आप सबके लिए हमेशा से बेहतरीन गजलें हमने पेश की हैं जिन्हें आप बहुत खुशी से सुनते हैं। आइए अब सुनते हैं अगली गजल जो आपका इंतजार कर रही है।
1: लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

आखिरी मोहब्बत तुम्ही, पहला प्यार मेरा, ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ खुदा ही हो सकता है। खुदा यानी जो खुद आकर हमारे दिल में बस जाता है, जिन्हें हम सिर्फ मकसद पर याद करते हैं, पर वह हमें बेमकसद याद करता है। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं बेहतरीन से बेहतरीन गजलें, जिनको सुनने के लिए लोग जो हैं कई गजलों की महफिल में जाते हैं, टिकट्स बुक करा कर जाते हैं। उन्हीं गजलों को आप घर में बैठे आनंद से सुन रहे हैं स्वर्ण लता के साथ। हम सब मिलकर जब इस प्रोग्राम को सुनते हैं तो चार चांद लग जाता है ना। तो अभी जाने की इजाजत दीजिए। जाते जाते मैं स्वर्ण लता आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि अभी भी बहुत सारी गजलों के कार्यक्रम हो सकते हैं। किसने गजल के बारे में क्या कहा, गजल की क्या परिभाषा है, और आजकल तो वैरायटी भाषा में गजलें होने लगी हैं, गजलें बनने लगी हैं। तो जाने से पहले आपको हम बता दें कि आज के प्रोग्राम में हमने शामिल किए थे बहुत सारे ऐसे फनकारों की गजलें जिनके नाम हैं सलमा आगा जी, तलत अजीज साहब, फिर हमने शामिल किया था चंदन दास जी की आवाज में भी हमने बहुत सारी गजलें सुनी, और मुसर्रत नाजिर की आवाज में हमने सुनी थी चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता, बहुत ही सुंदर गजल थी जो बार बार सुनने लायक है। तो इन सभी आवाजों में हमने सुनी बेहतरीन गजलें। तो इसी उम्मीद के साथ कि इन फ्यूचर आपके लिए हम बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए उम्दा विषय के साथ। तब तक रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ரேடியோ மதுவன் 107.8 FM. சுன்தே ரஹோ முஸ்குராதே ரஹோ ரேடியோ மதுவன் 107.

0: कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी
1: अरे रे, मैं कोई कबड्डी का खेल नहीं खेल रहा, मैं तो बस मीना और उसके दोस्तों को कबड्डी का अभ्यास करते हुए देख रहा हूँ। क्या कहा, आपने भी देखना है तो ठीक है, आओ वहीं चलते हैं।
2: कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी ओफो, मीना दीदी आपको पकड़ना तो बहुत मुश्किल है, आप तो झट से अपना हाथ छुड़ा लेते हो।
3: लल्ला, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, देखो मैं बताती हूँ, सामने वाले खिलाड़ी को अगर उसके पैरों से पकड़ोगे तो फिर वो आसानी से खुद को नहीं छुड़ा पाएगा।
4: नहीं छुड़ा पाएगा, हार जाएगा।
2: वाह मीना दीदी, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई, अब हम कल

0: और उसकी टीम को आसानी से हरा सकेंगे।
1: हाँ लल्ला।
0: दीदी वो
1: क्या हुआ लल्ला?
0: दीदी परसों स्कूल में बहन जी को हमारी क्लास के बच्चों से 6 का पहाड़ा सुनना है, लेकिन मैंने अभी तक वो याद ही नहीं किया, और फिर कल तो कबड्डी का मुकाबला भी है।
1: मैंने कहा ना कि मुश्किल कुछ भी नहीं होता, तुम घर जाके पूरी मेहनत से अभ्यास करो, बस थोड़ी देर में पूरा पहाड़ा याद हो जाएगा।
2: याद हो जाएगा, लल्ला नहीं घबराएगा।
1: कल 10 बजे मुकाबला है लल्ला, टाइम से आ जाना।
0: ठीक है दीदी, आ जाऊंगा।
3: और अगले दिन
1: सुमी, लल्ला तो अभी तक आया ही नहीं, लगता है उसे अभी तक 6 का पहाड़ा याद नहीं हुआ।
4: अब क्या करें मीना, 1 घंटे में तो मुकाबला शुरू हो जाएगा।
1: मैं अभी आती हूँ।
4: कहाँ जा रही हो मीना?
1: लल्ला के घर।
3: मीना दौड़ी दौड़ी लल्ला के घर पहुँची।
0: 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24।
1: लल्ला खेल शुरू होने वाला है, तुम आए क्यों नहीं? पूरा पहाड़ा याद नहीं हुआ क्या?
0: पहाड़ा तो याद हो गया दीदी, लेकिन
1: क्या हुआ लल्ला?
0: मीना दीदी मुझे भूख लगी है।
1: अरे तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है, भूख लगी है तो कुछ खा लो।
2: कुछ खा लो, भूख मिटा लो।
0: क्या खाऊं, माँ ने कुछ पकाया ही नहीं।
1: क्यों? चाची की तबीयत तो ठीक है ना?
0: माँ तो ठीक है, लेकिन मेरे छोटे भाई मुन्ना की तबीयत ठीक नहीं है, माँ उसी की देखभाल में लगी हुई है।
1: मुन्ना को क्या हुआ?
0: पिछले कुछ दिनों से उसे दस्त हो रहे हैं। अब हमारे कबड्डी के मुकाबले का क्या होगा दीदी?
1: हाँ, चाची कहाँ है?
0: अंदर कमरे में।
1: मैं उनसे मिल के आती हूँ। चाची, चाची जी।
5: कौन?
1: चाची जी मैं, मीना। नमस्ते चाची जी।
5: अरे मीना बेटी, आओ आओ।
1: चाची, लल्ला कह रहा था कि मुन्ना की तबीयत कुछ।
5: अब क्या बताऊँ मीना, इन दोनों भाइयों का इतना ध्यान रखती हूँ, फिर भी।
1: चाची अगर आप कहें तो मैं भाग के डॉक्टर बाबू को बुला लाऊं।
5: हाँ मीना, ये ठीक रहेगा।
1: ठीक है चाची, मैं अभी उन्हें लेके आती हूँ।
3: मीना बहुत तेजी से दौड़ती हुई डॉक्टर बाबू के पास पहुँची और उन्हें लेके लल्ला के घर आई।
5: नमस्ते डॉक्टर बाबू।
6: नमस्ते बहन जी, क्या हुआ मुन्ना को?
5: कल रात से दस्त हो रहे हैं इसे, मुझे तो इसकी बहुत फिक्र हो रही है।
6: मुन्ना की उम्र क्या है बहन जी?
5: जी अभी 9 महीने का है।
6: आज आपने इसे खाने में क्या दिया था?
5: कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबू, मुन्ने को दस्त लगे हुए हैं, और भला दस्त में कभी बच्चों को कुछ खिलाया जाता है क्या? ऐसे तो इसकी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी।
6: ये सच नहीं है बहन जी।
5: मतलब?
6: मतलब ये कि दस्त में भी बच्चों के लिए सही खुराक मिलना बहुत जरूरी है।
5: डॉक्टर बाबू, अगर बच्चे को दस्त लगे हो तब भी उसे खिलाना पिलाना चाहिए?
6: बहन जी दस्त लगे हो तब तो और भी जरूरी हो जाता है कि बच्चों की खुराक जारी रहे आम दिनों की तरह।
5: वो क्यों?
6: क्योंकि दस्त के कारण उनके शरीर में पौष्टिक तत्वों और पानी की कमी हो जाती है, और अगर हम उन्हें कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे ही नहीं तो उन्हें इस बीमारी से लड़ने की ताकत कहाँ से मिलेगी?
1: मुझे याद आ गया डॉक्टर बाबू, एक बार जब रानी को दस्त लगे थे तो माँ ने उसे ORS के घोल के साथ साथ दलिया और खिचड़ी भी खिलाई थी।
6: हाँ मीना, सही तरीका ही यही है।
2: तरीका ही यही है, बात बिल्कुल सही है।
5: मुझे तो लगा कि दस्त में बच्चों को कुछ नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि दस्त लगे हो तो बच्चे खाना नहीं पचा पाते।
6: ऐसी बात नहीं है बहन जी, अगर बच्चे को दस्त लगे हो तो उन्हें ORS घोल के साथ साथ घर का बना हल्का फुल्का खाना भी देना चाहिए,
1: जैसे दाल दलिया या खिचड़ी, है ना डॉक्टर बाबू?
6: बिल्कुल सही मीना। और हाँ बहन जी, बच्चे को ये खाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में आधे 1 घंटे बाद खिलाते रहना चाहिए।
5: ऐसा क्यों डॉक्टर बाबू?
6: ऐसा इसलिए ताकि उसे बीमारी से लड़ने की ताकत मिले और वो जल्दी से ठीक हो सके। ये लीजिए ORS का पैकेट, अब मैं चलता हूँ, मुझे मुन्ने का हाल बताती रहिएगा।
5: चाय तो पीती जाइए डॉक्टर बाबू।
6: आप चाय रहने दीजिए, और सबसे पहले मुन्ना के लिए दाल खिचड़ी या दलिया बनाइए।
2: दलिया बनाइए, मुन्ने को खिलाइए।
0: माँ मुझे भी भूख लगी है।
5: अरे हाँ, मुन्ना के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि मेरा लल्ला भी भूखा होगा। और आज तो तुम्हारा कबड्डी का मुकाबला भी है ना?
0: हाँ माँ, तभी तो मुकाबला अब शुरू ही होने वाला है।
5: तुम चिंता मत करो लल्ला, मैं जल्दी से कुछ खाने के लिए लाती हूँ।
3: लल्ला की माँ ने मुन्ना और लल्ला के लिए दलिया बनाया। दलिया खा के लल्ला पहुँचा खेल के मैदान में और
1: कबड्डी का ये मुकाबला बहुत रोमांचक मोड़ पे है। मीना और दीपू की टीमें 20-20 अंक लेकर बराबरी पे हैं और अब दीपू मीना के पाले में पहुँचा।
7: कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी।
1: लल्ला और मीना ने दीपू को पैर से पकड़ लिया और दीपू आउट।
3: देखा दोस्तों, जैसे मीना की सलाह मान के लल्ला ने दीपू की टीम को हराया, वैसे ही डॉक्टर बाबू की सलाह मान के लल्ला की माँ ने मुन्ना की बीमारी को दूर भगाया। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक प्यारी सी कविता।
8: जब बच्चे को दस्त लगे तो बात ये भूल न जाना,
2: समय समय पे थोड़ा थोड़ा खाना उसे खिलाना।
3: लो भाई, कविता में क्या गहरी बात सिखा गए अपने मीना और मिट्ठू। इसी बात पे हो जाए गाना।

0: बहुत है।
1: आओ अब हम बैठ जाएं और एक कहानी सुनाएं।
2: कहानी?
1: हाँ कहानी।
2: राजा की कहानी या फिर बंदर की कहानी?
1: ना बंदर की ना राजा की, ये कहानी तो है दस्त की।
3: दस्त? ये दस्त क्या होता है?
4: जब पेट

0: कालू उसके पीछे दौड़ी गुड़िया। था ना मजेदार गाना। अब आप भी वही सोच रहे हैं ना जो मैं सोच रहा हूँ, तो ठीक है, देर किस बात की, चलो मीना की क्लास में चल के कुछ खेलते हैं।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे दिमाग लगाओ शब्द बनाओ। मैं आप सबको एक शब्द बताऊंगी और आपको उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा क्या बताना है?
2: मुहावरा।
1: हाँ, तो आज का शब्द है पत्थर। तो कौन बनाएगा पहला शब्द?
3: मैं बनाऊंगी बहन जी।
1: शाबाश रानू।
3: बहन जी, पत्थर का पहला अक्षर है प और प से होता है पानी।
1: सही जवाब रानू। अब पानी से जुड़ा मुहावरा?
4: रानो, पानी तो पानी होता है।
1: दीपू, पानी पानी होने का मतलब होता है लज्जित होना, यानी शर्माना।
5: जी बहन जी, जैसे अभी दीपू पानी पानी हो रहा है।
1: चलो अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा?
5: प के बाद पत्थर में आता है त और त से होता है तिल।
1: सही जवाब मोनू। और मुहावरा?
5: तिल का ताड़ बनाना, मतलब छोटी सी बात को बढ़ा देना।
1: बिल्कुल ठीक मोनू।
6: बहन जी, अगला शब्द मैं बताऊं?
1: हाँ हाँ सुमी बताओ।
6: प और त के बाद पत्थर में आता है थ और थ से होती है थाली।
1: शाबाश सुमी। और थाली से जुड़ा मुहावरा?
7: थाली का बैंगन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके कोई सिद्धांत ना हो।
1: बहुत अच्छे कृष्णा। और अगला शब्द कौन बताएगा?
3: मैं बताऊंगी बहन जी।
1: हाँ हाँ मीना
8: बताओ।
3: प, त और थ के बाद पत्थर में आता है र और र से होती है रात।
1: सही जवाब मीना। और मुहावरा?
3: दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करना, यानी निरंतर तरक्की करना।
1: शाबाश मीना। मजा आया ना बच्चों?
2: बहुत मजा आया बहन जी।
0: भाई मजा तो हमें भी खूब आया, कहानी सुनी, कविता सुनी, गाना सुना और खेल भी तो खेला, मजा तो आना ही था, है ना? तो फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
9: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: रुक, वो सुनाई नहीं देती। वो ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है। तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

हल्के हल्के बोल ना, हल्के हल्के बोल ना, हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोल ना, हल्के बोल ना, हल्के हल्के बोल ना, हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोल ना, हल्के आनंद का सौदा करें एक।

ना हल्के, बोल ना हल्के हल्के, बोल ना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल ना हल्के।

0: हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना।
1: EIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 18वां पाठ, जाएं तो जाएं कहाँ, पृष्ठ 165। जात्रिया भाई। जात्रिया भाई अपनी बेटी झिमली के साथ दरवाजे की चौखट पर बैठे सीढ़िया का इंतजार कर रहे थे। रात होने को थी पर सीढ़िया अभी तक घर नहीं आया था। लगभग 2 साल पहले जात्रिया का परिवार सिंदूरी गांव से मुंबई आया था। अपना कहने को यहां दूर के रिश्तेदार का एक परिवार ही था। उन्हीं की मदद से जात्रिया भाई ने मछली पकड़ने के कटे हुए जालों की मरम्मत का काम शुरू किया। इससे तो उनका गुजारा ना हो सका। घर का किराया, दवाई, खाना, स्कूल का खर्चा ही नहीं, पानी भी पैसों से ही खरीदना पड़ रहा था। छोटे सीढ़िया को भी पास वाले मछली के कारखाने में काम करना पड़ा। सीडिया सुबह के 4 बजे से 7 बजे तक मछली साफ करता, छोटी बड़ी मछलियां छांटता, उसके बाद वह घर आता, थोड़ी देर सोकर दोपहर को स्कूल जाता, शाम को सब्जी मंडी में घूमता फिरता, कभी किसी मेम साहब की थैलियां उठाता तो कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर पानी की खाली बोतलें ढूंढकर कबाड़ी वाले को बेचता। जैसे तैसे ही चल रही थी उनकी जिंदगी। पृष्ठ 166। अब तो रात भी हो गई लेकिन सीढ़िया घर नहीं आया। झिमली पड़ोसी के घर की खिड़की से टीवी पर नाच देख रही थी, मगर जात्रिया का मन टीवी देखने में नहीं लगता। यहाँ सब कुछ कितना अलग था, कितनी नई अजीब दुनिया थी। दिन काम की भगदड़ में चला जाता और शाम पुरानी यादें लेकर आती। सोचो और बताओ। जात्रिया भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस कर रहा था। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? अपनी जगह छोड़कर दूर नई जगह जाकर रहना कैसा लगता होगा? जात्रिया जैसे परिवार बड़े शहरों में क्यों आते होंगे? क्या तुमने ऐसे बच्चों को देखा है जो पढ़ने के साथ काम पर भी जाते हैं? ये बच्चे किस तरह के काम करते हैं? क्यों करने पड़ते होंगे? पुरानी यादें। हरे भरे घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच खेड़ी गांव में जात्रिया का जन्म हुआ था। उसके दादा के जन्म के पहले से ही ये लोग यहाँ रह रहे थे। उनके गांव में शांति तो थी लेकिन सन्नाटा नहीं था। गांव में नदी की कलकल, पेड़ों की सनसन, पंछियों की चहक थी। यहाँ के लोग खेती का काम करते थे। गाँव के लोग जंगलों में जाकर कंदमूल, साग सब्जी और सूखी टहनियां लाते। ये सब काम करते समय लोग बातें करते और गाने गुनगुनाते। बड़ों के साथ काम करके छोटे बच्चे भी ये सभी काम सीख जाते, जैसे बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, मिलकर नाचना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना, पंछियों को पहचानना, उसकी नकल करना आदि। पृष्ठ 167। लोग जंगल से इकट्ठा किया सामान इस्तेमाल करते, बचा हुआ सामान नदी पार के बड़े गांव में जाकर बेच देते। इन पैसों से वे अपने लिए नमक, तेल, चावल और कभी कपड़े खरीदते। वैसे तो वह एक गांव था मगर सब एक बड़े परिवार जैसे रहते थे। जात्रिया की बहन की शादी भी उसी गांव में हुई थी। अच्छे बुरे समय में सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। शादी ब्याह के काम और झगड़े गांव के बड़े बुजुर्ग साथ मिलकर निपटाते। जात्रिया अब जवान हो गया था। वह खेती का भारी काम अकेले ही करता, बड़ी नदी के बीचों बीच मछली भी पकड़ता। अब वह जंगल से फल, कंद, दवाई के लिए पत्तियां, नदी की मछली आदि सभी लेकर दोस्तों के साथ कस्बे के गांव में बेचा करता। गांव में त्योहार के समय अपनी उम्र के लड़के लड़कियों की टोली में नाचता और ढोल भी बजाता। बताओ, खेड़ी गांव में बच्चे क्या क्या सीखते थे? तुम अपने बड़ों से क्या क्या सीखते हो? जिन चीजों का ज्ञान जात्रिया को खेड़ी में हासिल हुआ, उनमें से कितना उन्हें मुंबई में काम आया होगा? पृष्ठ 168। क्या तुम हर रोज पक्षियों की आवाजें सुनते हो? कौन कौन से? क्या तुम किसी पक्षी की आवाज की नकल कर सकते हो? करके दिखाओ। तुम रोज ऐसी कौन सी आवाजें सुनते हो जो खेड़ी के लोग नहीं सुनते होंगे? क्या तुमने सन्नाटा महसूस किया है? कब और कहाँ? नदी के पास। एक दिन गांव वालों ने सुना कि उनकी नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनने वाला है। नदी को रोककर एक बहुत बड़ी दीवार सी खड़ी की जाएगी। तब खेड़ी और आसपास के बहुत सारे गांव पानी में डूब जाएंगे। लोगों को अपने पुरखों यानी बाप दादा की जमीन, घर बार छोड़कर नई जगह चले जाना होगा। कुछ दिन बाद सरकारी लोग पुलिस की पलटन को लेकर गांव गांव पहुंचने लगे। गांव के छोटे बच्चों ने तो पहली बार पुलिस देखी। कुछ बच्चे उनके पीछे भागते तो कुछ डर से रोने लगते। वे नदी की चौड़ाई, लंबाई, गांव के घर, खेत, जंगल सब नापने लगे। उन्होंने गांव के बड़ों के साथ मीटिंग भी की और कहा, गांव को नदी किनारे से हटाना होगा। जिनके पास अपनी जमीन है उन्हें नदी पार बहुत दूर बसने के लिए नई जगह दी जाएगी। दूसरी जगह जहां जमीन मिलेगी वहां स्कूल, बिजली, अस्पताल होंगे, बस और ट्रेनें भी होंगी। नए गांव में वह सब होगा जो आज तक खेड़ी के लोगों ने सोचा भी न था। उसके माँ बाबा और गांव के कई बड़े बूढ़ों को अपना गांव छोड़ना पसंद न था। जात्रिया भी यह सुनकर थोड़ा सहम जाता, थोड़ा खुश भी हो जाता। सोचता वह शादी के बाद अपनी दुल्हन को नए गांव के नए घर में ले जाएगा। पृष्ठ 169। ऐसा घर जिसमें बटन दबाते ही बिजली जलेगी और घर में नल खोलते ही पानी। बस में बैठकर वह शहर घूमने जाएगा। सोचता जब बच्चे होंगे तब उन्हें स्कूल भेज पाऊंगा, उन्हें अपने जैसा अनपढ़ नहीं रखूंगा। चर्चा करो और बताओ। जात्रिया के गांव के कई लोगों को अपने जंगल जमीन छोड़ना मंजूर न था। ऐसा क्यों? ना चाहते हुए भी उन्हें अपना गांव छोड़ना ही पड़ा। सोचो क्यों? जात्रिया के खेड़ी के परिवार में कितने लोग थे? जात्रिया जब अपने परिवार के बारे में सोचता तो उसके मन में कौन कौन आता? अपने परिवार के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे मन में कौन कौन आता है? क्या तुमने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो अपनी पुरानी जगह से हटना पसंद नहीं करते? उनकी कुछ बातें बताओ। क्या तुम कोई ऐसी जगह जानते हो जहां स्कूल है ही नहीं? कल्पना करो, जहां बांध बनता है वहां के लोगों को क्या क्या परेशानियां होती होंगी? खेड़ी गांव और जात्रिया के सपनों के नए गांव के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। अपने साथी का चित्र भी देखो, उनमें अंतर ढूंढो। एक नई जगह। दोपहर का समय था, कड़ी धूप और गर्म हवा से जात्रिया बेजान था। डामर यानी कोल तार से बना रास्ता जलते तवे जैसा गर्म था। आसपास कोई छायादार पेड़ भी न था, सिर्फ कुछ मकान और दुकानें थीं। दवाइयां खरीदकर जात्रिया घर की ओर चल पड़ा। उसकी पीठ पर पुराना टायर था। आजकल घर का चूल्हा जलाने के लिए वह ऐसे टायर के रबड़ के टुकड़ों को जलाता था। पृष्ठ 170। ये आग जल्दी पकड़ते थे और इससे लकड़ी भी कम लगती थी, पर इसके जलने से हुई बू और धुएं से सब परेशान थे। सिंदूरी नाम के इस नए गांव में हर चीज पैसों से मिलती थी, दवाई, सब्जी, अनाज, पशुओं की खुराक और लकड़ी भी। मिट्टी का तेल तो उनकी पहुंच से बाहर था, कहां से लाएं इतने पैसे। सोचते सोचते जात्रिया अपने घर तक पहुंच गया। छत के नाम पर टीन की चादर भट्टी जैसी जल रही थी। जात्रिया की बीवी तेज बुखार से तप रही थी। उसकी बेटी झिमली अपने छोटे भाई सीडिया को गोद में लेकर सुला रही थी। घर में कोई और बड़ा भी तो नहीं था। पिताजी तो पहले ही खेती छोड़ने के गम में चल बसे थे। इस नई जगह पर उनके गांव के 8-10 परिवार ही थे जो उसके अपने थे। बाकी सारा गांव यहां वहां बिखर गया था। जिन्हें जहां जमीन दी गई वे वहीं बस गए। जैसा सपना देखा था वैसा तो नहीं था ये गांव। बिजली तो थी मगर वह भी कभी रहती कभी नहीं। ऊपर से बिजली के बिल का नया खर्चा भी तो था। वहां नल तो थे पर उनमें पानी ना आता था। इस गांव में जात्रिया को टीन की चादर से बना हुआ एक कमरे का घर मिला। उसमें पशुओं को रखने की तो जगह ही नहीं थी। थोड़ी सी खेती की जमीन भी मिली थी मगर वह खेती के लायक नहीं थी। बड़े बड़े पत्थरों और कंकड़ों से भरी थी। जात्रिया और उसके परिवार फिर भी जी जान से उसमें मेहनत करते मगर धान को खरीदने में जो पैसे खर्च होते उतने भी हाथ न आते। पृष्ठ 171। वहां पुराने गांव में बीमारी कम थी। अगर कोई बीमार हो भी जाता तो जड़ी बूटी की दवाई जानने वाले बहुत से लोग थे। उनके इलाज से सेहत सुधर जाती थी। यहाँ अस्पताल तो थे पर डॉक्टर मुश्किल से मिल पाते और दवाई भी नहीं मिलती। यहाँ स्कूल था पर टीचर खेड़ी के इन बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देती थी। नई भाषा की पढ़ाई इन बच्चों के लिए कठिन भी थी। सिंदूरी गांव के लोगों को इन लोगों का यहाँ आना पसंद न था। उनको खेड़ी के लोगों की भाषा, रहन सहन सब अजीब लगता। वे खेड़ी वालों को बिन बुलाए मेहमान कहकर उनका मजाक भी उड़ाते थे। क्या सोचा था और क्या हुआ? लिखो। क्या सिंदूरी गांव जात्रिया के सपनों के गांव जैसा था? सिंदूरी और अपने सपनों के गांव में उसे क्या अंतर मिला? क्या तुम कभी किसी के घर बिन बुलाए मेहमान थे? कैसा लगा? जब तुम्हारे यहाँ कुछ दिन मेहमान रहने आते हैं तब तुम्हारे परिवार वाले क्या क्या करते हैं? कुछ साल बाद जात्रिया ने कुछ साल सिंदूरी में ही बिताए। बच्चे भी बड़े हो रहे थे मगर जात्रिया भाई का मन अब सिंदूरी में नहीं लगता था। उन्हें तो बस अपने खेड़ी गांव की याद सताती रहती। पर अब खेड़ी था कहाँ? खेड़ी और आसपास के इलाके में था एक बहुत बड़ा बांध और रुके हुए पानी का एक बड़ा सा तालाब। जात्रिया ने सोचा बिन बुलाए मेहमान ही कहलाना है तो ऐसी जगह जाएं जहां अपने सपने पूरे तो हों। उन्होंने अपनी जमीन और जानवर बेच दिए और वे मुंबई आ गए। अब उसके परिवार की नई जिंदगी शुरू हुई। बच्चे स्कूल में जाएं, कुछ बने, बस यही चाहते थे। यहाँ के हालात अच्छे तो नहीं थे मगर धीरे धीरे शायद सब ठीक हो जाएगा, यही वे सोचते थे। जात्रिया ने अपनी खोली यानी एक कमरे की रहने की जगह की मरम्मत के लिए पैसे बचाने शुरू किए। पृष्ठ 172। उनके रिश्तेदारों ने कहा मत बर्बाद करो ये पैसे, शायद हमें यह जगह भी छोड़नी पड़ेगी। हम बाहर से आने वाले लोगों के लिए मुंबई में रहने की जगह नहीं है। जात्रिया भाई यह सुनकर डर गए। उन्होंने सोचा खेड़ी छोड़कर सिंदूर गांव में, उसके बाद अब यहाँ मुंबई में, अब यहाँ से भी हटना पड़ेगा तो जाएंगे कहाँ? क्या इतने बड़े शहर में मेरे छोटे से परिवार के लिए एक छोटा सा घर भी नहीं है? सोचो। जात्रिया भाई ने क्या सोचकर मुंबई जाने की ठानी, क्या उन्हें मुंबई वैसा ही मिला? जातिया भाई

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में। तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी के पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं खेल खेल में मन की बात,
3: छोटी बड़ी बातें, इनमें छुपी है बच्चों के दिल की बात।

ऐसे में वो अपनी भावना खेल के द्वारा व्यक्त करते हैं। तभी तो देखभाल करता होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम उन्हें देखें, समझें और उनसे बातचीत करें, क्योंकि अगर हम बच्चों के साथ खेलते समय उनके बर्ताव पर ध्यान देते हैं तो उनकी मन की बात और भावनाएं पहचान पाएंगे और फिर हम बातचीत करके उनको अपनी भावना समझने और संभालने में मदद कर सकते हैं। कल ही मैं अपनी बेटी के साथ खेल रहा था। वो कहने लगी उसका टेडी बहुत दुखी है क्योंकि टेडी का फ्रेंड दूसरे स्कूल जा रहा है। मैंने ध्यान से सुना तो मुझे समझ आया कि शायद उसको कोई बड़ी भावना महसूस हो रही है। बातचीत की तो पता चला कि टेरी नहीं, मेरी बेटी को दुख हो रहा था क्योंकि उसका फ्रेंड दूसरे स्कूल जा रहा था। तो मैंने उसको उसकी भावना समझने और संभालने में मदद की। ऐसे ही हम ध्यान दें तो बच्चों के खेल से हमें अंदाजा हो सकता है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। ओह, लगता है मैं और एल्मो भी कुछ खेल रहे हैं। देखें वहां क्या चल रहा है।

0: एल्मो, ये लो आटा। मैं जब तक चपाती बनाऊंगी, तुम इस आटे से खेल सकते हो।
1: थैंक यू मम्मी। एल्मो आटे से कुछ बनाएगा। कचर पचर, खिच खिच खिच खिच खिच खिच खिच।
0: एल्मो, एल्मो, तुम आटे से क्या बना रहे हो?
1: एल्मो आटे से ये कुचुड़ मुचुड़ शक्ल बना रहा है।
0: कुचुड़ मुचुड़ शक्ल? लगता है एल्मो को कोई बड़ी भावना महसूस हो रही है और वो उसे समझ नहीं पा रहा। बात करके समझने की कोशिश करती हूँ। एल्मो, ये शक्ल खुचड़ मुचड़ क्यों है?
1: क्योंकि क्योंकि इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा।
0: ओहो, फिर तो जरूर कोई बात होगी जो इस शक्ल को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा।
1: हाँ, इसको अपनी दोस्त के साथ खेलना था, मगर अब इसकी फ्रेंड नहीं आ रही।
0: ओह, तो इसको गुस्सा महसूस हो रहा है?
1: गुस्सा? गुस्सा मतलब?
0: कभी कभी जब कुछ ऐसा होता है जो हमें पसंद नहीं आता, तो हमें चिड़चिड़ापन होता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसको गुस्सा बोलते हैं।
1: हाँ, तो इस आटे की शक्ल को गुस्सा आ रहा है।
0: इसको कितना गुस्सा महसूस हो रहा है?
1: बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा।
0: क्या एल्मो को भी ऐसी कोई भावना महसूस हो रही है?
1: हाँ, एल्मो को भी जोर से गुस्सा आ रहा है मम्मी, बहुत जोर से।
0: तुमको किस बात पर गुस्सा आ रहा है एल्मो?
1: पीकू अपनी नानी के घर गई है, वो कुछ दिन बाद आएगी।
0: ओ, तो तुम कुछ दिन पीकू के साथ खेल नहीं सकते, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है।
1: हाँ, पर एल्मो को गुस्से की भावना बिल्कुल नहीं पसंद मम्मी।
0: कोई बात नहीं एल्मो, हम सभी को कभी कभी गुस्सा आ जाता है, मगर हम कुछ कर सकते हैं ताकि हमें बेहतर लगे। जानना चाहते हो कैसे?
1: हाँ मम्मी।
0: तो चलो, हम आंखें बंद करके साथ में पूरे 5 तक गिनती गिनेंगे।
2: 1, 2, 3, 4, 5।
0: क्या तुम्हें अब बेहतर लग रहा है एल्मो?
1: हाँ, अब एल्मो को थोड़ा थोड़ा बेहतर लग रहा है।
0: तो फिर आज शाम को हम पीकू की मम्मी को फोन करेंगे और तुम पीकू से फोन पे बातें कर सकते हो।
1: अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। एल्मो पीकू को बताएगा कि एल्मो ने क्या क्या किया। एल्मो ने आटे का फेस बनाया, ड्राइंग की, चिड़िया को दाना दिया।
3: मैं, आपने एल्मो के खेल से कितने अच्छे से एल्मो के मन की भावना को समझ लिया।
0: हाँ, मुझे एल्मो के साथ समय बिताना और खेलना बहुत जरूरी लगता है। एल्मो के साथ खेलना एक अच्छा तरीका है उसको समझने का और ये जानने का कि उसके मन में क्या चल रहा है। मैं उससे बात करती हूँ और सवाल पूछती हूँ, इससे मुझे उसके मन में झांकने का मौका मिलता है।
3: हाँ, बहुत बार बच्चों को अपनी भावना समझना मुश्किल होता है, तो वो उसे खेल या किसी और गतिविधि के द्वारा व्यक्त करते हैं।
0: बिल्कुल, इसलिए मैं एल्मो के खेल को ध्यान से देखती हूँ और जब हो सके तो उसके खेल में शामिल भी हो जाती हूँ।
3: अगर बच्चों के साथ खेलते समय हम चौकस रहें कि बच्चे क्या खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, और उनसे बातचीत करें, सवाल करें, तो हमें उनकी बड़ी भावनाओं को बेहतर समझने का मौका मिलता है और हम उनको इन भावनाओं को संभालने में मदद कर सकते हैं। तो याद रहे, बच्चों के खेल को देखो, समझो और उनसे बातचीत करो। तो सुनते रहिए
4: छोटी बड़ी बातें, बड़ी बातें, छोटी बड़ी बातें।
5: सेसेमी वर्कशॉप इंडिया द्वारा निर्मित, यूबीएस ऑप्टिमस फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट द्वारा समर्थित।

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वो बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वो सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वो भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
6: हानी, तुम्हें पता है कल मैंने सपने में क्या देखा?
7: क्या देखा?
6: हम दोनों तो कश्मीर घूमने गए थे।
7: कौन दोनों?
6: अरे तुम और मैं, और कौन दोनों?
7: वाह, कश्मीर! वैसे मैं तो हिमाचल गई हुई हूँ।
6: कोई बात नहीं, मेरे साथ कश्मीर भी चल पड़ना।
7: अच्छा,
8: कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हो भाई आप लोग?
9: कहाँ घूमने की बातें हो रही हैं भाई?
6: दीदी, कश्मीर।
9: कश्मीर जा रहे हो? और कहाँ, हिमाचल भी सुना था मैंने तो।
7: अरे दीदी, सपने में जा रहे हैं।
9: अच्छा, हाँ
6: असली में तो जा नहीं सकते, इसलिए सपनों में ही जा रहे हैं।
9: सपनों में तो कहीं भी घूम सकते हैं ना?
7: अरे दीदी, असली में तो मैं भी गई हूँ हिमाचल।
9: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, असली में घूमने की बातें भी करेंगे, लेकिन आज आपके सपनों के बारे में बात करते हैं बच्चों की दुनिया में। सब लोग तैयार हैं?
7: हाँ।
9: तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है बच्चों की दुनिया, क्योंकि बच्चों की दुनिया होती है बहुत ही अमेजिंग। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में कौन कौन जुड़ा है?
10: मेरा नाम अमीक्षा है, मैं क्लास 7th में पढ़ती हूँ।
11: मेरा नाम रूहानी है, मैं क्लास 8th में पढ़ती हूँ।
12: मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
13: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में पढ़ती
14: हूँ। मेरा नाम पलक है, मैं क्लास 6th में पढ़ती हूँ।
15: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
9: ओके, तो हमारे साथ है बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे और इनके बहुत सारे सपने, है ना? सपने तो सब देखते हैं।
7: हाँ।
9: कोई ऐसा है जो सपने बिल्कुल नहीं देखते?
7: नहीं।
9: खुली आंखों से देखते हो कि बंद आंखों से?
7: दोनों से।
9: तो दोनों से देखते हो। तो चलो पहले बात करते हैं बंद आंखों वाले सपनों की, यानी रात को आने वाले सपनों की। तो आप लोग को सबको सपने आते हैं क्या?
7: हाँ।
9: रोज?
7: हाँ।
9: अच्छा ऐसा?
7: हाँ।
9: ओके,
7: कभी
9: कभी कभी आते हैं। रोज किसको आते हैं?
6: दीदी मेरे को।
7: मेरे को।
9: ओके, और ठीक है, किसी किसी को रोज आते हैं, किसी किसी को कभी कभी आते हैं। तो एक एक करके अपने सपने शेयर करेंगे सब लोग, क्या क्या क्या सपने आते हैं, कौन बताएगा पहले?
7: दीदी मेरे को तो ऐसा होता है कि कभी कभी लगातार आ जाते हैं और बीच बीच में गैप हो जाता है, और बहुत बार तो डरावने सपने भी आते हैं, भले ही मैंने कोई हॉरर मूवी नहीं देखी हो तब भी। और कभी कभी ऐसा लगता है मैं बिल्डिंग से गिर रही हूँ नीचे, अपने बेड पर बैठे बैठे ही।
9: और डरावने सपने कैसे आते हैं?
7: जैसे मेरे पीछे कोई भूत पड़ गया ऐसे, मैं इधर उधर भागती हूँ, चिल्लाती हूँ, फिर मेरी आँख खुलती है तब मैं सच में रो रही होती हूँ।
9: हाँ। रोना आ जाता है?
7: हाँ।
9: फिर क्या करते हो जब उठते हो तब?
7: कुछ नहीं, आंसू पोंछ के फिर सो जाती हूँ।
9: अच्छा ठीक है, और किसको क्या सपने आते हैं भाई?
10: दीदी एक बार ऐसे आया कि मैं पलंग पे सो रही हूँ, पर मेरे को ऐसा लगा कि मैं नीचे गिर रही हूँ, पर फिर उठ के देखा तो मैं पलंग पे ही थी।
9: ऐसा लगता है ना गिर रहे हैं, और सच में वो लगने लगता है बॉडी को भी कि हम नीचे गिर रहे हैं, मगर नहीं गिर रहे होते हैं।
7: एकदम बॉडी ऐसी लगती है जैसे नीचे की तरफ वेट जा रहा है सारा।
9: लेकिन असल में तो वो बस एक सपना होता है।
7: हाँ।
9: ओके, और कौन बताएगा अपने सपनों के बारे में?
6: दीदी एक बार तो मैंने सपनों में मूवी बनाई थी खुद।
9: अच्छा।
6: कभी उसमें डोरेमोन आ रहा था, कभी एलियंस आ रहे थे, कभी कुछ हो रहा था, कभी भूत आ रहे थे, पता नहीं सब मिक्सचर होके आ रहा था।
9: ओके, मतलब कार्टून्स भी आ गए उसमें, एलियंस भी आ गए उसमें,
6: सब कुछ।
9: एलियंस वाली कोई मूवी देखी थी क्या आपने?
6: नहीं, वैसी मन में आ गया।
9: ओके ठीक है, ऐसा भी होता है भाई, मूवी बन जाती है सपनों में कभी कभी।

0: मिक्स हो जाता है ना सब कुछ।
1: दीदी मेरे सपना एलियन आए धरती पर, मेरे से हाथ मिला के वापस चलेगा।
0: एलियन धरती पर आके आपसे
1: हाथ मिलाए, मेरे परिचय लिया, चले गए वापस, बोलते आपसे दोबारा मिलने आएंगे।
0: अच्छा ये बोल के गए कि दोबारा मिलने आएंगे?
1: हाँ, पर पता नहीं दीदी कौन सी भाषा में बोल के गए,
0: लेकिन आपको समझ में आ गया।
1: हाँ।
0: वाह, यानी आपने एलियन वाली भाषा सीख ली है।
1: हाँ।
0: ओके, ठीक है, इंटरेस्टिंग सपना था काफी। आपको कोई सपना आया शिक्षा?
1: मुझे कभी कभी सपने आते हैं, और सपनों में ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स आते हैं। कभी वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मैं भाग रही होती हूँ, और फिर मैं ना कभी कमरे में बंद हो जाती हूँ, कुंडी लगा लेती हूँ कि कहीं वो आ ना जाए, मुझे डर लगता है। और मैं सपने में ये ना उठ जाती हूँ, और उठती हूँ तब मेरे को ऐसा लगता है हाँ अभी भी यहाँ कहीं है, पर ऐसा होता नहीं है। डरती हूँ, फिर उठती हूँ, थोड़ा आंसू वगैरह निकल रहे होते हैं, पोंछती हूँ, थोड़ी देर जगती हूँ, उसके बाद लाइट ऑन करके थोड़ी देर बैठती हूँ, जब लगता है कि हाँ अब नहीं आएगा सपना, तब लाइट ऑफ करके सो जाती हूँ।
0: तो मतलब आप पहले खुद को पहले अश्योर कर लेते हो कि ये सपना था।
1: हाँ।
0: और मैं ठीक हूँ और यहाँ कोई भी नहीं आसपास, फिर वापस सोते हो।
1: हाँ।
0: ओके, ठीक है, ऐसा होता है, डरावने सपने भी आते हैं कभी कभी, किसी के में तो एलियंस आ जाते हैं, किसी के में जानवर भी आ जाते हैं। बिल्कुल,
1: ज्यादा ज्यादा सपने कभी कभी तो बादलों पे चले जाते हैं।
0: बादलों पे चले जाते हो?
1: हाँ।
0: क्या करते हो बादलों पे?
1: मैं एक बार सपने में एक से दो बार ही गई हूँ बादलों पे, तब गई थी मैं तो उड़ने की कोशिश कर रही थी वहां पे।
0: अरे वाह, तब तो बड़ा अच्छा लगा होगा।
1: हाँ, वो सपना मेरा सबसे बेस्ट सपना था।
0: बादलों में उड़ने में तो मजा
1: हाँ
0: आता है ना,
1: हाँ
0: पर रियल में पंख होते तो कितना अच्छा लगता ना।
2: ये आपसे एक बात पूछूं, यदि आपको कभी सपने आए हैं?
0: बताऊंगी बताऊंगी, मैं भी बताऊंगी, पहले आप लोग तो कंप्लीट कर लो।
3: मेरे को तो बहुत डरावना सपना आया था, मैं पूरे 5 बिल्डिंग की ऊंचाई से नीचे गई।
0: अरे बाप रे, फिर आपको तो डर
3: लगा?
0: बहुत
3: डर लगा।
0: फिर नींद खुली आपकी? फिर क्या किया? नींद खुली?
3: नींद खोला, फिर मुंह धोया, फिर बाद में तो नींद ही नहीं आ रही थी।
0: ओहो,
3: थोड़ी देर बाद नींद आई।
0: थोड़ी देर बाद नहीं, क्योंकि डर गए होते हैं ना तो एकदम से कभी कभी नींद नहीं आती। रूहानी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप?
4: हाँ दीदी, मेरे को ना सबसे अजीबो गरीब सपना आया था।
0: क्या?
4: मैंने समाधि ले ली।
0: हाँ?
4: हाँ।
0: अच्छा, ओके।
4: चिता पर बैठ रही थी मैं खुद मरने के लिए।
0: अच्छा।
4: हाँ, वो भी रो के।
0: रो रहे थे आप?
4: हाँ।
0: ओके, उसके बाद नींद खुली या नहीं?
4: खुली थी, तब भी रो रही थी मैं, फिर आंसू पोंछ के सो गई।
0: तो घर में किसी को बताते हो आप लोग जब आपको?
4: हाँ,
0: ऐसे सपने आते
4: हैं? ऐसा सपना आया था ना, तब मेरे घर वाले सब साइड में खड़े थे, देख रहे थे मेरे को, फिर मेरे को पता चला कि उसमें ना मेरे को कैंसर हो गया था, इसलिए मैं खुद ही मर रही थी।
0: अच्छा।
4: हाँ।
0: बाप रे, तो आपके घर वालों को जब आप उठे तब बताया आपने कि मेरे को ऐसा ऐसा सपना आया?
5: नहीं, तब तो सब सो रहे थे, अगले दिन बताया।
0: अगले दिन बताया? तो क्या बोला सपने?
4: ऐसा कैसा सपना है, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था।
0: किसने थोड़ी ऐसा सोचा, पता नहीं कैसे आ गया ना।
4: हाँ।
0: तो आप लोग क्या करते हो जब सपना आता है? तो सो तो जाते हो, अगले दिन फिर बताते हो सबको घर में?
3: हाँ, बताते हैं।
4: कभी कभी तो ऐसा होता है कि सपना ही मन से चला जाता है, थोड़ा थोड़ा याद आता,
0: भूल जाते हैं सपने। ओके, और आप लोग जब बताते हो तो फिर क्या बोलते हैं घर वाले?
4: मैं तो सपना ही भूल जाती हूँ अपना,
0: सपना
4: थोड़ा बहुत याद रहता है वो बता देती हूँ,
0: फिर भूल जाते हैं ना।
4: हाँ।
0: पूरा तो नहीं याद रहता, कभी कभी भूल जाता है, वो तो है।
3: तो मम्मी पापा बोलते हैं कि तुझे पूरा याद क्यों नहीं रहता, मैं बोलती हूँ कि मैं तो वो डरावना था इसलिए आधा भूल गई।
0: डरावना था तो भूल जाता है कभी कभी, उस समय डर लगता है लेकिन बहुत है ना?
1: दीदी जब मैंने एलियन वाली बात मेरे घर में बताई ना, मम्मी बोली नाश्ता पानी करवा देती हूँ उनको, आए थे वो,
0: कुछ खिला पिला के भेजना चाहिए था।
1: मेहमान आए, खाली हाथ चले गए, मुझे अच्छा नहीं लगा, वापस बुलाओ उनको,
0: वापस बुलाओ, दूसरे प्लैनेट पे चले गए, इतना दूर सफर किया बिना कुछ खाए पिए।
1: हाँ।
0: गलत बात है, बुरा मान जा।
1: दीदी उनको पता नहीं 2 दिन लगे थे आने में, 2 दिन जाने में लगेंगे,
0: सपने में अलग भाषा थी कुछ।
1: सपने में तो पता नहीं मैं जैपनीज।
0: अच्छा। हाँ भाई, हो सकता
1: पहाड़ों में।
0: अच्छा, ओके। कुछ भी हो सकता है सपनों में, कुछ भी भाषा हो सकती है, कोई भी एथनिसिटी हो सकती है, क्योंकि देखो एक तो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है और दूसरा कौन सा होता है?
4: अनकॉन्शियस,
0: सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड पता है सबको? किसने पढ़ा है? सच्ची सच्ची बताओ, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पढ़ा है तो। नहीं जानते? बोलो।
3: नहीं जानते।
1: नहीं जानती?
0: कोई भी नहीं जानता?
4: नहीं,
0: नहीं जानते। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, एक तो कॉन्शियस माइंड है जो एकदम अलर्ट है, एक्टिव है, आप जो पढ़ रहे हो, जो देख रहे हो, जो एक दूसरे से बात कर रहे हो, हम एक दूसरे के चेहरे याद रखते हैं ना, तो वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। वो आपसे मैं बात कर रही हूँ तो अमीक्षा का मुझे याद है कि नाम क्या है, कैसी दिखती है, और बाकी लोगों का भी जिनका मुझे, जिनसे मैं बात कर रही हूँ, हमारा सबकॉन्शियस बहुत सारी चीजें पिक करता है, आसपास क्या रखा हुआ है, मेरा कॉन्शियस माइंड उस पर ध्यान नहीं दे रहा, बट मेरे सबकॉन्शियस ने काफी चीजें आसपास की रखी हुई भी पिक कर ली और अपने अंदर रख ली। और जो बचपन की भी मेमोरीज होते हैं बहुत, जब आप छोटे थे या आपने कभी तो कुछ चलते फिरते ऐसे ही देख लिया, कॉन्शियस माइंड भूल गया, कॉन्शियस माइंड तो दूसरी चीजें देखने लगा और एब्जॉर्व करने लगा, पर सबकॉन्शियस में सब कुछ स्टोर हो जाता है। तो जब हम सोते हैं ना तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तो उसमें जो कुछ सेव हुआ होता है ना, बहुत सारी फाइल्स, पुरानी पुरानी पुरानी पुरानी मूवीज देखी थी, टीवी देखा था, किसी से मिले थे, किसी के बारे में पढ़ा था, वो सब उसके अंदर है। तो जब हम सो रहे होते हैं ना तो कभी तो कोई फाइल निकाल देता है, कभी तो कोई फाइल निकाल देता है, और फिर दो तीन फाइल एक साथ खुल गई तो वो मिक्स होके कुछ और ही बन जाता है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए कहा जाता है जब आप सोते हैं ना तो उससे पहले कुछ अच्छे अफर्मेशंस लिख के सोएं या बोल के सोएं, क्योंकि जैसे हम सोए हुए होते हैं ना फिर वही वाली फाइल्स ऊपर रहती हैं फिर हमारे, तो हमें स्लीप में मदद करती हैं वो वाली जो ऊपर खुली वाली फाइल्स हैं, है ना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोने के समय और उठने के समय बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो जो आप उसको दोगे वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सोचो उसके अंदर क्या क्या खजाना भरा पड़ा होगा जो हमको याद भी नहीं है, वो भी जो आपने कहीं ऐसे ही निकल गया होता किसी दुकान से, आपको नहीं याद होगा वहां क्या क्या रखा था, आपके सबकॉन्शियस माइंड में काफी कुछ रहता है उसमें। कमाल की चीज है ये, इसके बारे में पढ़ना कभी, है ना। आप तो पढ़ते हो, गूगल यूज करते हो ना आप लोग, है ना, यूट्यूब भी देखते हो, तो कभी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ के देखना, कितना इंटरेस्टिंग है।
5: ठीक है,
0: ठीक है। अच्छा, ये तो हुए बंद आंखों से देखे हुए सपने, चलो खुली आंखों से देखे हुए सपनों के बारे में भी एक अलग से एपिसोड करेंगे। या तो ये बताओ, अच्छे सपने आए हैं किसी को बंद आंखों से, मतलब सपने तो देखे, डरावने भी देखे, भी देखे, अच्छे सपने देखे कोई, जैसे उन्होंने बताया बादलों के ऊपर थे, वैसे कोई अच्छा सपना आया है कभी, या सब कुछ डरावने ही सपने आते हैं।
2: दीदी आपको पता है, एक बार मुझे आसमान में उड़ना था, घूमना था, है ना, तो क्या हुआ मैं सोचने लगी, सामने आया डोरेमोन, उसने निकाला अपने वो पॉकेट में से गैजेट और मुझे ऊपर भेज दिया घूमने के लिए।
0: वाह, उड़ने वाला सपना दो लोगों को आ गया।
2: हाँ दीदी, वो उसने पता नहीं मेरा सर पे क्या पहना है, चक्री।
0: अच्छा, तो वो आप उड़ गए उसको चक्री को लगा।
2: हाँ दीदी, पूरा आसमान दो तीन दिन में घूम के आई थी मैं।
0: वाह क्या बात है, दो तीन दिन तक ऊपर घूम रहे थे।
2: वो खाना आगे दे रहा तो पर खाना खा लेना, पानी पी लेना।
0: ओके ठीक है। हाँ मीक्षा।
3: और दीदी एक बार है ना, मुझे एक फेरी मिली थी सपने में, वो बोल रही थी आपको मेरे घर देखना है, मैंने कहा हाँ आपका मुझे घर देखना है, तो मुझे वो लेके गई थी, मैं 4-5 दिन बाद वापस आई थी।
0: अच्छा,
3: उसका तो घर इतना बड़ा था।
0: कैसा था उसका घर?
3: बहुत अच्छा था,
0: बहुत सुंदर था। क्या क्या था वहाँ पे?
3: वहाँ पे खेलने के लिए बहुत कुछ था, और बुक्स का मतलब पूरा शेल्फ था, उसमें बहुत सारी स्टोरीज बुक रखी हुई थी।
0: अरे वाह,
3: बहुत कुछ था। और
0: ओके, अच्छा लगा होगा ना आपको।
3: हाँ
5: दीदी, मेरी तो अच्छे सपने की स्टार्टिंग भी बुराई से ही हुई है।
0: कैसे?
5: अरे एक जलपरी ने मेरे को काट लिया, फिर मैं जलपरी बन गई। फिर मैं समुद्र के अंदर जाके समुद्र एक्सप्लोर किया था।
0: कैसा लगा था समुद्र अंदर?
5: बहुत मस्त था, और अंधेरा भी बहुत ज्यादा था अंदर जाके।
0: तो सुंदर क्या लगा वहाँ पे?
5: वो रोशनी आ रही थी ना, उसमें बबल्स बहुत अच्छे दिख रहे थे।
0: तो बबल्स अच्छे लग रहे थे,
5: और बहुत सारी फिशेज भी बहुत झुंड बना के ऐसे गोल गोल घूम रही थी, व्हर्लपूल जैसे।
0: फिशेज कितनी कलरफुल होती है ना, कितनी सुंदर होती है ना।
5: क्लोन फिश भी थी।
0: वो तो काफी फनी होते हैं, वो भी एक टाइप है फिश का, बिल्कुल। और फिशेस तो देख सकते हैं हम, प्रकृति ने क्या क्या कलर्स दिए हैं ना, कमाल के।
2: दीदी मैं एक बात बताऊं?
0: बोलिए।
2: मैं खुद भी जलपरी से मिल के आई हूँ।
0: अच्छा,
2: उसने अपना घर बनाया था मोतियों से, वो भी देख के आई थी, उसमें कम से कम 4-5 दिन लग गए थे देखने में।
0: 4-5 दिन लग गए थे? तो आपको सपने में पता चल गया था कि इतने दिन लग गए अभी। अभी घर जाना,
2: गिन रही थी मैं।
0: अच्छा, आप गिन रहे थे?
2: हाँ, एक दिन कम्प्लीट हुआ, दूसरा दिन कम्प्लीट हुआ, तीसरा दिन कम्प्लीट हुआ, और जा रही थी ना मैं अपने 5वें दिन, वो जलपरी उल्टा रोक के मेरे को चाय पिला रही थी।
0: वाह, समुद्र में चाय।
2: हाँ।
0: बात है। वाह, तो उसमें पानी नहीं चला गया फिर चाय में सारा?
2: नहीं, मैंने घर के अंदर बैठ के पिया।
0: घर के अंदर बैठ के पिया। ओके।
2: और वो मैंने जो मतलब जहाँ कोने में बैठी थी ना, वहाँ से पानी हटाया था मैंने।
0: अच्छा, पानी हटा के फिर बैठी साइड में। कैसा घर था जलपरी का?
2: दीदी उसमें सोचोगी नहीं, तो मतलब ऐसे बनाया था ना, मोती मोती मोती मोती जोड़ के ऐसे ही पूरा वो महल खड़ा कर दिया।
0: मोतियों का महल था।
2: हाँ।
0: और अंदर क्या क्या था?
2: अंदर वहाँ पे कुर्सी थी मोती वाली।
0: अच्छा।
2: उनका पूरा मतलब क्या बोलते, किचन का सेट
0: सेट मोतियों वाला।
2: हाँ, मोतियों वाला बेड भी था मोतियों वाला।
0: वाह,
2: उनकी ड्रेसेस रखी थी वहाँ पे मोतियों वाली,
0: वो भी मोतियों वाली। कितना सुंदर होगा।
2: और दीदी वहाँ पे एक मतलब बड़ा सा वो रखा था जिसके अंदर वो मोती निकाल के वहाँ पे जोड़ दी थी बार बार.
0: अच्छा, मतलब स्टॉक था उनके पास पूरा.
2: हाँ, वो थोड़ी थोड़ी देर में मोती बनाया जाता था, वो जोड़ती जाती थी, जोड़ती जाती, जोड़ती जाती. मैंने भी जुड़वाया उनके साथ.
0: वाह, मतलब जहाँ गए वहाँ मदद भी करके आए. वाह. हाँ मीक्षा.
3: और दीदी मैंने वो फेरी के घर में गई थी ना, तो वहाँ पे फेरी के खेलने के लिए ना एक बादलों का घर बनाया था उसने.
0: अच्छा,
3: बहुत सुंदर था वो भी, उसके घर के जैसा ही था, बस बादलों से बना हुआ.
0: बादलों से बना हुआ था.
3: हाँ, उसको वो पेंट कर रही थी तो मैंने बोला मैं भी करूँ, तो बोला हाँ.
0: आपने पेंट कराया? हाँ. कौन से कलर के कर दिया आपने बादल? फिर
3: बादल मैंने ब्लू कलर के किए.
0: ब्लू कलर के किए, पहले व्हाइट थे.
3: हाँ,
0: कितना अच्छा लगा होगा ना. और अनुष्का ने कोई अच्छा सपना देखा कि नहीं?
5: हाँ.
0: क्या?
5: वहाँ पर मैं तो परी बन गई थी, मेरे तो पंख आ गए थे ऐसे. पूरे दो दिन घूम के आए आसमान में.
0: अच्छा. बस आप परी बन के उड़ गए थे. कौन से कलर की परी थे आप?
5: मेरे पिंक कलर के पंख आए थे.
0: पिंक कलर के पंख आए थे.
5: मेरे को वो भी नहीं पता पिंक कलर के कहाँ से आ गए.
0: अच्छा, ओके. तो कैसे लग रही थी ऊपर से दुनिया?
5: बहुत अच्छी लग रही थी.
0: बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत मजा आया. और आपको कोई सपना आया ऐसा?
1: मेरे को तो बस एक ही बार सपना आया था बादल वाला, तब मैंने तो बस बादल पे चल के उसको घूम रही थी पूरा अच्छे से. वहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट थी, बहुत सुंदर व्यू था वहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा था. उसके अलावा बस मुझे हॉरर सपने ही आए हैं.
0: हॉरर सपने? हाँ. कैसे हॉरर सपने?
1: मैं सपने में ना डायनासोर वगैरह, मेरे को ज्यादा ज्यादा एनिमल्स मिलते हैं सपने में.
0: अच्छा, तो डायनासोर भी मिलते हैं आपको?
1: हाँ.
0: अरे बाप रे.
1: डायनासोर, मैं बेड के नीचे छुपी हूँ, वो घूम रहा है आसपास ढूंढ रहा है, मैं ना कवर्ड में बंद हो गई, ऐसे मैं उससे बचने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे ढूंढ रहा था. ऐसे मेरे को सपने बहुत डरावने आते हैं. डायनासोर कभी है ना, डीमंस वगैरह आ जाते हैं सपने में, जॉम्बीज वगैरह, ऐसा सपना भी आ जाता है.
0: आ सकता है. आपने कभी वो जुरासिक पार्क या जॉम्बीज वाली मूवी देखी?
1: हाँ.
0: तो हमारा सबकॉन्शियस ना वो सब चीजें रिकॉर्ड कर लेता है. जैसे पहले बात हुई थी ना, कॉन्शियस माइंड तो शिफ्ट हो गया, वो मूवी देख के आगे बढ़ गया, अब कुछ और देखने लगा, पर सबकॉन्शियस में वो चीजें अंदर तक चप गई और वो चीजों ने आपको बहुत इम्पैक्ट किया था उस समय. तो बहुत पावरफुल है सबकॉन्शियस में, तो वो निकल निकल के बाहर आती है ना. इसलिए हम जो चीजें देखते हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है. और लग रहा है हमारे पास थोड़ा सा टाइम और है अभी.
6: दीदी हमें तो कभी अच्छे सपने आए ही नहीं, हमेशा एक्शन या हॉरर ही आते हैं.
0: एक्शन सपने आते हैं?
6: कभी हम किसी से लड़ाई कर रहे होते हैं, किसी को किसी से बचा रहे होते हैं, या फिर कभी भूत आ जाते हैं.
0: किससे लड़ाई कर रहे होते हो?
6: याद भी नहीं रहता किससे लड़ रहे हैं. बस वो रियलिटी में जब बेड पे होते हैं तो भाई बहन को ही मारते हैं.
0: अच्छा.
6: बेड पे भाई बहन को, सपने में किसी और को.
0: मतलब लेकिन चल रही होती है मार पिटाई.
6: हाँ जी.
0: ओके ठीक है. आमिक्षा.
3: और दीदी हम लोग कोई भी सपना देखते ना उसमें मजा आता है, बस थोड़ा डर लगता है.
0: डर तो लगता है. पता है एक बार किसी ने अपने एक सपने की स्टोरी बताई थी, तो उन्होंने कहा था कि उनको शेर दिखाई देता था सपने में और शेर के पीछे भाग रहा होता था और वो डर के उससे भाग रहे होते थे. तो फिर उनको किसी ने हेल्प करी और उनसे कहा कि अगली बार जब सपने में वो शेर आए ना तो उससे दोस्ती कर लेना, उससे बातें करना कि तुम कहाँ से आए हो, तुम क्या करते हो, मेरे फ्रेंड बनोगे, और ये याद रखना, फ्रेंडशिप कर लेना, उससे बातें करना, और ये याद रखना सपने में कि तुम बहुत पावरफुल हो, बहुत पावरफुल हो, एकदम शेर से तो डबल ट्रिपल 100 times पावरफुल हो. तो अगर ऐसा लगता है कि वो शेर तुम पे हमला कर रहा है तो उसकी तुम पिटाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो तुम.
5: दीदी ऐसा करने का मन करता है लेकिन ऐसा लगता है कि सपने में हम खुद ही कंट्रोल हो रहे हैं.
0: हाँ, तो इसीलिए क्या करना है, जब रात को सोना है ना तो खुद को बोल के सोना है कि आई एम वेरी पावरफुल, आई एम वेरी पावरफुल. इसको बहुत बार लिखो, या तो लिखते हो ना तो वो भी माइंड में हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है. आपको बहुत सारी अच्छी फाइल्स देनी है सबकॉन्शियस में. अभी ये सब डरावनी फाइल्स दी हुई हैं आपने, तो आप अच्छी अच्छी पावरफुल फाइल्स दे दोगे ना तो वो उसको ओवरपावर कर लेंगी. लेकिन अभी बहुत सारी नेगेटिव ये वाली फाइल्स जमा है क्योंकि हमने ऐसी मूवीज देखी हैं, ऐसी चीज़ें देखी हैं ना, कभी पहले भी देखी हो सकती हैं, हो सकता है अब हमने छोड़ भी दी हो, तो पर वो जमा तो हो जाती है फाइल. तो अब उसको पावरफुल पॉजिटिव फाइल्स आपको खोल के देनी पड़ेंगी. आई एम वेरी पावरफुल सोल, आई एम वेरी पावरफुल, ये लिखना है आपको बहुत बार, है ना. और भी ऐसे स्वमान आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अफर्मेशंस ले सकते हो, है ना. आई कैन डू एनी थिंग, आई यू नो, सबसे ऐसा कुछ लिख के भेजो. आई एम गॉड्स चाइल्ड, मेरे अंदर सारे ताकत है, मैं कुछ भी फेस कर सकती हूँ. इसको आप एटलीस्ट 50 times 100 times लिखोगे ना तो वो सबकॉन्शियस फिर आपका एब्जॉर्ब कर लेगा, तो अगली बार वो वाली फाइल भी खोल देगा वो, है ना. तो आप अपने सपने में हैंडल कर लोगे सारे सिचुएशंस.
6: दीदी कई कई बार तो पता ही नहीं लगता कि रियल लाइफ में है या सपनों की लाइफ में है.
0: हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है ना.
6: कई बार अगर कहीं से गिरते होते हैं ना तो एकदम ऐसे आँख खुलती है जैसे हम गिर गए
0: हैं, ऐसा होता है, होता है.
3: और दीदी एक बार तो क्या हुआ, मैं सपनों में लड़ाई कर रही थी तो मैंने एक बार है ना अपनी नानी को एक गुस्सा मार दिया.
0: सपने में लड़ाई करते करते ना, असली में तो नहीं किया ना.
6: दीदी मैंने तो सपने में मम्मी की बहुत बार चाय गिरवाई है. मम्मी जैसे पैर के आगे बैठते हैं ना तो ना ऐसे पता लग जाता है आगे कोई बैठा है, पर सपने में जब लड़ रहे होते हैं ना तो पैर एकदम ऐसे आगे जाते हैं, मम्मी की चाय गिर जाती
0: है. असल में तो नहीं गिराई ना.
6: असल में ही तो गिराई है.
0: अच्छा असल में गिरा दी.
6: बहुत बार गिरवाई है.
0: अच्छा ओके.
2: दीदी चलो मैं आपको अपना हॉरर सपना बताती हूँ.
0: बताओ.
2: एक बार क्या हुआ, मैं घूम रही थी जंगल में, एक हवेली दिखी, मैं उसमें गई. वहां पे गई, अपने आप गेट बंद हो गया. मैं बैठ के वहां पे भजन करने लगी, पता नहीं क्या दिमाग चला, भजन करने लगी. पास में से आई एक आत्मा, बोली तुम्हारा नाम क्या है. मैंने बोला मेरा नाम पल्ला. के मैंने बोला तुम्हारा नाम क्या है. बोलती है भूतनाथ. मैंने बोला अच्छा भूतनाथ, और कैसे बोलूँ उससे. मैंने बातचीत की. फिर बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा. मैंने बोला मार दो. हमने खूब मस्ती की दीदी, सोचा कि नहीं. दो दिन तक मैं हवेली में थी.
0: मस्ती करते रहे भूत के साथ.
2: हाँ. और मैं भूत को बाय बोल के जा रही थी. बोलता है नहीं तुम भी मेरे साथ भूतनाथ नहीं बन जाओ. मैंने बोला नहीं बनना मुझे.
0: नहीं नहीं जाने तो बाद में आके बातें करूंगी मैं. ओके.
6: दीदी इनको तो पता भी लग रहा है कितने दिन लगा के आ रहे. मेरे को तो पता भी नहीं लगता मैं कितने दिन लगा के हूं, क्या करके.
0: हाँ ये थोड़ा मुश्किल है. आप कुछ बोलना चाह रहे थे अनुष्का.
3: हाँ दीदी हमने तो बहुत सपने देखे, आपने कौन से सपने देखे.
0: मैंने कौन से सपने देखे.
3: दीदी आप भी बताओ ना.
0: मैं अभी तो मुझे बहुत समय से कोई सपना नहीं आया, लेकिन पहले जैसे आप लोग बोल रहे हो ना कि गिर रहे हैं, ऐसा वाला सपना आता था मुझे भी कि आप किसी बिल्डिंग से गिर रहे हो अचानक से. और ना एक सपना आता था कि एग्ज़ाम में लिख रहे हो और ना पेन की रिफिल ख़त्म हो गई और फिर लिख ही नहीं पा रही हूँ मैं एग्ज़ाम, ऐसा सपना आता था मुझे.
6: दीदी इतना खतरनाक सपना.
3: फिर दीदी आपने क्या किया.
2: फिर मैम से पेन मांग लिया होगा.
0: हाँ नहीं उस समय मेरा पेपर ही छूट जाता था एग्जाम में.
2: सबसे बड़ा डर रिजल्ट.
3: असलियत में तो नहीं छूटा ना.
0: असलियत में एक बार छूट गया था मेरा, वो भी बोर्ड्स के एग्जाम में.
6: रिफिल खत्म हो गई थी.
0: 6 मार्क्स का मैथ्स का पेपर, नहीं बिना रिफिल के छूट गया था. मगर ठीक है मार्क्स ठीक आ गए.
6: टाइम रिफिल नहीं हुआ होगा.
0: हाँ क्या कह सकते हैं. अब असल लाइफ में तो भाई दोबारा सपना तो नहीं है कि दोबारा देख सके, है ना. जो हो जाता है वो हो जाता है, तो उससे हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना.
3: दीदी मेरी भी मम्मी सपना देखती है अभी भी.
0: आते हैं सपने, बड़ों को भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चों को आते हैं.
3: पर आपको तो नहीं आते अभी इस टाइम.
0: हाँ इस टाइम नहीं आते, क्योंकि पहले जब मुझे सपने आते थे ना तो बहुत ऐसे डर जाती थी मैं बहुत ज्यादा. तो फिर मेरी मम्मी को भी डर लगता था कि भाई बाहर पढ़ने जाओगे तो कैसे रहोगे, क्योंकि बहुत डर जाते थे.
6: अभी कई कई बार ऐसा होता है मैं सपने में उठ के बेड पे ऐसे मतलब खड़ी हो जाऊंगी, फिर दूसरी तरफ सिर करके सो जाऊंगी. मैं खुद को पता नहीं होता मैं कब उठी कब उधर सिर रखा कब सो गई.
0: सपने में बहुत चीजें होती है, लेकिन सपनों की दुनिया अपनी अलग है और रियल दुनिया अलग है. अब हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो हम बातें करेंगे लेकिन बच्चों की दुनिया के अगले एपिसोड में. तो तब तक के लिए हम लेते हैं इजाजत और अपने दोस्तों को कहते हैं बाय बाय.

0: जाओगे तुम।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 8वां पाठ, मच्छरों की दावत, मलेरिया की जांच। आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया है। सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। आरती ने पूछा, अब तुम कैसे हो? ठीक हूँ, रजत ने धीरे से जवाब दिया। जस खीरत बोली, घर पर तो खूब खेलते होंगे। रजत कुछ चिढ़कर बोला, बुखार में खेलने का दिल ही नहीं करता, ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून भी टेस्ट करवाना पड़ा। जस कीरत बोली, खून टेस्ट? वह क्यों? बहुत दर्द हुआ होगा। रजत बोला, नहीं, जब सुई चुभी तो लगा जैसे चींटी ने काटा हो। 2-3 बूंद खून लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है। नैन्सी बोली, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। रजत बोला, हाँ, पर पता तो खून की जांच से ही चलता है। जसकीरत बोली, मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर हैं, पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी बोली, अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़े ही होता है, वह तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। आरती बोली, मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे ही लगते हैं। रजत बोला, होते तो अलग अलग होंगे। नैन्सी बोली, क्या उसी जगह से खून लिया था जहां मच्छर ने काटा था? रजत बोला, नहीं भाई, मच्छर ने कब और कहां काटा यह तो मुझे भी नहीं पता। नैन्सी बोली, खून में क्या दिखा होगा? उसमें क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चल पाया? पता करो, क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? कैसे पता लग पाया था कि उन्हें मलेरिया है? उन्हें मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफ हुई? मच्छरों के काटने से और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? कौन से मौसम में मलेरिया ज्यादा फैलता है और क्यों? मच्छरों से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं? अपने साथियों से भी पता करो कि वे बचाव के लिए क्या करते हैं। यहाँ एक चित्र बना है जिसमें दिखाया गया है कि कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें ली जा रही हैं, जिससे खून की जांच होती है। मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है। एक और चित्र है, डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्म दृष्टि से देखते हुए। इस माइक्रोस्कोप से एक चीज 1000 गुना बड़ी दिखती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। पृष्ठ 69। यहाँ रजत ने जो डॉक्टर से जांच करवाई थी उस रिपोर्ट का चित्र छपा है।

यहाँ पर खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है। इसमें किन शब्दों से पता चल रहा है कि मरीज को मलेरिया है? रिपोर्ट में लिखा है, नाम रजत, आयु 11 वर्ष, स्त्री या पुरुष, पुरुष, रोग की पहचान, ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। एनीमिया क्या है? आरती कहती है, खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था, सिरिंज यानी इंजेक्शन भरकर खून लिया था, जांच में तो एनीमिया निकला। रजत ने पूछा, वह क्या होता है? आरती बोली, डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए कहा। यह भी बताया कि इनमें आयरन यानी लोहा होता है। नैन्सी बोली, कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया? भाई, खून में लोहा कैसे? जसकीरत बोली, कल अखबार में इस बारे में आया था। रजत हंसते हुए बोला, तो फिर तुमने लोहा खाया? आरती, ओहो, ये कोई चाबी वाला लोहा थोड़े ही होता है, पता नहीं कैसा होता होगा। जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। पृष्ठ 70। दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी। 17 नवंबर 2007, दिल्ली। नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। एनीमिक बच्चों को आयरन यानी लोहे की दवाई दी जा रही है। बताओ, यहाँ आरती के खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है। पहली रिपोर्ट है 20 जून 2007 की। इसमें आरती का हीमोग्लोबिन 8 है और रिपोर्ट में लिखा है, नॉर्मल रेंज 12 से 16 ग्राम। दूसरी रिपोर्ट 15 सितंबर 2007 की है। इसमें आरती का हीमोग्लोबिन है 10.5 ग्राम और रिपोर्ट में लिखा है, नॉर्मल रेंज 12 से 16 ग्राम। अब आप बताओ, आरती की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम से कम कितना होना चाहिए था? आरती का हीमोग्लोबिन कितने दिनों में कितना बढ़ पाया? अखबार की रिपोर्ट में अनीमिया से होने वाली परेशानी के बारे में क्या लिखा है? क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में किसी को खून टेस्ट की जरूरत पड़ी? कब और क्यों? पृष्ठ 71। खून टेस्ट से क्या पता चला था? क्या तुम्हारे स्कूल में कभी हेल्थ यानी स्वास्थ्य की जांच हुई है? डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया? पता करो, किसी डॉक्टर से या अपने बड़ों से पता करो कि खाने की किन चीजों में लोहा होता है। मच्छर के बच्चे। जसकीरत बोली, मलेरिया के बारे में एक पोस्टर तो हमारी क्लास के बाहर ही लगा है। सभी झटपट पोस्टर देखने पहुंच गए। पोस्टर में कुछ चित्र हैं, जैसे डिब्बा, कूलर, हैंडपंप और पौधे, जहां आसपास पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। पोस्टर में लिखा है, क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं।
मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। पृष्ठ 72। रजत बोला, देखो इस पोस्टर में लार्वे के बारे में क्या लिखा है, वे क्या होते हैं? नैन्सी बोली, मच्छरों के छोटे बच्चे, ये देखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। आरती बोली, तुमने कहाँ देखे? नैन्सी ने कहा, हमारे घर के पीछे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा था, उसमें पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े तैरते देखकर मैं हैरान रह गई। मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकले हैं, इन्हें लार्वे कहते हैं। रजत बोला, फिर तुमने क्या किया? नैन्सी बोली, पापा ने फौरन ही घड़े का पानी फेंक दिया और घड़ा साफ करके सुखाकर उल्टा रख दिया। जसकीरत बोली, मुझे शाजी आंटी ने बताया था कि मक्खियों से भी बीमारी होती है, पेट की बीमारी। रजत बोला, मक्खी तो काटती नहीं है, वह कैसे बीमारी फैलाती होगी? बताओ बताओ, क्या तुमने कोई ऐसा पोस्टर कहीं लगा हुआ देखा है जिसमें मक्खी मच्छर से बचाव के तरीके बताए हों? ये पोस्टर कौन लगाता होगा? अखबार में इस तरह के पोस्टर कौन देता होगा? इसमें किन बातों पर ध्यान दिलाने की कोशिश की जाती है? तुम्हें क्या लगता है कि इसमें टंकी, कूलर तथा गड्ढों के चित्र क्यों दिखाए गए हैं? सोचो और पता करो। सोचो, पानी में मछलियां डालने के लिए क्यों कहा होगा? ये मछलियां क्या क्या खाती होंगी? पानी में तेल का छिड़काव करने को क्यों कहा गया होगा? पृष्ठ 73। पता करो, मक्खी से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं और कैसे? खोज खबर। कक्षा के सभी बच्चे दो या तीन समूहों में बट जाएं। समूहों को आपस में यह तय कर लेना होगा कि स्कूल और आसपास के इलाके में कौन सी जगह का निरीक्षण कौन करेगा। स्कूल में या स्कूल के आसपास इन जगहों को देखो, क्या इन जगहों पर कहीं पानी इकट्ठा है या नालियां बंद हैं? अगर हाँ तो सही का निशान लगाओ। गमले, कूलर, टंकी, स्कूल का मैदान, गड्ढे, नालियां या और कोई जगह, यहाँ कितने दिनों से पानी इकट्ठा है? इन जगहों की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? पानी में क्या क्या नजर आ रहा है? इन गड्ढों और नालियों की मरम्मत करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इनमें से किसी जगह पर इकट्ठे हुए पानी में लार्वे भी दिखे? इन जगहों पर पानी इकट्ठा होने से क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? लिखो, पोस्टर बनाओ, जिम्मेदारी याद दिलाओ। अपने समूह में कूलर, टंकी, नालियों जैसी जगह जहां पानी इकट्ठा होता है साफ रखने के लिए पोस्टर बनाओ। स्कूल और घर के आसपास यह पोस्टर लगाओ। पता करो, तुम्हारे स्कूल के आसपास की सफाई करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? यह भी पता करो कि चिट्ठी किसके नाम लिखनी है, यह कौन से दफ्तर में जाएगी। अपने कक्षा की तरफ से उन्हें अपने इलाके की सफाई के बारे में जानकारी देते हुए एक पत्र लिखो। पृष्ठ 74। सर्वे रिपोर्ट। कुछ और बच्चों ने भी सर्वे किया, उनकी रिपोर्ट के कुछ अंश यहाँ दिए गए हैं, आओ इन्हें पढ़ें। समूह एक, हमारे स्कूल में नल के पास कुछ हरा हरा सा था जिसे काई कहते हैं, जो एक तरह के पौधे होते हैं। काई से वहाँ फिसलन भी ज्यादा थी, बारिश में तो यह काई बहुत बढ़ जाती है। हमें तो लगता है ये पानी में उगने वाले छोटे छोटे पौधे हैं। समूह दो, स्कूल के पास का तालाब
छोटे छोटे पौधों से भरा पड़ा है। देखने पर पानी तो नजर ही नहीं आता। एक आंटी ने बताया कि ये पौधे तो अपने आप ही उगाए हैं। तालाब के आसपास गड्ढों में भी पानी जमा है। हमने इसमें लार्वे भी देखे। आसपास लगे पौधों को छूने पर बहुत सारे मच्छर जो छुपे बैठे थे उड़ गए। जसकीरत को लगता है कि यह गंदा तालाब पास में है, इसीलिए उसके घर में इतने मच्छर हैं। बताओ, अगर तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब या नदी हो तो उसे देखने जाओ। क्या पानी में या उसके आसपास हरी हरी काई दिखाई दे रही है? तुमने काई और किन किन जगहों पर देखी है? क्या किनारे पर या पानी में कुछ पौधे दिख रहे हैं? उनके नाम पता करो। उनके चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। इन्हें लगाया गया है या फिर ये अपने आप ही उगाए हैं? पानी में और क्या क्या दिख रहा है? सूची बनाओ। यहाँ रोनाल्ड रोज एक वैज्ञानिक की फोटो छपी है। मच्छर के पेट की कहानी, वैज्ञानिक की जुबानी। यह मजेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलो उनसे ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। खाली समय में मैं यही सब किया करता था। पृष्ठ 75। उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थीं। यह बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैसें होती होंगी जिससे यह बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीवाणु खून में कैसे पहुंचते होंगे। मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाजा लगाया और कहा, मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया। हम एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते, फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते। एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काटकर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक झांक। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधला सी जाती थीं। गर्दन अलग अकड़ जाती। इतनी गर्मी थी फिर भी पंखा नहीं झल सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहरबान हो गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। उनका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। उनमें से एक मच्छरी के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा। गौर करने पर पता चला कि वे छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उसी से हमें यह सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रोनाल्ड रोज को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। हम क्या समझे? अपने घर में, स्कूल में और आसपास मच्छर ना हो उसके लिए तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? इसके लिए तुम क्या क्या करोगे? कैसे पता कर सकते हो कि किसी को मलेरिया तो नहीं? मच्छरों की दावत। अभी आप सुन रहे थे
कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का ये 8वां पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आइए, 6 अक्टूबर की बात ही आपसे शेयर करने वाला हूँ और आज विशेष कलाष्टमी और विश्वकर्मा जयंती भी आज है। और इसके साथ ही आज मेघनाथ साहा, विनोद खन्ना, कृपालु महाराज, नेक सियार हुसैन अहमद मदानी, भजन लाल, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही गुरु हराय, नाना साहेब, वी के कृष्ण मेनन, प्यारे लाल खंडेलवाल, लक्ष्मी मल्ला सिंह वाली, गोकुल भाई भट्टा, दत्तू वामन पोद्दार, बाबा साहेब भोसले, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में आप सभी को ले चलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आपको एक सुंदर विचार जरूर सुनाना चाहूँगा। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हों, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि को तो देकर जा सकते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सफर, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। शाम के 4 बज चुके हैं और चाय टाइम हो गया है। आप चाय के साथ साथ थोड़ा सा नमकीन या फिर कुछ बिस्किट वगैरह ले सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, चाय पीने वालों के लिए चाय भी बहुत बड़ा काम करता है। थोड़ा सा अगर आप चाय पीते हैं तो आपकी रिफ्रेशमेंट हो जाती है, या फिर आप शरबत पी के भी अपने आप को रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब गर्मी का समय है। गर्मी में चाय नुकसान कर सकती है आपको। और आप अगर ठंडा पानी, मटके वाला पानी या फिर सादा पानी पी लीजिए, कभी कभी तो ठंडा पानी भी क्या करता है, गला पकड़ लेता है। इससे अच्छा है कि आप नॉर्मल पानी लीजिए और उसमें जो है आप थोड़ा सा नींबू मिला लीजिए और शक्कर मिला लीजिए और शिकंजी बना के बढ़िया से पी लीजिए, और हो सके तो सब्जी के दाने भी डाल लीजिए उसमें। थोड़ी देर पहले अगर आप सब्जी पानी में भिगा के रखते हैं तो वो फूल जाते हैं, और फिर उसके साथ में जब शरबत बनाएंगे आप उसमें अगर डाल देते हैं तो वो ठंडक अच्छी तरह से आपके पेट को कूल करता है। तो आप ज़रूर ये शरबत बना के पीजिएगा। और हो सके तो आपके पास एक छोटा सा कांच का ग्लास हो और एक स्टील का, कांच के ग्लास में पानी शरबत बना लीजिए और उसको एक बार शेक कर दीजिए ग्लास, स्टील के ग्लास को ऊपर से रख के, और फिर रिफ्रेशिंग करते हुए पीजिए। बड़ा मज़ा आएगा, बबल्स देखकर आपको खुशी होगी, है ना।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज विशेष रूप से आप सभी को नमस्कार। आज 6 अक्टूबर है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए मेघनाथ सहा के बारे में बात करते हैं। विनोद खन्ना, जिनका बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उनकी जीवन की मिस्ट्री है और वो मिस्ट्री आपको थोड़ी देर में मैं सुनाने वाला हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। और अभी बात करते हैं विशेष मेघनाथ शाह के बारे में। मेघनाथ जी की बात अगर करें तो ये गणित और भौतिकी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अभिनय किया है उन्होंने, वाला काम किया है। भारतीय वैज्ञानिक थे, उनके अथक प्रयासों से ही इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना हुई थी। डॉक्टर मेघनाथ शाह ने तारों के ताप और वर्ण क्रम के निकट संबंध के भौतिकीय कारणों को खोज निकाला और अपनी इस खोज के कारण 26 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उनका नाम हो गया, इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो चुकी उन्हें। 34 वर्ष की उम्र में लंदन की रॉयल एसोसिएटिक सोसाइटी का फेलो चुना गया और मेघनाथ शाह संसद के भी सदस्य थे। उनके प्रयत्न से भारत में भौतिक विज्ञान को बड़ा प्रोत्साहन मिला था। तो आइए ऐसे विशेष व्यक्ति की जीवन कहानी से आपको रूबरू होने का मौका मिल रहा है आज। वैज्ञानिक डॉक्टर मेघनाथ शाह का आज ही के दिन 6 अक्टूबर 1893 को ढाका वर्तमान बांग्लादेश में लगभग 45 किलोमीटर दूर शाहौरटाली गांव में एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। उनके पिता जगन्नाथ शाह तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके पिता का एक साधारण व्यापार था और मेघनाथ शाह अपने माता पिता की 5वीं संतान थे। आर्थिक रूप से तंग परिवार में पैदा होने के कारण शाह को आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। उनके पंसारी पिता चाहते थे कि वह व्यवसाय में उनकी मदद करे, पर होनहार मेघनाथ को ये मंजूर नहीं था। अब कहानी आगे बढ़ी। 1917 में मेघनाथ शाह कोलकाता के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस में प्राध्यापक के तौर पर नियुक्त हुए और वहाँ पर क्वांटम फिजिक्स पढ़ाते थे। वहीं पर उन्होंने उच्च अनुसंधान कार्य भी किया, DSC की उपाधि प्राप्त की और तारा भौतिकी पर निबंध लिखकर उन्होंने एक बहुत बड़ा पुरस्कार प्राप्त किया। तो यहाँ से उनकी सफलता की कहानी गढ़ी और अनुसंधान के कार्य में एक नया चैप्टर उनका खुला। SN बोस के साथ मिलकर उन्होंने आइंस्टाइन और मिकोवस्की द्वारा लिखे शोध पत्रों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1919 में अमेरिकी खगोल भौतिकी जर्नल में मेघनाथ शाह का एक शोध पत्र छपा। ये शोध पत्र आयनीकरण फार्मूला को प्रतिपादित करता है और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में एक नई खोज थी, जिसका प्रभाव दूरगामी रहा और बाद में किए गए कई शोध उनके सिद्धांतों पर ही आधारित थे। इसके बाद मेघनाथ शाह 2 वर्षों के लिए विदेश चले गए और लंदन के इम्पीरियल कॉलेज और जर्मनी की एक शोध प्रयोगशाला में अनुसंधान कार्य किया। और इसके साथ में मेघनाथ शाह भारत के महान खगोल वैज्ञानिक बने। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनका यादगार अविस्मरणीय योगदान कह सकते हैं और सिद्धांतों को खगोल विज्ञान के तारकीय वायुमंडल के जन्म और उसके रासायनिक संगठन की जानकारी आधार माना जा सकता है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनके अनुसंधान का प्रभाव बहुत दूर और बहुत समय तक आज भी उसके पर काम चल रहा है। कई शोध उनके सिद्धांतों पर आधारित हुए और समीकरण में सारी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और यह समीकरण तारकीय वायुमंडल को विस्तृत अध्ययन का आधार बना दिया। तो ये थे विशेष मेघनाथ शाह। स्वतंत्र सेनानी भी थे और भारतीय कैलेंडर के क्षेत्र में भी उनका विशेष योगदान था और इन सभी कारणों से उनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला और सम्मान प्राप्त करने वाले ये भारत के विशेष वैज्ञानिक हैं। 34 वर्ष की उम्र में लंदन की रॉयल फेलोशिप उनको मिला और 1934 में उन्होंने विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता भी की और भारत सरकार के कैलेंडर में सुधार के लिए समिति गठन की जिसके अध्यक्ष भी मेघनाथ शाह थे। डॉक्टर शाह ने 5 महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी थी जिसे वैज्ञानिकों ने काफ़ी पसंद किया। प्रगतिशील विचारों के धनी मेघनाथ शाह के प्रयासों से ही भारत में भौतिकीय विज्ञान को बड़ा प्रोत्साहन मिला और प्रतिभा के धनी मेघनाथ शाह का 16 फरवरी 1956 को देहांत हो गया। तो ये थी कुछ खास बातें मेघनाथ शाह के बारे में। आप सुनाए हैं रीडमालवन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। चलिए ऐसे विशेष व्यक्ति को नमन करते हैं, सुनते हैं एक और गीत आपके लिए खास। जी हाँ, कुपरहम जी, सुभाष जी जलगांव से और सुरेश जी और सभी हमारे मित्र जिनका भी मुझे नाम अब याद है, वीबा जी, हर्षिता जी और हमारे सुगना बहन और मदन जी, मदन जी के साथ मैं याद आते हैं, भूपत सिंह जी उसके साथ, दयाराम जी और भी हमारे फिरोज जी, जागीरदार जी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लीजिए आप सब के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत, अभी सुनते रहो।
3: बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, क्या ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे। सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। एक विशेष व्यक्तित्व के बारे में आपको सुनाने वाला हूँ और आशा करूँगा कि आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। और आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। एक विशेष एक्टर के बारे में मैंने कहा था, विनोद खन्ना के बारे में। जी हाँ, ये एक चर्चित अभिनेता रहे हैं और अपने समय के हिंदी फिल्मों के बहुत ही पॉपुलर अभिनेता थे। 1997 में और 99 में वे दो बार पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा सांसद भी चुने गए। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारत सरकार में उन्होंने पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री के तौर पर काम किया और बाद में उन्होंने विदेश मंत्री की जिम्मेवारी भी दी गई। विनोद खन्ना अपने वक्त के सबसे हैंडसम अभिनेताओं में गिने जाते हैं और उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नकारात्मक किरदार से की थी और बाद में वो मुख्य धारा के हीरो भी बन गए। उन्होंने सुनील दत्त की 1968 में आई फिल्म मन का मीत में विलन का किरदार निभाया था। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। आज ही के दिन 1946 में पेशावर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। विभाजन के बाद इनका पूरा परिवार मुंबई में आकर बस गया था। इनके पिता किशन चंद्र खन्ना एक बिजनेसमैन रहे और माता कमला खन्ना एक कुशल गृहिणी रही। विनोद खन्ना के दो विवाह हुए थे। पहली पत्नी गीतांजलि थी जिनसे 1985 में तलाक हो गया और बाद में उन्होंने कविता से शादी की। उनके तीन बेटे अक्षय खन्ना, राहुल खन्ना और साक्षी खन्ना है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम श्रद्धा खन्ना है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हां, सफर इस कार्यक्रम को। आइए विनोद खन्ना की कहानी आपको गीत संगीत संवाद के साथ सुनाते हैं। अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
3: किसी ने कहा मोस्ट हैंडसम विलन, सुपरस्टार हीरो और ये नाम भी दिया गया सेक्सी सन्यासी। हम बात कर रहे हैं जबरदस्त एक्टर विनोद खन्ना की।
4: हाँ तो बातों की मुझको भी तमन्ना, तुम जो मानो तो कह दूं जरा सुनना।
3: विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर सन 1946 पेशावर में हुआ, वो पेशावर जो अब पाकिस्तान में है।
5: हाँ तुम ठीक कहती हो, आओ चलो।
3: माँ कमला और पिता किशन चंद खन्ना, इनकी तीन बहनें और एक भाई है। इनके जन्म के बाद ही हिंदुस्तान आजाद हुआ और बंटवारे की आपाधापी में इन्हें मुंबई ले आया गया। इनकी शुरुआती पढ़ाई हुई क्वींस मेरी स्कूल में और उसके बाद इन्हें सेंट जेवियर्स स्कूल में भेज दिया गया।
5: माँ जी, लगता है आपने भी उन्हीं गुरु से शिक्षा पाई है जिनसे मैंने।
3: अभी मुंबई में इनका बचपन बढ़ ही रहा था कि ये पहुंच गए दिल्ली और वहाँ के दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड में इनकी पढ़ाई जारी रही।
5: आप अच्छी तरह जानते हैं
3: विनोद खन्ना साहब ने काफी स्कूल्स बदले। इन्हें बाद में बांध स्कूल देवलाली जो कि नासिक में है वहाँ भेज दिया गया।
5: ठीक है तो कहती है, जब वक्त आ जाता है तो अच्छे अच्छे सवार भी गिर पड़ते।
3: यूं तो विनोद खन्ना बचपन से ही बड़े शर्मीले व्यक्तित्व के इंसान रहे।
6: दिखने में तो अच्छे खासे हैं, लेकिन लड़कियों से बहुत शर्माते हैं।
3: लेकिन एक टीचर ने इन्हें प्रोत्साहित किया, थोड़ी सी जबरदस्ती की और इनसे कहा कि तुम्हें स्टेज पे एक्टिंग करनी ही होगी। डरते घबराते विनोद खन्ना ने स्टेज पे एक्टिंग कर डाली और उस नाटक के बाद विनोद खन्ना की दिलचस्पी एक्टिंग में बढ़ने लगी।
7: गौर से देख लो, कहीं मैं वही तो नहीं हूँ।
3: इसी बीच इन्होंने फिल्म्स देखी 16 साल और मुगले आजम। इन फिल्मों का इन पे इतना गहरा असर रहा कि इन्हें एक्टिंग की तरफ वो धकेलता गया।
7: कोई बात नहीं, ब्रह्मचारी अगर फिसले तो वो गृहस्थी हो जाएगा, लेकिन नारी अगर फिसले तो उसे कोई किनारा नहीं मिलता।
3: विनोद खन्ना साहब एक व्यापारी परिवार से ताल्लुक रखते थे, फिल्मों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। जब इन्होंने अपने वालदेन से कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है, तब तो घर में हंगामा हो गया। पिता की तरफ से सख्त मुखालफत हो रही थी, पर माँ ने सहयोग दिया और बाप पर बेटे के इस झगड़े में सुलह करवाई।
7: मैंने डैडी से वादा किया।
3: इसके बाद एक शर्त रखी गई कि विनोद खन्ना को 2 साल का वक्त दिया जाएगा। अगर ये एक्टिंग में कुछ कमाल कर गए तो ये एक्टिंग करेंगे, नहीं तो फैमिली बिजनेस में आ जाएंगे। और ये शर्त पिता और पुत्र दोनों को ही मंजूर थी।
7: चलो यूं ही सही, मेरी किस्मत ही अपना हिस्सा छीन लेती।
3: अभी 2 साल का वक्त बीता भी नहीं था कि विनोद खन्ना को सुनील दत्त साहब ने एक फिल्म प्रोड्यूस की, मन का मीत। ये फिल्म उन्होंने अपने छोटे भाई के लिए बनाई थी और इसमें विनोद खन्ना को बतौर विलन लिया गया था। विनोद खन्ना को भी काम मिला और इनका चरित्र जरा नेगेटिव शेड लिए हुए था।
7: अरे हारी हुई बाजी मैं तुझे इस तरह जीतने नहीं दूंगा, नीचे उतर, प्यार का सारा नशा भी उतार देता हूं।
3: 2 साल में ही विनोद खन्ना ने साबित कर दिया था कि ये कैसे एक्टर हैं जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते।
7: अब मैं तुम्हारे पिता के असली कातिल का पता लगा कर ही छोड़ूंगा।
3: गुलजार साहब की फिल्म मेरे अपने ने इनकी एक बड़ी जबरदस्त इमेज बनाई और शर्त के मुताबिक विनोद खन्ना को फिर बिजनेस नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक्टिंग में ही इन्होंने मन लगाए रखा। शुरुआती दौर में ये बतौर विलेन जरूर नजर आए थे, चाहे वो फिल्म मेरा गांव मेरा देश रही हो या फिर आन मेरो सजना। पर फिल्म मेरे अपने के बाद सब कुछ बदल गया और ये एक ऐसे हीरो बन के सामने आए जिन्होंने अमिताभ बच्चन की नंबर एक की कुर्सी को हिला दिया। ऐसा माना जा रहा था कि अब विनोद खन्ना बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ कई फिल्मों में आए थे और ये तुलना तो होनी ही थी, चाहे वो हेरा फेरी रही हो या फिर मुकद्दर का सिकंदर। परवरिश और अमर अकबर एंथनी को कौन भूल सकता है।
7: आवाज तुम्हारी है लेकिन शब्द इसके, तुम नहीं बोल रही हो मधु, ये बुलवा रहा है।
3: पर भाग्य कुछ और ही योजनाएं बना रहा था विनोद खन्ना के लिए। फिल्म इंडस्ट्री से क्या, इन्होंने असल जीवन में ही संन्यास ले लिया। रजनीश आश्रम का ये हिस्सा बन गए और ओशो के बताए रास्ते पे ये चलने लगे। ये अपने गुरु रजनीश के साथ अमेरिका चले गए, जहाँ पर ये माली का काम किया करते थे।
7: राधे कृष्ण राधे कृष्ण, वासना का नग्न नृत्य, दुराचार रक्तपात, मानव फिर पशुओं की ओर चला जा रहा है।
3: ओशो ने इनसे ये भी कहा था कि क्यों नहीं तुम पुणे का आश्रम संभालते, पर विनोद खन्ना को वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी लग रही थी। फिल्म इंडस्ट्री से जकायक एक सुपरस्टार दूर चला गया था। इसका असर सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री पर ही नहीं बल्कि विनोद खन्ना के परिवार पे भी पड़ा।
7: किस्मत के बनने और बिगड़ने का मतलब अब मेरी समझ में आ गया।
3: लोग इनके बच्चों को ताने दिया करते थे कि तुम्हारा बाप तो सन्यासी बन गया और अपने गुरु के साथ भाग गया है। परिवार बहुत परेशान रहता था। और फिर वो लम्हा आया जब विनोद खन्ना सन्यास छोड़ वापस फिल्म इंडस्ट्री में आए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इनकी शादी टूट गई।
7: वक्त ने हमसे बहुत बड़ा मजाक किया है।
3: पर फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें हाथों हाथ लिया, चाहे वो कुर्बानी रही या फिर दयावान। विनोद खन्ना ने साबित कर दिया कि सुपरस्टार हमेशा सुपरस्टार ही रहता है।
7: अरे बेशर्मी की जात तो तेरी है, मधु को प्यार से ना जीत सका तो मुझसे डर कर उसे जबरदस्ती उठाकर भाग रहा है।
3: विनोद खन्ना साहब के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनकी पहली शादी गीतांजलि से हुई थी सन 1971 में।
7: मेरा मतलब है कि तुम्हारी सेवा से बिल्कुल ठीक हो गई, अब मैं तुम्हारे कदम से कदम मिला के चलूंगा।
3: इस शादी से इन्हें 2 बच्चे हुए, बड़ा बेटा राहुल खन्ना और छोटा अक्षय खन्ना। इन दोनों ने ही एक्टिंग में खासी कोशिशें की और अक्षय खन्ना ने अपना एक अलग मकाम भी बनाया। पर चूंकि संन्यास लेने की वजह से इनका परिवार जरा बिखर गया था, विनोद खन्ना ने अपनी पहली बीवी से तलाक लिया और सन 1990 में वो घड़ी आई जब इनकी दूसरी शादी हुई। ये शादी कविता से हुई और इस शादी से इन्हें एक बेटा हुआ साक्षी और एक बेटी हुई श्रद्धा। विनोद खन्ना साहब ने राजनीति में भी अपना एक अलग मकाम बनाया। गुरदासपुर से ये पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए। फिल्म इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, ग्लैमर, हर जगह विनोद खन्ना छाए रहे।
8: मैं सही समझ रहा हूँ, मेरी कहानी चुपके चुपके तुम्हारे कानों तक पहुँच चुकी है।
3: विनोद खन्ना साहब अपने राजनीतिक और फिल्मी जीवन की वजह से सदैव सुर्खियों में रहे और सन 2017 में कुछ इस तरह की खबरें भी आईं कि विनोद खन्ना साहब की तबीयत दुरुस्त नहीं है। हालांकि इनके परिवार ने बहुत सारी बातें बड़े तफसील से तो नहीं बताई, लेकिन 2 अप्रैल सन 2017 को यह पता चला कि इन्हें सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में दाखिल किया गया है। जबरदस्त डिहाइड्रेशन है और यह भी बात सामने आई कि ये ब्लैडर कैंसर से पीड़ित हैं। इनकी कुछ तस्वीरें भी आई सोशल मीडिया में जिनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि विनोद खन्ना साहब की तबीयत खासी खराब है। और फिर वो खबर आई जिससे सब डर रहे थे। 27 अप्रैल सुबह 11:20 पर विनोद खन्ना साहब ने दम तोड़ दिया। भारतीय सिनेमा का सुपर सितारा सदा सदा के लिए जग छोड़ चला गया। विनोद खन्ना साहब जैसा ना कोई अभिनेता था और ना ही भविष्य में कोई होगा।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए विनोद खन्ना की कहानी सुनकर बड़ा अच्छा लगा होगा आपको। और आइए आप बात करते हैं एक और विशेष व्यक्ति के बारे में जिन्हें आप सभी जानते भी, जगत गुरु कृपालु महाराज जी के बारे। जी हाँ, राम कृपाल त्रिपाठी। ये नाम आपके लिए पुराना नहीं, पुराना ही है। और एक आधुनिक संत और आध्यात्मिक गुरु थे कृपालु महाराज। का जन्म प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील के मानगढ़ गांव में आज ही के दिन 1922 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के मानगढ़ स्थित सुप्रसिद्ध भक्तिधाम तथा मथुरा जिला के वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर का निर्माण कृपालु महाराज ने करवाया था। इनकी आध्यात्मिक शिक्षा बनारस में हुई और अपने ननिहाल मानगढ़ में जन्मे राम कृपाल त्रिपाठी ने गांव के ही मिडिल स्कूल से 7वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी की और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मध्य प्रदेश चले गए थे महू में, और अपने ननिहाल में पत्नी पद्मा के साथ गृहस्थ जीवन की शुरुआत की और राधा कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए। भक्ति योग पर आधारित उनके प्रवचन सुनने भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे। फिर से उनकी ख्याति देश में अलावा विदेश तक पहुंच गई। उनके परिवार में 2 बेटे घनश्याम और बालकृष्ण त्रिपाठी हैं। इसके अलावा 3 बेटियां भी हैं, विशाखा, श्यामा व कृष्णा त्रिपाठी। उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी, जो इस समय दिल्ली में रहकर उनके ट्रस्ट का सारा कामकाज खुद संभालते हैं, जबकि उनकी तीनों बेटियों ने अपने पिता की रक्षा प्रेता की तरह राधा कृष्ण भक्ति को देखते हुए विवाह करने से मना कर दिया और कृपालु महाराज की सेवा में जुट गई थी। प्रेम मंदिर की स्थापना का अगर बात करें तो भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में बनवाया गया प्रेम मंदिर कृपालु महाराज जी की ही अवधारणा का परिणाम है। भारत में मथुरा के समीप वृंदावन में स्थित इस मंदिर का निर्माण में 11 वर्ष का समय और लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्च किया। इटालियन संगमरमर का प्रयोग करते हुए इसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने तैयार किया। इस मंदिर का शिलान्यास स्वयं कृपालु जी ने ही किया था। यह मंदिर प्राचीन भारतीय शिल्पकला का एक बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर वास्तुकला के माध्यम से दिव्य प्रेम को साकार करता है। सभी वर्ण जाति तथा देश के लोगों के लिए हमेशा खुले रहने वाले इसके दरवाजे सभी दिशाओं में खुलते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पर 8 मयूरों के नकाशी द्वारा तोरण है। एक संपूर्ण मंदिर की बाहरी दीवारों को राधा कृष्ण की लीलाओं से सजा गया है। मंदिर में कुल 94 स्तंभ हैं जो राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से सजाए गए हैं। अधिकांश स्तंभों पर गोपियों की मूर्ति अंकित है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर जी हां सफर इस कार्यक्रम को, और ऐसे महान भक्त जगत गुरु कृपालु महाराज का अपना कार्य पूरा करने के बाद 15 नवंबर 2013 को 7:05 पर गुड़गांव के फोर्ट्स हॉस्पिटल में इनका निधन हुआ। तो ये थी कहानी कृपालु महाराज की। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर जी हां सफर इस कार्यक्रम को। आइए एक और खूबसूरत भजन आपके नाम सुनते रहे।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपने मन की कमजोरियों को देखना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है, यही साहस आपको मजबूत बनाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। और नेक सियार हुसैन अहमद मदानी, भजन लाल, इन सभी का आज जन्मदिन है। तो आइए भजन लाल जी के बारे में बात करते हैं। और ये विशेष व्यक्ति जिनको आप सभी जानते हैं, और ये हरियाणा के कुशल राजनीतिक तथा 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले राजनेता थे। वो पहली बार 1979 में, फिर 1982 में, और इसके बाद 1991 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। एक बार केंद्रीय कृषि मंत्री भी रह चुके थे। तो आइए भजन लाल बिश्नोई के बारे में बात करते हैं। आज ही के दिन 1930 को भजन लाल का 6 अक्टूबर को कोतावली पंजाब के बिश्नोई जाट किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। ये वह हिसार आकर बस गए बाद में, और उनके बचपन के बारे में कहा जाता है कि वह गांव में पैदल आदमपुर की मंडी में घूमा करते थे, घी बेचा करते थे। मंडी के एक दुकानदार ने भजन लाल की कुशलता को भांप लिया और उनको अपनी दुकानदारी में हिस्सेदारी पर रख लिया। आगे चलकर इसी कुशलता के दम पर वो भजन लाल ने विधायक जुटाए और अपनी सरकार बनाई। और 1977 में जनता पार्टी में शामिल होने के लिए भजन लाल ने मुरारजी देसाई के घर 18 किलो घी के 3 पीपे भिजवाए थे। हरियाणा के कल्चर में किसी को अपने यहाँ से घी लाकर देना अच्छा और घनिष्ठ रिश्ते की निशानी माना जाता है। कहा सकते हैं कि एक बार किसी का घी खा लिया तो आप पर उसके घी का कर चढ़ जाता है। आने के लिए भजन लाल ने वैसे ही ट्रिक अपनाई जैसे जनता दल में जाने के लिए की थी, लेकिन इस बार घी के बजाय संजय गांधी के नवजात शिशु वरुण गांधी के लिए हरियाणवी अंदाज में सोने के पत्थर चढ़ा ऊंट भिजवाया था। सन 1977 में चुनाव के बाद केंद्र में विशेष सरकार बनी, लेकिन आपसी मतभेद के चलते यह सरकार गिर गई। 80 में केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार वापस आई तो भजन लाल ने देश के एक बार फिर चौंका और जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने भजन लाल अपने करीब 40 विधायकों समेत कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे ही 21 साल जब कांग्रेस में आने के बाद भजन लाल ने राजीव गांधी से हरियाणा में पूर्व कांग्रेसी बंसी लाल के साथ मीटिंग कराने की दरख्वास्त की। जब बंसी लाल और भजन लाल की मीटिंग खत्म हुई तब बंसी लाल की कई शिकायतें दूर हो गई, क्योंकि इस मीटिंग के बाद बंसी लाल के बेटे को मंत्री बना दिया गया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भजन लाल के बारे में एक अधिकारी ने कहा था कि भजन लाल भगवान को भी मात दे सकते हैं और भगवान को पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से उन्होंने फिर एक पार्टी की गठन की, फिर उसके बाद राजनीति का सफर में राजनीति के प्रोफेसर की उपाधि इनको प्राप्त हुई और 2011 में 80 साल की उम्र में भजन लाल बिश्नोई का देहांत हो गया। उनके देहांत पर देश के मुख्य अखबारों में छापा था, अब गैर जाटों को लंबित करने वाला नेता नहीं रहा और इसका फायदा जाट नेताओं को जाएगा। लेकिन इतिहास को देखें तो ये बात भी पता चलती है कि अपने रहते हुए भजन लाल ने किसी और गैर जाट नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया। भजन लाल की खासियत थी कि वो दूसरे खेमे में खरीद लिया जाने वाला विधायकों की पहचान कर लेते थे और राजनीति के इस पाक कला से उनके विरोधी उनसे नफरत भी करते थे और मन ही मन तारीफ भी करते। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सफर इस कार्यक्रम को। चलिए भजन लाल बिश्नोई के बारे में आपने सुना, आइए आगे बढ़ते हैं एक और गीत की तरफ। सुनते रहो मस्कर।

0: आप हो रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और आइए अब हमेशा की तरह फिर से आज वंदना जी ज्ञान सुमन इस किताब से हमें जो है विशेष पुरुषार्थ की कुछ बातें, आध्यात्मिक बातें शेयर करने वाली। तो आप सभी की तरफ से वंदना जी का बहुत बहुत स्वागत है।
2: तो दोस्तों ओम शांति, आज मैं हूँ वंदना, फिर से आपके साथ एक और नई कड़ी को लेकर। आज के लेक्चर का टाइटल है पुरुषोत्तम वही बनते हैं जो मर्यादाओं पर चलते हैं, मर्यादा तोड़ी तो योग नहीं लग सकता। ये जो टाइटल है, तो जैसे आपको पता है दादी जानकी जी ने जो बुक लिखी है ज्ञान सुमन पार्ट 4, उसके लेक्चर का टाइटल है। तो यहाँ बात करते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर जब स्वयं भाग्य विधाता शिव हमें मिले हैं तो वो हमारे जीवन को मर्यादित बनाते हैं, क्योंकि हम सभी द्वापर से अमर्यादित जीवन ही जीते आए हैं। मर्यादा पर चलना कोई मुश्किल बात नहीं है। शिव बाबा हमें रोज अमृत वेला से लेकर रात्रि सोने तक हर चीज की मर्यादा बताते हैं। जब हम मर्यादा प्रमाण कदम उठाते हैं तो स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। लेकिन जब हमसे कोई मर्यादा टूटती है तो इसका सीधा सा मतलब है विकर्म, यानी पाप होता है। और अगर हमसे कोई विकर्म होता है तो उसका कोई भी बोझ लेकर हम योग में नहीं बैठ सकते हैं। सपोज हम बैठ गए और फिर कहते हैं मैं तो योग का अनुभव ही नहीं होता है। जब हमारे साथ कोई बोझ होगा तो परमात्मा से हमारा कनेक्शन नहीं बन पाता है, क्योंकि हमारी बुद्धि तो उसी बोझ में अटकी रहती है, उसी के बारे में हम सोचते हैं। तो हम हर रीति से बहुत ही संभल कर कदम कदम पर चलते हैं। यहाँ तो ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ करके दिखाया, नियम मर्यादा और सभ्यता से चलाया था बाबा ने। इंद्रप्रस्थ में रहने वाली परी अगर मृत्यु लोक के मनुष्य से बुद्धि योग लगाए तो वह पत्थर बुद्धि बन जाएगी, फिर उसकी बुद्धि में कुछ नहीं बैठेगा। तो हम परम धाम निवासी आत्माएं हैं और शिव बाबा कहते हैं स्वयं को आत्मा समझ, देहवा देह के सर्व संबंधों को भूल, मुझे याद करो। और हम क्या करते हैं, हम करते हैं मनुष्य बुद्धियों से अपना योग लगाते हैं, मनुष्य के संबंधों में हम लिप्त रहते हैं। तो पुरुष जो आत्मा है तो उसका सुप्रीम सोल से तो योग ही नहीं होता है हमारा, तो हमें पुरुषोत्तम कौन बनाएगा। आपने सुना होगा रामायण, तो सभी ने कथा सुनी है रामायण की। रामायण की जो सारी कथा है वो मर्यादा पर आधारित है। जहाँ सीता ने मर्यादा तोड़ी तो राम के पास चली गई। राम ने हमेशा मर्यादा निभाई, इसलिए टाइटल उनको दिया जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और भी आपने जैसे सुना है कि पुरुषोत्तम मास होता है, तो जब पुरुषोत्तम मास होता है तो लोगों के लिए भक्ति मार्ग में उसका इतना महत्व होता है कि वो पूरा मास उसी के अनुसार चलते हैं, बिल्कुल मर्यादित रहते हैं, जैसा उसमें कहते हैं वैसे ही उसको फॉलो करते हैं, मगर परिवर्तन हम उसको कोई देखते ही नहीं है। जब हम बाबा की बताई हुई मर्यादाओं पर शत प्रतिशत चलते हैं तो यही मर्यादाएं फिर हमें पुरुषोत्तम बनाती हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारी दादियां हैं, जिसने भी दादियों के पुराने फोटो देखे होंगे और उनको फिर अंतिम अवस्था में देखा होगा तो जमीन और आसमान का अंतर है। उनका रूप रंग बिल्कुल फरिश्तों वाला, आत्मा कंचन और शरीर भी उजला, बिल्कुल बहुत तेजस्वी, फरिश्तों जैसी चाल और तेजस्वी स्वरूप दादियों का था। तो हम श्रेष्ठ आत्माओं की पहली बात है कि हमारी स्मृति ही उत्तम हो, और जब स्मृति उत्तम है तो वृत्ति, दृष्टि, स्थिति स्वतः ही हमारी श्रेष्ठ होती है। पहली स्मृति ही हमारे मर्यादा स्वरूप को सदा निर्विघ्न बनाती है, क्योंकि जो अभ्यास हमारे लिए आत्मिक स्वरूप का मुश्किल लगता है और हम कहते हैं स्वयं को आत्मा कैसे समझें, बार बार हम भूल जाते हैं। तो आप सोचिए क्या ब्रह्मा बाबा के लिए ये चीज़ आसान रही होगी? बिल्कुल नहीं रही होगी, वो भी तो हमारे आपके जैसे घर गृहस्थ में रहते थे। तो लेकिन उन्होंने किया और पाया, इसीलिए कहते हैं फॉलो फादर। तो इन सभी इस बातों को हम ध्यान में रखकर इस समय परमात्मा की शक्तियों को साथ में लें, उसका लाभ उठाएं, परमात्मा को हमेशा अपने साथ में रखें, स्वयं को आत्मा समझें और उनसे हम कनेक्ट करते रहें, तो हम पुरुषोत्तम बन जाएंगे और पुरुषोत्तम बन हम सत्यों के राज्य में एंट्री करेंगे। मैं समझती हूँ आपको मेरे विचार पसंद आएंगे। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वंदना जी, बहुत ही सुंदर बातें आपने, आध्यात्मिक बातें सुनाई, जहाँ पर पुरुषार्थ की बात आप सुना रहे थे। तो चलिए मित्रों, आशा करूँगा कि वंदना जी की थोड़ी थोड़ी आध्यात्मिक बातें आपको रोज़ मिलती हैं तो आपको भी अच्छा लगता है। आइए आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत गीत अभी आपके लिए, आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मस्कराते रहो।

0: मैं ढूंढे गांव से हूँ। आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनना है, काफी अच्छी बातें आप सुनना है। चलिए, आज हमने मेघनाथ शाह, विनोद खन्ना, कृपालू महाराज और भजनलाल बिश्नोई के बारे में आपको कुछ बातें बताई और आशा करूंगा कि आप सभी को ये बातें सुनकर बड़ा अच्छा लगा होगा। और अब मैं आपको ले चलता हूँ एक छोटी सी कहानी की तरफ। आशा करूंगा आपको कहानियाँ सुनकर बड़ा अच्छा लगता होगा, तो मैं एक छोटी सी कहानी के साथ कार्यक्रम को पूरा करूँगा। और इस कहानी में देखिए, बहुत सारी चीज़ें हम कई बार सुनते हैं, लेकिन सुनने के साथ साथ जब आप उसको समझेंगे और उस सीख को याद रखेंगे तो अच्छी बात है। तो आइए, अब मैं चाहूँगा कि एक अच्छी सी कहानी मिल जाए, छोटी सी। लास्ट टाइम मैंने एक बूढ़े आदमी की कहानी सुनाई थी। उस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुशी का पीछा मत करो, जीवन का आनंद लो। शायद आपको याद हो, एक बूढ़े की कहानी हमने सुनाई थी। बूढ़ा हमेशा जो है तंग रहता था और खुशी पाने के चक्कर में उसके पीछे भागते हुए अपने आप को या दूसरों को गुस्सा करता था। लेकिन एक दिन उनको समझ में आ गया कि ये तो मैं कैसे कम कर रहा हूँ। फिर वो शांत हो गए और वो एक जगह खड़े होकर हंसने मुस्कुराने लगे। तो लोग उनको देखकर भाई पूछ ही लिया कि भाई ऐसा क्या हुआ है तुम्हें। 80 साल के बूढ़े ने कहा, 80 साल से मैं खुशी का पीछा कर रहा था और ये बेकार था, मुझे खुशी कभी मिली नहीं। और फिर मैंने खुशी के बिना जीने का, जीवन का आनंद लेने का फैसला किया, इसलिए अब मैं खुश हूँ। यानी जिस चीज़ के पीछे आप पड़ जाते हो ना, वो मिलता नहीं, उसको छोड़ दीजिए। आप अपने आप में रहिए, अपने में खुशी ढूंढिए और अपने खुशी को जाहिर कर जाए, तो आपका जीवन आनंदमय हो जाता, खुशी से भरपूर हो जाए। चलिए, अब मॉरल ऑफ द स्टोरी भी समझिए और स्टोरी को शायद आपने याद कर लिया होगा तो आपको सारी कहानी याद आ गई होगी, नहीं तो स्टार में ही समझ जाइए। अब मैं एक और रास्ते में बाधा, ये एक मॉरल स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत पुराने समय की बात है, एक राजा ने जानबूझकर एक बड़ा सा चट्टान रास्ते में बीचों बीच रखवा दिया। वहां वो पास के एक बड़े से झुग्गी में छुप गया। अब भी रास्ते के बीच में अगर एक बहुत बड़ा पत्थर रख देगा तो कोई ना कोई राजा को गाली गलौज करेगा, है ना। सोचा कुछ ना कुछ तो होगा, वो देखना चाहता था आखिर कौन इस पत्थर को या चट्टान को देख कर कुछ बोलता है या फिर चट्टान को वहां से हटाता है। उस रास्ते से बहुत से लोग आने जाने लगे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को हटाया नहीं। यहाँ तक कि राजा के दरबार के ही बहुत सारे मंत्री, धनी, व्यापारी उस रास्ते से गुजरते रहे, लेकिन किसी ने भी ऐसा हटाने का हिम्मत नहीं जुटा। उल्टा राजा को ही बोला, कैसा राजा है, उन्होंने अपना जिम्मेवारी पूरा नहीं किया, रास्ते का पत्थर तो उन्हें हटाना चाहिए। बहुत से लोगों ने राजा को सड़क पत्थर साफ रखवाने के लिए जोर जोर से आरोप भी लगा, लेकिन उनमें से किसी ने भी पत्थर को हटाया नहीं। हम भी ऐसे ही करते हैं, जब रास्ते में जाते हैं अगर कोई कुत्ता बिल्ली मर जाता है तो हम उसे हटाते नहीं, हम सोचते हैं कि म्युनिसिपैलिटी वाला आएगा हटाएगा, है ना। और कभी कभी तो हाईवे पे उतना दूर किसी को मालूम नहीं, और है ना, आप सभी देखते हैं, आप गर्मी का समय है तो आप समझ गए कभी कभी। तो तभी एक किसान सब्जियों का भार लेकर वहाँ से निकल रहा था। सीलाकंड चट्टान के पास पहुंचने पर किसान ने अपना बोझ नीचे एक साइड में रख दिया और पत्थर को सड़क से बाहर धकेलने का प्रयास किया। काफ़ी मशक्कत करने के बाद आखिरकार उसे सफलता मिली। जब किसान अपनी सब्जी वापस लेने गया तो उसने देखा कि सड़क पर एक पर्स पड़ा था, जहां पत्थर पड़ा था वहीं पर। पर्स में कई सोने के सिक्के और राजा का एक नोट भी था। उसमें बताया गया था कि सोना उस व्यक्ति के लिए था जिसने सड़क से चट्टान को हटाया था। तो कहानी यही है कि भाई हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमारे सामने आने वाली हर बाधा हमें अपनी परिस्थिति को सुधारने का अवसर देती है, और जबकि असली शिकायत कर आलसी शिकायत करते हैं और दूसरे अपने दयालु और हृदय उदारता के साथ काम करते हैं और उनकी मुराद पूरी हो जाती है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र इस कार्यक्रम को। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, सलाम नमस्ते, खम्मा गणेशा, जय हिंद, जय भारत,
2: रहे या ना रहे कल, कल याद।
3: अभी बजे हैं शाम के 5।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM और कार्यक्रम शुरू हो चुका है युवा मंच का। और आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं जिनसे हम जानेंगे कि करियर में हमें जो डिसीजंस लेने होते हैं, कभी कभी ऐसा पॉइंट आता है जब हमें ये जानने का होता है कि हमें आगे कौन से ऑप्शंस लेने हैं और कौन कौन से डाइवर्स फील्ड हमारे लिए ओपन है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे साथ एक करियर कोच हमारे साथ हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: जी। हमारे साथ शोभित सर हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में। सर,
1: तो मैं एक करियर काउंसलर हूँ, लाइफ कोच हूँ और एक स्पिरिचुअलिस्ट हूँ, और लखनऊ में मेरी सर्विसेज में प्रदान करता हूँ। हमारा ऑफिस यहाँ पर है। हमको इस फील्ड में काम करते हुए, सेवाएं देते हुए करीब 15 वर्ष हो गए हैं, और हम लोग अलग अलग स्कूल के साथ काम करते हैं। हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, युवाओं के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स बच्चों के साथ हम लोग काम करते हैं ताकि उनको एक दिशा मिले जीवन।
0: जी सर, थैंक यू सर। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की मुलाकात को। सबसे पहला सवाल लेकर कि जैसे कि कई बार हमारे पास चॉइसेस आती हैं, सबसे पहली चॉइस जो हमें लाइफ में मिलती है करियर को लेकर, वो क्लास 10th के बाद मिलती है कि हमको साइंस में जाना है कि कॉमर्स में जाना है। सर, तो वहाँ हमारे कई स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है, उनके मन में हमेशा उन्हें ये बताया जाता है कि जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो या जो तुम्हें अच्छा लगता है वहां जाओ, लेकिन मन में एक डर रहता है कि क्या मैं इस चीज को आगे कर पाऊंगा कि नहीं, इसका कितना स्कोप है। और कभी कभी व्यक्ति फैमिली प्रेशर में भी आ जाता है और पेरेंट्स प्रेशर देते हैं कि नहीं, उन तुमको यही सब्जेक्ट लेना है, यही पढ़ना है। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहली चीज हम कैसे पहचाने कि हमें कहाँ जाना है, और अगर पेरेंट्स हमें फोर्स कर रहे हैं अगर इस चीज को लेके, तो हम उन्हें कैसे कन्विंस कर सकते हैं उस फील्ड में जाने के लिए।
1: तो आपने जो अपना प्रश्न पूछा है उसका मैं उत्तर कुछ 3 भागों में दूंगा, क्योंकि एक प्रश्न में कई प्रश्न और कई पहलू समाये हुए हैं।
0: जी।
1: तो जैसे पहले आपने कहा कि 10वीं के बाद बच्चों को एक मौका मिलता है चुनाव करने के लिए कि वो साइंस लें कि कॉमर्स लें, तो बच्चों के पास साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, जिसे आर्ट्स भी कहते हैं, ये 3 विकल्प होते हैं चुनने के लिए। और हर स्कूल ये 3 विकल्प जरूरी नहीं है कि वो दे। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि आपके स्कूल में अगर ह्यूमैनिटीज नहीं है या फिर कॉमर्स नहीं है तो फिर ये मत समझिएगा वो विकल्प है ही नहीं दुनिया में या अन्य स्कूलों में। अब बात आती है कि हम ये चुनाव कैसे करें कि हम कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रीम सेलेक्ट करें। तो अगर हम विज्ञान की बात करते हैं, साइंस की, तो साइंस के लिए आमतौर पर स्कूल में कट ऑफ होता है कि जैसे जो

है कि बच्चों को ये बात समझें कि विज्ञान में भी हमारे पास क्या अलग अलग शाखाएं हैं साइंस में. जैसे साइंस में अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो उसके लिए मैथमेटिक्स का होना जरूरी होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ. और अगर किसी को जीव जंतु और पेड़ पौधों में रुचि है तो उनको बायोलॉजी लेना होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ. इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये भी अलग क्षेत्र हैं जो कि व्यक्ति साइंस लेकर उसको आगे कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं उस क्षेत्र में. इसके अलावा अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए आमतौर पर कोई कट ऑफ नहीं होता है और इसको कोई भी विद्यार्थी अपना जो है करियर के रूप में या अपने इच्छा या रुचि के अनुकूल उस विषय का वो चयन चुनाव कर सकता है. लेकिन बात ये समझनी होगी कि हर करियर जो है अच्छा करियर है. और ये बात, ये धारणा, अवधारणा बनाना कि अगर विज्ञान हमने लिया है, साइंस हमने लिया है तो हम बुद्धिमान समझे जाएंगे और यदि कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज आर्ट्स लिया है तो हमको मंद्र बुद्धि का समझा जाएगा, कहेंगे कमजोर है पढ़ाई में तो भी आपने ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स ले लिया है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. जहां पर हमारी रुचि होती है वहां पर हम विषय का, उस सब्जेक्ट का हम चुनाव करेंगे तो हम सफलता को प्राप्त करेंगे. तो दूसरा पहलू आपने कहा कि माता पिता जोर करते हैं, एक एक प्रकार का जैसे आपने कहा प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं कि आप फला फला सब्जेक्ट स्ट्रीम ही आप चुनाव करेंगे. आमतौर पर देखा गया है कि माता पिता जिस क्षेत्र में होते हैं वो उसी क्षेत्र में बच्चों को अपने विषय का चुनाव करने के लिए प्रेरित करते हैं. मिसाल के तौर पर अगर माता पिता डॉक्टर हैं तो वो चाहेंगे कि बेटा पीसीबी बायोलॉजी विषय लें. अगर माता पिता इंजीनियर्स हैं तो वो चाहेंगे पीसीएम लें. और अगर माता पिता बिजनेस में हैं तो वो कहेंगे कि आप कॉमर्स लो बेटा. और अगर माता पिता संगीत में हैं तो वो प्रेरणा देंगे बच्चों को संगीत में जाएं. अगर वो कथक घराने से हैं तो कहेंगे कि आप ह्यूमैनिटीज लेके कथक आगे घर के नाम को रोशन करिए, आप आगे लेके चलिए. कोई अगर साइकोलॉजी में है और वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है तो भी उनको प्रेरणा देंगे कि ह्यूमैनिटीज में साइकोलॉजी सब्जेक्ट लें. तो बच्चों को खुद, या एक तो बच्चों को ना चूंकि 15 वर्ष की आयु होती है, 16 वर्ष की आयु होती है, आज के समय में बच्चों के पास जानकारी उपलब्ध कराने की कमी नहीं है. गूगल के माध्यम से वो ये सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. तो उनको थोड़ा सा विवेकशील बनना होगा. और जैसे आपने सवाल हमसे पूछा, ये सवाल आप गूगल से पूछेंगे और गूगल ये सारी जानकारी आपको वहां पर विस्तार से आपको देगा कि 10वीं के बाद कौन कौन से विषय हमारे पास हैं पढ़ने के लिए. क्योंकि हम आज के समय में डिजिटल युग जिसे कहते हैं, हम लोग डिजिटल युग में जी रहे हैं. सारी सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं, सारा काम ऑनलाइन हो गया है. यहाँ तक घर बैठे आपको सामान मिल जाता है, खाना सब्जियां मिल जाती हैं. और अगर आपको प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो वो भी घर बैठे आप कई एप्स हैं जैसे ऊबर है, ऊबर सर्विसेज, वहां से आप सेवाएं ले सकते हैं. तो उसी प्रकार से जानकारी भी हम हर प्रकार की गूगल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त बच्चे कर सकते हैं. लेकिन विशेष ध्यान देने की बात यह है कि उनको शांति से अपने साथ बैठकर ये आंकलन करना होगा कि मेरी रुचियां किस क्षेत्र में और मेरी काबिलियत किधर है, वेयर माई इंटरेस्ट लाइज एंड वेयर माई एप्टीट्यूड लाइज. एट द सेम टाइम अगर हम केवल अपना चुनाव इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के ऊपर छोड़ देते हैं और हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं उसको हम नहीं समझते हैं तो भी यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो सकती है. क्योंकि 12वीं के बाद फिर क्या करेंगे, 12वीं के बाद फिर चुनाव करना होगा. तो चुनाव केवल आप अपनी रुचियों के आधार से नहीं करते हैं, क्योंकि रुचियां भी 2 प्रकार की होती हैं और बच्चे अक्सर इस बात में मूंझ जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे एक रुचि होती है मनोरंजन के लिए और एक रुचि होती है पैसा कमाने के लिए. तो दिन भर 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा हम क्या काम करेंगे. जैसे लोगों, क्या हमको धूप में बाहर बाजार में घूमना अच्छा लगता है, तो कई युवा

0: कहेंगे हाँ अच्छा लगता है, लेकिन क्या रोज आपको ये काम अच्छा लगेगा, 8 घंटा 14 घंटा रोज करना? हाँ, तो ये एक प्रश्न यहाँ पर उठता है। तो या फिर कहते हैं कि हमको गैजेट के साथ, हाँ गैजेट के साथ काम करना अच्छा लगता है, तो शौकिया अच्छा लगता है, जैसे कि कुछ लोगों को फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एडिट करना, फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसको रोज आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, वो भी 8 घंटा निरंतर 14 घंटा निरंतर? हाँ, तो डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के रूप में आ गया है, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बनना, हाँ ये भी एक प्रोफेशन के रूप में आ गया है। तो ये हमको पूछना होगा अपने आप से, और ये अलग करना होगा, रुचियों की जो मनोरंजन के लिए है वो अलग है, और जीविका के लिए जो हमारी रुचियां हैं वो अलग हैं। तो इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम नहीं आकलन कर पा रहे हैं, तो हम वैज्ञानिक तरीके से साइकोमेट्रिक टेस्ट के माध्यम से एक करियर काउंसलर से परामर्श लेकर और एक एक सुलझे हुए और वैज्ञानिक ढंग से हम अपनी काबिलियत, अपने एप्टीट्यूड को, अपनी क्षमताओं को और अपनी रुचियों को समझ सकते हैं।
1: जी सर, बहुत अच्छा लगा जान के, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे हम अगर कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उस चीज़ की पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए, और हम ये नहीं
0: जी
1: सोच सकते कि वो दूसरा व्यक्ति वो ले रहा है या उसके से मेरे को क्या होगा करके, अगर मन में डर है तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है। और ये तो सर हमारे स्कूल की बात हो गई कि यहाँ पे हमने 10th के बाद चॉइस ली, यही चीज़ 12th के बाद भी अप्लीकेबल होगा कि इस फील्ड में हमको जाना है, उसकी प्रॉपर रिसर्च करके इंटरनेट में सारी जानकारी हमें मिल जाती है और हम अपने उस स्ट्रीम में जा सकते हैं। सर, अब हम जब हमारे स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज में आ गए, कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहे हैं साथ में, लेकिन जैसे मैं पर्सनली बात करूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग करते करते या कोई भी जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं साथ में कुछ एडिशनल स्किल्स भी हमें ज़रूरत होती है कि हम जब फ्यूचर में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे तो वहाँ वो स्किल्स चाहिए जो कॉलेज में हमें नहीं सिखाई जाती, या हो सकता है कि कई कॉलेजों में वो चीज़ें स्किल्स सिखाई नहीं जाती, होता क्या है वो सब बताया ना जाता हो। तो कौन कौन सी स्किल्स है? पहली चीज़ तो ये कि वो जो हम सीखें जो हमें आगे जॉब में काम आए, और हम वो कहाँ से सीख सकते हैं?
0: देखिए, स्किल्स जो होती है ना, दो प्रकार की होती हैं, अगर हम उसकी शाखाएं बनाए, एक हार्ड स्किल्स होती है, एक सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। तो ये दोनों ही हमको जरूरत होती है जीवन में सफलता पाने के लिए। हार्ड स्किल होगी जो कि आपके विषय से संबंधित है, तो जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग की जो शाखाएं हैं वो 22 से भी ज्यादा शाखाएं वर्तमान में हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मरीन, पेट्रोलियम, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह। तो आप जिस इंजीनियरिंग एरिया में स्पेशलाइज करना चाहते हैं उसके हार्ड स्किल्स तो आपको सीखने होंगे, और उसके लिए ऑनलाइन माध्यम से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो फिर आप ऐप मेकिंग का ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। आप जैसे टैली और जो बेसिक MS ऑफिस है वो आना जरूरी हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में बहुत ढेर सारे काम को कम समय में, जैसे करने में पहले काफी समय लगता था, वो तुरंत खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार की कलाओं को हम अगर सर्टिफिकेशन के माध्यम से या फिर डिप्लोमा के माध्यम से, हम डिग्री कोर्स के साथ साथ हम उसको करें तो हमको लाभ मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हमें कुछ प्रैक्टिकल काम, हाँ व्यवहारिक काम करने का मौका मिलता है, देखिए डिग्री कोर्सेज में 1 महीने या 2 महीने का इंटर्नशिप मिलता है करने को, लेकिन जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स मिलते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि असल जिंदगी से संबंध रखते हैं, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए संबंध रखते हैं। तो हमें अगर मौका मिलता है किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो सहयोग करके सीखने के लिए और उस ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाने के लिए, तो ये विन विन सिचुएशन होती है, और बच्चों को काफी उसमें जानकारी मिलती है, स्किल एनहैंसमेंट होता है उसमें। फिर उनको समझ में आता है कि किताबी रूप से तो कैसा लग रहा है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल रूप से किया जाएगा तो वो कैसा अनुभव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स, देखा गया है कि जब उन्होंने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया और वो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वो ब्लड देखते हैं और फिर डाइसेक्शन बॉडी का करना होता है तो कई बच्चे ना वो बेहोश हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा और फिर वो
1: जी सर,
0: डॉक्टर की पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये भी एक मौका मिलता है अपने को आकलन करने के लिए कि क्या प्रैक्टिकल में मेरे लिए वो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब एक होता है ना कि डबल श्योरिटी हमारे लिए हो जाती है। तो इसके अलावा जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, एम्पैथी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इस तरह की कलाएं भी हमको अपने अंदर विकसित करनी होती है, क्योंकि विजडम और होशियारी का होना बहुत जरूरी है और वो तब हमारे अंदर आएगा जब हम इन सब चीजों को भी उतनी ही अहमियत देंगे जितना हम हार्ड स्किल्स को देते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स को भी हमको ध्यान में रखना होगा क्योंकि सारा काम दुनिया समाज में एक संगठन में होता है, ग्रुप में होता है। तो टीम स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, हाँ ये सब भी हमको आना चाहिए और ये तब आएगा जब हम वॉलंटियर करेंगे अपने आप को, कॉलेज के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लेंगे या कॉलेज के बाहर हमें कुछ करने को मिलता है तो उसमें हम भाग लेंगे।
1: जी सर। और ये भी है कि अभी हमारी सबकी छुट्टियां आ रही हैं गर्मी की, और स्कूल्स में भी और कॉलेज में भी इस समय हॉलीडेज पड़ने वाली है, तो हम इस हॉलीडे जो हमें वेकेशन मिला है, हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आप को बिल्डअप करने के लिए कि वो हमें फ्यूचर में काम आए, जॉब में क्या क्या कर सकते हैं वो आपसे जानना चाहेंगे सर।
0: बहुत कुछ कर सकते हैं। छुट्टियों का मतलब ये होता है कि बच्चे और यूथ उसको ना एंजॉयमेंट के साथ उसको कोरिलेट करते हैं
1: जी सर,
0: और ये एक मौका मिलता है कि हम एंजॉय करें लेकिन एंजॉय को अपने लक्ष्य से हम मिलाकर चलें। तो जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग वो सीख सकते हैं, फोटोग्राफी है, गार्डनिंग है, कुकिंग है, कई प्रकार की चीजें आप ऑफलाइन तरीके से ट्यूशन लेकर आप सीख सकते हैं या फिर ऑनलाइन तरीके से सीख सकते हैं। कई प्रकार के सर्टिफिकेशन हैं जो कि एक दिन से लेकर एक महीने के या 3 महीने के होते हैं और 1 घंटा 2 घंटा आपको देना होता है उसको, 5 days a week या ऑल्टरनेट 3 days a week, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो गया या हेल्थ केयर न्यूट्रिशन के ऊपर कोर्स हो गया। तो इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और हम लोगों को एक राय दे सकते हैं। आमतौर पर देखा गया यूथ जब उनको कॉलेज में ऐसे पेइंग गेस्ट की तरह रहना होता है, हॉस्टल में रहना होता है तो उनकी सेहत खराब हो जाती है। तो न्यूट्रिशन पे भी थोड़ा ध्यान देंगे तो वो उस समय तो उनको फायदा करेगा लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद भी वो उनको फायदा देगा क्योंकि वो जो समय होता है 18 से 22 23 वर्ष की आयु में वो हेल्थ का पीक जिसे कहते हैं वहां तक जाने के लिए जो कि युवा अवस्था होती है वहां जा सकते हैं। तो अगर पोषण अच्छा मिलता है शरीर को तो मन भी स्वस्थ रहता है और तन भी स्वस्थ रहता है। इसके अलावा कई प्रकार की रीडिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि लाइब्रेरीज होती हैं या फिक्शन नॉन फिक्शन बुक्स होती हैं या एजुकेशनल वीडियोस पॉडकास्ट हैं, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो या वो दर्शन फिलोसफी से संबंधित हो या वर्तमान में विश्व में क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स को लेकर। आजकल वर्चुअल वर्कशॉप्स और वेबिनार, जिनके पास पैसा है तो वो पैसा खर्च करके, जैसे मैं आपको बताऊं ऋषिवुड यूनिवर्सिटी 15 दिन की पॉलिसी मेकिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रही है, समर कैंप जो कि सोनीपत में है।
1: जी
0: तो कहने का मतलब ये है कि भारत में जब गर्मियां आती हैं तो तमाम ऑर्गेनाइजेशन और केवल यूथ और कॉलेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए नहीं बल्कि किंडरगार्टन प्राइमरी और जूनियर स्कूल के बच्चों के लिए भी तमाम एक्टिविटीज पब्लिक डोमेन में हमको देखने को मिलती हैं। तो वो ऐसे कर सकते हैं या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट, हाँ कई प्रकार के। आज तो पिनिंटरेस्ट एक ऐप है जहाँ पर काफी DIY जिसको कहते हैं डू इट योरसेल्फ वो सीखने को मिलता है, या फिर फिटनेस और वेलनेस को लेकर जैसे वर्कआउट वीडियोस देख सकते हैं या फिर योगा क्लासेस हैं, सेल्फ अवेयरनेस वेलनेस को लेकर, स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन, हाँ इन सब चीजों के प्रति भी थोड़ा समय निकाल सकते हैं जो कि बहुत फन इंटरेस्टिंग होता है और मिलके अगर करा जाए तो हाँ एक एक सुंदर एक्टिविटी बनती है जहाँ पर हम लोग शेयरिंग भी करते हैं और प्रेम भी बढ़ता है लोगों का क्योंकि सेहत भी अच्छी हो रही है और मन मन दुरुस्ती जैसे कहते हैं मन भी दुरुस्त हमारा बनता है। या फिर हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। तो जैसे मम्मी पापा महीने खर्चा देते हैं 5,000 रुपये या 3,000 रुपये या 10,000 रुपये या 20,000 रुपये खर्च करने के लिए, तो हम थोड़ा समझें कि हम पर्सनल फाइनेंस बजटिंग कैसे करें, और रुपए को हम कैसे बचा सकते हैं, या किसी को गिफ्ट करना है तो हम कितना पैसे रखें, अगर हमको दान करना है, मन में भावना आती है तो उसके लिए कितना पैसा निकाल के रखें, हमें कोई सामान कपड़े खरीदने हैं या हमको खाने का सामान खरीदना है, आजकल फ्रेंडशिप्स बहुत होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं तो वहां पर कितना, या कोई कोर्स हमें करना है, तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग की समझ है इसके प्रति भी जागरूक होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ लैंग्वेज लर्निंग, तो भाषा भी अगर सीखना चाहें, क्योंकि विश्व भी एक छोटा होता जा रहा है, तो चाहे वो भारत में तो तमाम भाषाएं हैं, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, आप हिंदी और उर्दू और उड़िया, बहुत भाषाएं हैं, लेकिन जैसे कि फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, तो अगर कोई युवा विदेश में रहना चाहता है तो जिस देश में रहना चाहता है वहां की अगर भाषा भी सीखना शुरू करे थोड़ा थोड़ा, तो उनको काफी लाभ मिलेगा और वहां पर संबंध, रिलेशनशिप बिल्डिंग वो अच्छा कर पाएंगे, और जीवन में सफलता पाने के लिए रिलेशनशिप का होना भी जरूरी होता है। तो देखिए बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, और अगर ऑनलाइन बात करें तो कोर्सेरा, यूडेमी, खान अकेडमी, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर बहुत तरह की आप फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में, रुपए में आप कोर्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से यूथ अपना टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं।
1: जी सर, और हम जब स्किल्स की बात कर ही रहे हैं तो हमारे युवा ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में कौन कौन से स्किल्स हैं जो बहुत ज्यादा डिमांड में रहेंगी, क्योंकि कईयों का सवाल होता है कि जैसे जो चीज ज्यादा यूज आगे होने वाली है, जैसे AI हो गया या और भी कई सारी चीजें हैं जो आगे आ रही हैं, तो कौन सी वो स्किल्स हैं जो हम करें जिसका हमें आगे फ्यूचर में लाभ रहेगा?
0: देखिए जो न्यू एज करियर्स हैं वो सारा सारा काम डिजिटल हो रहा है अभी, और पेपरलेस काम हो रहा है, ई पेपर की तरफ चीजें शिफ्ट हो रही हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजी, सबसे पहले मैं टेक्नोलॉजी का नाम लूंगा, एक बहुत ही बड़ा बूमिंग करियर है जो कि अब रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता ही जाएगा, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी। आप देखिए कितना ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, तो अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाऊं, तो उसको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, प्राइवेट जॉब भी मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देखिए, तो वो ये जो फील्ड है ये बूमिंग फील्ड है और बहुत पैसा है इसमें, और भारत जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, KPMG की रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं और वो यही बात दर्शाती है कि भारत आने वाले समय में 2040, 2050 इट वुड बी लाइक वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू लिव एंड वर्क इन फॉर। तो टेक्नोलॉजी एक बड़ा एरिया है। दूसरा हेल्थ केयर, हाँ, तो मेडिकल टेक्नोलॉजी, हाँ देखिए मेडिकल में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग हो गया, हेल्थ केयर में भी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो चाहे जैसे नर्सेस हो या फिर मेडिकल टेक्नीशियंस हो या फिर हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स हो या फिजिशियंस हो, उनके असिस्टेंट्स हो, तो और आप देखिए बीमारियां भी कितनी बढ़ती जा रही हैं, तो ये बहुत बड़ा एक एरिया होगा। फार्मेसी, जैसे बैचलर्स इन फार्मा कहते हैं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। हम लोगों ने कोविड देखा था, तो कोविड में देखिए सारे प्रोफेशन एक तरह से ठप हो गए थे, लेकिन हेल्थ केयर वो सबसे आगे था। और अगर देखा जाए तो हम, अगर हम इतिहास देखें 100 साल का, तो जैसे जैसे एक एक दशक बीतता गया है बीमारियां और बढ़ती गई हैं, बीमारियां कम नहीं हुई हैं और नई नई बीमारियां आ गई हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो हेल्थ केयर इज अ बूमिंग सेक्टर। तीसरा ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, तो क्लाइमेट चेंज हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, एनवायरमेंटल साइंस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये सब बहुत बड़े करियर्स हैं, क्योंकि ये सब प्रकृति से संबंधित रखते हैं और मनुष्य का जीवन आसान बनाते हैं। तो अगर हम सोलर पे काम करते हैं या विंड एनर्जी पे काम करते हैं या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर अर्बन प्लानिंग, टाउनशिप प्लानिंग, सस्टेनेबल जो की है, तो ये करियर्स भी युवाओं के लिए बहुत अच्छे होंगे। इसके अलावा ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा काम है। आज देखिए घर बैठे हर व्यक्ति सामान चाहते हैं, उसके लिए बैंकिंग का भी काम होता है, तो फाइनेंस और फिन टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, फाइनेंस टेक्नोलॉजी। देखिए हर शब्द में आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, तो कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस का तो बहुत बड़ा फील्ड है ही, लेकिन चाहे वो जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है या फिर वेल्थ मैनेजमेंट की बात आती है, तो या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो फाइनेंस भी बहुत अच्छा इवॉल्विंग, रैपिडली डेवलपिंग करियर है युवाओं के लिए। और पैसा अब देखा जाए तो वो हार्ड करेंसी यूज नहीं होती, कैश यूज नहीं होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहा है, तो ई कॉमर्स, पेमेंट ट्रांजैक्शन सब डिजिटल तरीके से हो रहे हैं, तो इसमें लोग अच्छा करियर बना सकते हैं। और एग्जाम्पल हम देखें तो पेटीएम का हमने एग्जाम्पल देखा है और जीपे का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। और आप यूथ हैं, आप खुद हमको बताइए वेदांत, ऐसे कौन से माध्यम है जिससे यूथ अभी पेमेंट करते हैं, आप बताइए मुझे दो ऐसे नाम।
1: सर, जिससे हम लोग अभी ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे।
0: हाँ देखिए आपने फोन पे एक तीसरा नाम हमको बताया, तो युवा काफी स्मार्ट है और उनको मालूम है कि क्या क्या चीजें हैं। इसके अलावा एजुकेशन की बात करें तो रिमोट लर्निंग जिसको यानी टीचिंग में जाना जाता है, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आज के समय में ऑनलाइन टीचिंग बहुत हो गया है, तो जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो अपने आप को वो ऑनलाइन टीचिंग मेथोडोलॉजी और पेडागॉजी से वो अपने आप को इक्विप करे, ताकि वह शिक्षा ऑफलाइन अगर नहीं है तो ऑनलाइन माध्यम से भी दे सकता है। और आजकल तो लोग अपने कोर्सेज बना देते हैं ऑनलाइन और फिर उसको बेचते हैं, तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर ज्ञान है जो कि लोगों को उससे फायदा हो सकता है, तो उसको एक ऑनलाइन कोर्स बनाकर भी आप उसको बेच सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी की मैंने बात करी, ये बहुत बहुत ही बूमिंग करियर है, सोफेस्टिकेटेड करियर है, क्योंकि बहुत तरह तरीके से ठग बैठे हुए हैं और वो भी पढ़े लिखे ठग, तो पढ़े लिखे ठगों को पढ़े लिखे लोग ही अच्छे से उनको निपटारा कर सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी लोग प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में उनका एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है कि वहां पे, और गवर्नमेंट तो काम करती ही है, तो हर शहर में, हर स्टेट में, भारत में वहां पर साइबर सिक्योरिटी का पूरा विभाग होता है, बहुत बड़ा विभाग है, और दिन प्रतिदिन इसके जो तरीके हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे एथिकल हैकिंग हो गया या साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो भी जब कोई बिजनेस कोई करता है तो उसके बारे में भी सोचता है और कंसल्टेंसी लेते हैं। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी एक बढ़ता हुआ फील्ड है, तो
1: जी सर,
0: अगर कोई रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, ऑटोमेशन में जाना चाहते हैं, तो बहुत कुछ ये सब न्यू एज करियर्स का फायदा ले सकते हैं।
1: जी सर। और एक सवाल फिर मेरा यहाँ पे एक और आता है कि
0: जी
1: इंटर्नशिप्स को लेकर, क्योंकि अभी मैं भी अपने थर्ड ईयर में हूँ, जहाँ पे हमें कहा जा रहा है कॉलेज की तरफ से कि हमें इंटर्नशिप करनी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कभी कभी कई कॉलेजेस में ऐसा होता है कि गाइडलाइंस हमें नहीं दी जाती हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ हम कॉलेज में सीख रहे हैं और जो चीज़, क्योंकि मैंने भी देखा कि जो चीज़ हम कॉलेज में सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट हमें नहीं सिखाया जा रहा है, बट हम जब किसी इंडस्ट्री में गए तो वहाँ पे कुछ नई चीज़ें हमने देखी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तो कुछ और ही डिमांड है जो हमें कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब इंटर्नशिप के लिए, और हमें कोई फैकल्टी हमें बता भी नहीं रहा है सपोज, कि हमें कहाँ जाना है, कौन इंटर्नशिप के लिए कहाँ हम अप्लाई करें, तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि कंपनीज डायरेक्ट तो एंटरटेन करती नहीं है स्टूडेंट्स को, तो कैसे हम अप्लाई करें, कौन से ऐसे साइट्स या पोर्टल हैं, या क्या तरीका है किसी कंपनी को अप्रोच करने का इंटर्नशिप के लिए?
0: देखिए इसके लिए मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स को ना ये ट्रांजिशन युग है, ये जो समय, वर्तमान का समय चल रहा है, ये बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है, काम करने के ढंग बदलते जा रहे हैं, तो अपने आप को अडेप्ट करना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स को भी प्लेसमेंट को लेकर ना अपने आप को अडेप्ट करना होगा, एंड दे हैव टू बिकम प्रोएक्टिव, विच मीन कि वो फर्स्ट ईयर से ही वो खुद अपने लेवल पे पता करें और अब कि उनका जो इंटरेस्ट है, वो जो बनना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्चुरियल साइंटिस्ट बनना चाहता है और उसने एक्चुरीज की वो स्टडी कर रहा है, वो ग्रेजुएशन कर रहा है एक्चुरीज में, एक्चुअरीज का काम मतलब होता है इंश्योरेंस प्लानिंग से रिलेटेड, लाइफ इंश्योरेंस, वेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो वो जो स्टूडेंट है वो फिर फर्स्ट ईयर से सोचना शुरू कर देता है कि अगर मुझे एक एक्चुअल साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए कौन कौन सी काम

0: नीड है जहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो उसकी वो लिस्ट बनाता है। तो वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट बनाएगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट बनाएगा, और वो स्टेट लेवल की लिस्ट बनाएगा, और वो जोन जैसे नॉर्थ जोन, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ऐसे करके लिस्ट बनाएगा और एक नेशनल लिस्ट बनाएगा, कीपिंग इन माइंड कि फैमिली या उसकी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस उसको ये इजाजत देते हैं कि वो उस शहर में, उस स्थान में जाकर वो इंटर्नशिप कर सके। तो इसी प्रकार से, और इन सब चीजों में समय लगता है। फिर दूसरा जो कॉलेज का प्लेसमेंट होता है, तो आपके जो प्लेसमेंट हेड होते हैं उनसे फिर आप एक विवेकशील और एक समझदारी से आप बात कर पाएंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और कॉलेज आपको क्या दे रहा है। फिर आप उनको भी एक दिशा दिखा सकते हैं कि मैम सर, हम चाह रहे थे कि आप नॉर्थ इंडिया में हमको जॉब्स दें, हमने एक लिस्ट खुद बनाई है जो गवर्नमेंट की है और प्राइवेट की है, अगर आप इस तरफ कोशिश करें तो हमको फायदा मिल सकता है। तीसरा जो लिस्ट आप प्रिपेयर करते हैं, उन कंपनीज के एचआर डिपार्टमेंट में आप अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं, अपनी खुद मेहनत करके, कि यू आर इंटरेस्टेड, आप इस कॉलेज में हैं और आप 2 महीने का इंटर्नशिप करना चाहते हैं। आप वो इंटर्नशिप लेटर अपने कॉलेज से इशू करवा सकते हैं और वो ईमेल में आप भेज भी सकते हैं साथ में। अगर वो लेटर मिल जाता है समय से, अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कम से कम आप ईमेल भेजिए और उसमें लिख सकते हैं कि कॉलेज से जो हमको लेटर मिलेगा वो हम बाद में आपको भेज देंगे, अभी हम लोग को इशू नहीं हुआ है, ऐसे करके। इसके अलावा अगर आपके रिश्तेदार हैं या आपके घर परिवार में कोई ऐसे काम करते हैं जैसे कि वो इंश्योरेंस एजेंट है, फॉर एग्जाम्पल, मैं यही एग्जाम्पल लेकर आगे चलता हूँ, और तो आपको अगर मौका मिलता है उनको सहयोग करने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए, तो वो भी आपके लिए इंटर्नशिप का काम करेगा। जरूरी नहीं है कि इंटर्नशिप एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो या फिर एक लार्ज स्केल कंपनी में हो, अगर वो कोई स्टार्टअप है या छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि छोटे में ना बहुत तरह के काम करना होता है, जॉब रोटेशन बहुत होता है, तो सीखने का मौका बहुत मिलता है। तो स्टूडेंट्स को तैयार होना चाहिए अलग अलग काम सीखने के लिए, ना कि कई बार स्टूडेंट्स के अंदर ये होता है कि ये तो हमने इंटर्नशिप में हमको नहीं बताया गया था, हमको सिखाएंगे या हमको काम देंगे, अरे इंटर्नशिप पे हमको ले लिया है लेकिन बहुत काम हमसे कराते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ?
1: जी सर जी।
0: हाँ, तो स्टूडेंट्स को भी तैयार होना होता है कि अगर उनको जीवन में कुछ करना है, सफलता पानी, बड़ी सफलता पानी है, तो एक लक्ष्य को लेकर उनको चलना होगा, उसके प्रति मेहनत करनी होगी। इसके अलावा कई प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि नॉमिनल फीस लेती हैं और वो आपको समय समय पर बताती हैं कि आप कहाँ जॉब कर सकते हैं या फिर आपको इंटर्नशिप कहाँ मिल सकती है। और कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज या इंटर्नशिप एजेंसीज होती हैं जो कि कॉलेज के साथ टाई अप कर लेती हैं और सारे ही स्टूडेंट को इंटर्नशिप प्रोवाइड कराने के लिए काम करती हैं। तो ये सब चीजें पता करके हम अपने कॉलेज के जो चेयरमैन हैं या प्लेसमेंट के जो हेड हैं उनके साथ हम ये शेयर कर सकते हैं। जैसे लखनऊ में यहाँ पर एक इंटर्नशिप कंपनी है जो कि एमबीए स्टूडेंट्स को वो इंटर्नशिप कराती है, तो उनका कॉलेज के साथ टाई अप है और कॉलेज स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देती है कि अगर आप कॉलेज के थ्रू इंटर्नशिप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और अगर आप खुद अपनी इंटर्नशिप कहीं पर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और जो इंटर्नशिप डिपार्टमेंट बना है तो वो कई ऑप्शन स्टूडेंट्स देते हैं, तो इस तरीके से भी इंटर्नशिप का काम होता है।
1: जी सर, सर आपने ये भी बात एक बताई कि हम एचआर डिपार्टमेंट में अपना रिज्यूम भी भेज सकते हैं। रिज्यूमे भेजने से फिर हम ईमेल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो सर यहाँ एक क्वेश्चन ये भी होता है हमारे युवाओं का कि हम रिज्यूमे में ऐसे कौन सी पॉइंट्स को डालें या बनाने का क्या सही तरीका है, प्रॉपर वो एडीएस फ्रेंडली हो, कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन्हें हम उसमें लिखें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और वो एक अच्छा पोर्टफोलियो का काम करे, उसकी थोड़ी टिप्स लेना चाहेंगे आपसे।
0: वेदांत, इसमें युवाओं को ध्यान देना होगा पहले जिस कंपनी में उन्होंने अप्लाई किया है वो कंपनी क्या करती है। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है वो इंटर्नशिप सीवी भेज देंगे और लिखेंगे हमको आपके यहाँ इंटर्नशिप करना है। अरे इंटर्नशिप तो करना है लेकिन आप किस एरिया में इंटर्नशिप करना चाहते हो वो तो लिखो। फिर अगर मान लीजिए एचआर ने फोन किया और फिर उन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी के बारे में आपको कैसे मालूम चला, या हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं मैम सॉरी वो तो मुझे मालूम नहीं अभी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा
1: जी
0: हूँ।
1: सर जी
0: हाँ, तो स्टूडेंट्स को जो वो बनना चाहते हैं उस हिसाब से वो कंपनीज की जैसे सिलेक्शन लिस्ट बना ली, तो वो हर कंपनी के बारे में रिसर्च करें कि वहां पे क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो कंपनी बनाती है, और अगर वो खुद एक एनालिसिस कर पाए कि अपॉर्चुनिटी गैप क्या है, और कंपनी के एचआर को बताए कि मैम हमने आपकी वेबसाइट और आपके प्रोडक्ट्स है उसके बारे में हमने कुछ एनालिसिस किया और हमको लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी गैप है, इस तरह की बातें अगर एचआर सुनते हैं या फिर जो भी इंटर्नशिप रिक्रूटर समझता है वो काफी इंप्रेस होगा। या फिर हम उनको खुद बोलें कि आई एम ओपन टू, अगर आपको समझ में नहीं आता, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि हमें किस चीज में इंटर्नशिप करनी है, बस चूंकि वो हमको 2 महीने का बोला गया है हमको मार्क्स मिलेंगे तो हमको इंटर्नशिप करनी है, तो फिर वो सच बोले फिर एचआर वो कंपनीज में कि आई एम ओपन टू डू इंटर्नशिप इन एनी फील्ड और आई एम लाइक अ फ्रेशर, तो आप जो जैसा गाइड करेंगे हम उस रूप से करेंगे। तो इंटर्नशिप कराने के लिए अब तो जो कंपनीज है वो चार्ज करती हैं, जैसे 3,000 रुपीज, 5,000 रुपीज
1: जी
0: इफ
1: सर
0: द स्टूडेंट इज नॉट केपेबल एट ऑल पर मंथ। जैसे मैं बात करूं जो क्लिनिकल साइकोलॉजी सेटिंग है, तो हॉस्पिटल में कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं इंटर्नशिप करने, तो उनको फिर 3,000 रुपीज पर मंथ या 5,000 रुपीज पर मंथ फीस देनी होती है वो काम सीखने के लिए। आप समझ रहे हो, अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना टाइम निकाल कर और अपने रिसोर्सेस निकाल रहा है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा, और ऑर्गेनाइजेशन की क्या जिम्मेदारी है कि वो हर स्टूडेंट को वो ट्रेन करें, क्यों ट्रेन करें। हाँ, और क्या स्टूडेंट क्या वैल्यू ऐड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि ऑर्गेनाइजेशन जानता है कि इससे स्टूडेंट छोड़ के चला जाएगा, 2 महीना आया है उसको तो अपनी अपनी बस रिपोर्ट बनानी है, एंजॉय करेगा चला जाएगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो द स्टूडेंट हैज टू प्रिपेयर हिमसेल्फ टू शो द ऑर्गेनाइजेशन एज एज अ वैल्यूबल एसेट, और ये दिखाना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल रहेगा, और अगर मौका मिलेगा या सब ठीक रहेगा तो मे बी ही कुड ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो।
1: जी सर
0: आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो
1: यस सर
0: इट वर्क्स बोथ वेज, क्योंकि इंडस्ट्री इज ऑल्सो लुकिंग फॉर गुड गुड ह्यूमन रिसोर्स, और लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को भी समझदार होना होगा, क्योंकि आज के समय में एम्प्लॉयमेंट की क्या कहते हैं जो लोग
1: बहुत
0: सीवी,
1: कमी चल रही थी।
0: हाँ, तो बहुत लोग आप जॉब तो बहुत लोग लेना चाहते हैं लेकिन जॉब कम
1: सीट्स नहीं
0: लोगों को
1: है
0: मिलती है फिर। हाँ,
1: जी सर
0: वो इसी कारण से। तो सीवी जो हम लिखेंगे सीवी में हम फिर हमारा हर सीवी अलग होगा, हम एक सीवी बनाकर 10, 20, 30 कंपनी में नहीं भेज सकते हम, ये बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं।
1: जी सर
0: हाँ, तो हर कंपनी को स्टडी करिए, उस कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस प्रोफाइल या किस इंटर्नशिप टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे उस हिसाब से अपने सीवी को ट्वीक करिए और वो कस्टमाइज करिए अपने सीवी को, तब भेजिए। और फिर फॉलो अप करना जरूरी होता है, ऐसा नहीं बस ईमेल डाल के छोड़ दिया, उसके उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, कॉलिंग नंबर दिया होता है, तो उनको फिर कॉल करके मैसेज करके डाला जाता है कि मैम सर थैंक यू योर ईमेल, इट विल बी वेरी कॉन्सिडरेट ऑफ यू इफ यू कुड यू नो सेंड मी एन एक्नॉलेजमेंट रिप्लाई, और इफ समथिंग कैन बी लुक्ड इनटू इट आई एम टोटली फाइन एट योर कन्वीनियंस, जो भी टाइम आप देंगे हम उस टाइम पर आकर मिलने के लिए भी तैयार हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि आई कैन कम ओनली एट दिस टाइम, आप तो
1: जी
0: कंपनी एचआर को लगता है अरे अभी तो कुछ यू नो दे विल थिंक यू नो, मैं आपको बहुत रॉ शब्द में बताया, अभी तो पंख भी नहीं निकले और ये लोग ऐसे बात कर रहे
1: हाँ
0: हैं।
1: सर ऐसा बोलते हैं जी
0: हाँ, सो यू, और कई बार स्टूडेंट्स के अंदर ये मेंटालिटी होती है हम बहुत होशियार हैं, हम तो सब कुछ कर लेंगे, इन लोगों को तो कुछ नहीं आता, जो लोग कंपनियां चला रहे हैं उन लोगों को तो कुछ नहीं आता, हमें जितना आता है, दे हैव दिस
1: सर
0: मेंटालिटी, सो दे नीड टू यू नो कम इन टर्म्स विद द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉट लिव इन इन अ बलून इन अ बबल, क्योंकि
1: यस सर
0: जब वो बबल अचानक फूटता है ना तो फिर बहुत दुख होता है।
1: हाँ सर वही सर क्योंकि कभी कभी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कोई एक चीज उन्हें ज्यादा अच्छी आती है तो वो फिर वो ये समझने लगते हैं कि हमको ये चीज बहुत अच्छी आती है, अगर इनकी जगह मैं होता तो बहुत अच्छे से करके दिखाता। लेकिन जब वो रियलिटी आती है उनके सामने तब वो उसे फेस नहीं कर पाते, और इसी वजह से फिर उनका जो वहाँ बिहेवियर है और बाकी सब चीजें वहाँ पे इफेक्ट होता है।
0: बिकॉज लाइफ इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, वो एक मुखी नहीं है, वो बहुमुखी है. तो स्टूडेंट्स जब काम करते हैं तो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या दो तीन मतलब है, बस उतना ही है. पर जब आप रियल जिंदगी में आते हैं तो आपको सारा मतलब आंख नाक कान सब कुछ एकदम अलर्ट रखकर और आपको काम करना होता है, और आपको एक स्किल नहीं मल्टीपल स्किल्स आनी चाहिए टू परफॉर्म एंड एंड टू बी अ यू नो अ रोल मॉडल ऑफ एक्सीलेंस.
1: जी सर, बहुत अच्छी
0: जी
1: बात आपने बताई और ये सब बहुत जरूरी था। लास्ट,
0: जी
1: अब हम शो को खत्म करते हैं सर। आपसे लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द की टू बी सक्सेसफुल इन एनी करियर?
0: ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है. और की टू बी सक्सेसफुल, जो सफलता की, मैं आपको 10 चाबियां बताता हूं. मैं टू बी सब सक्सेसफुल, पहली चाबी है कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए और आपके अंदर प्रेरणा होना चाहिए और रुचि होनी चाहिए जो भी आप काम कर रहे हो उसके प्रति, और वो स्थायी हाँ परमानेंट होना चाहिए, टेम्पररी नहीं. अगर टेम्पररी है तो समझ लीजिए वो मनोरंजन वाला आपका काम है. अगर वो स्थायी रहता है, बना रहता है, और जितना भी मेहनत करने के लिए हमको समय देना चाहिए उसमें सफल होने के लिए, तो पहली चाबी ये है. दूसरा है कि हमें निरंतर सीखने की हमारे अंदर ये वृत्ति होनी चाहिए कि हम निरंतर अपने आप को सीखें. हम हर तीसरे साल दूसरे साल अपने बदलते हुए समय के हिसाब से जो कलाएं हमको विकसित करनी है उसको हम विकसित करें. तीसरा, बिना मेहनत के तो हम सफल नहीं हो सकते, तो परसिवियरेंस, कंसिस्टेंट एफर्ट, कंसिस्टेंट हमको होना बहुत जरूरी है. और
1: जी
0: हमारे सामने चुनौतियां भी आएंगी तो हम ये सोचे चुनौती आ गई तो चलो सारा काम रोक कर बैठ जाओ, जब चुनौती खत्म हो जाएगी तब
1: जी
0: हम फिर से शुरू करेंगे, तो वहां पर वो ब्रेक लग गया. तो हमें ये अपने आप को बनाना होगा कि समस्या आई लेकिन लेकिन काम चल रहा है, समस्याओं से भी निपट रहे हैं और काम भी चल रहा है. फिर चौथा, गोल सेटिंग. गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें सफलता में चाहिए, कि जैसे 10 साल का हमने हमारा लक्ष्य है लेकिन उसको छोटे छोटे गोल्स में, हर पहला साल का गोल, दूसरा साल का गोल, जिसको हम एक्शनेबल भी बनाए, मेजरेबल भी बनाए, और उसको समय समय पर हम उसका आंकलन करते रहे, उसको असेस करते रहे. और जो गोल्स हम बनाए वो अचीवेबल होने चाहिए, वो ख्वाबी ड्रीम गोल्स नहीं होने चाहिए, दे शुड बी रियलिस्टिक गोल.
1: जी सर,
0: पांचवा, नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग. आज के समय में अगर आपके अच्छे संबंध लोगों के साथ नहीं है तो फिर ये गारंटी है कि आप भले कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपके नंबर कितने अच्छे हो, कितनी भी कलाएं आपके अंदर हो, अगर आपके अंदर संबंध लोगों के साथ अच्छे नहीं है तो फिर आपको मौके जीवन में नहीं मिल पाएंगे, या अगर जो मौके होंगे वो सब आपसे छूट जाएंगे. तो कल्टिवेटिंग गुड रिलेशनशिप्स हमारे पीयर्स, हमारे सहपाठियों के साथ, हमारे मेंटर्स के साथ, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ, ये जरूरी है. और मैं तो कहता हूँ कि रिलेशनशिप बिल्डिंग तो घर से शुरू होती है, अपने भाई बहन, माता पिता, अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध अच्छे बनाए. फिर छठा पॉइंट मैं बोलूंगा कि फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी. जैसे कई बार चेंज को लोग रेजिस्ट करते हैं, आप पुराने तरीके से ही काम करना चाहते हैं, नई चीजों को अपनाते नहीं है. तो नई चीजों को अपना कर हमारी तरक्की हो सकती है अगर हम उसको ना बोल देंगे. हाँ, जैसे
1: जी सर,
0: अभी कई लोग कहते हैं कि अरे नहीं, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया कोर्स करें, अब जैसे चल रहा है चलने दो, अब
1: जी
0: टाइम
1: सर,
0: निकालना पड़ेगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं है. तो वो टाइम निकालिए, वो होता है शार्पनिंग योर एक्स जिसे कहते हैं. तो हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं तेज तीव्रता से बदलते हुए समय में. फिर सातवीं बात है कि प्रभावशाली वक्तव्य मतलब वार्तालाप, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हमारा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए. और बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, जितना जरूरत है, जितना मतलब का है वो आप बोलिए, और चाहे वो लिखित रिटन हो चाहे वो वर्बल हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होगा तो हमारे संबंध भी लोगों के साथ अच्छे बनते हैं और हम अपने विचारों को अच्छे से हम लोगों के साथ साझा कर पाते हैं. आठवीं बात, प्रोफेशनलिज्म और इंटेग्रिटी, कैरेक्टर होना चाहिए. तो हमारे अंदर जैसे हमने जो कहा वो हमने किया, अगर हमने नहीं कहा तो आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर इट. तो ये मतलब प्रोफेशनलिज्म हम अपने ध्यान में रखें, चाहे वो क्लाइंट्स हो, हमारे स्टेक होल्डर्स हो, हमारे कोलीग्स हो, तो उससे क्या होता है, विश्वास और क्रेडिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। और नाइन्थ पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारा मतलब भावनात्मक रूप से हम बहुत समझदार हों, हमारे अंदर ये ज्ञान इस चीज का होना चाहिए कि हम जैसे कोई आया किसी ने कहा मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, बॉस ने मुझे बोल दिया ये काम मैं कब से कर रहा हूँ, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, और मैं कहूँ हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दुख दर्द को, कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो बताना, जितना हो पाएगा मैं करूंगा। तो इस तरीके से हम जब लोगों के साथ डील करते हैं तो ये भी हमको सफलता की तरफ लेके जाता है। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वर्क लाइफ बैलेंस। तो हम ये कई बार क्या होते हैं, लोग वन डायरेक्शन हो जाते हैं, प्रोफेशनली बहुत अच्छा करें लेकिन पर्सनल लाइफ बहुत खराब है, या पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है लेकिन लाइफ में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों को बैलेंस करते हुए हम चलेंगे तो एक होलिस्टिक जिसे सक्सेस बोलते हैं लाइफ में वो हमको मिल पाएगी। तो ये 10 सूत्र, 10 में चाबियां आपको सफलता की मैं आपको देना चाहूंगा।
1: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हमारे श्रोता जो भी हमें सुन रहे थे, जो भी युवा हमें सुन रहे थे, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, कई सवाल थे उनके जिनका जवाब आपने हमें दिया, और ये बहुत हेल्पफुल होंगे। और क्योंकि सबसे ज्यादा युवाओं को ही समस्या आती है, क्योंकि यही एक पीक पॉइंट है जहाँ पे उन्हें अपने करियर के लिए सोचना पड़ता है, जॉब्स के लिए सोचना पड़ता है, जहाँ पे उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और सर आप हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहते हैं?
0: मुझे लगता है मैं इतना बहुत कुछ बोल चुका हूँ, इसके अलावा और क्या मैं बोलूँ।
1: जी सर, और वही है कि सर आप जैसे मार्गदर्शक जब हमें मिलते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है, कई बार रियलिटी नहीं पता होती है कि हाँ ये चीजें भी एग्जिस्ट होती है। जैसे कई रिज्यूम में आपने जो चीजें बताई हमको, कंपनी में इसका अप्लाई किया जाता है, ये सब कई सारी चीजें हमें पता ही नहीं होती है, लेकिन जैसे सर आपने बताया उस तरह हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों आप सुन रहे थे अभी युवा मंच कार्यक्रम रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, और हम फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नया डिस्कशन लेकर आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई विश एवरीवन अ वेरी सक्सेसफुल एंड अ ब्राइट करियर अहेड। और वेदांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रण देने का।
1: थैंक यू सर। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

तेरी मुस्कान, आपकी मुस्कान, हम सबकी मुस्कान। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़े हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ लेकर आई हूँ आज के खूबसूरत शाम को, और जहाँ आप और मैं कहानी, कविता, साथ ही साथ अमेजिंग जानकारी और प्यारी सी जो सवाल हो या आपके लिए पहेली हो, दोनों में से कोई एक जरूर आप तक पहुँचाने वाली हूँ। तो हमारे साथ जुड़कर इन सब का आनंद लीजिए, हमें कॉल भी कीजिए और कॉल के साथ साथ हमारा उत्साह जरूर वर्धन कीजिए, क्योंकि आपका कॉल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ समय परिवर्तन हो रहा है और वातावरण भी, जी हाँ, पर्यावरण में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब धीरे धीरे हम सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं। फैन में बैठना अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ओढ़ कर सुबह सुबह वॉकिंग करने के टाइम पर अपना कान जरूर बंद

बड़ी देर हुई नंदलाला तेरी राह कटे ब्रिजवाला। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक छोटी सी सबक, सूरज की ही सही लेकिन उजाले का सबक भी लेकर आते। हर रोज सुबह सूरज के उगते ही धरती पर जैसे जीवन की रफ्तार लौट कर आ जाती है। सूरज की किरणों का असर सिर्फ हमारे आसपास की दुनिया पर ही सीमित नहीं, इस रोजमर्रा के दृश्य के पीछे एक ऐसी प्रक्रिया चलती है जिसकी कल्पना भी करना बड़ा मुश्किल है। काफी वर्षों से लगातार सूर्य हमें ऊर्जा देता रहा है। जीवन की अनगिनत गतिविधियां कहें, उसी ऊर्जा से कहीं ना कहीं

जुड़ी हुई है। सूरज की इस भूमिका को यदि कहें तो वो देने की भूमिका ही है। जी हाँ, सूरज देता है। सूरज खुद तपता जरूर है, लेकिन ऊर्जा किसी और को देकर जाता है और उस ऊर्जा से जीवन प्राप्त होता है। सूरज की तरह पूरी दुनिया को ऊर्जा देना हमारे बस की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, शुद्ध संकल्पों का ऊर्जा आप संचार कर सकते हैं। तभी तो परमात्मा भी यही कहते हैं कि श्रेष्ठ संकल्पों की ऊर्जा संचार जरूर करें, और साथ ही साथ शुद्ध संकल्पों के आधार पर आप किसी की मदद करें। समय दे सकते हैं हम, ज्ञान बांट सकते हैं, किसी को आगे बढ़ाने का अवसर दे सकते हैं, या किसी निराश व्यक्ति को उसके साथ बैठकर उसकी बातें सुन सकते हैं। देने का मतलब हमेशा कोई स्थूल चीज देना ही नहीं, बल्कि देने का मतलब ये भी है कि चंद बातें उनके प्यार से सुन लेना, उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे कुछ चर्चा कर लेना, बातचीत कर लेना और उन्हें थोड़ी देर के लिए ढांढस बंधा देना। सूरज की सबसे खूबसूरत सीख यही तो है कि वह देता ही देता है। सूरज की सबसे खूबसूरत सीख रोशनी बाहर की तरफ पहुंचती है, जब भीतर वो तपता है तो दुनिया को वो रोशन करता है। जीवन में कुछ देने के लिए समय, सुविधा, मेहनत, अपनी किसी प्रिय चीज का थोड़ा हिस्सा छोड़ना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, इसे जरूर साथ ही साथ देते रहें, देते रहें। सोच रहे हैं आज मोना इतनी गहरी बातें क्यों कर रही है, जब सूरज की बात आ रही है तो हमारे सामने कई बातें बिल्कुल खुलकर आती है। लेकिन इसके साथ साथ, इस सूरज की बातों के साथ साथ, ये एक और पहेली आपके लिए, जिसे बूझना होगा आपको और हमें जवाब देना होगा 9414151415 पर। खाते नहीं चबाते लोग, खाते नहीं चबाते लोग, काट में कड़वा रस के संयोग, दांत जीभ की करे सफाई, बोलो बात समझ में आई। दांत जीभ की करे सफाई, बोलो बात समझ में आई। झटपट जवाब देना 9414151415 पर देना। आप सुन रहे उड़ान और मैं हूं आपकी दोस्त मोना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आज का मंगलवार की खूबसूरत शाम हमारे साथी दोस्त जुड़ चुके हैं। कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं?
1: आप भी मंगलवार की और उड़ान की बहुत बहुत बधाई रूहानी आपको और पूरे रेडियो मधुबन और हमारे सभी छोटे भाई बहनों को
0: जी।
1: और मुझे फिर पहली जब आप चाहे बरबर आता या नहीं आता, कल तो कंफ्यूज में डाला था लेकिन जवाब बराबर निकला।
0: अच्छा,
1: आज का जवाब तो टूथपेस्ट है।
0: टूथपेस्ट है, ओके, श्योर।
1: हाँ, टूथपेस्ट है,
0: ठीक है,
1: टूथपेस्ट है।
0: चलिए, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार,
1: शुक्रिया, शुक्रिया।

0: मेरी तरफ जो उठा है तनकर। चलिए दोस्तों, पहेली एक बार और बूझ लेती हूँ और फिर आगे बढ़ती हूँ। खाते नहीं चबाते लोग, खाते नहीं चबाते लोग, काठ में काठ लकड़ी, लकड़ी में कड़वा रस संयोग, दांत जीभ की करे सफाई, बोलो बात समझ में आई। चलिए कविता ध्यान से जरा सुन लीजिए। आज की प्यारी सी कविता है, लहराता बलखाता नीम है ये, दिन भर हंसता गाता नीम, खड़ा हुआ मेरे आंगन पर, आंगन में खड़ा हुआ मेरे आंगन में, पेड़ बड़ा है नीम का, पेड़ घना है नीम का, पेड़ हरा है नीम का, छाया मेरी घनी घनी जो भी मेरे नीचे बैठे, मिट जाए पल के थकान उसके, मन में छाए सुख घनेरे, लेता नहीं किसी से कुछ भी, लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर कितना दे जाता हूँ निस्वार्थ भाव से सबको, अपनी शीतलता शुद्धता और स्वच्छता तो दे जाता हूँ, सूखी मेरी पत्ती से अनाज बचे हैं सड़ने से, मच्छर मक्खी दूर रहे, रोग रहे सब सजने से, कड़वा हूँ मैं स्वाद में पर गुणों की खान हूँ, रक्षक हूँ पर्यावरण का, सच में मैं हकीम हूँ, दांतुन मेरा कर दांत सफाई, सेहत बनती भारी, पक्षी बैठे मुझ पर आकर गाए मीठी बड़ी प्यारी, प्यारा प्यारा नीम का पेड़ सबका मन बहलाता है, हवा चले जब झूम झूम के सबका दिल ले जाता है, सबका दिल ले जाता है। चलिए पहेली एक बार और बूझ लेते हैं। पहेली है, खाते नहीं चबाते लोग, लकड़ी में कड़वा रस संयोग, दांत जीभ की करे सफाई, बोलो बात समझ में आई। दोस्तों जरा समझ में आई, झटपट इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए 9414151415 पर दीजिए। आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर और मैं हूँ आपकी दोस्त मोरा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, मिशन लाइफ।
1: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए, मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आसमान को छूकर देखा, चांद पर निकली सवारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और पुनः आज की पहेली दोहरा कर आगे बढ़ते हैं। पहेली है आज की, खाते नहीं चबाते लोग, काठ या लकड़ी में कड़वा रस संयोग, दांत जीभ की करे सफाई, बोलो बात समझ में आई। दोस्तों बोलो बात समझ में आई, एक छोटी सी कहानी आपके लिए। सही कीमत। एक बार लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक नन्हे बालक ने अचानक ही पिताजी से पूछा, पिताजी इस दुनिया में इस इंसान की क्या कीमत है? पिता ने एक छोटे से बच्चे के से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर बोले, बेटा एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक ने कहा, क्या सभी उतनी कीमती और जरूरी होते हैं? पिता ने कहा, हाँ बेटा बिल्कुल। बालक कुछ समझा नहीं, उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी का कम आदर तो किसी का ज्यादा क्यों होता है? सवाल सुनकर पिता कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से गोदाम में पड़ा एक सरिया लाने को कहा। सरिया लाते पिता ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? बच्चे ने कहा, 50 रुपए पापा। पिता ने कहा, अगर मैं इसकी बहुत सी छोटी छोटी कील बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? बालक कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, तब तो ये महंगे बिकेंगे, लगभग 200 रुपए के। पिता ने कहा, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं? बालक कुछ देर सोचता रहा, फिर उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत और ज्यादा हो जाएगी। फिर पिता उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात अच्छी तरह समझ गया और समय रहते ही अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प भी उसने कर लिया। चलिए समय की बात तो हो ही गई, तो क्यों नहीं एक गीत आप तक और पहुंचा दे और तुरंत ही फिर लौट कर आते हैं, क्योंकि आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: ये तंबाकू क्या होता है?
2: अरे तिकु नहीं पता क्या, इसमें पता है लोग धुए में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
3: हर फिक्र को धुए में उड़ाता चला गया।
1: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
2: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
4: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है? बीड़ी सिगरेट गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

0: छोटे से गांव चंदनपुर में सुरेश नाम का एक किसान रहता था। गांव में सुरेश की एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो खेती किया करता था। उसकी जिंदगी का एक ही सपना था कि वो अपनी जमीन पर अच्छी फसल लगाए और अच्छा मुनाफा कमाए, जिससे वो अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर सके। सुरेश का परिवार बहुत छोटा था। उसके परिवार में उसकी माँ कमला और पत्नी विमला और उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था राजू। सुरेश बहुत मेहनती था। वो सूर्योदय से पहले उठता और खेतों में काम करने निकल जाता। उसकी मेहनत और लगन के बावजूद उसकी फसलें अक्सर अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि उसके पास ना तो अच्छे बीज थे और ना ही सिंचाई के पर्याप्त साधन। फसलों की सिंचाई के लिए सुरेश को ज्यादातर वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता था। फिर भी सुरेश अपनी स्थिति से संतुष्ट था और हमेशा भगवान का धन्यवाद करता था।
1: उसी गांव में एक अमीर सेठ भी रहता था जिसका नाम सेठ करमचंद था। सेठ करमचंद बहुत लालची और निर्दय था। उसने गांव के कई गरीब किसानों की जमीनें अपने नाम करवा ली थी और उन पर ब्याज का भारी बोझ डाल दिया था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया, कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और किसान परेशान हो गए। सुरेश की भी फसलें सूख गईं और उसके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। उसकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी।
2: भाई, इस साल तो बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। हमारे सारे खेत सूख गए हैं, फसल का नामो निशान नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे?
3: हाँ सुरेश, मेरी भी सारी फसल बर्बाद हो गई। बच्चों के खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा है। समझ में नहीं आ रहा कि इस संकट से कैसे निपटे। सरकार ने तो कुछ मदद का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। हमें कुछ करना होगा, वरना भूखे मर जाएंगे।
4: मुझे लगता है हमें सेठ जी से मदद मांगनी चाहिए। हम किसानों की स्थिति के बारे में तो सेठ जी को भी पता जरूर होगा। चलो सेठ जी से बात करके देखते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके।
5: सुरेश भाई, सेठ जी के पास तो गलती से भी मत चले जाना। एक नंबर का लालची इंसान है। अभी बिरजू ने कुछ दिन पहले ही सेठ जी से कुछ पैसा ब्याज पर उधार लिया था, और उस सेठ ने बिरजू का ब्याज इतना ज्यादा कर दिया कि वो चुका नहीं पाया, और ब्याज ना चुका पाने के कारण उस करमचंद ने उसकी जमीन जब्त कर ली।
6: फिर हम क्या करेंगे? अभी तो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर में खाने के लिए राशन तक नहीं है। अब जो भी हो, अभी तो बस एक सेठ जी ही सहारा है। उनसे अभी कुछ पैसे मांग लेते हैं, बात की बात बाद में देखेंगे।
2: देखो सुरेश, मेरा मकसद था तुम्हें सतर्क करना। अब तुम जो भी करो, आगे तुम्हारी इच्छा। मुझे लगता है हमें मिलकर गांव की पंचायत से बात करनी चाहिए, शायद वे कोई उपाय निकाल सकें।
7: सही कह रहे हो मोहन, एकजुट होकर ही हम इस समस्या का सामना कर सकते हैं। अगर हम सब मिलकर पंचायत के पास जाएं और अपनी स्थिति बताएं तो शायद कोई हल निकल आए।
3: ठीक है, तो फिर कल सुबह ही हम सब पंचायत के पास चलेंगे, और हमें सरकार की योजनाओं के बारे में भी पता करना चाहिए। हो सकता है हमें कोई राहत मिल जाए।
1: अगले दिन सभी किसान भाई मिलकर पंचायत पहुंचते हैं, मगर वहां पता चलता है कि अभी जमींदार साहब गांव में नहीं है, तो अभी एक महीने तक गांव में कोई पंचायत नहीं हो सकती। ये सुनकर सभी किसान निराश मन से अपने अपने घर।
8: सुरेश, अब क्या होगा? हमारी सारी फसल सूख गई है, खाने को कुछ भी नहीं बचा। हमें कहीं से मदद नहीं मिली तो हम भूखे मर जाएंगे।
9: आप ज्यादा चिंता मत करो, भगवान ने हमें अब तक संभाला है, आगे भी वो हमारी मदद करेंगे। हमें धैर्य रखना होगा विमला। मैंने सेठ करमचंद से कर्ज लेने का सोचा, शायद वही हमारी मदद कर सके, लेकिन मुझे डर है कि उनकी शर्तें बहुत कठोर होंगी।
10: हाँ, मैं जानती हूँ कि सेठ करमचंद बहुत लालची है, लेकिन अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तुम सेठ करमचंद से बात कर लो, शायद कोई रास्ता निकल आए।
2: ठीक है, मैं कल सुबह ही सेठ करमचंद के पास जाऊंगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वो हमें इस संकट से निकाल दे।
1: आखिरकार भूख से मजबूर होकर सुरेश ने सेठ करमचंद से मदद मांगने का निश्चय किया।
11: आओ आओ सुरेश, क्या हाल है? सुना है तुम्हारी फसलें इस साल बुरी तरह सूख गई हैं।
7: हाँ सेठ जी, इस साल सूखे के कारण हमारी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। मैंने सोचा कि आपसे कुछ मदद मांगो।
11: मदद? हाँ क्यों नहीं, लेकिन मदद के बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तुम्हारे पास देने के लिए क्या है?
7: सेठ जी, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ, जैसे ही मेरी फसल उपज जाएगी, उन फसलों को बेचकर आए पैसों से मैं सबसे पहले आपसे लिया कर्ज भर दूंगा।
11: देखो भाई सुरेश, ब्याज का मतलब होता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ मेरे पास गिरवी रखना होगा। तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन तो है, वो तुम मुझे गिरवी रख दो और बदले में ब्याज पर पैसे ले लो।
7: ठीक है सेठ जी, जब तक मैं आपका पैसा नहीं लौटा देता मेरी जमीन आपके पास बंधक रहेगी। और हाँ, इस पेपर पर साइन कर दो, जब तक तुम मेरा पूरा कर्ज नहीं चुका देते तब तक तुम्हारी जमीन मेरे पास बंधक रहेगी, और अगर तुम कर्ज नहीं चुका पाए तो ये जमीन मेरी हो जाएगी।
11: जी सेठ जी, मैं वादा करता हूं कि मैं मेहनत करूंगा और जल्द ही आपका कर्ज चुका दूंगा, बस मुझे थोड़े बीज और कुछ खाने का सामान चाहिए।
7: ठीक है सुरेश, मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूंगा, ये लो तुम्हारे लिए कुछ बीज और खाने का सामान। धन्यवाद सेठ जी।
0: सुरेश उन कागजों पर अंगूठा लगा देता है।
3: विमला, सेठ करमचंद ने हमें कर्ज तो दे दिया लेकिन उसने हमारी जमीन बंधक रख ली है। अगर हम समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो हमारी जमीन उसकी हो जाएगी।
0: हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हम मेहनत करेंगे और इस साल अच्छी फसल उगाएंगे। हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें बचाएगी, हमें बस एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा।
3: तुम सही कह रही हो विमला, हम मिलकर मेहनत करेंगे और इस बार हमारी फसल जरूर अच्छी होगी, भगवान हमारे साथ हैं। विमला ये लो, इसमें कुछ बीज है और कुछ खाने का सामान, तुम अभी इन बीजों को संभाल कर रख दो, मैं कल सुबह उठकर सबसे पहले खेतों में बीज की रोपाई करूंगा, और इसमें जो खाना है वो तुम सबके लिए निकाल कर ले आओ।
0: अगले दिन से ही सुरेश खेतों पर कड़ी मेहनत करने लगता है। वो खेतों में बीजों की रोपाई और रोज सिंचाई किया करता था। कुछ ही महीनों में सुरेश की पूरी फसल पककर तैयार हो जाती है और अच्छे बीज होने के कारण सुरेश की काफी अच्छी फसल आती है। इस बार उसकी प्रार्थना भगवान ने भी सुन ली थी और गांव में इस बार जमकर बारिश हुई। खेतों की सारी फसलें लहलहा ही रही थी।
11: देखो विमला, हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है, अब हम सेठ करमचंद का सारा कर्ज चुका सकेंगे।
8: हाँ जी, फसल तो हमारी बहुत ही अच्छी हुई है। हम आज से ही कटाई का काम शुरू कर देंगे और जल्दी से सारी फसलों को बेचकर आए पैसों से सबसे पहले सेठ जी के पैसे वापस कर अपनी जमीन छुड़ा लेंगे। सभी किसान बहुत खुश थे। सुरेश ने भी अपनी फसलों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया और अब वो वक्त आ गया था जब सुरेश को सेठ जी से लिया कर्ज चुकाना था और अपनी जमीन को सेठ जी के पास से छुड़वाना था।
7: विमला, फसलों को बेचकर हमें काफी अच्छा मुनाफा हुआ है, मैंने कहा था ना हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें बचाएगी। अब चलो जल्दी से सेठ का कर्ज चुकाकर अपनी जमीन वापस ले आए।
0: दोनों सेठ करमचंद के घर जाते हैं।
7: सेठ जी, ये लीजिए आपके पैसे, जो मैंने आपसे कर्ज लिया था उसका पूरा ब्याज मिलाकर ये पैसे हैं। अब आप हमें हमारी जमीन वापस कर दीजिए।
11: ये तो बहुत ही कम पैसे हैं, तुम्हारा कर्ज अब पहले से भी ज्यादा हो गया है क्योंकि तुमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया, अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी।
6: पर सेठ जी, आपने तो कोई निश्चित तारीख नहीं बताई थी, आपने तो कहा था कि जब पैसे आ जाएं तो तुम ये जमीन छुड़वा सकते हो, और अब आप कह रहे हैं कि हमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया।
7: सेठ जी, मैं तो समय पर ही ब्याज देने आया हूं, जैसे ही मेरी फसल पककर तैयार हुई मैं फसलों की कटाई शुरू कर दी और फसलों को बेचकर जो पैसे मिले उसे सीधा आपके पास ही लेकर आया हूं।
11: देखो सुरेश, इस कागज पर साफ साफ लिखा है, अगर तुमने 15 दिनों के अंदर ब्याज के लिए वे पैसे वापस नहीं किया तो ये जमीन मेरी हो जाएगी, और अगर उसके बाद भी तुम्हें अपनी जमीन वापस चाहिए तो तुम्हें 20% और ब्याज देना होगा।
8: ये अन्याय है, हमने पूरी रकम चुकाई है, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
11: यही सच है, अगर तुम्हें अपनी जमीन चाहिए तो 20% ब्याज का पैसा लेकर आओ, अब जाओ और ज्यादा मेहनत करो।
8: अभी तो हम जा रहे हैं सेठ करमचंद जी, पर याद रखना मैं अपनी जमीन तुमसे वापस लेकर ही रहूंगी। तुम्हारी बेईमानी के बारे में मैं सारे गांव वालों को बताऊंगी कि किस तरह तुम गरीब और भोले भाले किसानों का फायदा उठाते हो।
0: विमला और सुरेश निराश मन से सेठ जी के घर से आ गए और सेठ जी द्वारा किए गए धोखे को गाँव के सभी किसानों को बताया। ये बात सुनकर गाँव के किसान बहुत क्रोधित हो गए।
4: ये सेठ करमचंद अपने आप को समझता क्या है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो देख लेना एक दिन ये सेठ हम सभी किसानों को ले डूबेगा। हमें सेठ के खिलाफ कुछ ना कुछ तो करना ही होगा।
12: हाँ, लेकिन सबसे पहले ये सोचो कि सुरेश की जमीन उस सेठ करमचंद से कैसे छुड़वाए। वो सेठ तो ये जिद करके बैठा है कि सुरेश 20% ब्याज और ज्यादा देगा तभी उसकी जमीन वापस करेगा। हमें पंचायत में जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए।
13: अब तो जमींदार साहब भी घर आ गए होंगे, लेकिन मुझे लगता है एक बार हमें सेठ करमचंद से भी बात कर लेनी चाहिए। अगर सेठ करमचंद प्यार से मान जाता है तो ठीक, वरना फिर हम पंचायत में उसकी शिकायत करेंगे।
12: सेठ करमचंद जी, आपने सुरेश की जमीन को क्यों हड़प रखा है? आप उसकी जमीन वापस कर दीजिए। आपको सुरेश ने जब सारे पैसे दे दिए हैं तो आप उसकी जमीन वापस क्यों नहीं कर रहे?
7: तुमसे किसने कहा कि सुरेश ने सारे पैसे वापस दे दिए हैं? सुरेश ने बस
9: कुछ पैसे वापस दिए हैं, बाकी ब्याज के पैसे देने अभी बाकी हैं। जब तक वो पैसे मेरे हाथ में नहीं आते, सुरेश की जमीन वापस नहीं मिलेगी।
5: देखिए सेठ जी, इतना तो हमें भी पता है कि आप ब्याज पर पैसे देने के बदले हम गरीब किसानों को बहुत भारी लूटते हैं। अगर आप सुरेश की जमीन सीधे सीधे वापस नहीं करेंगे तो हम पंचायत में जाएंगे, और अगर एक बार आपका नाम हमने पंचायत में दे दिया तो आपको भी पता है कि पूरे गांव में आपकी कितनी बदनामी होगी। तो आप सीधे सीधे अगर सुरेश की जमीन वापस कर सकते हैं तो कर दीजिए, वरना हम पंचायत में जाएंगे।
1: पंचायत का नाम सुनकर सेठ करमचंद थोड़ा घबरा जाता है।
7: अगर ये बात पंचायत तक पहुंच गई तो पूरे गांव में मेरी बहुत बदनामी होगी। नहीं नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दे सकता। लगता है इस सुरेश की जमीन वापस करनी ही पड़ेगी। एक काम करता हूँ, इसकी जमीन वापस कर ही देता हूँ, कम से कम गांव में मेरी इज्जत तो बनी रहेगी। अरे किसान भाइयों, इतना क्यों नाराज होते हो, एक जमीन ही तो है। ठीक है सुरेश, मैं तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस करता हूँ, और तुम्हें अब कोई ब्याज देने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा ब्याज मैंने माफ कर दिया है।
1: इस घटना ने सुरेश को सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। साथ ही गांव के लोगों ने भी सीखा कि एकता में बल होता है। तो मैं काम करते
10: सुरेश और उसका
1: और
10: परिवार
1: के लोग खुशी अपने एक दूसरे की मदद करते हैं। इस प्रकार गरीब किसान सुरेश ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और गांव की एकता से अपनी जमीन और इज्जत दोनों को बचा लिया।

मम्मी पूछो, डैडी पूछो, भाई आप दोस्तों को यदि आज की पहेली का जवाब भी आता है तो कॉल कर दो, 9414151415 पर कर दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए, खाते नहीं चबाते लोग, काठ या लकड़ी में कड़वा रस संयोग, दांत जीभ की करे सफाई, बोलो बात दोस्तों समझ में आई? झटपट हमें कॉल करके बता दो और हम देते हैं आज के किसान की जो कहानी के साथ साथ ये प्यारा सा गीत आपके लिए, उन्हें ट्रिब्यूट करते हैं।

0: किसान हमारी भूमि को बेहतर बनाते हैं, किसान हमें अनाज देते हैं और किसान इस पूरी जो कह सकते हैं ना धरती के दिल हैं। आगे बढ़ते हुए पहेली का जवाब भी देते हैं। जी हाँ, आज हमने कविता सुनाई, पहेली सुनाई और साथ साथ अमेजिंग जानकारी के अलावा आपके लिए कहानियाँ भी लेकर आई। तो पहेली का जवाब, भाई खाते नहीं हैं लोग, चबाते हैं, चबाते हैं। लकड़ी में कड़वा रस है, दांत जीभ की करती है ये सफाई। बोलो दोस्तों, बात समझ में आई? हाँ, चलिए एक और गीत सुना देती हूँ, उसके बाद सही जवाब जरूर देती हूँ।
1: नमस्कार, मैं हूँ बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: वेल दोस्तों, सही जवाब नीम का पेड़। जी हाँ, हमने कविता के माध्यम से ये बात आप तक जरूर रखाई कि किस प्रकार ये नीम के पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। खड़ा हुआ मेरे आंगन में पेड़ बड़ा है नीम का, पेड़ घना है नीम का, पेड़ हरा है नीम का। आओ इसके नीचे खेले कई तरह के प्यारे खेल, कभी बने हम मोटर गाड़ी, कभी बने हम एक रेल, झूमा करता खूब हवा में पेड़ बड़ा ये नीम का, पेड़ घना है नीम का, पेड़ हरा है नीम का। जी हाँ, खाते नहीं चबाते हैं लोग, जी हाँ चबाकर ही उसको दतून बनाते हैं। काट कड़वा रस संयोग, इसमें से कड़वी सी रस निकलती है, दांत जीभ को करे सफाई, और आखिर में यही सत्य है भाई कि ये नीम का पेड़ है। आज की पहेली छुपी थी नीम जवाब के साथ। कल मिलने का वादा करती हूँ ठीक शाम 6 बजे, तब तक के लिए मेरे सभी साथियों को कहना चाहती हूँ उड़ान से गुड बाय। मैं हूँ आपकी दोस्त मोना, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: ये ले बहू, इसे पी जा।
2: ये क्या है माँ जी?
1: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
2: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी, और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
1: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
3: क्या हुआ अम्मा, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
1: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
2: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
3: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल, मुझे भी बच्ची ही चाहिए। मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता, आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
2: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? नहीं ना।
4: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM, होबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और कह सकते अपना लोक भाषा में मारो गाँव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं सभी से मिलते हैं, तो आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरना में पहुंचे जो कि पूरा हाईवे का पास है गांव है डेरना और वो फेमस है डेरना पूरा राबड़ी बनाने के लिए होशियार है पूरा यहां पर दूध मलाई का भरपूर है ये गांव और जब आप रोड आते हैं कोई भी पर्यटक विजिटर्स वो राबड़ी को याद करता है और डेरना से जाता है और डेरना तो अच्छा गाँव है। तो हमारा सभी राबड़ी खाने वाले सभी बच्चे उपस्थित है स्कूल में जब आए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रार्थना सत्र में जैसे बच्चे गाते हैं आज प्रार्थना सत्र में एक प्रस्तुति होगी जो कि बच्चों का तोतुल तोतुल आवाज में पहला बार नहीं इसका पहले भी हम प्रोग्राम किए थे लेकिन आज एक प्रार्थना सत्र में माँ सरस्वती का वंदना होगी तो सभी नाम बताएंगे। हेलो, नाम बताइए।
1: कुसुम, सरोज, पूजा।
0: कौन सा क्लास पूजा?
1: छठी पूजा।
0: अरे बाप, पूजा पाठ आस्था विश्वास में हम तो ओतप्रोत हो गए और हमारे दो पूजा आज मिल चुके और देखते हैं कौन कौन नाम आते हैं।
1: मानवी।
0: हाँ, मानवता, मानवी, वाह। मानव सेवा ही माधव सेवा कहते हैं, मनुष्य का सेवा करना चाहिए।
1: आशा।
0: आशा विश्वास।
1: जमुना।
0: जमुना का कंठ में हम चलेंगे कृष्ण जी के पास।
1: हंजा।
0: हंजा, वाह।
1: संजना।
0: संजना।
2: मानसी।
0: हाँ चलिए, एक प्रार्थना होगी, शुरू करेंगे बच्चे प्रार्थना मुद्रा में।

तो इस तरह आस्था विश्वास और भक्ति में हम ओत प्रेत होकर अपना दिल का भावना माँ सरस्वती तक पहुँचाते और हर विद्यालय में शुरुआत में प्रार्थना सत्र में करते हैं। तो आज राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय डरने का बच्चों का आवाज, पूजा अंजा सभी का आवाज सुन रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह प्रोग्राम में जब बढ़ चढ़कर बच्चे भाग लेते हैं तो हमें खुशी मिलता है, उनको मौका मिलता है, उनका आवाज आकाशवाणी में आ रहा है। तो जब उनका घर में मम्मी पापा भाई दोस्त लोग सुनेंगे, अरे ये तो हंजा का आवाज है, ये तो मानसी का आवाज है, सुनेंगे तो रास्ता में उसको बहुत प्रचार प्रसार करेंगे।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बच्चों का आवाज सुन रहे हैं और ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरने का आवाज, क्या सुंदर आवाज प्रस्तुति दिए प्रार्थना का रूप में। चले और एक आदिवासी गीत होगा, क्योंकि आदिवासी एरिया में जब आए आदिवासी गीत न हो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आदिवासी नाम सुनते तो शुद्धता, मिठास और भोलापन देखने को मिलता है आदिवासी में। चलिए कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए हमारा नया नया चेहरा आज आए और मासूम मासूम चेहरा में थेमरो गाना थेमरो वास्ते सुनाएंगे। थेमरो हूँ नाम
2: विमला।
1: विमला थेमरो हूँ नाम
2: सेवना।
1: सेवना थेमरो
2: आशा।
1: थेमरो
2: हंसी।
1: थेमरो
3: संजना।
1: थेम
2: सविता।
1: सविता
3: सरोज।
4: पूजा संजना।
1: वाह, शुरू करते हैं का आदिवासी गीत।
5: वेली।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: गीत को रोक नहीं पा रहे हमारा, और जो देवासी बहने आदिवासी का साथ साथ देवासी का जो आवाज, वो भी अपना आवाज को रोक नहीं पाकर अपना बोलेंगे बुलंद आवाज से, और एक का बाद एक गुलदस्ता बन गया हमारा कार्यक्रम, क्योंकि आदिवासी का साथ साथ देवासी लोग का जो गीत है, जो हमारा गोपालक कहते हैं, भैंस गाय रखते हैं उनको कहते हैं देवासी, तो देवासी को सलाम करते हैं, शुरू करते हैं।

सुंदर प्रस्तुति के लिए सुंदर बच्चे आज उपस्थित हुए, एक का बाद एक एक बच्चों का आवाज सुन को मिल रहा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

हफ्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बच्चों का आवाज, सच्चे बच्चे मस्त बच्चे होते हैं, तो आज सच्चे मन से दिल से गीत गाएंगे। सभी को स्वागत करते हैं पुनः नाम का साथ, पूजा अर्चना भावना आशा सभी भरे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं।

0: क्या बात सुंदर प्रस्तुति के लिए, और सभी को स्तब्ध कर दिए, इतना सुंदर प्रस्तुति दिए, बच्चों को कितना भी धन्यवाद दे कम ही होगा, क्योंकि ये कार्यक्रम रेडियो मधुबन पर सुन रहे हैं सभी। हमें खुशी है बच्चे इस तरह बारी बारी अपना भाव को भावना को प्रस्तुति किए रेडियो मधुबन पर, और हमें खुशी लगता है क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं और अपना मन का बात दिल का बात रखते हैं गीत का माध्यम से, चाहे रबारी हो, चाहे देवासी हो, चाहे हमारा आदिवासी हो, चाहे सभी जाति का लोग बढ़ चढ़ कर स्कूल में रहते हैं और भाईचारा देखने को मिलता है, एक दूसरे को सहयोग देते हैं। और तीन गुड्डा छात्र आए हैं तो वो भी अपना आवाज को देंगे।
1: नीरमाणी रे बाबा नीरमाणी जंगल में मंगल में, अरे बाबा नीरमाणी ओ पहाड़ों में ओ मंगल में, अरे बाबा नीरमाणी,
2: अरे बाबा नीरमाणी पहाड़ों में जंगल में दुनिया दे गाली, अरे बाबा नीरमाणी।
0: लेते आज के लिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: आते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हे हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ए जिंदगी।
1: अभी बजे हैं शाम के 8। स्वयं के प्रति एक मिनट का समय दें।

बार स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

नमस्ते जी, मैं अजय कांत रुईया बोल रहा हूँ बम्बई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में भाषा में सबना हार्दिक कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरे संपर्क हुए तब से मना जिंदगी को एक नया दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम्स जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इना सा मार्गदर्शन मिलो है और मैं यही एक संदेश सारा लोगों ना बोलूंगा कि अपना जो भी काम आप करा मन लगा कर करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाऊंगा। फिर नमस्ते, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।

ये हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं संजय कुमार और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुवन 107.8 FM पर। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, सहज स्वास्थ्य की हमारी बातचीत में हम हर एक एपिसोड में धीरे धीरे इस बात को समझते जा रहे हैं कि स्वास्थ्य को हासिल करने की कुंजी कहीं दूर नहीं है, यह कोई कठिन तपस्या से हासिल करने वाली प्राप्ति नहीं है, अपितु कुछ आसान तरीके हैं अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के। अगर व्यक्ति इन सहज साधनों का उपयोग करेगा तो जीवन में रोग मुक्त रह सकता है, जीवन में स्वस्थ रह सकता है। यह तोहफा हम सभी अपने आप को दे सकते हैं। आज इस चर्चा का उद्देश्य यही है कि हम स्वस्थ रहें, एक स्वस्थ परिवार बनाएं, एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान स्वस्थ रहकर दें। आइए आज इस चर्चा में स्वास्थ्य जगत के एक ऐसे एक्सपर्ट से ही इस विषय पर जानकारी हासिल करते हैं कि हम कैसे अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी, जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो कई लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरे अकेले के करने से क्या होगा, कई लोग ये सोचते हैं कि भाई मैंने तो इन चीजों की परहेज ले ली है, मैं ये चीज करता नहीं हूं या ये चीज खाता नहीं हूं या इस समय पर खाता हूं या मैं अच्छी चीजें ही खाता हूं जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है वो चीजें खाता हूं, मगर मेरे ही घर में सदस्य ऐसे हैं जो बेटाइम खा रहे हैं या अनाप शनाप चीजें खा रहे हैं, तो मेरे बदलने से क्या होगा, मेरे एक के बदलने से क्या एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, ऐसे प्रश्न उठते हैं लोगों के मन में, उसके लिए आप क्या कहेंगे?
1: मैं सबको ये बात बोलता हूं कि हम सुधरेंगे जब सुधरेगा। हम ये ना सोचें कि हम क्या कर रहे हैं और मेरे ठीक रहने से क्या होगा। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, अगर हम गंदगी नहीं फैलाएंगे तो हम कम से कम जो कूड़ा उठा रहा व्यक्ति उसको एक आदमी का तो कूड़ा कम उठाना पड़ेगा। यदि हम ट्रैवल करते समय अपना जो प्लास्टिक है, पानी है, कचरे का जो प्लास्टिक की बॉटल है, फल के छिलके हैं, खाने के पैकेट हैं, उसको इधर उधर ना फेंकें तो हम बहुत अच्छा पर्यावरण के लिए मदद लेंगे। अब इसी चीज को हम स्वास्थ्य के परिवेश में देखना शुरू करते हैं। एजुकेशन सिस्टम में हमेशा ये कहा जाता है कि एक लड़के को पढ़ाने से ज्यादा जरूरी है एक लड़की को पढ़ाना, और उसका सीधे ये रीजन दिया जाता है कि वो लड़की जब शादी होकर जिस घर में जाएगी तो जो उसके संस्कार हैं, जो उसकी तैयारी है, वो पूरे के पूरे उस परिवार को मिलेंगे। यही सेम चीज मैं हेल्थ के लिए बोलता हूं। एक सिंगल आदमी अगर शुरू करे, आप अगर किसी भी पार्क में जाइए और वहां पे आप कस के हंसिए, आप देखिएगा दो चार लोग इसको देख के ही हंस देंगे, और फिर धीरे धीरे पता चलेगा कि वो सिंगल आदमी के हाहा हाहा करने से सडनली महीने भर में या इवन हफ्ते भर में वहां 15-20 आदमी हंस रहे हैं, और इसी को कह दिया जाता है कि ये 15 लोग लाफ्टर योगा कर रहे हैं, जबकि सिर्फ एक आदमी ने शुरू किया। आप पार्क में जाइए, एक आदमी दौड़ना शुरू करता है, एक आदमी बैक वॉकिंग करना शुरू करता है, एक आदमी हल्का फुल्का योगा करना शुरू करता है, उसका देखा देखी लोग शुरू कर देते हैं, भैया आप करने लगेंगे या कोई एक व्यक्ति करने लगेगा, उसको अगर उससे लाभ मिलेगा तो वो अपने घर में सबको बोलेगा, अरे भाई एक्सरसाइज किया जाए, उससे फायदा हो रहा है। या कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति अपने ऑफिस के डब्बे में थोड़ा अंकुरित थोड़े फल लेकर जाएगा, लोग पूछेंगे अरे यार ये क्या ले आए हो, इससे पेट थोड़ी ना भरेगा, पर वो बोले कि नहीं नहीं मैं पिछले 7-8 दिन से खा रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं हल्का फील कर रहा हूँ, और खाना खाने के बाद जो थोड़ी सी नींद आती है ऑफिस काम करने में मुझे ठीक नहीं लगता है, अब इन फलों या इन हल्के अंकुरित चीजों को खाकर या हल्का भोजन करके मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उस अच्छी चीज के बारे में जरूर बात करेंगे। एक और एग्जाम्पल दूंगा, एक अभी नया फोन आया है, बड़ा महंगा फोन है और मजाक मजाक में लोग बोलते हैं कि किडनी बेचनी पड़ती है उस फोन खरीदने के लिए। मैंने ये देखा है कि मेरे भी कुछ मित्रों के पास वो फोन आ गया है,

0: लगने लग रही हो। और सिर्फ वो महिला इतना ही बोलेगी कि मैंने भारी भोजन करना कम कर दिया है, मैंने पूड़ी कचौड़ी समोसे इमरतियां जलेबियां गुलाब जामुन लड्डू ये सब खाना इधर छोड़ दिया है या बहुत कम कर दिया है। हम लोग ऋतु के अनुसार सब्जी खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, सिंपल रोटी खा रहे हैं, कभी कभी ज्वार बाजरा खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, रोज थोड़ा वॉक कर रहे हैं और हम इसीलिए इतना वजन कम कर लिए। आप देखिएगा उस पूरी मित्र मंडली में से 50 to 70 लेडीज या जेंट्स मोटिवेट होके वजन कम करने लगेंगे। श्री भैया रेडियो पे बात करते हैं, इनकी कोई एक अच्छी बात अगर किसी के दिमाग में जरा सा भी घर कर जाती है, वो मुझे मालूम है कि अगले सहज स्वास्थ्य प्रोग्राम में पूछ लेता है कि श्री भैया जो पिछली बार आप बोले थे वो जरा एक बार फिर से बोल दीजिए, श्री भैया फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अगर व्यक्ति थोड़ा सा एफर्ट करे और अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव ले आए, वो पूरे समाज में बदलाव ले आता है। मैं एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा जहां पे डॉक्टर्स आए थे मेरे साथ माउंट आबू में। डॉक्टर्स बहुत बदनाम है कि वो देर तक जगते हैं और देर तक सोते हैं, मगर पहले दिन जो हॉल था जिसमें लोग सुबेरे मेडिटेशन करने आए थे वो 80% भरा हुआ था। सेकेंड डे इट वॉज 95% फुल, पूरे लोग एक ही दिन में। सोचिए एक दिन में जो सुबेरे नहीं उठ सकते थे, जो 7-8 बजे उठते वो सुबह वो 4 बजे उठ गए। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि हमने सोचा कि 3-4 दिन के लिए है या 3 दिन के लिए है, इसमें तो सुबेरे उठ के देखा जाए क्या फायदा होता है। तो हमारे वातावरण ने हमें मोटिवेट किया एक अच्छा काम करने की, यही चीज स्वास्थ्य के साथ है और आप उस वातावरण का पार्ट हैं। आप स्वस्थ होइए, आप स्वस्थ काम करिए, आप योग करिए, आप मेडिटेशन करिए, देखिए सब लोग अगल बगल वही करने लगते हैं। और आप जिस चीज के लिए जो चीज करके खुश होते हैं उसके बारे में आप बहुत बात करते हैं। जैसे मैंने फोन का एग्जाम्पल दिया, आप अगर फल खा रहे हैं सब्जी खा रहे हो सबको बताते हैं, देखो यार मैं तो फल सब्जी खा रहा हूँ फल सब्जी खा रहा हूँ। अरे तुम्हारा वेट कम हो क्या? अरे मैं तो फल सब्जी खा रहा हूँ फल सब्जी खा रहा हूँ। अरे तुम थोड़े अच्छे लग रहे हो। अरे मैं रोज एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं रोज योगा कर रहा हूँ, रोज प्राणायाम कर रहा हूँ। तो आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में बहुत बात करते हैं और स्पेशली वो पॉजिटिव अचीवमेंट हो तो प्लीज एक आदमी से भी बहुत कुछ सुधर सकता है।
1: बिल्कुल, आप ये जब बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब, समझ में आता है कि हर व्यक्ति अपनी अच्छी चीजों का बखान करते हैं। हमने कुछ अगर हासिल किया है तो वो चीज हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, और स्वास्थ्य एक अच्छी चीज ही तो है। जब व्यक्ति के स्वास्थ्य में तरक्की होती है, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता है तो सामने नजर आता है लोगों को, और वो नजर आते आते जब आप लोगों को शेयर करते हैं तो फिर हम एक दूसरे को स्वस्थ बनाने के लिए, उन कदमों को साथ में उठाने के लिए मददगार बन जाते हैं, एक दूसरे के लिए एक पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। आपने अभी अभी बात कही कि जब हम सहज स्वास्थ्य में कोई बातचीत करते हैं और हमारे श्रोता मित्र किसी चीज को सुन लेते हैं, अगर उनको बात पूरी तरीके से समझ में नहीं आती है तो दोबारा पूछते हैं कि भाई मैंने अभी अभी रेडियो पे ये कार्यक्रम सुना था, इसमें ये चीज कही गई, आप उसके बारे में बताइए, उस एपिसोड का हमें थोड़ा डिटेल्स दीजिए, ये एपिसोड पुनः कब प्रसारण होगा, ये इत्यादि चीजें हमारे दोस्त हमें मैसेज करके रेडियो स्टेशन पर पूछते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न आज हमारे पास आए हैं डॉक्टर साहब, जिससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। हमारे एक श्रोता मित्र ने प्रश्न भेजे हैं कि चाय और कॉफी के बारे में जब हम पिछले दिनों विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे थे तो उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। पहला ही प्रश्न उन्होंने पूछा है कि अगर व्यक्ति चाय या कॉफी पीता ही नहीं है, या फिर किसी भी कैफीनेटेड बेवरेज यानी एक ऐसा पेय पदार्थ जिसमें कैफीन की मात्रा ही ना हो और कैफीन हो ही नहीं, ऐसे चाय कॉफी या कोई कैफीन वाला पेय पदार्थ अगर हम नहीं पीते हैं तो क्या इसका हमारे शरीर पर, खासकर हमारे मस्तिष्क पर कोई असर होता है? ये प्रश्न पूछ रहे हैं।
0: जो चीज हमारे शरीर में कभी नहीं गई तो हमको उस चीज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, हमारे शरीर को भी उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। हम चाय कॉफी को जर्मन या फ्रेंच लैंग्वेज की तरह समझें, आपको फ्रेंच लैंग्वेज

0: अगर नहीं आती है, फ्रांसीसी भाषा बोलने नहीं आती, तो इसका मतलब आप फ्रांसीसी भाषा समझ भी नहीं सकते हैं। और अगर कोई फ्रांसीसी भाषा में आपको ज्ञान दिए चले जा रहा है, वो आपके किसी काम का नहीं है। हम ब्रह्म कुमारीज में बहुत सारे प्रोग्राम्स को मल्टी लैंग्वेजेस में लोगों को भेजते हैं, प्रसारित करते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम्स को हम लोग दूसरी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करके बताते हैं। सिर्फ इसीलिए कि उस व्यक्ति को मालूम चल जाए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं और उसको हम क्या समझाना चाह रहे हैं। इसी तरह हमारा शरीर है। जिस शरीर ने कभी चाय, कॉफी या किसी निकोटीन चीज के पदार्थ को अपने अंदर नहीं लिया, उसको कुछ मालूम ही नहीं चलेगा कि उससे क्या इफेक्ट उसके शरीर पे पड़ता है। जैसे एक चीज मैं भी बोल सकता हूं आज कि मैंने कभी भी नॉनवेज नहीं खाया है अपने पूरे जीवन में, तो आज तक मुझे उस चीज का टेस्ट मालूम ही नहीं है कि उसका स्वाद क्या है। बहुत सारे जो जान पहचानी मित्रगण उसे खाते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ मुझे बताने की कोशिश करते हैं, पर मैं उसके बारे में कुछ समझता ही नहीं हूं क्योंकि मैंने कभी उसको खाया ही नहीं, मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया, तो मुझे मालूम ही नहीं है कि वो स्वाद कैसा होता है। हाँ, लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि जब तुम नीम का पानी पियोगे तो वैसा लगेगा, या तुम करेले का पानी पियोगे तो वैसा लगेगा, या तुम कुछ ठंडा ठंडा पानी पियोगे और थोड़ा सा कड़वा कड़वा लगेगा तो वैसा लगेगा। अब ये मैं इसको सुन लेता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, मगर मैंने कभी भी अपनी जिह्वा पे उसको रख कर कोशिश नहीं करी कि मैं पता करूं कि वो क्या चीज है। सो द सेम थिंग इज विथ टी एंड कॉफी एंड द इफेक्ट्स ऑफ टी एंड कॉफी ऑन योर बॉडी। मतलब आपके शरीर पे चाय और कॉफी, क्या जो उसके अंदर कैफीन और निकोटीन, जो कैफीन है, उसका क्या असर होता है, ये आपको कभी मालूम ही नहीं चलेगा। ना आपका दिमाग और आपका ब्रेन कुछ रिएक्ट कर पाएगा क्योंकि वो चीज उसको कभी मिली ही नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। जिस व्यक्ति ने कभी कोई पहाड़ नहीं देखा, आप उसको समझाते रहिए ऊंचा होता है, ट्रायंगल होता है, हरा होता है, पेड़ लगे होते हैं, उसमें सड़क गोल गोल होती है। एक और स्टोरी, हम लोग बचपन में सोचते थे कि चार अंधों को हाथी के बारे में एक्सप्लेन किया गया, तो जिसको जो समझ में आया उसने बना दिया, या चार अंधों ने हाथी को पकड़ा तो जिसने पैर पकड़ा उसने सोचा हाथी, अच्छा, पेड़ के तने जैसा होता है, जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा अरे हाथी तो ब्रश की तरह होता है, जिसने सूंड पकड़ी, जिसने दांत पकड़े, सबने अलग अलग चीज सोची। तो वही चीज हमारे शरीर के साथ है। जो चीज हमारे शरीर के अंदर गई नहीं है, उसका इफेक्ट हमारे शरीर में क्या होगा, ये हम बता ही नहीं सकते और हम उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। और अगर आपके शरीर में नहीं गई है तो ये एक बहुत पॉजिटिव लक्षण है।
1: ये बात समझ में आती है कि हाँ, जब आपने कोई ऐसी खराब चीज को जो आपके शरीर के प्रकृति के अनुकूल नहीं है, उस चीज को अपने शरीर में डाला ही नहीं है, तो आपके शरीर के लिए वो लाभप्रद चीजें ही मिली हैं, तो शरीर स्वस्थ ही रहेगा। और जब आप इन बुरी चीजों को डालते हैं, तब आपको उसका प्रभाव और उसका असर देखने को मिलता है। अब हम ये भी देखते हैं कि एक सांस्कृतिक परिवेश के रूप में भी भारत में खास तौर पर हम चाय के आदी हैं। हम देखते हैं घरों में अगर कोई मेहमान आए, हम उन्हें चाय या कॉफी ऑफर न करें, खास तौर पर चाय ही अगर ऑफर नहीं करें, तो ऐसा देखा जाता है अरे उन्होंने चाय के लिए भी नहीं पूछा, ये बात कही जाती है। और चाय और कॉफी पीने का ये रिवाज प्रचलन दुनिया के कई देशों में देखने को मिलता है। अमेरिका और यूरोप के देशों में कॉफी का बड़ा प्रचलन है, इंग्लैंड में चाय का बड़ा प्रचलन है, भारत में, दक्षिण पूर्व एशिया में लोग अलग अलग प्रकार के चाय पीते हैं। अब चाय एक या कॉफी हर दिन सेवन करने वाला एक पदार्थ के रूप में बन गया है, और जो लोग चाय या कॉफी पी रहे हैं, उनकी दिन की शुरुआत या दिन में कई बार अगर वो चाय या कॉफी नहीं पिए तो उनका दिन पूर्ण ही नहीं होता। तो ऐसे में हमारे एक श्रोता मित्र ने प्रश्न पूछा है कि अगर हम बहुत ज्यादा चाय या कॉफी या किसी कैफीन वाले पेय को एक लंबे समय के लिए पीते हैं तो फिर उसका क्या असर होता है, ये चीज पूछते हैं।
0: कोई भी चीज अगर हम लंबे समय तक लेते हैं तो उससे वो चीज हमारे शरीर को उसकी आदत पड़ जाती है। छोटे चीजों से शुरू करूंगा। बच्चे को कहीं भी आप सुला सकते हैं, एक एडल्ट व्यक्ति, एक खासकर जिन्होंने 40 की उम्र को क्रॉस कर लिया है, वो एक बात बड़ी नॉर्मल बोलते हैं कि मुझे तो अपने बिस्तर पे ही नींद आती है। उसका रीजन ये नहीं है कि उस बिस्तर पे कुछ फूल लगे हैं या उस बिस्तर कुछ, वो आदत पड़ गई है उस एक जगह में ही सोने की। दूसरा इसका एग्जाम्पल देता हूं भैया, अपने आबू में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग पूरे अपने माउंट में जगह जगह बैठ के मेडिटेशन करते हैं। क्यों? और आप जब उनसे बात करिए तो वो कहते हैं एक ही ये स्थान है जहां बैठ के मैं मेडिटेट करता हूं, मैं बाबा की बातों को स्मरण करता हूं, बाबा की जो टीचिंग्स हैं उनको लेता हूं और मैं अपने आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हूं। और पता नहीं क्यों एक सिंगल जगह, यही एक जगह है जहां मेरा सबसे अच्छा मेडिटेशन होता है। तो वो स्थान उन्होंने सिद्ध कर लिया है अपने लिए। माउंट आबू पूरा का पूरा बाबा ने सिद्ध कर दिया, और उस सिद्ध स्पेस में से भी कोई एक पर्टिकुलर स्पेस उनके साधक ने सिद्ध कर ली। और एक एग्जाम्पल, लोग बोलते हैं कि मैं इस मंदिर में जाता हूं मुझे बहुत शांति मिलती है, मैं इस जगह जाता हूं मुझे बड़ी शांति मिलती है। मंदिर सबके लिए शांत है, मंदिर सबके लिए अच्छा है, मंदिर का हर कोना अच्छा है, मगर लोग क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर कोने में बैठकर मुझको ज्यादा अच्छा या ज्यादा शांति मिलती है। यही चीज चाय कॉफी के साथ, उसकी आपको इतनी आदत हो गई है कि वो आपको अच्छी लगती है। इसके साथ साथ आप उसको अपने नित्य दिनचर्या का एक भाग बना लिए हैं, और वो नित्य दिनचर्या आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो नहीं हो पाती है तो आपको परेशानी महसूस होती है। मैंने बहुत सारे साधकों से सुना है आज का मेरा मेडिटेशन छूट गया, अच्छा नहीं लगा। मैंने बहुत सारे योगा करने वाले व्यक्तियों से पूछा है, स्पेशली जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं और प्लेन में भी वो कुछ ना कुछ हिलते डुलते हैं, तो अगल बगल वाले बोलते हैं क्या कर रहे हो भाई, तो बोलते नहीं, ये मेरा योगा करने का टाइम है, मेरा शरीर इस समय शांत नहीं बैठ पाता, मुझे कुछ हिल डुल लेने दीजिए। मैंने भैया स्टेशनों पे और इवन एयरपोर्ट्स पे लोगों को एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करते हुए देखा है कि वो उस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, माला फेरते हुए। भैया आपको कितने सारे लोग ट्रेन में मिल जाएंगे, प्लेन में मिल जाएंगे, एयरपोर्ट पे, स्टेशन में, बसों में मिल जाएंगे। एक उनकी आदत दिनचर्या हो गई है, और वो जब तक उसको पूरा नहीं कर पाते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। यही चीज चाय और कॉफी के साथ है, आपके वो शरीर का एक अभिन्न अंग बन गया है। चाय के अंदर का कैफीन, जो कॉफी के अंदर का कैफीन है, वो जब तक आपके शरीर में नहीं जाता है आप अच्छा नहीं फील करते हैं। और इसीलिए, क्योंकि वो जब जाता है आपके शरीर में, अच्छा, हमारे शरीर में एक हार्मोन है उसका नाम है डोपामीन, जब ब्रेन में निकलता है तो आदमी को बड़ा अच्छा लगता है। और डोपामीन किसी भी चीज से निकल सकता है, जो चीज आपको अच्छी लगती है, आपको बारिश से अच्छा लगता हो तो डोपामीन उसमें निकल जाएगा, आपको फूल देख के अच्छा लगता है उसमें। बहुत सारे लोगों को एड्रेनालिन रश के साथ डोपामीन निकलता है, या तेज गाड़ी चलाने से, ऊपर कूदने से, स्विमिंग में छलांग, नो क्लिफ से छलांग लगाने में, स्काई डाइविंग करने से, ये सारी चीजें, क्रिकेट, एक फुटबॉल का गेम देखने से, जब कोई आपका खिलाड़ी आप मन माफिक जो आप चाह रहे हैं वैसा प्रदर्शन हो रहा था, आप खुशी से झूमने लगते हैं। तो ये जो खुशी है ये डोपामीन से आती है, और हमारा चाय और कॉफी इस डोपामीन को बढ़ाने का काम, वो हमारे जैसे ही निकलता है हमारे दिमाग से, तो हम लोग बड़ा खुश होते हैं, और खुश के साथ साथ हम लोग टेम्परेरी रिलैक्स हो जाते हैं। तो जो लोग लंबे समय तक चाय या कॉफी पी रहे हैं, वो लोगों को इस डोपामीन पीते ही वो खुशी निकलती है, जो उनके ब्रेन में डोपामीन निकालती है, और उस ब्रेन के डोपामीन जो है उससे उनको खुशी और जो है सेटिस्फैक्शन और टेम्परेरी रिलैक्सेशन होता है। तो इसीलिए चाय और कॉफी उस चीज के लिए, उस चीज को प्रदान करने के लिए एक उनके भोजन का अभिन्न अंग बन गई।
1: यानी ये बात समझ में आ रही है कि किसी चीज की आदत पड़ जाने से हमारे मस्तिष्क में वो चीज चली गई है, रच बस गई है कि अगर ये चीज पीने से या ये चीज करने से मुझे खुशी मिलती है या सुकून मिलता है, तसल्ली या रिलैक्सेशन मिलती है। प्रश्न ये भी है कि क्या फिजियोलॉजिकली, शरीर में भौतिक रूप से कोई परिवर्तन ये चीजें करती हैं, या ये एक मानसिक चीज है?
0: करती हैं भैया, और कहा जाए कि चाय और कॉफी के साथ एक शब्द जोड़ा गया है, वो है एडिक्शन। आपको, आप उसके प्रति जो है वो आपके शरीर का नहीं, आपके मन का भी आकर्षण है, और जब वो आपको नहीं मिलती है तो आप बेचैन होने लगते हैं। पहला जो हमने बोला था, दिमाग को ठंडा करता है और खुशी देता है, रिलैक्स करता है। दूसरा, कुछ भी गर्म पीते हैं तो गर्म जहां भी शरीर में पड़ता है वहां हम लोगों को जो टेस्ट, जो भी चीज पे गर्म डालिएगा तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो टेस्ट बड्स हमारे बढ़ जाते हैं। भारतीय परिवेश में नॉर्मली चाय और कॉफी को मीठे के साथ जोड़ा जाता है कि हम लोग मीठ चाहिए, तो मीठा पीते ही अपने आप थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाता है, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है। अच्छा, हम लोग टी नहीं पीते, हम लोग चाय नहीं पीते हैं, हम लोग मसाला चाय पीते हैं, जो विदेशी परिवेश में बोला है मसाला टी। और क्यों उसको मसाला टी बोलते हैं? क्योंकि हम उसमें चाय, दूध, चीनी, अदरक, इलायची, तुलसी पत्ता, केसर, काली मिर्च और जाने दो चार पांच चीजें
1: बहुत
0: और
1: सारी
0: उसमें डाल
1: चीजें
0: देते।
1: जी।
0: तो जब हम इतना कुछ डालते हैं तो विदेशियों ने उसको मसाला टी का शब्द दे दिया। हम उस चाय को जब पीते हैं तो गर्म में ये सारी चीजें उसमें चली जाती हैं, तो इन सारी चीजों का अपना अपना इफेक्ट। तुलसी पीने से थोड़ा सा नाक खुलती है, काली मिर्च पीने से गला जो है वो ठीक होता है, अदरक इम्यूनिटी बढ़ाती है हमारा। हाँ, तो कुछ भी गर्म है, इवन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पे एक पूरा का पूरा प्रोग्राम निकाल दिया जिसका नाम था चाय पे चर्चा।
1: बिल्कुल
0: और सोचिए, चाय हमारे भारतीयों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को एक चाय वाला बोलते हैं। चाय बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दिमाग को ठंडा करती है, गले को आराम देती है उसके साथ, और वो एक मेंटली रिलैक्स करती है। सेकेंडली, इसके अंदर जो कैफीन है वो हमारी जैसे ही रक्त संचार को बढ़ा देता है, तो जैसे ही रक्त संचार को बढ़ा देता है तो लोगों का पेट साफ होने के लिए जो आते हैं हमारी थोड़ा तेज चलने लगती हैं, तो सवेरे जब वो सो रही होती हैं, अभी उठी रहती हैं, आप हिल डुली रहते हैं, आपने चाय डाल दी तो उस चाय का निकोटीन उनको दौड़ाने लगता है, वो आते दौड़ने लगती हैं और आपका पेट साफ हो जाता है। तो फिजियोलॉजिकली ये आपका पेट साफ कर देती हैं, आपको जगा देती हैं, डोपामीन आपके दिमाग में बहुत सारा रिलीज कर देती हैं, तो जो आप धीरे धीरे जग रहे थे, आप एकाएक झटके से जग जाते हैं। इसको एक लाइन और बोली जाती है भैया, कि आपने एक कैफीन विप मारा है, मतलब आपने कैफीन का एक चाबुक मारा है अपने ऊपर उठने के लिए। तो ये उसको इफेक्ट करता है।
1: ये जो बात आपने अभी अभी कही वो समझ में आ रहा है कि ये कैफीन का चाबुक हम मार रहे हैं जिसकी वजह से ये असर हो रहा है। बातें तो बहुत ही सुंदर समझ में आ रही हैं, मगर वक्त कहता है कि यहाँ रुकना होगा। आज आपने चाय कॉफी के शरीर के ऊपर क्या प्रभाव होते हैं, लंबे समय पर इसका इस्तेमाल करते रहने से क्या होता है, ये सारी चीजें समझाई। आशा करता हूं कि हमारे श्रोता मित्रों को ये बात समझ में आई है। अगर आप चाय कॉफी नहीं पीते हैं तो कृपया कोशिश नहीं करें। अगर आप पी रहे हैं तो आप समझें कि आपके शरीर पर यह क्या प्रभाव डालती हैं। सुबह सुबह उठकर अपने आप पर चाबुक चलाना कोई अच्छी चीज नहीं है दोस्तों। धीरे धीरे इससे बाहर आने की कोशिश करें, और उसे कैसे किया जाता है इस पर हमने ऑलरेडी बातचीत की हुई है। आज की सेहत स्वास्थ्य में इतना ही। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं डॉक्टर राहुल मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, सेहत स्वास्थ्य में और बातें आप सुनते रहेंगे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के बारे में। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: हेलो बच्चों, सपनों की सैर कार्यक्रम शुरू हो गया है क्योंकि घड़ी ने बजा दिए हैं 9:30। और पिछली कड़ी में हमने बातें की थी ना परीलोक के सितारे की।
3: हाँ परी, बड़ा मजा आया था। और बच्चों, मैं तो सोच रही थी कि सभी परियों में कितना स्पेशल जादू होता है ना, है ना परी?
2: तो मनी दीदी, सभी परियों के पास लगभग जादुई छड़ी तो होती ही है।
3: हाँ परी, सभी परियों की छड़ी होती है तो हर एक परी का जादू भी तो अलग अलग होता है ना। जैसे कोई परी होती है जो फूलों को खिलाती है, कोई परी होती है जो तितलियों को रंग देती है, कोई परी होती होगी जो बादल में पानी लाती होगी, कोई परी होती होगी जो रेनबो बनाती होगी, है ना? ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे परियों के।
2: हाँ मनी दीदी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, लेकिन बच्चों में जो जादू है वो परियों में नहीं है।
3: अच्छा, बच्चों में कौन सा जादू है?
2: तो बच्चों, आप जब किसी को मदद करते हो या किसी को खुश करते हो तो होता क्या है पता है ना, हर एक के अंदर एक छोटी सी परी बच्चों में होती है। और वो प्रेम, सच्चाई, करुणा, ये सारी जो गुण है ना, वो सब परियों में होते हैं तो बच्चों में भी होते हैं जो जाग जाते हैं।
3: हाँ, यानी कि बच्चों आपके अंदर भी परी का जादू है।
2: हाँ तो चलो मनी दीदी, ये थी आज की परियों की बातें।
3: लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
2: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
3: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर।

की कहानी। जल्दी से वॉल्यूम रेडियो का लाउड कर लो। बच्चों, एक गरीब मोची और एक धनी व्यापारी दोनों पड़ोसी थे। मोची के घर में ही जूते चप्पल सीने की छोटी सी दुकान थी। काम करते करते वो अक्सर मौज में आकर गाने लगता था। वो बहुत निश्चिंत मस्त मौला आदमी था। उसे कभी अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो रात को भगवान की पूजा करता और मजे से सो जाता। और अमीर आदमी का क्या बच्चों, इस हसमुख मोची की ईर्ष्या भरी नजर से वो देखा करता था। गरीब होने के बावजूद उस मोची को किसी बात की चिंता नहीं थी, जबकि अमीर आदमी को तो तरह तरह की चिंताएं सताती थी। उसे हमेशा अपनी तथा अपने धन की रक्षा की चिंता रहती थी। रात को वो अपने मकान के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेता था। बच्चों, एक दिन अमीर आदमी ने मोची को घर बुलाया और उसने उसे 5,000 रुपए दिए और कहा, लो ये पैसे रख लो, इन्हें अपने ही पैसे समझो। इन पैसों को मुझे लौटाने की भी जरूरत नहीं है। इतने पैसे पाकर गरीब आदमी को पहले तो बड़ी खुशी हुई। बच्चों, फिर जल्दी ही क्या हुआ पता है, इन पैसों ने उसकी शांति, निश्चिंता ये सब खत्म कर दिया। पैसे पाने पर वो जीवन में पहली बार उसने अपने घर का दरवाजा खिड़कियां बंद की कि ये देखने के लिए कि पैसे सुरक्षित है या नहीं। वो रात भर सोया ही नहीं। दूसरे दिन बड़े सवेरे गरीब मोची अपने धनी पड़ोसी के पास पहुंचा। उसने व्यापारी को 5,000 रुपए लौटा दिए और हाथ जोड़ के कहा, सेठ जी, मेहरबानी करके आप अपना ये पैसा वापस ले लीजिए। इन पैसों ने तो मेरी रात की नींद हराम कर दी। मैं हंसना गाना सब भूल गया हूँ। तो देखा बच्चों, ये कहानी बताती है ना कि पैसे से हर प्रकार की खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती, है ना बच्चों। इसीलिए जो भी हमारे पास है, हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो चलो बच्चों, अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास, मनी दीदी आ गई है। हम पढ़ रहे हैं तेनालीरामा की अनोखी दुनिया और उसमें भी एक कहानी जिसका शीर्षक है सप्तद्वीप नौखंड, जिसमें पहले हमने पढ़ा कि महाराज विचित्र भानु जो कि सप्तद्वीप नौखंड राज्य के राजा हैं, अपने पड़ोसी राज्य विजयनगर की समृद्धता को देखकर उनके मन में जलन की भावना आ गई है, ईर्ष्या की भावना आ गई है। और अचानक महाराज कृष्णदेव राय को यह संदेश मिलता है कि उनके गाँव में गायों की महामारी फैल गई है जिसमें बहुत सारी गायें मर रही हैं। अब तेनाली राम इस सच्चाई का पता लगाने वाला है कि क्यों ऐसी खबर फैलाई गई है जिसमें कहा गया है कि हिस्ट पुष्ट गायें ही बीमार हो रही हैं। और उसके अगले बार 3 दिनों के पश्चात तेनाली राम 5 जोड़ों को लेकर आया और महाराज को चिंतित स्वर में कहा, महाराज इन्हें भी कारागार में डाल दिया जाए, ये ग्रामीणों के बीच अफवाह फैलाते पाए गए हैं। और फिर महाराज ने उन्हें भी कारागार में डाल दिया। और फिर सभा विसर्जित करने के पश्चात तेनालीराम से पूछा, तुम क्यों इतने गंभीर हो, फिर आगे क्या हुआ और तेनालीराम ने क्या जवाब दिया, वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। तो तेनालीराम ने कहा, महाराज चिंता की बात है, विजयनगर में अराजकता फैलाने का प्रयास हो रहा है। अभी अभी जिन जोड़ों को कारागार में भेजा गया है वे सभी पड़ोसी राज्य सप्तद्वीप नौखंड के रहने वाले हैं। इससे पहले जो लोग मवेशियों की खरीद बिक्री के मामले में पकड़े गए थे वे लोग भी उसी राज्य के रहने वाले हैं। महाराज मैंने जो सूचनाएं एकत्रित की हैं उनमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सप्तद्वीप नौखंड का राजा विचित्र भानु बहुत ही महत्वाकांक्षी है और उसने अपने धन की आकांक्षा के कारण अपने राज्य में विभिन्न शुल्कों का प्रावधान किया है जिससे उसकी प्रजा भी दुखी है। और हमारे लिए यह सूचना सतर्क करने वाली है कि पड़ोसी राज्य सप्तद्वीप नौखंड में तेज गति से सशस्त्र सेना का विकास हो रहा है और विजयनगर के सीमांत क्षेत्रों में भी सप्त नौखंड के सैनिकों की गतिविधियाँ बढ़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी तैयारी में है। इसीलिए महाराज मेरी सलाह है कि सेनापति को आप स्थितियों की सूचना दे दें और उन्हें निर्देश दे दें कि विजयनगर की सीमाओं पर सैन्य चौकसी बढ़ा दी जाए और कभी भी वो राजा विचित्र भानु हमारी सीमाओं का अतिक्रमण कर सकता है। तो ये सब कहते समय तेनाली राम के चेहरे पर अपूर्व गंभीरता थी जिसे देखकर सोचा भी नहीं जा सकता था कि तेनाली राम जिसका कार्य महाराज कृष्णदेव राय को हंसाना था और समय समय पर दरबारियों को अपने चुटकुलों से प्रफुल्लित करना था वो आज इतना गंभीर दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात महाराज कृष्णदेव राय ने कहा कि तेनालीराम आखिर तुम इस गंभीर निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए। तो बच्चों अब अगली कड़ी में ही पता चलेगा हमें कि तेनालीराम को क्या सबूत मिले जिससे कि वो इतना गंभीर हो गया ये सब बातों को देखकर। तो वो जानेंगे हम अगली कड़ी में। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।
1: चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। आज तो हमने कितनी सारी प्यारी प्यारी बातें भी की और तेनालीरामा की किताब भी पढ़ी और परी की प्यारी

0: प्यारी कहानी भी सुनी। अब पिछली कड़ी में परी ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब भी तो जाना है ना। तो परी, क्या सवाल पूछा था आपने पिछली कड़ी में?
1: बच्चों, हमने पूछा था, बिना पंख उड़ता आसमान, लोहे का बना जहान, लोगों को ले जाता दूर, बताओ उसका नाम जरूर।
0: अच्छा, तो बच्चों आपको तो जवाब पता ही होगा, क्योंकि परी हमारी वैभव, शालिनी और स्नेहा ने सही जवाब भेजा है। और वैसे सही जवाब तो बहुत सारे बच्चों ने भेजा है, मगर हम ये तीन बच्चों का खास नाम लेकर उन्हें बधाई दे रहे हैं कि आपने सही जवाब भेजा है। तो सही जवाब है हवाई जहाज।
1: बिल्कुल बच्चों, तो चलो नोट कर लो आज की पहेली। दिन में सोता, रात में गाता, दूसरों के घर में अंडे देता, अपना घर कभी ना बनाता, कौन है वो जो सबको भाता?
0: हाँ बच्चों, कौन है वो पंछी जो ऐसा करता है? आपने तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो जानो, ढूंढो और हमें सही जवाब भेज दो 94-14-15-14-15 पर।
1: हाँ बच्चों, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और पता है ना बच्चों, करना क्या है, भगवान जी को गुड नाइट करे बिना सोना नहीं।
0: सही कहा बच्चों, क्योंकि सारे दिन का हाल चाल तो बताना पड़ेगा ना भगवान जी को।
1: हाँ, तो चलो अब हम भी करते हैं गुड नाइट।
0: स्लीप टाइट,
2: गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है उसमें अच्छे कर्म लोगों की भलाई के काम कीजिए, बिना किसी स्वार्थ और अर्जित कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत जो आपके सदैव काम आएगी। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, गाय का दूध कैसे फायदा करता है, कौन सी बीमारियां ठीक करते हैं, जानेंगे जरूर। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो वैसे श्राद्ध पक्ष चल रहा है और आज है एकादशी, तो एकादशी में क्या बनाएंगे श्राद्ध पक्ष में विशेष करके, तो बहुत ही सुंदर रेसिपी आपको सिखाने वाली हूँ। लेकिन कौन सी वो आप आशा सुनिए, जान जाएंगे। और आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: गुड मॉर्निंग आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है, जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है उसमें अच्छे कर्म लोगों की भलाई के काम कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के और अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। एक बार क्या होता है, एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके, मतलब एक तरह का आप शाही खजाना समझ सकते हैं, आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर बनाए तहखाने में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया था। खजाने की सिर्फ दो चाबियां थी, एक चाबी राजा के पास और एक उसके एक खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम न था। एक रोज किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तय खाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है। वो हैरान हो गया और ख्याल किया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया तब शायद खजाना का दरवाजा खुला रह गया होगा। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया पर वहां उनकी आवाज सुनने वाला उस जंगल में कोई नहीं था। राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस कोई नहीं आया। वो थक हार कर खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और पानी की प्यास से बेहाल हो रहा था, पागलों सा हो गया। वो रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी इन सब के पास गया और बोला, ए मोती चांदी सोने के खजाने ने मुझे एक वक्त का खाना तो दे दो, इन सब से बोलने लगा। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उसे बोल रहे हो कि तेरे सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकते। राजा भूख से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखेर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था लेकिन उसके पास कागज और कलम भी नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे पर बहुत दिनों तक राजा नहीं मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत एक घूट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। यही अंतिम सच है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितने भी हीरे पैसा सोना चांदी इकट्ठा कर लो, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। इसलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है उसमें अच्छे कर्म लोगों की भलाई के काम कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के।

और अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत जो आपके सदैव काम आएगी। तो ये सिर्फ राजा की बात नहीं, ये हम सभी की बात है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार और आइए फिर से सुन लेते हैं एक गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अब आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय देने वाले हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, गाय का दूध कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करता है। ठीक है, देखिए, भोजन के वक्त या पहले छाती में दर्द या डाह होता है तो भोजन के बाद गो दुग्ध के सेवन से डाह माने दर्द शांत हो जाता है। भोजन के वक्त या पहले छाती में दर्द या डाह होता है ना, तो भोजन के बाद गो दुग्ध के सेवन से डाह और दर्द शांत हो जाता है। गो दुग्ध का रोज सेवन करने वाले व्यक्ति को बुढ़ापा नहीं सताता है, वृद्धावस्था में होने वाली तकलीफों से मुक्ति मिल जाती है। तो रोज प्रतिदिन गाय का दूध पीते हैं, उनको बुढ़ापा नहीं सताता है। और भी सुनेंगे आप, जो व्यक्ति बहुत ही तीखा, खट्टा, कड़वा, खारा, दाहजनक, लूखा, गर्मी करने वाले और विपरीत गुणों वाले पदार्थ खाते हो, उनको शाम को भोजन के बाद कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद गो दुग्ध का सेवन अवश्य करना चाहिए, जिससे क्या है, हानिकारक भोजन से होने वाली विकृतियों का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाए। तो जो भी लोग बहुत ही ज़्यादा तीखा, खट्टा, कड़वा, खारा, दाहजनक, लूखा, गर्मी करने वाले और विपरीत गुणों वाले पदार्थ खाते हो, उनको शाम को भोजन के बाद थोड़े समय के बाद गाय का दूध जरूर पीना चाहिए, जिससे क्या होगा, हानिकारक भोजन से होने वाली विकृतियों का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और भी सुनेंगे बहुत ही सुंदर उपाय, गो दुग्ध शरीर में उत्पन्न होने वाले जहर का नाश करता है। एलोपैथी दवाइयाँ, फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ आदि से वायु, जल और अन्न के द्वारा शरीर में उत्पन्न होने वाले जहर को समाप्त करने की क्षमता रखता है सिर्फ गाय का दूध। तो इस तरह गो दुग्ध फायदेमंद है। नमकीन और खट्टे पदार्थों के साथ दूध का सेवन करने से रक्त विकार पैदा होता है, जो कि विभिन्न प्रकार के चर्म रोग का जन्मदाता है। इसलिए नमकीन और खट्टे पदार्थों के साथ दूध का सेवन बिल्कुल मत करिएगा। मीठे पदार्थ जैसे अचार, सब्जियां, मूंग, गुड़, कंदमूल, केरी और अंगूर के अलावा तमाम फल के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। गाय को शतावरी खिलाकर उस गो दुग्ध को क्षय रोग के बीमार को पिलाने से रोग समाप्त हो जाता है। गाय को शतावरी खिला करके फिर उसका दूध, जिसके भी क्षय की बीमारी है, क्षय रोग है, उसको पिलाइएगा तो ये रोग समाप्त हो जाएगा, क्षय यानी टीबी। गो दुग्ध के सेवन से उदर साफ रहता है, जबकि भैंस के दूध से कब्ज होती है। और लास्ट उपाय भी बता देते हैं, गो दुग्ध से बने हुए घी को उसी गाय के दूध में मिलाकर पिया जाए तो उसे अधिक पौष्टिकता किसी और से नहीं मिल सकती। तो जिस गाय का हम घी खा रहे हैं, उसी गाय के दूध में अगर ये डाल कर हम पीते हैं, तो कहते हैं कि उससे अधिक पौष्टिकता और किसी से नहीं मिल सकती। तो देखिए, सारे उपाय बहुत ही सुंदर है और आप चाहे तो आजमा सकते हैं। आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा पेड़ हमारी धरती के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसे राज्य वृक्ष का सम्मान मिला है, उसका नाम बताना है। राजस्थान का कौन सा पेड़ हमारी धरती के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसे राज्य वृक्ष का सम्मान मिला है, उसका नाम बताइएगा। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स करते हैं, कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब यही पर एक अल्पविराम लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अब खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। पहले तो मैं आज के प्रश्न को दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान का कौन सा पेड़ हमारी धरती के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसे राज्य वृक्ष का सम्मान मिला है, उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। और आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है, प्रेम। वृक्षों जैसा होता है, वे अपनी छाया में बैठने वालों से कभी यह नहीं पूछते कि वे कितनी देर ठहरेंगे। नदी भी अपने जल को किसी एक तट के लिए रोक कर नहीं रखती, वह जानती है जो सचमुच उसका है वो उसके बहने में ही सुरक्षित है। क्या कहेंगे आप? हमने देखा है जो लोग प्रेम को अधिकार समझते हैं वे अंततः अकेले रह जाते हैं। यह आज का विषय है, तो प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। विषय में जुड़ करके आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के विषय में आप अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा और आज के प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे श्रोता बंधु कहते हैं कि क्या करें, फोन नहीं लगता, इतना खेप रहता है तो कैसे फोन नहीं लगता है, ट्राई करिएगा, लगेगा, फिर तो कुछ गड़बड़ होगी फोन की, वो बात अलग है, बाकी आराम से लग सकता है अगर आप जुड़ना चाहे तो। बाकी विषय बहुत ही सुंदर है, देखिए वृक्ष है, पेड़ है, नदी नाले है, ये कभी नहीं कहेंगे कि मेरा पानी कौन पी रहा है, मेरी छांव में कौन बैठे है, कभी इस तरह के वो प्रश्न नहीं करते। हेलो,
1: ओम शांति, गुड मॉर्निंग दीदी।
0: हाँ जी, ओम शांति, नमस्कार।
1: हेलो,
0: हाँ जी, सुन रही हूँ, सुन रही हूँ, स्वागत आपका रेडियो मधुबन।
1: आवाज आ रहा है ना?
0: हाँ जी, आ रही आ रही।
1: तो आपको रेडियो मधुबन परिवार, सभी छोटे भाई बहनों को, दोस्तों को सुभाष भाई का प्यार भरा नमस्कार। और सुविचार भी अच्छा है, विषय भी अच्छा है। तो देखो, प्रेम ये एक शुद्ध निस्वार्थ और सभी का कल्याण का कल्याणकारी भावना का प्रतीक है। और प्रेम देने से प्रेम बढ़ता है। तो जैसे आपने पेड़ का उदाहरण दिया, पेड़ हमको फल भी देता है, छाव भी देता है और ऑक्सीजन भी देता है, वो निस्वार्थ भावना से देता है। तो उसके नीचे बैठने वाला जब फिर चुप होके शांत होके जाता है तो पेड़ को भी दुआ देता है, धन्यवाद करता है। जैसे आपने और उदाहरण दिया, वृक्ष नदी वगैरह, ये जो हमको जो भी कुछ दाता भाव से दे रहे, निसर्ग दे रहे, तो देने से उनको भी हम धन्यवाद करते हैं। तो प्रेम ये लो और दो, और धन्यवाद दो और धन्यवाद लो। तो प्रेम ये एक शुद्ध भावना है, एक थोड़े में मैं बोला हूँ। तो सभी को नमस्कार और ओम शांति दीदी, ओम शांति।
0: बहुत बहुत आभार सुभाष भाई, बहुत अच्छा बोले आप जी। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से, आपने प्रश्न का जवाब तो व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेज दिया है और विषय को भी स्पष्ट किया है। आप भी जरूर जुड़िएगा और अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा, बहुत ही सुंदर विषय है। चलिए, हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो,
2: हेलो शबेन जी।
0: हाँ जी, सुप्रभात कंचन भाई जी, नमस्ते, कैसे हो आप?
2: नमस्कार, नमस्कार बहन जी, बच्चे ठीक है? सुबह में खेत में गए थे, आज तो 7 बजे
0: जी
2: तो आ गए और आके थोड़ा स्नान किया और दुकान पे आ गए तो आप आ गए हैं।
0: जी तो आज का प्रश्न भी मैं दोहरा रही हूँ, विषय भी दोहरा रही
2: हूँ, जवाब तो मैंने दे दिया।
0: अच्छा ठीक है, हाँ जी। और विषय है प्रेम वृक्षों जैसा होता है, वे अपनी छाया में बैठने वालों से कभी ये नहीं पूछते कि वे कितनी देर ठहरेंगे। नदी भी अपने जल को किसी एक तट के लिए रोक कर नहीं रखती, वह जानती है कि जो सचमुच उसका है वह उसके बहने में ही सुरक्षित है। हमने देखा है जो लोग प्रेम को अधिकार समझते वे अंततः अकेले रह जाते हैं। क्या कहेंगे? बहुत सारे में ईर्ष्या होते हैं ना, वो किससे, मतलब वो उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, बहुत सारी ईर्ष्या रहती है। क्या कहेंगे आप?
2: हाँ, प्रेम है ना, नदी और ये है ना पेड़ जो वृक्ष है, इसके इसको ए, ए, ए करके हमें इन्हीं के पास हमें प्रेम के परिभाषा सीखनी है। ठीक है
0: जी।
2: कई लोग कहते हैं कि हम बहुत प्रेम है आप पे, मेरा प्रेम है ऐसा है ऐसा है, लेकिन ऐसा दिखावा है केवल।
0: प्रेम जो होता है अंदर का होता है और वो सामने वाला समझ ही जाता है कि हाँ कौन प्रेम करता है नहीं करता है।
2: हाँ, एक साथी है ना, मैं सुनाता हूँ
0: जी।
2: प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने को सच्चा प्रेम जो होए तो भवसागर उतरिया। कई बार बोलते हैं, भजनों में भी बोलते हैं, पहले साखी बोलते हैं फिर भजन गाते हैं, तो ये मुझे कंटेस्ट था तो मैंने बोलती।
0: जी जी जी जी,
2: कितनी बड़ी बात बताई है देखो।
0: बिल्कुल,
2: पेड़ हमें देखो छाया देती है, फल देता है, ये करता है। कितना लोग फल आते हैं तो लोग पत्थर मारते हैं, ये करते हैं, फिर भी अपना जो फल है ये पोते नहीं खाते।
0: जी जी बिल्कुल,
2: दूसरों को
0: जी
2: खाते हैं, लोग खाते हैं, फिर भी पत्थर मारते हैं, ये करते हैं, फिर भी कोई ये नहीं है कि भाई इसको हमें छाया नहीं देनी है, इसको इच्छा नहीं करना है
0: जी।
2: नहीं है, नदी भी, नदी में देखो कितना गंदा पानी लोग कर देते हैं
0: जी,
2: कैसे कैसे जाके कपड़े धोते हैं, ये करते हैं। नदी है तो पशु पानी पीते हैं, ये नदी बह, फिर भी नदी बहते रहती है
0: जी।
2: ऐसे प्रेम भी
0: बिल्कुल
2: हमें बहते रहना चाहिए
0: जी।
2: ये ऐसा है तो इसको नहीं बोलना है, इसको ऐसा करना है, ये कोई कोई प्रेम की भाषा नहीं है।
0: जी जी जी जी बिल्कुल।
2: तो मैं तो इतना थोड़ा प्रेम के बारे में जानता था तो बताया, और दूसरे दोस्तों को भी जुड़ना है, और सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया।
0: हाँ जी, थैंक यू,
2: थैंक यू।
0: बहुत बहुत आभार आपका कंचन भाई, ये थे कंचन भाई मंडाली से। अब देखते हैं कौन जुड़ते और अपनी बात को रखते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, तो आज का विषय भी बहुत ही अच्छा है। राजस्थान का कौन सा पेड़ हमारी धरती के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसे राज्य वृक्ष का सम्मान मिला है, उसका नाम आपको बताना है। और आज का विषय है प्रेम वृक्षों जैसा होता है, वे अपनी छाया में बैठने वालों से कभी ये नहीं पूछते कि वे कितनी देर ठहरेंगे। नदी भी अपने जल को किसी एक तट के लिए रोककर नहीं रखती, वे जानती है जो सचमुच उसका है वह उसके बहने में ही सुरक्षित है। हमने देखा है जो लोग प्रेम को अधिकार समझते हैं वह अंततः अकेले पड़ जाते हैं। क्या कहेंगे आप? क्या बात है, बहुत ही सुंदर विषय है, प्रैक्टिकल विषय है, और आप सोच रहे हैं अभी तक भी। चलिए आप सोचिए, हम बोलते हैं फिर। हम तो चाहते हैं कि आप जुड़े, आप अपनी बात रखे, हम तो बैठे ही हैं। हेलो,
3: हेलो दीदी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हम शांति, सुरेश भाई बोलता हूँ।
0: हाँ जी, नमस्ते सुरेश भाई, हम अच्छे हैं, आप सुनाइए, आप कैसे हो?
3: बस हम भी अच्छे हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम भी चला, विचार भी अच्छा चला और सवाल भी अच्छा कर दिया आपने।
0: थैंक यू।
3: सवाल भी किया और जो आप बता रहे हैं विषय के बारे में ये भी बिल्कुल सही है दीदी, प्रेम की बात चल रही है। तो जैसे आप बता रहे हैं, सभी ने बताया, हमारे सुभाषगढ़ ने भी बहुत अच्छी तरह से बताया कि हम जो निश्वास वास से हमारे पेड़ है, नदी है, निश्वास वास से हम तो सब कुछ दे रहे, ये कुदरती हवा है, तो कोई कुछ मांगता नहीं है, ऐसे ही हम लोगों को सब कुछ मिल जाता है बिना पैसे से, निश्वास से। लेकिन आज का जो मनुष्य इंसान है वो प्रेम का बस एक अहम करते हैं कि बस कभी कभी कभी जो कहते हैं ना कि आपने जो बताया कि प्रेम का जो करते हैं वो अकेले रह जाते हैं, बिल्कुल सही बात है दीदी। जो अभिमान नहीं करना है, प्रेम का अभिमान नहीं करना है, बस वो बंद नहीं करना है और निश्वास भाव से हम एक दूसरे को तो रहना है। और जैसे कंचन भाई ने भी बताया कि आज लिखा हुआ है प्रेम तो करते हैं लेकिन ऊपर से प्रेम करते से करते अंदर से नहीं करते हैं, तो पहचान ही जाते हम आराम से कि सामने हमको कितना चाहता है, कितना प्रेम करता है
0: जी।
3: तो निश्वास भाव से जो हम कोई किसी के साथ प्रेम करेंगे तो ही तो थे, कई कई कई बार क्या होता है हमको कुछ लेना है, कुछ उसके जरूरत है, तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रेम करते हैं उसको, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ हम ऐसी अच्छी भाव से बात करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। निश्वास भाव से सब कुछ हम करेंगे तभी तो हम प्रेम का जो जो प्रेम का एक शब्द है वो हम अच्छी तरह से जान पाएंगे दीदी
0: जी।
3: नमस्ते दीदी।
0: हाँ जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, आपने भी अपनी बात को बहुत ही अच्छी तरह रखी है। अब आइए यहाँ पर एक गीत सुनेंगे, उसके बाद इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अभय सिंह जी जयपुर से जुड़ चुके हैं। नमस्ते अभय सिंह जी।
1: नमस्ते मैडम जी। राधे राधे।
0: हाँ जी,
1: के सभी श्रोताओं को, बड़ों को प्रणाम और बाकी सभी को प्यार भरा राम राम मैडम जी।
0: जी राधे राधे, राम राम आपको भी। और
1: जी
0: आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है, आज का विषय भी बढ़िया है, तो मैं पहले प्रश्न सुना रही हूँ। राजस्थान का
1: प्रश्न मैं सुन लिया मैडम जी।
0: हाँ जी,
1: प्रश्न है वो जो राजस्थान का राज्य पेड़ बताया, तो वो खेजड़ी है मैडम जी।
0: अच्छा ठीक है, देखते हैं सही गलत, आप कार्यक्रम सुनिएगा, हम अंत में जवाब देंगे, ठीक है। और
1: आज का आपने बहुत अच्छा चयन किया है मैडम जी।
0: जी
1: विषय आज के समय में जो प्रेम है ये बहुत कम आदमी को, जो प्रेम होना चाहिए उस हिसाब से बहुत कम आदमी को मिल रहा है मैडम जी।
0: जी
1: एक्चुअल में क्या है, आदमी को प्रेम जो है वो अपने वशीभूत करने के बाद में फिर सही उसके ऊपर शायद मुझे नहीं लगता प्राणों से कोई बड़ी चीज होती है। प्राण चाहे चले जाए
0: जी,
1: मगर प्रेम पे हाथ नहीं आनी चाहिए मैडम।
0: क्या बात है।
1: तो वो जो चीज है आज के समय लोगों की थोड़ी सोच का, उसमें सभी शामिल है मैडम जी, मैं भी उसमें हो सकता है बोल जरूर रहा हूँ, लेकिन कसौटी पे पता नहीं खरा उतरूंगा कि नहीं, लेकिन उतरने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और हमको अटल रहना चाहिए मैडम जी।
0: जी बिल्कुल,
1: चाहे कुछ भी हो जाए।
0: जी
1: कृष्ण भगवान जी ने अनुपम उदाहरण पेश कर रखा है सुदामा जी की, बहुत हालत दयनीय होने के बाद भी उन्होंने अपने मित्र को कभी भूला नहीं।
0: जी बिल्कुल।
1: और विकट परिस्थिति ये तो हमारे पहिए के यान के माफक है मैडम जी, किसी किसी को जब चलता पहिया है तो उसमें नीचे वजन वाले भाग पे आना ही है, यानी गरीबी या दरिद्रता स्थिति में किसी को भी कभी भी आना पड़ सकता है मैडम जी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आदमी उसको फिर छोड़ दे।
0: जी
1: जो आदमी सही रास्ते पे चल के और इस स्थिति में आ जाता है तो वो हमारे मतलब एक भाग्य रेखा बोल दो या किस्मत का जरोखा बोल दो, वो उसको भुगतना है और वो भुगतने पड़ते भी हैं मैडम जी।
0: जी
1: लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे विमुख हो जाएं।
0: जी
1: हमको हमेशा सदैव उसके साथ रहना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और ऐसी विकट परिस्थिति में तो हमको और थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम
0: जी
1: तन मन धन बोलते ना अर्पण तेरा, क्या लागे प्रभु मेरा, उसमें हमको तन मन धन अर्पण करने का अवसर मिले तो करना चाहिए मैडम।
0: जी जी जी जी बिल्कुल।
1: तो प्रेम एक्चुअल में यथार्थ रूप से बना रहेगा प्रेम, वरना खाली आप जैसे अभी सवाल डाल दिया ऐसे वो पढ़ने में और इनमें देखने में टीचर के समझाने में इनमें ही रह जाएगा और ये खत्म हो जाएगा मैडम जी।
0: जी बिल्कुल।
1: इतनी बुरी गिरावट आ रही है इसके अंदर मैडम,
0: जबरदस्त,
1: बहुत
0: आजकल रिश्तों में
1: विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस पे हमारे को सबको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है।
0: जी
1: और कुछ उदाहरण मैडम जी मुझे इतने अच्छे लगते हैं, बहुत आदमी है, बहुत महिलाएं भी हैं और उसमें बच्चे पढ़ने वाले भी हैं जिनको हम कभी जानते नहीं, कभी देखा नहीं कभी, लेकिन हम बाई तरह उनके अंदर जब कुछ ऐसा अट्रैक्शन और ऐसी कोई अद्भुत उसके अंदर क्षमता या बात करने का अवसर लगा लो तो हम जब उनसे बात करते हैं तो वो अनजान होते हुए भी बहुत शालीनता से और बहुत जो हमने जिस आशा से उनसे बात करनी चाहिए उससे भी उसकी अपेक्षा बहुत अच्छे खरे उतरते हैं
0: जी।
1: तो ऐसा हमारे को विनम्र और सहनशील और हर एक चीज को समझने वाला बनना चाहिए, तभी आदमी बुरे नहीं होते। कुछ एक तो वापस जवाब ही नहीं देते, पता नहीं कोई किसी को क्यों पर्पज से कैसे, कोई देख रहा है किसी को पता नहीं कैसी मुद्रा में देख रहा है, वो क्या उसका आकलन कर रहा है
0: जी।
1: और उसने बाई दावे कुछ मदद के हिसाब से पता नहीं उस आदमी ने मतलब बोलने की हिम्मत कर ली या बोल दिया कुछ, तो मतलब उसका आंसर देना भी उचित नहीं समझते। ऐसे ऐसे पल भी देखे हैं मैडम जी मैंने।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही कहा,
1: जो कि बहुत गलत है
0: जी।
1: ऐसा हाँ सहन स्वभाव में सहन कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को कोई भी बात नहीं करनी, या मैं आपको गलत नहीं समझ रही लेकिन आप कोई बात नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है। जवाब तो दे दे, कम से कम जवाब दे देते, ये तो है बेटाइम और अलग जगह पर अकेला देखने के बाद बोलने के बाद भी ऐसा क्षण देखा मैंने मैडम जी।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने,
1: तो ऐसा नहीं करना चाहिए मैडम जी। लेकिन अब उसके वशीभूत मैंने बहुत बाद में मैंने सुधार किया अपने अंदर, यार ऐसे बिना मतलब के तो भूलना भी गलत है, आज के समय बदली हो गया है
0: जी।
1: तो मैंने ये जो आज रेडियो मधुबन के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ, ऐसे ही मैंने अपने कोई नजदीक थे उनसे भी एक दो बार पूछा तो बोला भाई बेवकूफ है फौजी तू, तू भाई दुनिया को नहीं दिखा, बोला दुनिया ऐसी नहीं है जैसा तू सोच रहा है। मैं बोला मेरे भाई दुनिया कोई हमसे अलग थोड़ी है, वो दुनिया में सब प्राणी तो है, सब आदमी तो है।
0: सही है बिल्कुल,
1: ये छल कपट और यही तो बढ़ रहा है, इसकी वजह से तो आदमी आदमी के प्राण ले ले रहा है,
0: वही हो रहा है। तो ठीक है अभय सिंह जी, बहुत सुंदर आपने बात कही है जी।
1: नमस्ते मैडम।
0: हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे अभय सिंह जी जयपुर से, आपने अपने बात को भावनाओं के साथ बहुत ही अच्छी तरह व्यक्त किया है। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। प्रेम पर बहुत ही सुंदर विषय है। प्रेम वृक्षों जैसा होता है, वे अपनी छाया में बैठने वालों से कभी ये नहीं पूछते कि वे कितनी देर ठहरेंगे। नदी भी अपने जल को किसी एक तट के लिए रोक कर नहीं रखती, वह जानती है जो सचमुच उसका है वह उसके बहने में ही सुरक्षित है। हमने देखा है जो लोग प्रेम को अधिकार समझते हैं अंततः वो अकेले रह जाते हैं। कैसे देखते हैं कौन जुड़ते हैं। विषय भी बहुत सुंदर है, प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। हेलो, हाँ जी अभय सिंह जी, तो देखते हैं आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। देखिए आजकल प्रेम का तो ऐसा है कि प्रेम कहाँ रह रहा है, प्रेम रिश्तों में इतना दूर हो चुका है कि समझ में ही नहीं आता है कि कौन कब किसको धोखा दे रहा है। हेलो
2: हेलो, नमस्कार शांति।
0: हाँ जी नमस्ते दयाराम जी, कैसे हो आप?
2: बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है, सभी बहनों की, भाइयों की, दादियों की और मेरे प्यारे मित्रों की, और मैं बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। इस वक्त रेडियो मधुबन सुन रहा हूँ इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब से।
0: क्या बात है,
2: क्लियर आवाज भी आ रही है
0: जी,
2: और बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा आज का। और हमारे जो प्रिय भाई जो अभय सिंह जयपुर ने, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई, जो कुछ कुछ शब्द तो ऐसे भी बहुत ही बढ़िया थे जो मेरे दिल को छू गए, वो वास्तव में हमें ज्ञान में लाने चाहिए
0: जी,
2: तभी हम जाके एक प्रेम को बना के रख सकते है
0: जी।
2: और आज का सवाल भी बहुत ही बढ़िया है, सुंदर है, वो हमारे राजस्थान में हमारे मेरे भी खेत में बहुत सारी है।
0: अच्छा,
2: खिजड़ी का पेड़ है, तो जब गर्मियों में सभी पेड़ों के पत्ते झड़ जाती है तो ये पेड़ अपने आप में खिल उठता है, तो हमें प्रेम के जैसी बात हो गई, वो इससे भी दुगनी हमें छाया देता है
0: जी।
2: और रेडियो सुनने वाले सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है, ओम शांति अम्मा गणेशा
0: जी। तो आप भी प्रेम के विषय में कुछ कह सकते हैं। चलिए बहुत बहुत आभार दयाराम जी, लगता है रख दिया आपने। तो देखिए कल रिश्तों में प्रेम इतना कम होता रहा है कि अगर माँ बच्चे अपने माँ से प्रेम करते तो बीबी कहती है कि आप तो मुझे क्या चाहते हो, आप तो अपनी माँ को चाहते हो। हेलो नमस्ते। हेलो
3: हेलो।
0: हाँ जी आपकी आवाज पहुंच रही है। नमस्कार।
3: हेलो
0: हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है?
3: हेलो
0: जो भी है हेलो हेलो कर रहे हैं, आपकी आवाज हमारे तक पहुंच रही है लेकिन हमारी शायद आप नहीं सुन पा रहे हैं, तो अगर नहीं आवाज पहुंच रही है तो थोड़ी देर में कट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी विषय बहुत ही सुंदर चल रहा है कि देखिए आजकल परिवार में क्या होता जा रहा है, यही तो होता जा रहा है ना। दो बच्चे होते हैं तो माँ बाप के लिए मुसीबत हो जाती है। पहला कहता है कि आप तो इस भाई से प्रेम करते हो, मुझसे कहाँ कहते हो, और छोटा कहता है कि आप बड़े से प्रेम करते हो, मुझसे कहाँ करते हो। हेलो
4: हेलो नमस्ते दीदी, मैं सुरेश भाई।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
4: दीदी बहुत अच्छे है, प्रोग्राम सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छी प्यारी बात हो रही है दीदी, तो बिल्कुल सही बात की आप और दोस्तों ने दीदी। तो कहते हैं ना कि प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती। देखो ना दीदी, आजकल जो स्वास्थ्य का प्रेम तो होता जा रहा है बाहर वालों से, लेकिन घर वालों से भी ये होता जा रहा है। जैसे कि कोई आदमी थका हारा घर पे आ रहा है तो वो ना तो कोई प्रेम से बात करते हैं, ना प्रेम से कोई पानी का गिलास देते हैं। ये बच्चे भी अपने अपने वो करते हैं तो
0: जी।
4: और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सभी को मैं ये कहना चाहूंगा। और प्रेम ये एक ऐसी चीज है ना तो लाखों करोड़ों रुपये का एक पल में काम कर सकती है
0: जी।
4: तो किसी से हम प्रेम से बात करते है, ओरखान हो जाती है तो वो कितने भी पैसे भागे ना तो भी उससे प्रेम से हो जाती है। तो बस मैं यही दो शब्द कहूंगा कि हमेशा लोगों के साथ और अपने आप पर प्रेम भरा रखे ताकि प्रेम से लोग हमारे साथ भी प्रेम से रहे, हम प्रेम करते रहे।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आपका। आज के प्रश्न का जवाब देंगे, चलिए मैसेज के द्वारा भेज देंगे। तो बहुत ही सुंदर बात है आपने कही है, परिवार में कहाँ प्रेम रहा। बिल्कुल आजकल ऐसा ही हो रहा है, पहले कितने एक दूसरे से प्रेम हुआ करता था कि बड़ा नहीं आ जाता है तो छोटा खाना नहीं खाएगा, छोटा भाई नहीं आ जाता है तो बड़ा भाई खाना नहीं खाएगा। हेलो हाँ जी फिरोज भाई नमस्ते, ओम शांति, कैसे हो आप?
5: बस एकदम अच्छे हैं। दूसरा के बहन जी देखो हृदय मंदिर वागे छे घंटड़ी, घड़ियो मधुबननी अने आसियाना आसियानानी आगमननी मारी कल्पनामां हमेशा रहे छे। घड़ियो मधुबन सोता अने परिवारनी जोईने जोईने जोईने रंग थयो गुलाबी घड़ियो मधुबननो।
0: सु वात छे, बहु सरस।
5: प्रेम आपो अने प्रेम लो, બીજા બી જોનારાઓ બી આપણી જો નરમાઈ જે દિલ છે પ્રેમ છે આપણું જોઈને બીજા બી કે પેલો માણસ જો કેવી રીતે પ્રેમ થી વાત કરે છે
0: એ
5: બી સમજી જાય કે ના આપણે બી આવું કરવું જોઈએ।
0: સાચી વાત, બિલકુલ
5: जी,
0: जी, जी बहु बहु आभार फिरोज भाई तमारो।
5: जी, जी,
0: तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। तो देखिए परिवार में अभी ऐसा ही हो रहा है, माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं जब एक से दो बच्चे। देखिए पहले आठ आठ दस दस संतानें हुआ करती थी, चार पांच भाई चार पांच बहनें, कोई ये नहीं कहता था कि आप उनसे प्रेम करते हो हमसे नहीं करते हो, और जितना उल्टा हम दो हमारे दो चला तब से ये बातें आने लग गई। हेलो
6: हाँ जी नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी नमस्कार मदन भाई, कैसे हो?
6: बढ़िया हूँ
0: जी।
6: रेडियो मधुबन को याद कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं
0: जी।
6: क्या चल रहा है दीदी जी?
0: बस बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है प्रेम के ऊपर। आज का प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। पहले प्रश्न दोहरा देती हूँ, राजस्थान का कौन सा पेड़ हमारी धरती के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसे राज्य वृक्ष का सम्मान मिला है, उसका नाम बताना है, ठीक है?
7: और
0: हाँ जी, पेड़ का नाम जिसको, हाँ, राज्य वृक्ष का सम्मान मिला है, कौन से पेड़ को सम्मान मिला उसका नाम बताना है। और आज का विषय बहुत ही सुंदर है, प्रेम के ऊपर है कि देखिए नदी सबको समान पानी देती है, वो बहती रहती है और सभी को पानी देती है। ऐसे नहीं कहती कि मेरा पानी आप पियो आप मत पियो, पेड़ सभी को छांव देता है, लेकिन एक इंसान ही है जो प्रेम की तुलना करता है। क्या कहेंगे आप?
7: पेड़ के पास जाते हैं थकान मिटाने के लिए तो वही छांव देता है और वहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सुना है। और पेड़ में तो आशा पालव है और ऐसे तो बहुत है, मगर पहले नंबर में तो नीम का पेड़ ही आता है, रबर। और अमुक जगह ऊपर जहाँ कोई अच्छी ऑफिस है वहाँ है पाला, या आला क्या नाम, आशा पालव अच्छा लगता है। और वैसे तो फूल बोल भी बहुत है और वैसे तो मेरा हिसाब से तो सभी अच्छे ही लगे, मगर बीमारी के लिए तो नीम का नीम ही अच्छा है, वो हर दुख निकालता है।
0: राजस्थान का ऐसा कौन सा पेड़ है जिसको राज्य वृक्ष का सम्मान मिला है? और आज का विषय, विषय के बारे में क्या कहेंगे आप?
7: के बारे में अभी
0: जी
7: जी जी जी जी वो मशीनों की आवाज आ रही है और
0: चलिए कोई बात नहीं यार।

0: रिश्ते टूट रहे हैं मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, आधे तलाक तो ऐसे ही हो रहे हैं कि या तो माँ से जबरदस्ती झगड़ने की कोशिश करेगी, अगर बेटे ने माँ का पक्ष ले लिया कि भाई तुम शांत रहो ना, माँ ये दो बात सुन लो ना, तो बस भाई क्यों माँ की क्यों सुने, आधे रिश्ते इस वजह से खत्म हो रहे कि हाँ आप तो अपनी माँ से ही प्रेम करो, मैं कहाँ, मैं तो बाहर की हूँ ना, तो चलो मैं गई अपने घर और ये निकले साहब, इस तरह भी तलाक हो रहे। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि देखिए प्रेम का अर्थ समझिए, आज तो एक बेटा या दो बच्चे हैं उसमें भी ये हाल है, पहले आठ आठ दस दस बच्चे होते थे लेकिन कभी ये बात जुबा पर नहीं आती कि वो उनसे प्रेम करते या नहीं करते, इतने इतने देवरानी जेठानी सभी साथ में रहते थे। हेलो हाँ जी अभय सिंह जी, नहीं ज्ञानेंद्र जी, हाँ जी हाँ जी ज्ञानेंद्र जी, बस हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
1: हम भी बढ़िया हैं।
0: बढ़िया, अच्छा
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो क्या कहेंगे आज के विषय के बारे में?
1: जिसको राज्य का दर्जा मिला हुआ है, राज्य का दर्जा।
0: अच्छा ठीक है, देखते हैं सही गलत, आप कार्यक्रम सुनिए, हम जरूर जवाब देंगे।
1: ठीक है दीदी।
0: हाँ जी, और आज के विषय के बारे में कुछ कहेंगे? हाँ जी
1: जी,
0: हाँ जी,
1: विषय क्या है जो
0: आज का विषय प्रेम के ऊपर है कि देखिए नदी सबको समान पानी देती है, वृक्ष सभी को समान छाव देते, कभी ये नहीं कहते कितनी देर बैठोगे मेरे पेड़ के नीचे, कितने जने बैठ रहे हो, लेकिन इंसान है जो प्रेम को बांटने लगा है। क्या कहेंगे आप, फटाफट समय हो रहा है।
1: वैसे तो सही बात है, इंसान ही जो है करता है, बाकी तो सब सही है, प्रेम से इंसान ने इसको बांट दिया है, जो अपने मतलब के हिसाब से बांटा है, जिससे ज्यादा मतलब है उससे ज्यादा प्रेम से मतलब नहीं रखते हैं उससे, तो बस कोई जरूरत नहीं है उससे कुछ करने की
0: जी।
1: बाकी तो वृक्ष को जो है पानी एक जैसा ही मिलता है, मगर उसका स्वभाव है उसके हिसाब से वो करेगा। अब दो सांप को कितना भी दूध पिलाओ जहर जरूर मिलेगा, तो उसी हिसाब से उसका है, अपने मतलब के हिसाब से उसका स्वभाव ऊपर है
0: जी। चलिए बहुत बहुत आभार आपका। हाँ जी ज्ञानेंद्र जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे ज्ञानेंद्र जी उत्तर प्रदेश से, और आइए बस इस विषय को यही समाप्त करेंगे। कहने का भाव यही है कि सब मिलकर प्रेम से रहिए, माता पिता की भी परीक्षा बार बार मत लीजिए, और सभी को समान प्रेम दीजिए, सभी के साथ प्यार से रहिए रहिएगा। यही आज का खुशनुमा जीवन का राज है, और अब यही पर एक गीत सुन करके पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पे। आप सब मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो पधारिए आशियाना के किचन में पधारिए। वही श्राद्ध पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष में अक्सर हम मीठा तो बनाते हैं, नमकीन भी बनाते हैं, लेकिन मीठे का ज़्यादा ही क्रेज है। नमकीन बने न बने लेकिन मीठा जरूर बनना चाहिए। और आज एकादशी भी है, श्राद्ध हो चाहे कुछ भी हो, माताएं बहनें व्रत उपवास करना तो बंद नहीं करती है। तो चलिए मैं आपको राजगीरे का हलवा सिखा देती हूँ, ठीक है, जो श्राद्ध पक्ष में भी काम आ जाएगा और फराल में भी काम आ जाएगा, ठीक है। फिर आप राजगीरे के हलवे के साथ राजगीरे की पूरी, आलू टमाटर की सब्जी या लौकी की सब्जी आप बना करके खा सकते हैं, ठीक है। तो हलवा के लिए आप सामग्री ले लीजिए राजगीरे का आटा, ठीक है, थोड़ा सा मोटा वाला ही लेना है आपको, बारीक नहीं लेना। हलवा के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा थोड़ा सा मोटा होगा ना, हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा। और फिर आप ले लीजिए घी, फिर आपको लेना है ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर, ठीक है। तो ये हो गई सामग्री, राजगीरे का आटा, ड्राई फ्रूट्स, घी, शक्कर, इलायची पाउडर। बनाने का तरीका भी साथ ही साथ सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे कि राजगीरे का जो आटा लिया है उसको छान लीजिए, और अब आप रखिए कढ़ाई गैस पर, घी डालिए, घी गर्म हो जाए तो इसमें आप राजगीरे का आटा डाल करके धीमी आंच पर आप सेकिएगा, ठीक है। धीमी आंच पर सेकना है, जब अच्छी खुशबू आने लगे और कलर चेंज हो जाए तो समझ लीजिए ये आटा आपका सिक गया है। एक तरफ आप थोड़ा सा गर्म पानी कर दीजिए। अब इस गर्म पानी को जब ये आटा सिक जाए तो डाल दीजिए, साथ ही साथ आप ड्राई फ्रूट्स की कतरन भी डाल दीजिएगा और अच्छी तरह हिलाइएगा। जब ये पानी खत्म हो जाए तो शक्कर डाल दीजिएगा, शक्कर भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए, उसका पानी खत्म हो जाए, फिर गैस बंद करके इलायची पाउडर बुरका दीजिए। तो ये बन गया राजगीरे के आटे का हलवा, बहुत ही स्वादिष्ट। तो कैसे बनाएंगे फिर से विधि दोहरा रही हूँ। कढ़ाई रखिएगा गैस पर, घी डालिएगा, घी गर्म हो जाए तो इसमें राजगीरे का आटा छान करके डाल दीजिए, मोटा वाला लेना है, और धीमी आंच पर इसको सेकना है। जब सीख जाए तो एक तरफ पानी गर्म करिए, उस पानी को आवश्यकता के अनुसार इसमें डालिएगा राजगीरे के आटे में। और जब हाँ, साथ में आप ड्राई फ्रूट्स की कतरन डाल सकते हैं। जब पानी सूख जाए तो फिर आप इसमें शक्कर डाल दीजिएगा, शक्कर भी एक रस हो जाए, उसका पानी सूख जाए, फिर आप गैस बंद कर दीजिए और उसके बाद इसमें इलायची पाउडर बुरका दीजिए। तो ये बन गया स्वादिष्ट राजगीरे का हलवा, जो श्राद्ध पक्ष में भी आप ले सकते हैं, नैवेद्य निकालने में भी और उपवास में भी। तो अपने इष्ट देव को भोग लगा करके ही स्वीकार करिएगा। और आइए फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: क्या है माँ जी?
1: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
0: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
1: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही हो, क्या बात है?
1: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
0: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल, मुझे भी बच्ची ही चाहिए। मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता, आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
0: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद? नहीं ना।
3: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं। तो आप आजमा सकते हैं, गाय का दूध बहुत ही फायदेमंद है और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई। तो रेसिपी में आपको राजगिरे का हलवा बनाना सिखाए, ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था, राजस्थान का कौन सा पेड़ हमारी धरती के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसे राज्य वृक्ष का सम्मान मिला है, उसका नाम बताना है। तो आज हमारे सभी श्रोता बंधुओं ने सही जवाब दिया है, सिर्फ मदन भाई मेहसाना से आपने गलत जवाब दिया है। आपने पहले आसोपालव कहा, फिर नीम का पेड़ कहा, आपका जवाब गलत है। नीम का पेड़ फायदेमंद है नो डाउट, लेकिन जो राज्य से सम्मान मिला है वो वृक्ष है खेजड़ी। तो आप सभी का जवाब सही है, इसके लिए ढेर सारी तालियां। नाम सुनाना चाहूंगी नीलम राठी आबू राज से, अरुण भाई कपासन से, सुरेश भाई झोटाना से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, कंचन भाई मंडाली से, अभय सिंह जी जयपुर से, फिरोज भाई पालनपुर से, दयाराम जी रामपुरा से, सुरेश भाई धानेराव से और ज्ञानेंद्र जी उत्तर प्रदेश से, शोभा सोमानी कपासन से। आप सभी का जवाब सही है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई जोटाना से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, कंचन भाई मंडाली से, अभय सिंह जी जयपुर से, फिरोज भाई पालनपुर से, दयाराम जी रामपुरा से, सुरेश भाई धानेराव से। तो आप सभी के लिए आज का मीठा मोती है, आप किसी भी समस्या के बारे में कितने भी चिंता करें पर क्या आपका चिंतन मन उस समस्या का समाधान कर सकता है, सोचिएगा। और अब मैं आपको भजन सुनाऊंगी, लेकिन छोटा सा, क्योंकि समय होने को आ रहा है आपको अगला कार्यक्रम सुनने का। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से सुंदर प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM। भजले प्यारे।

नाम के बल पर बजरंगी ने सागर शिला तिराई थी। नाम के बल पर बजरंगी ने सागर शिला तिराई थी।

अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।

0: जिंदगी की रीत क्या है उसको समझने में न जाने कितने सारे गाने सुनने होते हैं, और तब पता चलता है कि भाई हार के बाद ही जीत है। लेकिन वो हार में कई बार आगे जीत नजर नहीं आती, छिप जाती है बादलों के पीछे जैसे सूरज छुप जाता है। और उसी जिंदगी से प्यार करना हम सीख रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम है लव यू जिंदगी, और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एक्सपर्ट्स। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे ग्लोबल अस्पताल से हमारे साथ जुड़ी है कल्पना जी, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट भी है, साथ साथ स्पिरिचुअल काउंसलर भी है और हमारी गाइड और दोस्त भी है। कल्पना जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि जी, बहुत ही सुंदर टॉपिक्स के साथ आप हर बार आती है और श्रोताओं से मुखातिब होते हुए हमें बहुत बहुत बहुत मजा आता है। तो थैंक यू वेरी मच,
0: थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे दूसरे एक्सपर्ट भी। जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं आरजे श्री, जो कि रेडियो के जाने माने आरजे है, एंकर है, साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है श्रीनिधि जी।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी, कल्पना जी नमस्कार, हमारे सभी श्रोता मित्रों को नमस्कार। वापस फिर लव यू जिंदगी की एक और कड़ी में जुड़ के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम कड़ी से कड़ी जोड़ते जा रहे हैं, तो ये मजबूत कड़ियां बनती जा रही हैं।
0: हाँ, और इस मजबूत कड़ी में आज की कड़ी बड़ी अनोखी है। परिस्थिति आती है और कई बार हम उस परिस्थिति के अनुरूप ढल जाए या हम उसको अपने अनुरूप ढाल ले, समझ में नहीं आता। लेकिन सिचुएशंस हम सबकी लाइफ में आती जरूर है। आज चलिए थोड़ी बात उसी के बारे में कर लेते हैं, कैसे हम अवेयर होते हैं या कैसे रेगुलेट भी कर सकते हैं सिचुएशंस को या खुद को, इस गुत्थी को सुलझाते हैं आज। तो कल्पना जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, अगर मतलब अवेयरनेस शब्द जब जुड़ जाता है तो ऐसा लगता है जो दिख रहा है उसके बियॉन्ड कुछ देखना है, क्या सिचुएशंस में भी ऐसा होता है?
1: हाँ बिल्कुल आरुषि जी, अवेयरनेस मतलब जागरूकता। जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं, समझो हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं या कोई परिस्थिति आई है, समझो कि कार चला रहे हैं और एक्सीडेंट ही हो गया है, या फिर हम कहीं होटल में गए हैं खाना खाने के लिए और कोई अच्छी ऐसी बात हो गई जिसको देख के हम थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगा, या कोई ऐसी बात हो गई जो हमें बहुत अच्छी लगी, या कोई समझो सेलिब्रिटी आ गया अचानक और हमारा रिएक्शन, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। आप सब्जी मार्केट में गए हैं और सब्जी खरीद रहे हैं और वहाँ एक दृश्य देखकर आपको अच्छा लगा या बुरा लगा या कोई भी ऐसी चीज। सो हर प्रकार की सिचुएशन में अवेयरनेस अगर हमें है कि ये परिस्थिति किस तरह की है और इस समय मेरा रिएक्शन किस तरह का होना चाहिए, अर्थात परिस्थिति को समझना और उसके साथ जुड़ी हुई प्रतिक्रिया को बैलेंस्ड रखना या उसको संभालना, ये परिस्थिति के साथ जुड़ा हुआ है।
0: ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। परिस्थिति को समझना तब रिएक्शन को समझना, वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है आपने बताया। श्री जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे सिचुएशन अवेयरनेस की बात है तो क्या हम जो समझ रहे हैं उससे वो डिफरेंट भी हो सकते हैं? मतलब हमें दिख रहा है, कोई बोल रहा है, सामने से क्या हो रहा है, मौसम कैसा है, सब कुछ दिख रहा है, हमारे जो सेंसेस है उससे हम समझ पा रहे हैं उस परिस्थिति को, बट क्या कई बार चीजें वैसी नहीं होती जो दिखती हैं, तब अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है या हर सिचुएशन में ही अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है?
2: ये बहुत ही सुंदर सी बात है कि हम कितना ज्यादा अवेयर हैं चीजों के बारे में। कभी कभार हमारा मूड अगर ठीक है तो मौसम खराब भी है तो भी मतलब हम उस खराब मौसम को भी अच्छा महसूस करने लगते हैं, हाय इतनी अच्छी बारिश आ रही है, ओहो ये काले बादल और वही काले बादल वही बारिश आपका मूड खराब है तो बोले ओहो सच ग्लूमी वेदर आज, तो मतलब मौसम ना

0: बेकार है।
1: काली बादल।
0: बाल क्या मूड ही खराब कर दिया यार, मतलब कोई सनशाइन नहीं। नजरिया है आपका, अवेयरनेस है, आप किस नजरिए से उस चीज को देख रहे हो। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, जो दिखता है वो वैसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। जो चीजें वैसी ही हैं, मगर मैं किस अवेयरनेस से उन चीजों को देखता हूँ वो बहुत मायने रखता है। और इसलिए लाइफ की परिस्थितियां भी ऐसे ऐसे होती है, कभी कभार लोग हमें कुछ चीजें कह देते हैं, और कभी जब वो चीजें कहते हैं तो हम उनकी बातों का बुरा नहीं मानते, क्योंकि मैं अंदर से मेरी अवेयरनेस कोई और चीज की अवेयरनेस है। और कभी कभार उन्होंने उस भाव से उस चीज को कहा भी नहीं होता और हम कहने लगे तुमने मेरे लिए ये कहा, तुम ऐसी बात कह भी कैसे सकते हो मेरे लिए। तो बोले मैंने कहा क्या था, मतलब ये तो सिंपल सी चीज है। तो ऐसा होता है, और इसलिए इन चीजों को समझने की जरूरत है कि जो चीज जैसी दिखती है वैसी हमेशा हो ये जरूरी नहीं। और कभी कभार हमारे मन के भाव, उन परिस्थितियों को, हमारे देखने का नजरिया, जो अवेयरनेस की बात कही जा रही है, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, मैं किस जागरूकता के साथ उन चीजों को देखता हूँ, ये हमारे आउटकम्स को भी प्रभावित करते हैं। और इसलिए ये समझना जरूरी है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी धारणा क्या है, मेरी अवेयरनेस क्या है इस घड़ी, और उसी के आधार पर बाहर की परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मेरे आउटकम्स को मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ। कम से कम हमेशा ना सही तो कम से कम 50% ऑफ द टाइम्स तो मेरे कंट्रोल में है।
1: मेरे कंट्रोल में है। दैट्स वंडरफुल, क्योंकि मेरी अवेयरनेस के अकॉर्डिंग एक सिचुएशन मुझे अच्छी लग रही है, वही सिचुएशन कल मुझे अच्छी नहीं लग रही है, यानी देयर इज समथिंग एल्स, कुछ और है जो प्रभावित कर रहा है, ये तो श्योर हो गया। कल्पना जी, मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि कई बार लाइफ में परिस्थिति ऐसे आती है कि जो दूसरा देख रहा है उसे लग रहा है कि एक एग्जाम में फेल हो गया, हम भी हुए थे, या कोई और भी हो जाता है, हैपेंस, थोड़ा डांट देते हैं या आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, उसे लगता है ये बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है, मेरी इंसल्ट हो गई, इतने लोगों के सामने मेरे साथ ये हो गया, और वो उसके लिए बहुत बड़ी बात बन जाती है, शायद वो हैंडल नहीं कर पाए इतनी बड़ी बात। तो ये एक ही परिस्थिति इतनी ज्यादा अलग हो जा रही है, तो इसमें किस तरह की अवेयरनेस चाहिए हमें, जहां हमें ह्यूमिलिएशन फील हो, जहां हमें इंसल्टेड फील हो बहुत सारा।
2: बहुत अच्छी बात कही आपने, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल आजकल हो गया है। तो जब हम सिचुएशन अवेयरनेस की बात करते हैं, तो उसको सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि मैं इस समय कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, क्या परिस्थिति है, उसका अर्थ क्या है, और उस समय मुझे किस तरह का डिसीजन लेने की आवश्यकता है। इस पूरी बातों को मन में कुछ सेकंड्स में कलेक्ट करके उस तरह से एक्शन लेना या प्रतिक्रिया करना। फिर से मैं दोहराती हूँ, मैं इस समय कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, परिस्थिति क्या है, इस परिस्थिति के पीछे लोग जो जुड़े हुए हैं उनकी क्या भावनाएं हैं, इस परिस्थिति में मुझे किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया लगती है, बट हमारे दिमाग में उसके लिए कुछ सेकेंड्स में इन चीजों को रिकलेक्ट करने का एक बहुत अच्छा यंत्र उपलब्ध है। मतलब हम कर सकते हैं, क्योंकि हम रोजमर्रा की ये बातें हैं, बट इसमें केवल अवेयरनेस की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम का, बच्चे के एग्जाम का, उसके फेल होने का एग्जाम एक बताया, घटना आपने बताई, उसी घटना को एक पेरेंट जो है वो गुस्से से या नाराज होकर या बच्चे को दोष देकर या उसको ये याद दिलाकर कि तूने पढ़ाई नहीं की ठीक से, इसलिए तुम फेल हो गए, ये सब कुछ उस सीन में करने से उस बच्चे को हर्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, वो बच्चा ही में रेट हो रहा है। बट यही सीन अगर हम दूसरे एंगल से देखें, अवेयरनेस के एंगल से देखें, तो इसी परिस्थिति में अगर पेरेंट्स ये सोचे कि अभी एग्जाम हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, जो बीत चुका है उसके बारे में बात करके या याद दिला के कुछ फायदा नहीं है, अब क्या किया जा सकता है, ये सोचकर अगर बच्चे के साथ रिएक्ट करे, तो उसको कहा जाता है अवेयरनेस के साथ। अब बच्चा खुद शॉक में है, ऐसे समय पर माँ बाप भी उसको डांटे, फटकारे या मारे, या फिर उसको बुरा भला कहे या उसको याद दिलाए, इसकी बजाय अगर वो ये कहे कि ठीक है, अब तो जो मिले सो मिले मार्क्स, कोई बात नहीं, आगे के लिए तुम अच्छे से पढ़ना और अच्छे मार्क्स ले आना, हम जानते हैं कि तुम अच्छा पढ़ सकते हो, तुम में वो काबिलियत है। अब एक ही सीन में दो प्रतिक्रियाओं के साथ क्या फर्क पड़ा, पहली प्रतिक्रिया जो थी उसमें बच्चा ह्यूमिलिएट हुआ, बच्चा नाराज हुआ, उसका मोटिवेशन कम हुआ और वो उदास हो गया
1: जी।
2: दूसरी तरफ माँ बाप को गुस्सा करने से अच्छा थोड़ी ना लगा, उनकी भी तो मनस्थिति खराब हो गई और उनका भी दिन डिस्टर्ब हुआ। लेकिन दूसरी सिचुएशन में जहाँ वो बच्चे को जो भी मार्क्स मिले हैं, कम मिले हैं, वो स्वीकार करते हुए उसको कहते हैं कि ठीक है, अब तक जो भी हुआ कोई बात नहीं, आगे तुम अच्छे से पढ़ना, तो बच्चा भी शांत, बच्चा भी रिस्पेक्टफुल फील किया उसने, उसका मोटिवेशन बढ़ा और पेरेंट्स पीसफुल रहे, तो कितना फर्क पड़ा हमारे। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, जो आगे चल के समझेंगे जब हम धीरे धीरे इस बात को आगे ले जाएंगे,
1: एक्सप्लोर करेंगे। और श्री जी, इसी इंसिडेंट को आगे ले जाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कभी कभी ना हम ये शब्द सुनते हैं कि तुम क्यों बात को बढ़ा रहे हो, तुम क्यों इतना उसमें ज्यादा देख रहे हो, जो है नहीं तुम वो भी देख ले रहे हो। तो बात को बढ़ाना या परिस्थिति को कुछ और समझ लेना, कई बार हम इस तरह की परिस्थिति में है जब बहुत ह्यूमिलिएशन फील कर रहे हैं, इंसल्ट फील कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी परिस्थिति हो जाती है। तो परिस्थिति जो जैसी है वो वैसे ही नजर आए, वो कैसे होता है?
0: ये बिल्कुल ऐसी बात आपने कही है, मेरे को गीता के श्लोक याद आ गए। भगवान गीता में एक जगह कहते हैं कि मैं जो हूँ जितना हूँ उतना मुझे समझ के याद करो, ये बात कही जाती है। हालांकि मैं गीता के ये शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा इतना आसान नहीं होता कि जो जैसा है जितना है उतना उन चीजों को हम माप तोल के समझ कर चले, उस समझ के आधार से चीजों को चले। या तो हम चीजों को एग्जैजरेट कर देते हैं, जो दिख रहा है उसको राय का पहाड़ बना देते हैं। हम अक्सर ये कहावतों का इस्तेमाल करते हैं कि वो था छोटी सी चीज और उसको हमने राय का पहाड़ बनाया है। और कई बार हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो पहाड़ जैसी परिस्थिति भी उनके लिए रूई समान होती है कि भैया एकदम हल्के में लेते हैं, अच्छा ठीक है, हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पर वो दो चीजें दिखाई देती हैं कि भाई वो वही चीज है, सिचुएशन वही है, चैलेंज वही हो सकता है, डिफिकल्टी वही हो सकती है, मगर हमारा अप्रोच क्या है उन चीजों के हिसाब से वो चीजें मायने रखती हैं हमारे लिए। तो हमारा माइंडसेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर करता है। और कभी कभार हम देखते ही हैं कि जो जैसा है जितना है उसको हम देखें कैसे। लोग अक्सर इसके लिए अलग अलग अप्रोचेस की बात करते हैं। कभी कभार कॉर्पोरेट जगत में जब हम इन चीजों को देखते हैं, जब हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है या कोई चैलेंज है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, एक रोड ब्लॉक है, किसी प्रोजेक्ट को आप कर रहे हैं, कहीं पर आप स्टक हैं, तो लोग अक्सर कहते हैं कि आप एक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन सोचो, कहा जाता है। तो यहाँ लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या, हम बॉक्स से बाहर निकले, क्या हम बॉक्स के अंदर थे जो बॉक्स के बाहर जाने
1: निकले पहले।
0: भाव ये है कि क्योंकि हम उस समस्या से, उस परिस्थिति से इतने ओतप्रोत हैं, हम उससे हटकर कोई और चीज सोचना ही नहीं चाहते। हमें यह बताया जाता है कि आप उससे ऊपर उठें, आप उस समस्या से एक ब्रेक लें। कई बार लोग लिटरली ब्रेक्स लेते हैं, ऑफिस से बाहर जाते हैं, या फिर कभी कभार वो लोग एक दो दिन के हॉलीडे पे जाते हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते ही नहीं, और जब फ्रेश माइंड से वापस आते हैं तो तब आपके पास समझ में आता है, ओह अच्छा, इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो देखने का ढंग जो है, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया दृष्टिकोण, एक होलिस्टिक अप्रोच नजर आता है। और जो समस्या आपको पहले बड़ी लग रही थी, दो दिन बाद आपको लगता है अच्छा ये कोई बड़ी बात नहीं है एक्चुअली, ऐसा लगने लगता है। तो इसके लिए एक सेंस ऑफ डिस्कनेक्ट, एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट डेवलप करना भी आवश्यक है। और गीता में यही चीज कही भी गई है। आप श्रीमद भगवद गीता का एक श्लोक आता है जहां पर भगवान ये बात कहते हैं अर्जुन को कि कैसे आपको काबू करना है इस मन को। तो शायद मैंने ये चीज पहले भी बताई होगी, इस श्लोक में आता है कि अभ्यास एन तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास भी चाहिए बट साथ साथ वैराग्य चाहिए। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि मैं घर बार छोड़ दूं, मैं प्रॉब्लम्स को फेस ही ना करूं, मैं भाग जाऊं, मैं बोलूं मेरा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप मुंह नहीं फेर रहे हैं उस चीज से, आप एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट कल्टिवेट कर रहे हैं कि एक सेकंड के लिए मैं सॉल्यूशंस के बारे में नहीं सोचता, एक सेकंड के लिए मैं प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचता, मैं सिर्फ उससे पीछे हटता हूँ, अपने आप को मैं रिलैक्स करता हूँ, अपने आप को मैं शांत मनोस्थिति में ले आता हूँ, अपने आप को उस प्रॉब्लम से हटाकर किसी और चीज में लगाता हूँ जो एक हैप्पी इमोशन है या एक पीसफुल इमोशन है या एक कंटेंटेड इमोशन है, या मैं बगीचे में जाता हूँ, या मैं किसी फूल को, किसी पौधे को देखता हूँ, किसी जानवर को, पालतू जानवर है या कोई पेट है आपका, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कोई अपने पसंद का गाना सुनते, कुछ ना कुछ ऐसा करके आप अपने मन को उस चीज से डिस्कनेक्ट करते हो।
1: ओके।
0: और तब आप जब वापस उस पे लौटते हो तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। पर्सपेक्टिव अलग नहीं भी होता तो भी आप एक रिलैक्स्ड नजर से उस चीज को देख सकते हैं,
1: देख सकते हैं।
0: आपकी अवेयरनेस में एक शिफ्ट आया है, आप ये महसूस कर सकते हो। ये करना आवश्यक होता है। और जैसे फेलियर्स की बात कह रहे थे, मैंने अपने लाइफ में फेलियर्स देखे हैं, एज ए स्टूडेंट मैंने फेलियर देखा है। हम कॉम्पिटिशन्स अटेंड करते हैं, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हमेशा सक्सेस नहीं मिलती।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, कहीं कभी कभार उन फेलियर्स की वजह से मैं रोया हूँ, पेरेंट्स की डांट पड़ी है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। मगर आज जब उन चीजों को पलट कर देखा जाता है तो आज लगता है कि क्या इतनी छोटी बातों पर मैं इतना परेशान हुआ। कभी कभी अपने आप पर हंसते हैं। अगर ये समझ उस घड़ी आई होती तो फिर आपको
1: उतना परेशान नहीं होते शायद।
0: आप बहुत इन्वॉल्व हैं उस चीज में, इसलिए आप फंसे हुए हैं। तो इसमें आपको जकड़न महसूस होती है, आपको लगता है कि अब मैं हिल भी नहीं सकता। तो ऊपर उठना थोड़ा आवश्यक है। और ये ऊपर उठना कोई फिजिकल हॉलिडे या भाग जाने की बात नहीं है। हालांकि श्री कृष्ण के एक नाम के लिए ये नाम भी मशहूर है कि रणछोड़, और उसके लिए भी गाने बने हुए हैं, भजन बने हुए हैं। कभी कभार रण छोड़ना पड़ता है, कभी कभार आपको रिट्रीट करना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है, ताकि आप बेहतर तरीके से उस चीज को समझ सको। हम ये कहते हैं कि जब आप जैवलिन थ्रो करते हैं या शॉर्ट पुट थ्रो करते हैं तो आप थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग जंप या हाई जंप भी लगाना चाहते हैं तो पहले आप थोड़ा पीछे दौड़ते हैं और फिर गति पकड़ के आगे आते हैं,
1: आगे जाते हैं।
0: ये पीछे हटना हार नहीं है, पीछे हटना एक पर्सपेक्टिव लेने के लिए, थोड़ा ऊपर उठना, ये चीज है जो सही चीजों को हमारे सामने अवेयरनेस में शिफ्ट लाने के लिए मदद कर सकता है,
1: मदद कर सकता है। दैट्स ग्रेट एक्चुअली। थोड़ा सा डिटैच होना कैसे मदद करता है वो हमने समझा, प्रोसेस क्या है, कितनी मेहनत है, आसान है, डिफिकल्ट, आई थिंक आगे जानेंगे ये। कल्पना जी की ओर आगे बढ़ते हैं, हम कार्यक्रम की अंतिम घड़ियों में जा रहे हैं। कल्पना जी, आपने जिस तरह से स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल लिया था, मैं थोड़ा सा चाहूंगी अगर आप उसको एलैबोरेट करें, क्योंकि अगर मान लीजिए पेरेंट्स छोड़ भी देते हैं बच्चे को, ठीक है, हम सिचुएशन को समझ रहे हैं, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर उनको लगता है कि स्पॉइल हो जाएगा बच्चा, उसको लगेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं, एंड एक आदत बन जाएगी। तो क्या परिस्थिति को उतना ही देखना या छोटा करके देख लेना वो नुकसान भी कर सकता है हमको, ऐसा पॉसिबल है?
2: आरुषि जी, बहुत सही जगह पर आपने ये बात को मार्क किया है। एक्चुअली देखिए, वही सिचुएशन अगर हम ले तो किसी भी चीज की प्रतिक्रिया को हम अग्रेशन, एंजाइटी, एंगर, इन चीजों के साथ जब प्रतिसाद देते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो दोनों तरफ नेगेटिव होता है, सामने वाले पर और वो प्रतिक्रिया करने वाले पर नेगेटिव होता है। और नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं हो सकता ना,
1: सिर्फ मैथ्स में,
2: मैथ्स में हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता है,
1: यहाँ नहीं, लाइफ में नहीं।
2: नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, या हम कहें नेगेटिव इनटू नेगेटिव है।
1: जी जी।
2: तो नेगेटिव रहेगा, डबल नेगेटिव होगा या मल्टीपल नेगेटिव होगा। सो इसीलिए श्री जी की बातों से मैं काफी हद तक सहमत हूँ, बट जब मैं अपने श्रोताओं को देखती हूँ तो श्री जी की बातें थोड़ी सी मुझे कठिन लगती है समझने के लिए, है ना। तो मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ कि क्या है, समझो मैं किसी सिचुएशन में हूँ तो प्रोसेस क्या होनी चाहिए सिचुएशन की प्रतिक्रिया तक पहुँचने से पहले। तो सबसे पहला काम है देखना, देखने को हम कह सकते हैं ऑब्जर्व करना, है ना। तो वो थोड़ा सा पॉज हम वहां लेते हैं ऑब्जर्व करते समय। दूसरी स्टेप है समझना, अर्थात सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, है ना। तीसरी स्टेप है एनालाइज करना या अनुमान लगाना कि ये सिचुएशन है क्या, उसको अच्छी तरह से समझकर उसको किस तरह से प्रतिक्रिया करनी चाहिए, उसको एनालाइज करना या अनुमान लगाना हम कह सकते हैं कि क्या करना है, या अवेयरनेस की स्टेज को कहते हैं। तो देखना, समझना, अनुमान लगाना और फिर उचित प्रतिक्रिया देना। ये प्रोसेस माइंड में 10 सेकेंड्स में भी हो सकती है। ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस एंड एक्शन, नॉट रिएक्शन।
1: ओके।
2: रिएक्शन जहाँ हम कहते हैं
1: वो जल्दी आता है
2: वो ट्रिगर दूसरे के हाथ में है, रिएक्शन है तो, है ना, एक्शन है तो ट्रिगर मेरे हाथ में है। सो देखना जानकारी है, समझना जागरूकता है, और सही प्रतिक्रिया देना ये समझदारी है। तो समझदारी से काम करना चाहिए। अब आप बताइए, पेरेंट्स का रिएक्शन समझदारी वाला था, गुस्सा करना, या ना समझी वाला.
1: ये बात समझ में आती है अब आपने ऐसे बताई तो, नहीं तो उस वक्त वो ही वैलिड लगता है. लेकिन ऐसे जब चार स्टेप लेके समझते हैं तो सही बात है, वो शायद एक रिएक्शन है, वो कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है उसका. कल्पना जी, इस चीज को मुझे लगता है हम आने वाले एपिसोड्स में और भी थोड़ा स्टेप्स को समझना चाहेंगे फिलहाल, लेकिन समय की सीमा में यहीं तक इजाजत देती है. तो क्या जाते जाते हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं ताकि हम उस परिस्थिति में होते हुए भी लिटिल डिटैच, या जैसा आपने कहा वो एक ऑब्जर्व कर सके, पहले स्टेप पे जा सके.
2: जी बिल्कुल, इसकी बहुत सुंदर छोटी छोटी एक्टिविटीज के माध्यम से हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं. आगे के एपिसोड्स में हम इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से विस्तार से डिस्कस करेंगे, लेकिन इस समय जो समय है वो रिलैक्स होकर कुछ अफर्मेशंस को अपने मन में दोहराने का. तो हम अपने श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि 2 मिनट के लिए, केवल 2 मिनट के लिए आप किसी निश्चित स्थान पर आराम से बैठ जाएं, अपने शरीर को रिलैक्स फील करें, गहरी और लंबी सांसें लें, मन और शरीर को ढीला छोड़ते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए मन की आंखों को जगाते हुए जागरूकता के साथ कुछ अफर्मेशंस, कुछ वाक्यों को जो हम सुना रहे हैं उसे अपने मन में रिपीट करें. मैं वर्तमान क्षण में सजग और जागरूक हूं. मैं वर्तमान क्षण में सजग और जागरूक हूं. मैं अपने आसपास की परिस्थितियों को शांत मन से देखती हूं या देखता हूं. मैं अपने आसपास की परिस्थितियों को शांत मन से देखती हूं. केवल मैं परिस्थिति को देखता ही नहीं हूं, परंतु परिस्थिति को समझने की कोशिश करता हूं. यहां पर गहरी और लंबी सांस लें. पहले रिपीट किए हुए 3 वाक्यों को मन में महसूस करें. जागरूकता, शांत मन और समझने का प्रयास, इन 3 शब्दों को अपने मन में दोहराएं. जागरूकता, शांत मन और समझने का प्रयास. गहरी लंबी सांस लें. अगला वाक्य है, मैं तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले रुकती हूं, समझती हूं और फिर प्रतिक्रिया देती हूं. मेरा मन शांत होता है तब वो मुझे सही निर्णय लेने में सहायता करता है. मेरा मन शांत होता है तब वो सही निर्णय लेने में मुझे सहायता करता है. आज के लिए केवल इतना ही. धन्यवाद.
1: एक्चुअली इतना सारा है ये, अगर आप ही प्रैक्टिस करें तो बहुत सारा सारा बेनिफिट होने वाला है. तो थैंक यू सो मच फॉर दिस. हमें अभी ही वो महसूस हुआ और इसको रिपीटेडली करेंगे तो हम जो चाहते हैं अपने से वो हम कर पाएंगे. थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू सो मच श्रीनिधि जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए. और दोस्तों, फिलहाल वक्त हो गया है आपसे भी इजाजत लेने का. आप भी दिल खोल के एक बार जिंदगी से कह दीजिए कि लव यू जिंदगी. रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पे असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और कह सकते अपना लोक भाषा में मारो गाँव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं सभी से मिलते हैं, तो आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरना में पहुंचे जो कि पूरा हाईवे का पास ये गांव है डेरना और वो फेमस है। डेरना पूरा राबड़ी बनाने के लिए होशियार है, पूरा यहां पर दूध मलाई का भरपूर है ये गांव। और जब आप रोड आते हैं कोई भी पर्यटक विजिटर्स वो राबड़ी को याद करता है और डेरना से जाता है। और डेरना तो अच्छा गाँव है, तो हमारा सभी राबड़ी खाने वाले सभी बच्चे उपस्थित है स्कूल में। जब आए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रार्थना सत्र में जैसे बच्चे गाते हैं, आज प्रार्थना सत्र में एक प्रस्तुति होगी जो कि बच्चों का तोतले तोतले आवाज में, पहला बार नहीं, इसका पहले भी हम प्रोग्राम किए थे लेकिन आज एक प्रार्थना सत्र में माँ सरस्वती का वंदना होगी। तो सभी नाम बताएंगे। हेलो, नाम बताइए।
1: कुसुम, सरोज, पूजा।
0: कौन सा क्लास? पूजा
1: छठी। पूजा,
0: अरे वाह, पूजा पाठ आस्था विश्वास में हम तो ओत प्रत हो गया और हमारे दो पूजा आज मिल चुके। और देखते हैं कौन कौन नाम आते हैं।
1: मानवी।
0: हाँ, मानवता, मानवी, मानव सेवा ही माधव सेवा कहते हैं, मनुष्य का सेवा करना चाहिए।
2: आशा।
0: आशा विश्वास।
3: जमुना।
0: जमुना का कंठ में हम चलेंगे कृष्ण जी के पास।
3: हाँ। हंजा।
0: हंजा, वाह।
3: संजना।
0: संजना।
4: मानसी।
0: हाँ, चलिए एक प्रार्थना होगी, शुरू करेंगे बच्चे प्रार्थना मुद्रा में।

0: तो इस तरह आस्था विश्वास और भक्ति में हम ओत प्रेत होकर अपना दिल का भावना माँ सरस्वती तक पहुँचाते और हर विद्यालय में शुरुआत में प्रार्थना सत्र में करते हैं। तो आज राज के उच्च प्राथमिक विद्यालय डरने का बच्चों का आवाज, पूजा अंजा सभी का आवाज सुन रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह प्रोग्राम में जब बच्चे भाग लेते हैं तो हमें खुशी मिलता है, उनको मौका मिलता है, उनका आवाज आकाशवाणी में आ रहा है। तो जब उनका घर में मम्मी पापा भाई दोस्त लोग सुनेंगे, यार ये तो हंजा का आवाज है, ये तो मानसी का आवाज है, सुनेंगे तो रास्ता में उसको बहुत प्रचार प्रसार करेंगे, नामांचार भी होगा और अच्छा लगा। बढ़ा कर क्या बनेगी?
1: डॉक्टर
0: बनेगी। अरे वाह, डॉक्टर का काम क्या होता है?
1: सुई लगाना, इलाज करना, दवाइयाँ देना।
0: कभी डॉक्टर को देखे कहाँ पर?
1: आबू रोड में।
0: आबू रोड में कभी गए डॉक्टर के पास? कभी गए आप?
1: जी सर।
0: क्यों गए?
1: मैं बीमार थी तब।
0: बीमार जब होती है तो डॉक्टर का आवश्यकता होता है। और एक प्रार्थना में आत्मा परमात्मा और हमें इतना दो बोल कर मांगे है ना, भगवान को मांगते हैं ना?
1: जी सर।
0: किसको मांगते हैं?
1: सरस्वती माता, शिव जी वगैरह
0: सबको मांगते। बहुत अच्छा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बच्चों का आवाज सुन रहे हैं और ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरने का आवाज, क्या सुंदर आवाज प्रस्तुति दिए प्रार्थना का रूप में। चले और एक आदिवासी गीत होगा, क्योंकि आदिवासी एरिया में जब आए आदिवासी गीत न हो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आदिवासी नाम सुनते तो शुद्धता, मिठास और भोलापन देखने को मिलता है आदिवासी में। चलिए कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए हमारा नया नया चेहरा आज आए और मासूम मासूम चेहरा में थेमरो गाना थेमरो वास्ते सुनाएंगे। थेमरो हूँ नाम
2: विमला।
1: विमला थेमरो हूँ नाम
2: सेवना।
1: सेवना थेमरो
2: आशा।
1: थेमरो
2: हंसी।
1: थेमरो
3: संजना।
1: थेम
2: सविता।
1: सविता
3: सरोज।
4: पूजा संजना।
1: वाह, शुरू करते हैं आदिवासी गीत।
5: वेलिन

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: गीत को रोक नहीं पा रहे हमारा और दो देवासी बहने, आदिवासी का साथ साथ देवासी का जो आवाज वो भी अपना आवाज को रोक नहीं पाकर अपना बोलेंगे बुलंद आवाज से, और एक का बाद एक गुलदस्ता बन गया हमारा कार्यक्रम, क्योंकि आदिवासी का साथ साथ देवासी लोग का जो गीत है जो हमारा गोपालक कहते हैं भैंस गाय रखते हैं उनको कहते हैं देवासी, तो देवासी को सलाम करते हैं, शुरू करते हैं।

सुंदर प्रस्तुति के लिए सुंदर बच्चे आज उपस्थित हुए, एक का बाद एक एक बच्चों का आवाज सुन को मिल रहा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, बच्चों का आवाज, सच्चे बच्चे मस्त बच्चे होते हैं, तो आज सच्चे मन से दिल से गीत गाएंगे। सभी को स्वागत करते हैं पुनः नाम का साथ, पूजा अर्चना भावना आशा सभी भरे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं।

0: क्या बात सुंदर प्रस्तुति के लिए, और सभी को स्तब्ध कर दिए, इतना सुंदर प्रस्तुति दिए, बच्चों को कितना भी धन्यवाद दे कम ही होगा, क्योंकि ये कार्यक्रम रेडियो मधुबन पर सुन रहे हैं सभी। हमें खुशी है बच्चे इस तरह बारी बारी अपना भाव को भावना को प्रस्तुति किए रेडियो मधुबन पर, और हमें खुशी लगता है क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं और अपना मन का बात दिल का बात रखते हैं गीत के माध्यम से, चाहे रबारी हो, चाहे देवासी हो, चाहे हमारा आदिवासी हो, चाहे सभी जाति का लोग बढ़ चढ़कर स्कूल में रहते हैं और भाईचारा देखने को मिलता है, एक दूसरे को सहयोग देते हैं। और तीन गुड्डा छात्र आए हैं तो वो भी अपना आवाज को देंगे।
1: नीरमानी रे बाबा नीरमानी जंगल में मंगल में, अरे बाबा नीरमानी ओ पहाड़ों में ओ मंगल में, अरे बाबा नीरमानी,
2: अरे बाबा नीरमानी पहाड़ों में जंगल में।

लेते हैं आज के लिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

का आलमगीर, सबको मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए, झूमते रहिए और सबको प्यार से झुमाते रहिए। ओ, आज दर पे चल के आया है मौका,

0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ए जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ए उड़ले उड़ले ओ उड़ले उड़ले ओ उड़ले उड़ले ओ उड़ले।
1: अभी बजे हैं रात के 1, याद दिलाइए स्वयं को, मेरा तो परमपिता परमात्मा एक।

0: अरावली की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज आपको ऐसी नारी शक्ति से मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है हेमलता गोयल। आप आबू रोड के रहने वाले हैं, आपने 8वीं तक पढ़ाई की है, आपकी उम्र 60 प्लस है और आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। घर परिवार को तो आप चलाते हैं, अच्छी तरह संभालते हैं, साथ ही साथ बच्चों को भी अच्छी परवरिश दी। कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, गीत संगीत, डांस सभी का शौक है और विशेष करके सत्संग में जाना, भजन कीर्तन करना। वो भी तो कहते हैं ना कि नारी शक्ति में क्या नहीं होता है, नारी शक्ति में हट करके विशेषताएं होती है, तभी तो कार्यक्रम का नाम रखा है वंदे मातरम। तो आइए मिलवाते हैं। हेमलता जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: जी हाँ, धन्यवाद।
0: हेमलता जी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप पहली बार इंटरव्यू देकर के खुश है या पहले कभी दिया?
1: नहीं, पहली बार देके खुश हूँ।
0: अच्छा, चलिए अच्छी बात है, एक नया अनुभव।
1: नया अनुभव है
0: जी। जी तो चलिए आपके बचपन की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं ना, पिचपन में बचपन की बातें करें तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता?
1: मेरा बचपन जोधपुर में बीता और बहुत अच्छा बीता, फ्रेंडों के साथ, सहेलियों के साथ। खूब घनश्याम जी मंदिर और मंदिर में जाके खेलना, कूदना, पढ़ाई करना, सिलाई बुनाई करना, बहुत अच्छा रहा 8वीं तक।
0: जी जी, आपकी चार फ्रेंड है?
1: चार
0: आपने बताया, मेरे चार फ्रेंड के साथ बीता।
1: चार फ्रेंड है मेरे साथ
0: और पांचवे आप?
1: पांचवी में।
0: पांच पांडव। तो चलिए, आप कितने भाई बहन हैं, आपके माता पिता क्या काम करते थे, बताएंगे?
1: मेरे छह भाई है और एक बहन हूँ मैं, और मेरे पिताजी रेलवे में चेयरमैन थे।
0: तो क्या बात है, छह भाइयों की इकलौती बहन है आप, तो बहुत ही लाड प्यार मिला होगा आपको तो।
1: हाँ जी, बहुत लाड प्यार मिला,
0: स्वाभाविक है, हर डिमांड आपकी पूरी हुई होगी।
1: पूरी हुई, हर डिमांड पूरी हुई और आज भी हो रही है।
0: क्या बात है, आज भी पूरी हो रही है?
1: आज भी पूरी हो रही है।
0: चलिए ये बहुत अच्छी बात है, 60 की उम्र में आज भी डिमांड पूरी होना। नहीं तो कहते हैं कि भाइयों की शादी हो जाती, भाभियां आ जाती है, फिर नंदों को भाई फर्क पड़ जाता है देने लेने में, लेकिन आज भी आपकी डिमांड पूरी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, सुनकर के अच्छा लगा।
1: जी हाँ, धन्यवाद।
0: अच्छा तो हेमलता जी, आप बता रहे थे कि छह भाइयों की इकलौती आप बहन है, आप सातों भाई बहन कैसे रहते थे?
1: सातों भाई बहन मिलके रहते थे, सब भाई मुझे प्यार करते थे। मैं चौथे नंबर की थी, तीन भाई मेरे से बड़े, तीन भाई छोटे, मैं पांचवे नंबर की थी।
0: अच्छा, तो फिर आपने पढ़ाई क्यों नहीं की?
1: पढ़ाई इसलिए नहीं की कि छोटे भाइयों को संभालना था, फिर आगे पुराने जन्म पढ़ाते नहीं थे इतना, फिर घर वाले बाहर नहीं निकालते थे, बंदिश बहुत थी, पहला जैसा जमाना अभी नहीं है।
0: इकलौती बेटी है तो चिंता भी रहती थी कि कहीं हमारी बिटिया के नजर नहीं लग जाए।
1: सही बात है।
0: ये तो मजाक थी, खैर माता पिता की जो सोच होती है वो होती है, ऐसा नहीं है।
1: जन्म कहाँ निकालते थे बाहर?
0: जी जी जी, पहले बहुत ही बंदिशें होती थी
1: बहुत,
0: पर आप तो जोधपुर जैसे शहर में थे, फिर भी
1: बंदिश थी ना, मेन बाजार में रहते हैं, हमारा मकान सिटी में ही है।
0: अच्छा, आपके पिताजी क्या काम करते थे?
1: मेरे पिताजी रेलवे में फोरमैन थे।
0: अच्छा अच्छा,
1: फोरमैन की पोस्ट पे थे पर।
0: जी जी, तो आपने जैसे 8वीं तक पढ़ाई की, तो आपके टीचर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ कैसा व्यवहार था?
1: अच्छा व्यवहार था मेरा, टीचर के साथ में भी अच्छा था, फ्रेंड के साथ में भी। एक फ्रेंड तो ये बेटी सामने।
0: अच्छा, क्या बात है,
1: दोनों एक ही स्कूल में पढ़े।
0: तब तो आपके फ्रेंड का भी जरूर लेंगे, हम बात करेंगे आपके फ्रेंड से भी। हेमलता जी के फ्रेंड है, यही साथ में बैठे हैं, तो इनसे भी बात करेंगे, पहले हम हेमलता जी के अनुभव सुनेंगे। तो हेमलता जी, आप बता रहे थे कि बहुत ही अच्छा बचपन आपका गुजरा है, बीता है। आपके जमाने में कौन से गेम खेला करते थे?
1: हमारे जमाने में खो खो, चंगा पो और आंख मिचोली, सतोलिया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल।
0: अच्छा, ये सारे गेम होते थे, आपने किसी में पार्टिसिपेट किया?
1: मैंने वॉलीबॉल में फर्स्ट डिवीजन आई।
0: क्या बात है, कौन सी क्लास में?
1: सेवंथ में।
0: फिर एट में भी गए?
1: एट्थ में नहीं गई थी फिर।
0: तो सेवंथ में फर्स्ट आई तो एट में क्यों नहीं गए?
1: एट्थ में नहीं गई ना, मेरी तबीयत खराब होने लग गई थी, बीमार बहुत रहने लग गई थी मैं, फिर इसके कारण मैंने स्कूल छोड़ दिया था 8वीं पास करके।
0: अच्छा अच्छा, तो 7वीं तक आप वॉलीबॉल खेलते थे?
1: वॉलीबॉल खेले, अभी भी है मेरे पास।
0: अभी भी वॉलीबॉल रखा हुआ है?
1: नहीं, वो कार्ड रखा हुआ है ना जो फर्स्ट मिला था,
0: सर्टिफिकेट,
1: सर्टिफिकेट और इनाम।
0: जी जी, सर्टिफिकेट तो वो कहते हैं ना कि प्राणों से भी प्यारा होता है।
1: प्राणों से भी प्यारा होता है, दिखाना पड़ता है ना भाई।
0: अपने पास सुरक्षित रहना चाहिए,
1: चाहिए। टीसी के साथ में ही देते हैं ना वो तो स्कूल में।
0: जी जी, तो आपने उसको संभाल के रख रखा, कभी काम आया?
1: कभी काम आता ही है ना, अभी तो किसी में काम लिया नहीं है मैंने।
0: अच्छा, चलिए, फिर भी एक मन को खुशी प्रदान करता है
1: ना, कभी मैंने जीता ही है।
0: जी जी, देखते हैं तो बातें याद आ जाती है स्टूडेंट लाइफ की,
1: लाइफ की।
0: अच्छा, और साथ ही साथ आप कह रहे थे गीत संगीत का शौक है, तो आप पढ़ाई करते थे तब गीत संगीत बोलते थे?
1: उस टाइम तो गाने ही चलते थे, भजन तो चलते नहीं थे। जब रेडियो रेडियो चलता था तो रेडियो में गाने आते थे तो वो मैं करती रहती थी साथ साथ, तो वजह से याद रह गए सारे।
0: नहीं, स्कूल में कौन से गीत गाते थे आप?
1: स्कूल में तो वही स्कूल के राष्ट्र गीत और सरस्वती के ऊपर और
0: जी जी देशभक्ति गीत, बहुत सारे गीत गाते हैं।
1: जैसे ये मनाते हैं ना सरस्वती का फंक्शन बसंत पंचमी के दिन, उस पे भी प्रोग्राम में भाग लेती थी, सब कुछ नाच कूद में। और
0: तो चंदेलाइना सुनाएंगे आप?
1: हाँ। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही, जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सका।
0: जी जी जी, तो ये प्रार्थना बोलते थे आप?
1: प्रार्थना बोलते थे।
0: और आप किसमें भाग लेते थे?
1: बस ये खो खो में, और वो बताया ना मैंने वॉलीबॉल में, और उसमें भाग लेते।
0: जी जी, बहुत बढ़िया। तब तो आप कह रहे थे एट में आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया
1: था, इसकी वजह से फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी।
0: तो आप तो अच्छे प्लेयर रह चुके, फिर स्वास्थ्य कैसे ऊपर नीचे हो गया?
1: डिप्टेरिया हो गया था, फिर गला बंद हो गया था मेरा, तो आवाज भी नहीं आती थी मैच, पर फिर पढ़ाई कैसे करती। मैं 3 महीने तक एडमिट रही थी हॉस्पिटल में। फिर मेरा ठीक हुआ, फिर पापा मम्मी ने कहा नहीं पढ़ाना बोले।
0: अच्छा, इसी वजह से आपकी पढ़ाई
1: रुक गई मेरी, नहीं तो मैं आगे पढ़ने के लिए तैयार थी।
0: जी जी जी,
1: मजबूरी थी मेरी, मेरी बीमारी के कारण मैंने पढ़ाई नहीं करी थी।
0: पढ़ाई में आप कैसे थे?
1: अच्छी थी, फर्स्ट डिवीजन आती थी हर विषय।
0: तो आपको बहुत दुख हुआ होगा पढ़ाई छूट गई?
1: पढ़ाई छूट गई तो मेरे को दुख हुआ था ना, आज मैं कहाँ की कहाँ पहुँचती थी।
0: स्वाभाविक है। जी जी जी, हर एक के सपने होते हैं। जी, तो हेमलता जी आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चला एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: न, न, अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: नारी की लचक में करुणा है, पर उसके हौसलों में धार है। हर युग में उसने साबित किया नारी ही असली शक्ति का आधार है, नारी ही असली शक्ति का आधार है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। आपके काफी अनुभव बचपन के हमने सुने हैं, आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। हेमलता जी पुनः स्वागत है आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
4: तो आपकी बचपन की बातें चल रही है, कैसा लग रहा है?
5: बहुत अच्छा लग रहा है। याद आ रहा है बचपन भी।
4: जी बचपन याद आ गया। तो आप बता रहे थे कि आप प्रार्थना भी बोलते थे, आप काफी बीमार हो गए इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए, तो जब आपकी तबीयत ठीक हुई तो फिर आपने कोशिश नहीं की कि अब मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूं?
5: नहीं, कोशिश तो करी थी, पर घर वाले इतना लाड़ प्यार करते थे तो भेजने के लिए मना कर दिया। बोले नहीं, एक का एक बच्ची और तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन संभालेगा।
4: अच्छा, इसलिए आपको भेजा नहीं?
5: इसलिए भेजा नहीं।
4: कभी कभी ऐसा हो जाता है, ओवर लाड़ प्यार मिलता है तो पढ़ाई आगे नहीं पढ़ पाते हैं।
5: बात है, सही बात है।
4: तो उस समय आपको कैसा लगा जैसे आगे नहीं पढ़ाया आपको? ठीक है,
5: दुख हुआ ना उस समय कि भाई मैं और पढ़ती पर घर वाले लाइक नहीं कर रहे थे, क्या कर।
4: और उस समय बचपना होता है, इतना सीरियसली नहीं लेते, वो तो जब एक एज होती तब पता चलता है पढ़ाई क्या है।
5: वो तो आगे बढ़ने के बाद अब महसूस हो रहा है हमको, आगे बढ़ते तो और कहीं पहुंचते, सर्विस करते, टीचर लाइन में जाते और कहीं जाते।
4: जी जी जी, हर एक का सपना होता है,
5: मजबूरी थी ना हमारी, क्या करें।
4: जी कोई बात नहीं, अब तो आपके 60 की उम्र हो गई है और आप भूल भी गए होंगे उन बातों को।
5: बातें भूल गए, अब तो यही याद आता है, और सत्संग का।
4: जी जी, सत्संग का याद आता है। सही बात है, कहते हैं एक वानप्रस्थ अवस्था आती है, एक उम्र जब बढ़ती है तो अपने आप ही मन ईश्वर की तरफ लग जाता है, तो आप भी सत्संग की तरफ ज्यादा रुचि रखने लगे। अच्छा चलिए ये बताइए, जैसे आप बता रहे थे आपके 6 भाई है, आप इकलौती बहन है, तो भाई बहनों के साथ आप कुछ खेलते थे? खेल
5: खेलते थे ना, घर में खेलते थे भाई बहनों के साथ।
4: अच्छा, तो कौन सा खेल हमको भी पता चले उस समय क्या?
5: उस समय तो यही थे ना, आंख मिचोली, छुपा छुपी और खो खो खेलना, चंगा पो खेलना, भाइयों के रात में बैठ के खेलते थे बस, दिन में तो टाइम मिलता नहीं था।
4: तो आप मम्मी को हेल्प कराते थे घर के काम में?
5: घर के काम में हेल्प कराती थी, जब तो कोई बहू नहीं थी, मम्मी और हम ही थे अकेले।
4: जी जी, फिर आपके सामने ही भाभियां आ गई होगी?
5: मेरे सामने 3 भाभियां आ गई थी, उसके बाद मेरी शादी हुई।
4: जी जी, तो भाभियों के साथ कैसा व्यवहार रहा?
5: अच्छा व्यवहार, भाभियां तो बहुत प्यार करती थी, बहुत, मेरे कपड़े तक मेरी भाभी ही धोती थी शादी होने के बाद में भी।
4: जी जी जी, इकलौती ननंद है, सभी का प्यार मिला?
5: सभी का प्यार मिला, कभी कोई कभी कोई कभी वो।
4: जी, और वो कहते हैं ना कि भले कितनी भी बेटी प्यारी हो लेकिन माताओं की आदत होती है बच्चों को शिक्षा और संस्कार देना, तो ससुराल जाएगी तो ये वो। तो आपको भी आपके मम्मी बीच बीच में शिक्षा संस्कार देते थे?
5: देते थे, घर का काम कराते थे, सिखाते थे, रोटी बनाना सिखाते थे, सब्जी रोटी चाय पानी सब मम्मी ने सिखाया था, भाभियों ने सिखाया, जब आज हम सही है यहाँ पे।
4: जी जी, और सिलाई कढ़ाई बुनाई ये कहाँ सीखी?
5: ये यही आके सीखा सारा। अच्छा, स्कूलों में सिखाते थे ना सिलाई के लिए बड़ाई, वो तो सब कागज के वो बनाने सब स्कूलों में सीखा था।
4: अच्छा, तो स्कूल में सीख करके फिर आप घर पर बनाते थे?
5: घर पे बनाए, थैलिया बनाई, कसी देखी और सब कुछ बनाए, बैग बनाए और सामान बनाए।
4: जी जी जी, और आप कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
5: मैं 18 या 19 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी, 8th में।
4: 8वीं पास होने के बाद आपकी शादी हो गई?
5: मेरी शादी हो गई थी।
4: तो आपको बीच में गैप नहीं मिला थोड़ा घर पर रहने का?
5: नहीं, वैसे तो गैप मिला ना, उस समय तो मैं 15-16 साल की थी आंटियों में पड़ी जब, फिर 2 साल मेरे को घर पे रेस्ट करवाया ना, बीमार थी जो, उसके बाद बोलेगा अब शादी कर देते हैं, इसकी पढ़ाई कर देते हैं, ये तो और कुछ हो जाएगा इसको, ऐसा सोचते थे घर वाले।
4: पढ़ाई कर देंगे तो कुछ नहीं होगा?
5: हाँ, ऐसा पुराने जमाने में ऐसे लोग सोचते थे ना। तो फिर 80 में मेरी शादी हुई थी।
4: अच्छा, तो 80 में फिर आपकी शादी हो गई?
5: 1980 में मेरी शादी हुई थी।
4: तो शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए?
5: शादी के बाद तो वही गृहस्थी संभालो, घर का काम करो, बच्चों को संभालो।
4: नहीं, बच्चे तो बाद में हुए होंगे, आपके हस्बैंड क्या काम करते थे?
5: हस्बैंड प्रिंसिपल है।
4: अच्छा, प्रिंसिपल है, मतलब आपका सपोर्ट करते थे?
5: हाँ, बहुत सपोर्ट करते हैं, आज भी करते हैं, अभी भी करते हैं, सब में सपोर्ट करते हैं।
4: और घर में उस समय कौन कौन थे जब आप शादी करके आए? तब
5: मैं शादी करके आई जब मेरी जेठ जेठानी और हम दोनों, मैं और मेरा हस्बैंड, 4 जने थे।
4: सास ससुर नहीं थे?
5: ससुर नहीं थे मेरे,
4: पहले ही उनकी डेथ हो गई थी।
5: पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, मेरे हस्बैंड 12 महीने के थे जब भी उनकी डेथ हो गई थी।
4: सास ससुर दोनों की?
5: सास तो थी, ससुर पहले गुजर गए थे, फिर इन्होंने पढ़ाई करी जब सास भी गुजर गई थी, एसटीसी करी माउंट आबू से, फिर जब सास गुजर गई थी फिर इनकी नौकरी लग गई एसटीसी करने के बाद, फिर हमारी शादी हुई।
4: तो फिर आपके जेठ जेठानी ने आपका सारा काम किया?
5: सारे काम उन्होंने किया, जेठ जेठानी।
4: जी जी,
5: वही सास ससुर के बराबर ही है मेरे।
4: जी जी, आपने तो उन्हीं को देखा है।
5: उन्हीं को देखा है मैंने, यही है सास ससुर।
4: बिल्कुल, समझदार के लिए तो यही है,
5: यही है। हम कहाँ जाएंगे, नहीं तो किसके यहाँ जाएंगे, शादी करी तो उनको ही सम्मान देना है ना।
4: सही बात है। आप जैसे शादी करके अपने ससुराल में आए तो आपने देखा कि जेठ जेठानी आपके सास ससुर है, तो कैसे रहते थे आपस में, रिश्ता कैसा रहा आपका आपके जेठ जेठानी के साथ?
5: हमारा दोनों का रिश्ता अच्छा रहा था, आपस में साथ में ही निभाए 20-25 साल तक। फिर वो पोस्टमास्टर थे तो इनका बार बार ट्रांसफर होता था जेठ जी का, तो फिर मेरे को अकेला ही रहना पड़ता था इनके साथ में। उनके भी बच्चे नहीं है, जेठ जी के भी एक ही लड़की थी जो उसकी शादी कर दी।
4: अच्छा, और आपके कितने बच्चे हैं?
5: मेरे 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं।
4: 4 बच्चे हैं।
5: 4 बच्चे हैं।
4: जब आप शादी करके आबू में आए, एक तो जोधपुर इतना बड़ा शहर, फिर जोधपुर से आप एक कस्बे में आए, तो यहाँ आपका मन लग गया?
5: नहीं लगा था मन, बहुत अभी तो बहुत अच्छा हो गया, पहले तो वीरान था पूरा। मैं शादी करके आई जब कुछ भी नहीं था, और मैं तो देख देख के रोती थी, खाना भी नहीं खाती थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ यहाँ पे, मेरे को तो जोधपुर छोड़ के आओ, ऐसे करती थी। फिर धीरे धीरे सेटल हुए, फिर ये नौकरी पे जाते, फिर मैं अकेली रहती दिन भर, जब तो बच्चे ही नहीं थे और नहीं नहीं किससे बात करूं मैं, तो मैं अकेली कमरा बंद करके बैठी रहती थी, रोती थी अंदर ही अंदर।
4: आपके माता पिता ने ये नहीं देखा कि बच्ची इतनी लाड़ प्यार से पली हुई है, एक गांव में दे रहे हैं, उस समय आज तो फिर भी कस्बा है, उस समय तो आप कह रहे हैं कि वीरान था, तो उस समय कुछ था नहीं, तो उनको थोड़ा सा ये नहीं लगा कि बच्ची कैसे सेट होगी वहां?
5: उनको बहुत लगा था, उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया था, 4 बार रिश्ता तोड़ा है 4 बार।
4: अच्छा,
5: मेरी मम्मी ने तो बिल्कुल कह दिया मेरी एक ही लड़की है, मैं बाहर नहीं दूंगी, रोने लग गई थी वो भी, पर अब किस्मत ने यहाँ लाया साथ तो फिर क्या करे, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं बाहर नहीं दूंगी।
4: जी जी, फिर कैसे हुआ यहाँ पर आपके पिताजी?
5: अगले ने भी जिद करी, इन्होंने भी जिद करी कि नहीं हमको लड़की यही पसंद है, हम तो यही करेंगे।
4: और आपके पिताजी भाई लोग का फोर्स था क्या?
5: सपोर्ट दिया ना, फिर क्या करें कि भाई करो, जिद कर रहे तो। बाकी मेरे खानदान में कोई बार नहीं है, मैं अकेली बार हूँ।
4: तो उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया रही?
5: उस पुराने जमाने में तो हमसे बात ही कहाँ करते थे पहले, वो तो बड़ों ने जो कर दिया वो सही है, हमने ना आदमी को देखा ना किसी को देखा,
4: अच्छा, देखने का सिस्टम था ही नहीं तो देखा ही नहीं।
5: मेरी शादी के टाइम तो सिस्टम था ही नहीं, पूछते ही नहीं थे।
4: जी जी जी, बस जो बड़ा ने किया वो पत्थर की लकीर,
5: पत्थर की लकीर हो गई।
4: तो जब आप यहाँ पर आए, आपने देखा कि वीरान है, मतलब मन नहीं लग रहा है, तो आपके हस्बैंड से आपने बात नहीं की कि कहीं अच्छे शहर में सेट हो जाए?
5: नहीं तो नौकरी का इशू था ना भाई, बाहर नौकरी तो यहीं लगी हुई थी ना, फिर बार बार इनके ट्रांसफर होते रहते थे तो फिर ये अप डाउन करते थे। पास में अनादरा है, जैसे आतल है, चार पांच जगह इन्होंने नौकरी करी, फिर मावल, ये तो मावल तो आबू रोड में ही था जो चल गया।
4: जी जी, छोटे छोटे गांव में
5: डीन की प्रमोशन होता रहता था बार बार।
4: जी जी, इसलिए आप जा नहीं पाते, बड़े शहर में हो तो आप चले जाओ।
5: चली जाती, नहीं तो मैं छोटे शहर में मैं क्या करूंगी जाके, जब एक जगह ही अपना रहना है तो। फिर दो बच्चे छोटे थे दोनों, एक इनको लेके कहाँ घूमती इधर उधर।
4: और आपके जेठ जेठानी बाहर रहते थे?
5: जेठ जेठानी का ट्रांसफर हो जाता था हर तीन साल में, तो फिर वो बाहर जाते थे, तीन साल यहाँ रहते, तीन साल बाहर रहते थे।
4: अच्छा, इसलिए आप बिल्कुल ही अकेले रह जाते
5: हो? गई थी मैं बिल्कुल, छोटे से घर में रहती थी। फिर
4: तो आपके जेठ जेठानी को बोला नहीं कि मैं अकेले, मतलब मेरा मन नहीं लगता है कि आप लोग ट्रांसफर मत होना?
5: कभी तो मजबूरी थी ना, नौकरी थी, उनकी भी तो ट्रांसफर होता था ना, उनके तीन साल फिक्स होते थे, हर तीन साल में ट्रांसफर हो जाता।
4: जी जी, तीन साल में आपको जाना ही है,
5: चाहे आप कैसे भी रहो।
4: जी जी, और जैसे आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई आती थी, तो आप अकेले पढ़ते थे कि जैसे आपके हस्बैंड जॉब पर चले जाते थे, आप अकेले हो घर में, तो आपने कैसे समय व्यतीत किया? इन चीजों में ध्यान दिया, सिलाई कढ़ाई बुनाई में, भजन सत्संग में, या फिर कैसे? आप भाई रोज अकेले रहना, रोना, वो तो अच्छी बात नहीं है।
5: नहीं तो घर का काम तो करना पड़ता था ना मेरे को पीछे, जैसे घर का काम करना, बच्चों को रखना, ऐसे ये स्वेटर वेटर बना लेती, टोपे मोजे और ये बनाती बैठे बैठे सर्दी में, फिर बच्चों को रखना भी तो मेरे को ही पड़ता, जब इनको सुला के फिर घर का काम करती। पहले नौकर चाकर कहाँ थे, कोई संभालने वाला भी नहीं, सास नहीं, जेठानी नहीं, ननद नहीं, कौन संभालता?
4: जी बिल्कुल, तो इन चीजों में ध्यान दिया, और जरूरी भी है, और बच्चे होते जिस घर में वहां तो टाइम कैसे बीतता पता ही नहीं चलता,
5: इसीलिए मैंने बच्चों के साथ ही जिंदगी लगाई। फिर धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाने लगी बच्चों को, छोटे बच्चों को, पांचवी तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, तो दिन उसमें पूरा हो जाता था मेरा।
4: क्या बात है, आपने आठवीं तक पढ़ाई की, और आज के युग के पांचवी तक के बच्चों को आप पढ़ा लेते?
5: पढ़ा लेती थी सारा,
4: क्योंकि आपके समय में तो इतनी अंग्रेजी नहीं थी।
5: मैं तो अंग्रेजी मीडियम से ही पढ़ी हुई आठवीं तक, तो मेरे को इंग्लिश तो बहुत अच्छी आती है।
4: अच्छा, चलो ये आपका अच्छा रहा। तो आप फिफ्थ तक के बच्चों को आराम से पढ़ा लेते?
5: पढ़ा लेती थी, पहले तो इतनी हाई फाई किताबें नहीं थी ना छोटे बच्चों की, पांचवी तक तो नॉर्मल ही था, इंग्लिश भी कहा एबीसीडी और यही होते थे, स्पेलिंग है वही होती थी, अब ये कोर्स तो अब भारी हुए।
4: हाँ जी हेमलता जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर समय हो चला है एक ब्रेक लेने का, तो एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: ममता की मूरत भी वही, शक्ति का स्वरूप भी वही। ममता की मूरत भी वही, शक्ति का स्वरूप भी वही। नारी को कमजोर कहने वालों, नारी को कमजोर कहने वालों, हिम्मत करो, पहले उसे समझो तो सही। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। हेमलता जी के काफी अनुभव हम सभी ने सुने हैं, आइए इसी कड़ी में और भी इनके अनुभव सुनेंगे। तो हेमलता जी, आप जैसे बता रहे थे कि आप अकेले पड़ जाते थे, तो पहले तो आपने शुरुआत में तो आप अकेले बैठ करके थोड़ा उदास होते थे, थोड़ा रोना भी आ जाता था, फिर आपने क्या सोचा कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं, सिलाई कढ़ाई बुनाई करूं, तो ये किसी ने आपको कहा या अंदर से आपको सूझा?
3: नहीं, मेरे अंदर से ही सूझा था कि मैं अकेले किससे बात करूं। मैं राजस्थान से आई हुई यहाँ अबू रोड में, फिर मैं किसी को जानती नहीं थी, ना किसी से बात करती थी, तो फिर अंदर ही अंदर मैंने यही सोचा कि बच्चे आएंगे तो मैं उनके साथ मनोरंजन भी कर लूंगी।
2: अच्छा सोचा, तो आपने सबसे पहले अपने हस्बैंड से बात की होगी?
3: हाँ, हस्बैंड से बात की ना, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यही चालू कर दो, मैं पीछे रहता नहीं हूँ घर पे, और अकेली पड़ जाती है तो फिर साथ में यही।
2: तो इस तरह आपने ट्यूशन की शुरुआत की?
3: शुरुआत
2: जी। बच्चे आपके कितने साल बाद हुए?
3: बच्चे मेरे एक साल बाद हो गए थे, 81 में बड़ा वाला हो गया था।
2: और एक साल तो कहते हैं ना, ससुराल पियर आने जाने में भी समय,
3: आने जाने में ही बीत जाता है एक साल, तो फिर मेरे हो गया था।
2: जी जी, तो हाँ, आने जाने में कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। फिर थोड़े बहुत आपके जेठानी भी रहे होंगे?
3: जी हाँ, साथ में रहे ना वैसे तो।
2: जी, तो जैसे आप बता रहे थे कि आपकी 18-19 साल की एज में शादी हुई, आपको सारे काम आते थे या आपकी जेठानी ने सिखाया यहाँ?
3: ना, यहाँ आके सीखी थी मैं, मेरे को साड़ी पहननी नहीं आती थी, सब उन्होंने सिखाया मेरे को। अब पढ़ाई करते हुए अपन साड़ी कहाँ पहनते, वही सलवार सूट और जीन्स टॉपर और यही पहनते थे, तो साड़ी मैंने यहाँ आके सीखी।
2: जी जी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पहले उनका अनुभव नहीं होता है, बाद में ही होता है। जब हम कहते ना कि जमीन पर उतरते हैं और जब घर गृहस्थी में रचते पचते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पर सीखी। तो जैसे आप कह रहे थे कि कढ़ाई बुनाई, ये आपने मायके सीखा है या सीखा?
3: ये तो मैं स्कूल में सीखी थी सारा।
2: हाँ जी हाँ जी, आपने स्कूल का बताया था। और आपने बच्चों का ट्यूशन, आपके बच्चा हो गए उसके बाद शुरू किया या पहले ही शुरू कर दिया?
3: नहीं, पहले ही शुरू कर दिया था।
2: तो बच्चे लोग आते थे?
3: आते थे, छोटे बच्चे आते थे ना, सब आते थे।
2: तो इसकी एड कैसे की आपने?
3: एड तो जब तो मैं फ्री थी ना उस समय, फिर बच्चा होने के बाद वापस बंद कर दिया था, फिर थोड़े बड़े हो गए 2-3 साल के, फिर वापस चालू कर दिया।
2: जी, लेकिन कैसे लोगों को पता चला कि आप ट्यूशन पढ़ाते हैं?
3: वो तो टीचर थे ना हमारे घर से, तो उन्होंने बताया, और मोहल्ले में भी पता था सब कि भाई इनके घर से प्रिंसिपल है, तो वो आते थे पूछने मोहल्ले वाले और क्या पढ़ा दोगे क्या। पुराने जमाने में तो इतना ट्यूशन का कहाँ था, पहले छोटे बच्चों को घर पे ही भेजते थे।
2: जी जी, ट्यूशन का इतना क्रेज नहीं था, लेकिन
3: अब तो उसमें जाते हैं सब लाइब्रेरी में, तो घर वाले को कौन पूछे, पढ़े लिखे ऐसे ही बैठे रहते।
2: जी जी, तो आपका टाइम पास हो जाता था और आपकी भी पढ़ाई वापस रिपीट हो जाती थी।
3: जी हाँ, वापस रिपीट हो जाती, वो नॉलेज भी रहता ना कोई चीज का पढ़ाने से, कि भाई इसको ये पढ़ाना, इसको ये पढ़ाना।
2: जी, और आपके जैसे बता रहे थे कि आपके चार बच्चे हैं, तो कैसे आपने बच्चों की परवरिश की अकेले हाथ, क्योंकि आपके जेठानियां रहते नहीं थे, अकेले आपको रखना, आपके हस्बैंड भी पूरे दिन झोप पर रहते थे, तो कैसे उनका पालन पोषण किया आपने?
3: मेरा बड़ा वाला तो जोधपुर हुआ था, तो 5-6 महीने तो मैं उसको वहीं से करके लेके आई थी, फिर यहाँ आके फिर जेठानी ने थोड़ा रखा, थोड़ा हमने संभाला, ऐसे करके साल भर का हो गया वो बड़ा। फिर धीरे धीरे परवरिश करती रही, फिर 83 में दूसरा नंबर का लड़का हुआ, 83 में, और 90 में दोनों गुड़िया हुई, ट्विंस।
2: अच्छा, ट्विंस हुई?
3: ट्विंस हुई दोनों मेरी गुड़िया।
2: ओ, ट्विंस को तो रखना बहुत मुश्किल है।
3: तो फिर काम वाली बाई रखी थी ना, मालिश वाली और सब, फिर दो को तो मैं कैसे संभालती, मेरे पास कोई है ही नहीं, कोई सास नहीं, कोई देवर नहीं, कोई जेठ नहीं।
2: बहुत जने क्या करते, ट्विंस होते तो एक को पियर छोड़ देते, एक को अपने पास रखते, तो आपने ऐसा तो नहीं किया?
3: नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने मेरे बच्चों को मैंने ही परवरिश की दोनों की।
2: आपके पियर वालों ने तो कहा होगा एक बच्चे को छोड़ दो।
3: आई थी ऐसे तो मम्मी आई थी रहने के लिए, भाई 2-4 महीने रहती फिर चली जाती, फिर आती फिर चली जाती, उनका भी बुढ़ापा था तो फिर इतना सहन नहीं होता ना। फिर मैं काम वाली लगा दी थी मेरे, वो रखते थे फिर सब, और दोनों बच्चे संभालते थे गुड़िया को जब मैं खाना बनाती।
2: जी, आपके दोनों बेटे थोड़े बड़े हो गए?
3: बड़े हो गए थे ना मेरे, एक 8 साल का था, एक 10 साल का था, तो दोनों में उनमें ज्यादा फर्क नहीं रहा, उनमें 2 साल का ही डिफरेंस था, 2 साल बाद दूसरा हो गया था, इनमें ज्यादा 10 साल का डिफरेंस रहा था।
2: अच्छा, दोनों बेटियां जो हुई और बेटा के बीच 10 साल का गैप?
3: 10 साल का गैप है, ये 90 में हुई थी, वो छोटा वाला 83 में हुआ था, और बड़ा वाला 81 में हुआ था, तो 2 साल का उनके गैप रहा, और इनके साथ 10 साल का रहा।
2: तो बच्चे थोड़े रखने जैसे हो गए, बड़े हो गए?
3: बड़े हो गए थे रखने जैसे, तो दोनों गुड़िया को रखते थे, स्कूल भी जाते थे बच्चे दोनों।
2: जी जी जी, हाँ स्कूल भी जाते थे, फिर वो जाते थे उस समय आप रखते, आपने वैसे ही काम वाली माई लगा रखी थी?
3: रखी थी, और फिर इसके पापा भी जाते सुबह, उनका टिफिन बना के देना, काम तो बहुत मजबूरी से बहुत दुखी से कराए, आज कहीं जाके सुख आया है।
2: कहते हैं ना दुख सुख जीवन के साथ चलते हैं,
3: जोड़ा होता है ना दोनों का ही।
2: जी जी, चार बच्चों के खैर अकेले हाथ परवरिश करना बहुत ही मुश्किल होता है, और फिर आप इतने लाड़ प्यार से पियर में पले हैं तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना घर में भतीजा भतीजे को बड़ा किया हो, तो उनके लिए थोड़ा सरल है?
3: सरल है, कराना बड़े को भतीजे भतीजे, 3 की शादियां हो गई थी मेरे से पहले, तो उनके भी तो बच्चे थे ना, उनको संभालना, सारा घर का काम देखना सब करती थी मैं,
2: तो फिर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस थी?
3: प्रैक्टिस थी मेरी कि भाई बच्चों को कैसे संभालना है,
2: इसलिए इतना मुश्किल नहीं लगा?
3: इतना मुश्किल नहीं लगा, गृहस्थी संभालना मुश्किल नहीं लगा।
2: जी जी, लेकिन जब टिफिन बनाना होता है, एक साथ में बना के देना पड़ता, उस समय मुश्किल होता?
3: क्या मैं तो मुश्किल ही, भाई बनाना तो अपने को ही है ना, दूसरा थोड़ी बनाएगा।
2: बिल्कुल, 3 जनों का टिफिन, फिर 2 बच्चों को संभालना,
3: बच्चों को संभालना सारा।
2: जैसे आपने कहा कि काम वाली बाई लगाई आपने, तो काम वाली बाई क्या करते थे, बच्चों को खिलाने के लिए लगाई या घर के काम में?
3: दोनों काम करती थी काम वाली बाई, बच्चों को भी रखती थी और घर का काम भी करती थी, पूरे दिन के लिए लगा रखी थी, जैसे बच्चे सो रहे तो भाई घर का काम कर लेती, बच्चे उठ गए तो उनको संभाल लेती, एक को मैं संभाल लेती, ऐसे करके 5 साल तक उनको बड़ा किया। 2 साल तक तो मैं पियर ही नहीं गई, बाहर ही नहीं निकली घर से, 2 बच्चों को लेके कैसे जाऊं।
2: तो फिर आपके पियर वाले मिलने आते आपसे?
3: आते थे ना पियर वाले मिलने आते थे, कभी भैया भाभी आ जाते, कभी मम्मी आ जाती, कभी कोई आ जाता।
2: पर आपके तो जैसे हस्बैंड के प्रिंसिपल की जॉब थी, तो छुट्टियों में तो छुट्टियां ही छुट्टियां, उस समय जा सकते थे?
3: तो 1.5 महीने की छुट्टी पड़ती ना जब, तो फिर बच्चों को कैसे संभालना, बाहर कैसे लेके जाना दोनों बच्चों को, आगे तो कोई गाड़ियां वाड़ियां कोई सुविधा नहीं थी, वही बस में जाओ या ट्रेन में जाओ, फिर 80 का पात्र बनता, इसलिए मैं तो मैंने कहा मेरे तो कहीं नहीं जाना 2 साल तक।
2: अच्छा, नहीं आपके हस्बैंड भी तो साथ में आ सकते थे ना?
3: आ सकते थे, पर बच्चों को तो मेरे को ही संभालना था ना भाई, तो अब एक को दूध पिलाऊंगी दूसरे को।
2: अच्छा, इसलिए आप नहीं जाते
3: नहीं
2: थे?
3: नहीं गई मैं 2 साल तक, कहीं नहीं गई, घर से बाहर ही नहीं गई मैं।
2: चलिए हेमलता जी, फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: उठना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ बुक, जीवन एक बहुत सुंदर किताब है। रीड इट, उसको पढ़ो, है ना। कुछ एक अच्छी अच्छी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। एक किताब रिसेंटली जो मैंने पढ़ी है और वो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। और एक और किताब मुझे अभी रिसेंटली बहुत अच्छी लगी थी, एंड दैट वाज हु वुड क्राई व्हेन यू वुड डाई। जब हमारी मृत्यु होगी ना तो कौन कौन लोग रोएंगे। जब मैं किताब पढ़ने लगा तो मुझे ये एहसास हुआ, मृत्यु के नजदीक जब हम हैं और अगर हमने अपने लाइफ को रिवाइंड करके देखा, अगर हमारे जीवन के प्रति हमारी बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आया, तो मींस माय लाइफ इज अ वेरी रियल सक्सेस। हमें इस जीवन को देखकर खुशी में रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक बातों को फॉलो करना है। हो सके ना तो बीच बीच में उपवास करने का। कौन सा उपवास करना है, कोई शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, लेकिन उपवास करना है दो बातों का, और एक है न्यूज़पेपर्स का। हफ्ते में एक दिन न्यूज़पेपर को थोड़ा बंद करो, हफ्ते में एक दिन टीवी को थोड़ा बंद करो, और हो सके तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। मैं आपको कुछ एक अच्छे और किताबों का सजेशन करूंगा, अगर हो सके तो वो किताबों को जरूर पढ़ना। एंड दैट इज नंबर वन इज इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, जो आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिलेगा। इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा रिटन बाय आदरणीय जगदीश भाई जी, बहुत अच्छी किताब है। एक और किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा और वो है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये भी किताब हो सके तो आप जरूर खरीदना और पढ़ना। और एक जो सबसे अच्छी किताब मुझे लगी है वो आप जरूर पढ़ना, और वो है आदिदेव ब्रह्मा। हिंदी में अवेलेबल है, और वो है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू। और जैसे जैसे आप ये किताबें पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आएगी कि यस, दुनिया जो है किस तरफ बढ़ रही है, और कैसे ये दुनिया परिवर्तन हो रहा है, और कैसी एक सुंदर दुनिया की स्थापना।
2: नारी की नजरों में दुनिया प्यार और परवाह से भरी, नारी की नजरों में दुनिया प्यार और परवाह से भरी, पर जब बात हक की आए तो वो चट्टानों जैसी अड़िग खड़ी, तो वो चट्टानों जैसी अड़िग खड़ी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी हमारे साथ बने हुए हैं। आपके काफी अनुभव हमने सुने हैं, और हम पूछना चाहेंगे हेमलता जी से कि जैसे हेमलता जी आपने बताया कि आपके ट्विंस बेबियां थी, दोनों गुड़िया थी, तो दो साल आप मायके नहीं गए। परिवार में कहते ना कि कहीं शादी ब्याह भी होते हैं, कहीं कोई प्रसंग भी होता है, तो फिर सारे आपने छोड़े।
3: सारे छोड़े मैंने, मेरी सारी इच्छाएं खत्म कर दी थी, मैंने कहा कहीं नहीं जाऊंगी दो साल।
2: लेकिन दो साल में भी कहां बच्चे बड़े हो पाते हैं।
3: फिर भी बैठने लायक उठने लायक तो हो ही जाते हैं ना बच्चे बड़े, जैसे चलना फिरना या कोई गोदी भी ले सकता है, और इतने से छोटे बच्चे को लेके तो कोई संभाल नहीं सकता ना।
2: जी जी, फिर तो कोई भी गोदी में ले ले तो फिर जा सकता
3: है। बच्चे को तो कोई भी गोदी में उठा सकता है, कोई भी घुमा सकता है, घूम जैसे हो जाते बच्चे दो साल के।
2: जी जी, तो दो साल के बाद आपने आना जाना शुरू किया।
3: शुरू किया दो साल के बाद।
2: और अभी बच्चे कितने बड़े हैं।
3: अभी तो शादियां हो गई, उनके बच्चे भी हो गए तो चारों के।
2: क्या बात है, तो अभी तो आप दादी नानी बन गए।
3: नानी बन गई ना।
2: तो अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए।
3: कहाँ जिम्मेदारियां, तो और बढ़ती जाती है, कभी इसका कभी उसका कभी बेटों का।
2: कहते ना मूल से भी ब्याज प्यारा लगता
3: प्यारा होता है।
2: तो फिर भी अभी आप काफी हद तक फ्री है।
3: फ्री है, काफी हद तक तो फ्री है। फिर घर की स्थिति ऐसी है ना, मेरे पति को कैंसर हो गया तो उनके तकलीफ है, उनको खाने पीने का टाइम टाइम दवाई देना सारा देखना पड़ता है, बच्चे छोटे हैं मेरे, दोनों बच्चों के डायलिसिस हो रहा है, देख किडनी की प्रॉब्लम है जो।
2: अच्छा, पोते पोती के?
3: पोते पोती को।
2: अच्छा, तो ये शारीरिक व्याधियां आ गई।
3: हाँ, ये परेशानियां हो गई ये सब।
2: जी जी, तो आपका समय सेवा करने में जाता है।
3: करने में ज्यादा लगता है मेरा समय, इसलिए मैं किसी को टाइम नहीं दे सकती बाहर, मजबूरी में इधर उधर जैसे संगीत में चली जाऊं या भजन में या विश्वविद्यालय में आ जाती हूँ।
2: जी जी, सत्संग में आप थोड़ा सा समय देते हैं।
3: हाँ, ज्यादा नहीं, बुधवार 11 को बस, दो बार।
2: अच्छा, या तो बुधवार या 11,
3: दोनों में से एक दिन जाती हूँ, जब जब ये बच्चे घर पे रहते हैं जब जाती हूँ, नहीं तो नहीं जाती।
2: अच्छा, सभी साथ में है, दोनों बहुए साथ में?
3: सब साथ में, सब साथ में।
2: तो बच्चों के कैसे हो गया, बचपन से था, जन्म से?
3: नहीं था, ये तो इनकी वो क्या बोलते रहे, जेनेटिक प्रॉब्लम हुई है।
2: अच्छा, और आपके हस्बैंड को कितने साल से कैंसर है?
3: मेरे हस्बैंड को तो 5 साल हो गए, कोरोना में हुआ था।
2: अच्छा, कोरोना के समय हो गया।
3: ऑपरेशन करवा दिया, वो तो था जो सारा। दांत में कैंसर हो गया था तो हमने तो पूरा जबड़ा ही निकलवा दिया एक साइड का, ना बड़े आगे ना कुछ हुए।
2: तो कभी बीड़ी सिगरेट या तंबाकू खाते थे क्या?
3: कुछ नहीं, बाजार का नाश्ता तक नहीं करते मेरे हस्बैंड।
2: फिर भी कैंसर हो गया, तो अभी ठीक है?
3: हाँ अभी ठीक है।
2: तो अभी उनकी इतनी जिम्मेदारी नहीं है?
3: नहीं जिम्मेदारी तो है ही ना, अभी उनका सारा खाना बनाना लिक्विड लेते हैं, खा नहीं सकते, एक एक तरफ का जबड़ा निकला हुआ तो एक तरफ चबा नहीं सकते। फिर उनको लिक्विड बना के देती हूँ, जूस बना के देती हूँ, पेजी बना के देती हूँ टाइम टाइम से, फिर उनको दवाई देना।
2: जी जी जी। पर कहीं मान लीजिए आपको अंदर बाहर जाना पड़ता है तो बहुएं संभाल लेती
3: है? बहुएं संभाल लेती है, और टाइम से अगर जो होता है तो मैं करके चली जाती हूँ, नहीं तो बहु संभाल लेती।
2: जी जी जी। और आपके बच्चे क्या करते हैं, बेटे बेटियां जॉब करते हैं? उनको कितना पढ़ाया आपने?
3: मेरे बच्चे, छोटा वाला बेटा तो मेरा एक्सियन है पीएचडी में, बड़ा बेटा एमबीए करा हुआ है, वो शेयर मार्केट का काम करता है, बड़ी बहू फार्मेसिस्ट है उदयपुर में मेडिकल कॉलेज में, और दोनों बेटियां एमए बीएड करी हुई है।
2: अच्छा, तो बेटियां भी जॉब करती
3: है? नहीं जॉब नहीं करती अभी, दे रही है, फाइट दे रही है।
2: जी जी। लेकिन अच्छा पढ़ा लिखा है?
3: अच्छा पढ़ा दिया, सारा परिवार पढ़ा लिखा है सारा।
2: तो आपका कमी खली वो आपने अपने बच्चों में पूरी कर दी?
3: कर दी, उन्होंने पूरी कर दी मेरी, सारे जीवन में खुशियां दे दी, सब कुछ, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब सारी खुशियां दे दी उन्होंने।
2: जी जी जी। तो अभी आप अपने जीवन में खुश है?
3: खुश हूँ मैं, बिल्कुल बहुत खुश हूँ मेरे जीवन।
2: जी। तो आप हमारी जो बहनें सुन रही हैं, जो सीनियर सिटीजन बहनें हैं 60 प्लस वाली, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कितनी बार क्या है कि महिलाओं के जैसे सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाते, लेकिन सास बहू के किटपिट होती रहती, तो आप क्या कहेंगे?
3: नहीं हमारे कभी सास बहू में किटपिट नहीं हुई है आज तक।
2: तो कैसे आप बहुओं को किस नजर से देखते हैं?
3: बेटी की नजर से देखते हैं, और क्या करें, जब अपने को सुखी रहना है तो अगले को जैसा ढलना चाहिए इंसान। और मेरा यही निवेदन है कि सभी बहनें 60 से ऊपर से हो गई है, तो यही निवेदन है कि आप भी अपने जीवन में अपनी खुशी के लिए सबको त्याग दो, किसी को ये मत कहो कि तू मेरी बहू है तू मेरा वो है, अपन खुद मम्मी बन के रहो सबके साथ में। तो आपको भी यही कहना है मेरा कि आप भी ऐसे ही जीवन में जियो तो खुश रहोगे। आज के जमाने में बहुओं को टोका टोकी करना ही नहीं, ना करने से चार बात अपने को सुनने को मिलेगी, इसलिए मुंह को बंद रखो, आंखों से देखो और हंसते रहो।
2: क्या बात है। बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया है कि 60 प्लस वाली बहनें जिनके घर में बहुएं आ चुकी है, उनके साथ प्यार से रहो, ज्यादा टोका टाकी न करो, ताकि बैलेंस बना रहे और घर में शांति बनी रहे, माहौल अच्छा रहे। तो हेमलता जी बहुत बहुत आपका आभार कि आपने बहुत ही सुंदर अपने जीवन के अनुभव शेयर किए, रेडियो मधुबन को समय दिया और हमारे सभी श्रोता बंधुओं के साथ आपने अपने अनुभव शेयर किए, इसके लिए
3: धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए थे। आबू रोड से है आप ने भले पढ़ाई 8वीं तक की है, लेकिन आपका नॉलेज देखे कितना है आज।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढे गाँव की रहने वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनता रहो और मुस्कुराता रहो।

शांति। आज है 7 अक्टूबर 2026 और हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते, तुम बच्चों को तेज पुरुषार्थ करना है और बहुत आगे जाना है। दूसरों की चिंता नहीं करनी है, अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन दो। साथ ही साथ बाबा कहते हैं कि मनुष्य एक तरफ क्या गाते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। जैसे बाबा ने बताया आज की मुरली में, एक तरफ तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, फिर दूसरी ओर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो रघुपति राघव त्रेता युग वाले राम को बुलाते हैं कि हे पतित पावन तुम आओ। तो तीसरी ओर फिर कहते गंगा स्नान करो, उससे पावन बन जाएंगे। तो अभी परमात्मा आएंगे तब पावन बनाएंगे, या जाना होगा गंगा स्नान करने के लिए तब पावन बन सकते हैं, या त्रेता युग के राजा राम आकर के पावन बनाएंगे? तो बाबा कहते हैं इतना सूत मूंझा हुआ है, जो मनुष्य क्या गाते हैं क्या कहते हैं कुछ भी पता नहीं है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं ऐसे बाप के कई कर्तव्य है जो मनुष्य इस संसार में कर नहीं सकते हैं, जैसे किसी मनुष्य को देवता बनाना, शांति धाम सुखधाम का मालिक बनाना, राजयोग सिखाना, पतित से पावन बनाना, मुक्ति धाम ले जाना। ये सारा कर्तव्य एक बाप का है जो मनुष्य आत्मा इस संसार में कोई भी नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें ये सारी बातें स्पष्ट समझाने हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो। भले ज्ञान मार्ग में पीछे आए हैं, लेकिन बाबा कहे तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? उत्तर है मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुखधाम का मालिक बना देना। एक कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है संगम पर ही हम भगवान वाच सुनते हैं, तभी स्वयं भगवान कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखला रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप बेहद के रूहानी बच्चों प्रति समझाते हैं, यह एक एक अक्षर व ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है, यानी लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी इस संसार में कहीं पर भी ये महावाक्य सुनने को नहीं मिलते हैं। बाप ने समझाया है परमात्मा को रूप बसंत भी कहते हैं, उनका रूप भी है, नाम शिव बाबा है, तो नाम रूप से न्यारा नहीं है। वह ज्ञान का सागर है जिस ज्ञान से सदगति होती है। ज्ञान धन भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है। यह ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल फादर, रूहानी फादर। आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूह। भक्ति मार्ग में आत्माएं कितना भटकती है बाप से मिलने के लिए, उनको ढूंढती है, समझती भी है भगवान एक शिव है, फिर भी धक्के खाते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं कि रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो, परमधाम में रहने वाले हो, जहां से फिर आते हो यहां पाठ बजाने। तुम दूर देश के रहने वाले हो, ये ड्रामा है, इसका नाम है
हार जीत का खेल। इस ड्रामा का नाम है हार जीत का खेल। दूसरा नाम है सुख दुख का खेल। बाप समझाते हैं कि हम और तुम सब शांति धाम के रहने वाले हैं, उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। पहले तो ये निश्चय करना है कि हम वहां के रहने वाले हैं। हम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा बिंदी में सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। बाप पढ़ाते भी तुमको है। तुम दुनिया वाले मनुष्यों की चिंता करते हो। तुमको निश्चय है ना कि भगवान वाच होता ही संगम पर है, फिर कब होता नहीं। कोई भी मनुष्य को देवता बना नहीं सकते। कोई भी मनुष्य को देवता बना नहीं सकते, मनुष्य का ये काम ही नहीं है। बाबा कहते भगवान वाच भी संगम पर ही होता है और कभी होता ही नहीं है। शांति धाम सुखधाम का मालिक नहीं बना सकते हैं, न भगवान वाच कर सकते, न मनुष्य को देवता बना सकते, न शांति धाम सुखधाम का मालिक कोई बना सकते। कल्प पहले भी बाप ने बनाया था, अब जो प्रेसिडेंट बना है 5000 वर्ष के बाद वही बनेंगे। सारी दुनिया की जो सीन सीनरियां हैं 5000 वर्ष बाद रिपीट होगी। बुढ़िया इतना सब धारण नहीं कर सकती है, तो उन्हों को कहा जाता है सिर्फ 3 बातें याद रखो। कौन सी 3 बातें याद करो? हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है, फिर सुखधाम में आती है, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है दुखधाम। जब दुखधाम पूरा हो तब बाप कहते मुझे याद करो, मुझे आना पड़ता है तुमको शांति धाम सुखधाम में ले जाने के लिए। बस इतना 3 बातें याद करनी है। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली, फिर आती है सुखधाम में, आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी बन जाते हैं, और विकारी बनते हैं तो यह है दुखधाम। और दुखधाम पूरा होता है तो बाप कहते मुझे याद करो। बस बाबा को आना ही पड़ता है शांति धाम सुखधाम में ले जाने के लिए। अब जो आकर बाप के बने हैं वही वर्षा पाएंगे। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। करोड़ों मनुष्य आकर कुछ न कुछ बाप से सुनेंगे, समझेंगे, वृद्धि होती जाएंगी। सब तरफ तुमको जाकर समझाना होगा, अखबार द्वारा भी बहुत सुनेंगे, पाकिस्तान में भी अखबार द्वारा पढ़ेंगे, अर्थात मीडिया से समझेंगे, वहां बैठे भी ये ज्ञान सुनेंगे। गीता का प्रचार सारी दुनिया में बहुत है। बाप कहते माँ में कम याद करो और वर्षे को याद करो, ये लिखत अखबार में पढ़ेंगे इसलिए भी बहुत ब्राह्मण बनेंगे। जिन्हों को वर्षा लेना होगा तो वह जरूर आकर लेंगे, अभी टाइम बहुत थोड़ा पड़ा है। वृद्धि होती रहेगी, देरी से आएंगे तो फिर तीखा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कल्प पहले जितने स्वर्गवासी बने थे उतने अब भी बनेंगे। बाबा कहे कल्प पहले जितने बने थे उतने अब भी बनेंगे जरूर, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। शांति धाम वाले शांति धाम में जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम घर पहुंच जाएंगे। सन्यासी मुक्ति के लिए माथा मारते हैं, इसलिए सबको कहते हैं मुक्ति ही ठीक है। सुख तो कागविष्ठा के समान है। शास्त्र में लिख दिया है कि सत्युग में भी दुख की बातें थी। शास्त्र में बाबा कहे ये भी लिख दिया है कि सतयुग में भी दुख की बातें थी। समझते कुछ भी नहीं है। कहते हैं परमात्मा को आना है, पतित पावन परमात्मा आओ।

कहाँ आना पड़ेगा, भगत जाएंगे या भगवान को आना पड़ेगा? पतित आत्मा तो जा न सके, बाप आते हैं ले जाने के लिए। सभी आत्माओं का पंडा एक ही है, तुम भी पवित्र बन उनके पीछे चले जाएंगे, परमात्मा के पीछे चले जाएंगे। साजन तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं, महारानी महाराजा बनाने, बाकी श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, फलानी को भगाया पटरानी बनाया, ये बातें लगती नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग की महारानी बनेंगे, तुम ही स्वर्गवासी थे, अब बाप फिर बनाने आया है। 84 जन्मों की बात है, 84 लाख जन्म को याद कर न सके, सत्यों को लाखों वर्ष दे दिए हैं, त्रेता को कम दिए हैं, यह तो हिसाब ही नहीं बनता, बाप कितना सहज कर बताते हैं कि सिर्फ 2 बातें याद करनी है, अलफ और बे, तो तुम पवित्र भी बनेंगे, उड़ भी सकेंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। तो ये ओना रखना चाहिए कि कैसे भी करके बाप को याद करना है, माया के तूफान भी आएंगे परंतु हार नहीं खाना है, भल कोई क्रोध भी करे। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, भल कोई क्रोध भी करे परंतु तुम नहीं बोलो। सन्यासी भी कहते हैं मुख में मुलहरा डाल दो, है ना, तावीज जैसे बना करके डाल दो तो वह बोल बोल कर चुप हो जाएगा। बाप भी कहते हैं कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है, बाबा की याद से ही वर्षा भी याद आएगा। तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख का गायन है कि हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के परिजादे बनेंगे, वहां दुख का नाम भी नहीं होगा। तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो, सुख का हिसाब जास्ती है, 3 हिस्सा सुख है, सुख दुख इक्वल हो तो फायदा ही क्या। तुम्हारे पास धन भी बहुत होता है, सतयुग त्रेता में बहुत धन है, कुछ समय पहले यहाँ भी बहुत सस्ता अनाज था, राजाओं की बड़ी राजाई थी, बाबा ने 10 आने मण बाजरी बेची है, ब्रह्मा बाबा ने 10 आने मण बाजरी बेची है, तो उनसे भी आगे कितनी सस्ताई होगी। मनुष्य थोड़े होंगे, अन्न की परवाह नहीं होगी। अब यह तो याद रहना चाहिए कि पहले हम घर जाकर फिर नई दुनिया में आकर नया पाठ बजाएंगे, वहां हमारा शरीर भी सत्व प्रधान तत्वों से बनेगा। अब 5 तत्व बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित बन गए हैं, आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है, वहां शरीर रोगी नहीं होता। ये सब समझने की बातें हैं, बच्चों को यहाँ अच्छी रीति समझाते हैं फिर घर में जाकर भूल जाते हैं। यहाँ बादल भरकर कितना खुश होते हैं, बाबा के पास आते हैं तो जैसे बादल भरकर बहुत खुश होते हैं, बाहर जाने से भूल जाते हैं। आगे रास विलास बहुत चलता था, फिर ये सब बंद कर दिया। मनुष्य समझते थे जादू है, भक्ति में जब नौदा भक्ति करते हैं तब मुश्किल साक्षात्कार होता है, यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार में चले जाते थे, इसलिए जादू समझते थे। आजकल दुनिया में कितने भगवान बन गए हैं, नाम रखते हैं सीताराम राधे कृष्ण आदि, डबल डबल नाम रखते हैं, कहाँ वह स्वर्ग के मालिक, कहाँ ये नरकवासी। कोई अपना नाम कृष्ण रखता है, शंकर रखता है या विष्णु रखता है, फिर डबल नाम आए सीताराम राधे श्याम शंकर पार्वती, तो आदि डबल नाम ले लिया या शिव शंभु, और कहाँ वो स्वर्ग के मालिक और कहाँ ये नरकवासी। और फिर साउथ में जाओ तो 3-3 नाम भी हो जाते हैं, शिवा रामा कृष्णा। इस समय सब नरकवासी है, सीढ़ी में साफ दिखाया है, सीढ़ी बच्चों ने अपने विचार सागर मंथन से बनाई है।

बाबा देख खुश हुआ। सीढ़ी में सब बातें आ जाती है। द्वापर से विकारी राजाएं कैसे भक्ति करते करते नीचे आए हैं। अभी तो कोई ताज नहीं है, चित्र पर समझाना सहज होता है। 84 जन्म में कैसे उतरती कला होती है, फिर चढ़ती कला कैसे होती है। गाते भी है चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाप आकर सबको सुख देते हैं, सब पुकारते हैं कि हे बाबा हमारा दुख हरो सुख दो। परंतु कैसे दुख हरते हैं, सुख कैसे मिलता है, ये किसको भी मालूम नहीं। आजकल मनुष्य गीता कंठ कर सुनाते हैं, नटशेल में अर्थ समझा देते हैं, संस्कृत में श्लोक कंठ करके सुनाते हैं तो कह देते ये महात्मा अच्छा है। लाखों मनुष्य जाकर पांव पड़ते हैं उस पढ़ाई में। लौकिक पढ़ाई में तो 15-20 वर्ष लग जाते हैं। उन्होंने कोई बुद्धिमान होते हैं तो झट श्लोक आदि कंठ कर सुनाने लगते हैं, तो उनके पास ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब कमाई के रास्ते हैं। जब कोई देवाला मारता है तो भी जाकर संन्यास धारण करता है। वैराग आ जाता है दुनिया से तो जाकर संन्यास धारण करता है, तो सब चिंताएं दूर हो जाती है। फिर कुछ ना कुछ मंत्र जंत्र याद कर लेते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ट्रेन में भी चक्कर लगाते रहते। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप और आत्माएं सब निराकारी दुनिया में रहती है, वहां से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने। अब नाटक पूरा होना है। बाबा कहते अब नाटक पूरा होना है, तुम तमो प्रधान होने कारण वापस जा नहीं सकती है, तो वापस जाने के लिए पहले पावन जरूर बनना पड़े। अब बाबा आया है तुमको सतो प्रधान बनाने। सभी अपने घर जाएंगे, बाकी स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य होगा। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम कब कब था ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि घोर अंधेरे में है। समझते हैं कलयुग का अंत अर्जुन इतने हजार वर्षों के बाद होगा, कोई हिसाब ही नहीं है। मनुष्य बढ़ते जाते हैं, अन्न मिलता नहीं। 40,000 वर्ष अभी और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। जो बोलते हैं वह बिल्कुल ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। अब बाप सिखलाते हैं रावण पर कैसे विजय पानी है। रावण पर जीत तुम ही पाते हो। सारी दुनिया को रावण से छुड़ा देते हैं, तुम्हारी शक्ति सेना है। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। फिर तुमको बाप और वर्षे को याद कर कितना खुश रहना चाहिए। ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है। अभी बाबा आया हुआ है, अभी हम इस पुरानी दुनिया से गए कि गए। बाबा अगर आए हैं इस पुरानी दुनिया में, अब हम इस पुरानी दुनिया से गए कि गए। बाबा को याद करने से सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो क्या होगा। याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी, फिर करके रोटी टुकड़ा मिलेगा, इससे क्या फायदा। जितना हो सके अपना पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। कोई कहते बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। एक बच्चे बाबा से कहते बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। बाबा कहते धंधे में तो झूठ होता ही है। तुम बाबा को याद करते रहो, ऐसे नहीं विकार में जाकर फिर कहो मैं बाबा की याद में था। नहीं, विकार में गए तो खत्म, मरे। तो बाबा कहे धंधे में झूठ तो बोलते हैं, क्योंकि बिना झूठ के तो धंधा आज की दुनिया में होता नहीं। लेकिन उसके बाद बाबा कहते हैं तुम याद की यात्रा से या बाबा की याद से, पावरफुल याद से, उन विकर्मों को भी भस्म करो। क्योंकि जो इस दुनिया की रीत रस्म है
उससे तो कोई अछूता नहीं है, लेकिन फिर इतनी पावरफुल याद भी करो, क्योंकि उसका पाप तो बनता ही है, लेकिन पावरफुल याद में बैठ उन विकर्मों को भी भस्म करो। बाकी ऐसे नहीं कि विकार में जाकर कहो मैं बाबा की याद में था, नहीं, विकार में गए तो मरे, ये तो बाप के साथ प्रतिज्ञा की है ना। पवित्रता के लिए राखी बांधी जाती है, क्रोध के लिए कब राखी नहीं बांधी जाती। राखी बंधन का मतलब ही है कि विकार में नहीं जाना है। मनुष्य कहते हैं पति पावन आओ, तुम बच्चों के अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, फिर बाबा साथ ले जाएंगे, वहां से स्वर्ग में चले जाएंगे, जितना हो सके सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। याद करना गोया कमाई करना है, इसमें आशीर्वाद क्या करेंगे, ऐसे थोड़ी कहना है आप आशीर्वाद करो तो हम याद करें। बाबा कहे याद के लिए कोई आशीर्वाद नहीं होते हैं, सब पर आशीर्वाद करे तो सब स्वर्ग में चले जाए, यहां तो मेहनत करनी है, हरेक को अपना अपना पुरुषार्थ करना है, जितना हो सके बाबा को याद करना है। बाबा माना वर्षा, बाबा को याद किया तो वर्षा मिलेगा, जितना याद करेंगे उतना राजाई मिलेगी। याद से बहुत फायदे हैं, सस्ता सौदा है, ऐसा कोई सस्ता सौदा दे ना सके, इतना सस्ता सौदा कोई दे ना सके कि याद करेंगे याद से राजाई मिलेगी तो कितना फायदा है, यह भी कोई विरला ही लेते हैं। बाबा कहते ये सौदा भी कोई विरला ही करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है, क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है, माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे बाप को याद करना है, अपनी कमाई जमा करनी है, पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात्कार मूरत भव, अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूरत भव। जैसे सेवाओं के और प्रोग्राम बनाते हो, ऐसे सवेरे से रात तक याद की यात्रा में कैसे और कब रहेंगे यह भी प्रोग्राम बनाओ, और बीच बीच में 2-3 मिनट के लिए संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप कर लो। जब कोई व्यक्त भाव में ज्यादा दिखाई दे तो उनको बिना कहे अपना अव्यक्त शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह भी इशारे से समझ जाए, इससे वातावरण अव्यक्त रहेगा, अनोखापन दिखाई देगा और आप साक्षात्कार कराने वाले साक्षात मूरत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है, संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। आज का व्यक्ति इशारा है, परोपकार की भावना से संपन्न बन, अपकारी पर भी उपकार करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, अगर कोई आपके सहयोगी भाई व बहन, परिवार की आत्माएं बेसमझी व बालहट से अल्पकाल की वस्तु को सदाकाल की प्राप्ति समझ, अल्पकाल का मान शान नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती है, तो दूसरे को मान दे करके स्वयं निर्माण बनना
यही परोपकार है, यह देना ही सदा के लिए लेना है, यह देना ही सदा के लिए लेना। अच्छा ओ